ਸਤ ਸਤ ਹਰ ਸਤ ਸਤ ਸੱਤੇ ਸਤ ਪਣੀਐ ਦੂਸਰ ਆਨ ਨਾ ਅਵਰ ਪੁਰਖ ਪਉ ਰਾਤਨ ਸੁਣੀਐ।

देहो दर्श मन चाओ, भगत इहो मन ठहरावे। भले उचराग अंध्यार में सब कल उधरी एक नाम धर्म प्रगट।

कीर्त करण शरण मन मोहन जोहन पाप बिदारन कौ हर तारण करण समर्थ सदय विध कुल है समूह उदाहरण सौ चेत चेत अचेत जान सत संगत परम

पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरहो अगम अपार हो श्री पतनाथ शरण नानक जान श्री पतनाथ

मुन जन गाव है अचल छला। गाव है गुण तोम अटल मंडल वै, भगत पाए रस जाने ओ, कब कल सुझ

जिन हुक्म सब सृष्ट सवारी। ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाणे जप।

पुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान बस तेनेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परेरे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे।

संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सर। फुन गुरु जल बिमल अथा मज्जन करहो, संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सर। सदा निर्वैर निरंकार निरभउ जपै, प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर। मुग्ध मन

संग सोब, कहत मांझ सोद जिसै दही भात खाहे जियो। देख रूप अत अनूप मोह महामग पई, किंकनी शब्द चा

जंगम सर्प है जग घेरिया बिखमाए, बिख का मारन हर नाम है गुरगरड़ शब्द मुख पाए। जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए, मेरे सतगुर निर्मल हो।

जिनको पूर्व लिखिया तिना भेटिया गुरु गोविंद। नानक सहजे मिल रहे हर पाया परमानंद। सतगुर सेवन अपना गुर शब्द विचार, सतगुर का पाणा मन लैन, हर नाम रख है उर तहार।

जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी।

हुक्म लिख दुख सुख पाए इक ना हुक्मी बख्शीस इक हुक्मी सदा पवाए हुक्म अंदर।

दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरुमुख नादं गुरुमुख वेदं गुरुमुख रया समाई, गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई, गुरा इक देव जाई सबना जिया का इक दाता, सो मैं विसर न जाई। तीरथ नावा जे तिस भावा विन पाने के नाय करी, जेती सिर्ठ उपाई वेखा विन कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर माणिक जे इक गुर की सिख सुनी, गुरा इक देह बुझाई सबना जिया का इक दाता, तो मैं विसर न जाई। जे जुगचारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानी

दीप लो पाताल सुने पोहे न सकते काल नानक भगता सदा विदास सुने दुख पाप का नाश सुने ईश्वर ब्रह्मा इंद सुने मुख सलाहन मंद सुने जोग जुगत तन पेद सुने शास्त्र सिमरत वेद।

सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन खिच कवन वार कवन सिरुती महा कवन जित हो आकार वेल न पाया पंडती जे हो लेख पुराण वक्त न पायो काजिया जे लिखन लेख पुराण चित वार न जोगी जाने रुत महा न कोई जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोई किव कर आखा किव साला ही क्यों वरनी किव जाना नानक आखन

नानक जे को आपो जाने अगे गया ना सो है। पाताला पाताल लख आगासा आगास ओरक ओरक पाल थके वेद कहन इकवात सैस अठारे कहन कतेबा असलू इक तात लेखा होए ता लिखिए लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। साला ही साला है एती सुरत न पाया नदियां अत्ते वाहा पवे समुंद न जानिए समुंद सह सुल्तान गिरहा से ती मालतन कीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो न विसरे अंत न सिकती कहन न अंत अंत ना करने देन न अंत अंत ना देखन सुन न अंत अंत ना जापे क्या मन मंत अंत ना जापे कीता आकार अंत ना जापे पारावार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे।

ऊंचा नाव एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दास। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना समाए, केते मंगे जोद अपा।

चित गुपत लिख जाने, लिख लिख तरम विचारे, गावे ईश्वर वर्मा देवी सोन सदा सवारे, गावे इंद इंदासन बैठे देवतियां दरनाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे, गावन पंगत पढ़न रखी सर जुग जुग वेदानाले, गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच पयाले, गावन रतन उपाय तेरे अथक तीरथनाले, गावे जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे, गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे धारे, से तुदनो गावे जो तुद भावन रस्ते तेरे पगत रसाले, होर के ते गावन से मैं चित न आवन।

रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे कीता आपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाह सा पाठ साहिब नानक रहन रजाई मुंडा संतोख शर्म पत चोली ध्यान की करें विपूत खिंसा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कटवा जैनाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग दो कार चलावे लेखे आवे पाग आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान इक संसारी इक पंडारी इक लाए दीवान जिव तिस पावे तिवे चिलावे जिव होवे फुरमान ओ वेखे ओ ना नदर ना आवे बहुताए हो विडान आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए पंडार जो किछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश इक दूजी बोला खोए लख होवे लख वीस लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश एक त्राहे पत पवड़िया चढ़िया होए इक्कीस हूं गल्ला आकाश की कीता आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े फीस आखन जोर च पैने जोर जोर ना मंगन देन ना जोर जोर ना जीवन मरन नह जोर जोर ना राज माल मनसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटे संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती छित्ती वार पौन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी तरमसाल तिस विच जी जुगत

पन पंच परवान नदरी करम पवे निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जा पै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पौन पानी वै संतर केते कान महेश केते बरमे कार्त करिए रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश

केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत नांत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिते नाद विनोद कोड आनंद धर्म खंड की बाणी रूप तिथे कारत करिए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया ना जाए जे को कहे पिछे पछताए तिथे करिए सुरत मत मन बुद्ध तिथे करिए सुरा सिदा की सुध।

ताके रूप ना कथने जाहे ना ओहे मरे ना ठागे जाहे जिनके राम वसे मन माहे सिथे भगत वसे के लो करें आनंद सच्चा मन सोए सत खंड वसे निरंकार कर कर वेखे नजर निहाल तिथे खंड मंडल वर पांड जे को कथे ता

चार नानक कथना करड़ा सार जत पहाड़ा तीर सुनियार एरन मत वेद हथियार पाओ खला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत चित ताल करिए शब्द सची टकसाल जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल श्लोक पावन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिन रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगी आईया बुरे आईया वाचे तरम हदू।

दावन सुदनो पवन पानी बैसंतर दावे राजा तरम द्वारे गावन सुदनो चित गुपत लिख जानन लिख लिख तरम विचारे गावन सुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन तेरे सदा सवारे गावन सुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतिया दरनाले गावन सुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन सुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मनमोहन सुर्ग मच पयाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे अठ की रतनाले गावन तुदनो जोध महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे धारे तेई तुदनो गावन जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले होर के ते तुदनो गावन से मैं चितना आमन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सत साहेब साचा साची नाई है भी होती जाए न जाती रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांसी कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखे की ता अपना ज्योतिष दी वड्याई ज्योतिष भावे सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पातशाहो सा पत साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोए केवट वड्डा दिशा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा केता केवट चीरा रहा सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई कह ना जाई तेरी तिलवड़े आई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वड्याईया तुदवे सिद्धि किने न पाया कर्म मिले ना ही ठाक रहाया आखन वाला क्या विचारा सिफती परे तेरे पंडारा जिस तू दे तिसे क्या चारा नानक सच सवारन हारा आसा मेला पहला आखा जीवा विसरे मर जाऊं आखन औखा साचा नाओ साचे नाम की लागे पूख उत पूख है खाए चलिए दुख तो क्यों विसरे मेरी माए साचा साहिब साचे नाए राव साचे नाम की तिलवट आई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलके आखन पाए वदा न हो वे काट न जाए

कृपा करें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गुआया, सुध आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया।

तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवर पहले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेतक मूर मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ ना हूं जति पति नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिनकी सरणा, जिनको नाही विसरिया, आशा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे कित न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम, संग जाम लाग पव जल तरन कै, जन्म बिरथा जात रंग माया कै, रहाओ जप तप संयम तर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहो नानक हमने।

आओ नित नित जियड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देवो सज्जन आशीषड़िया जो होवे साहिब त्यों मेल।

छह गुर छह उपदेश गुर गुर एको वेश अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए हो कर राग वडाई तोए रहाओ रित्वे चस्या घड़िया पहरा थित्ती वारी माओवा सूरज एको रुत्व अनेक नानक करते के तेवेश राग तनाश्री मैला पहला गगन में फाल रल चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती रूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूल अंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत बेरी राव सहस तव नैन नन नैन है तोय कहो सहस मूरत नन्ना एक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही सब में ज्योत ज्योत है सोए किस दे चानन सब में चानन होए गुर साखी ज्योत प्रगट होए ज्योत इस पावे सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अन दिनों मुहे आई प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाए वासा रागौड़ी पूर्वी मैला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मिल साधु खंडल खंडा है पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर दंडौत पुन वड्डा है रहाओ साकत हर रस साध न जानिया तिन अंतर हो मैं कंडा है ज्यो ज्यो चले चुभे दुख पावे जम काल सह सिर डंडा है हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पव खंडा है अविनाशी पुरुष पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है जन नानक नाम।

सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला, औद कटे दिन सुरैनारे, मन गुर मिल काज सवारे रहाओ, ए संसार विकार संसे में, तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पियावे एहो रस, अकथ कथा तिन जानी, जा को आए सोई बिहाजो, हर गुर ते मने बसेरा, निज कर महल पावो सुख सहजे, बहुर न होए गो फेरा, अंतर जामी पुरख विधाते, सरदा मन की पूरे, नानक दास यह सुख मांगे, मोको कर संसन की धूरे।

मत देख पूला विसरे तेरा चितना आवे ना हर बिन जियो जल बल जाओ मैं अपना गुर पूछ देखे।

रंग पसाओ मत देख पूला विसरे तेरा चितना आवे नाओ सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद्ध आखा आओ गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ मत देख पूला विसरे तेरा चितना आवे नाओ सुल्तान होवा मेल

लेखै बोलन बोलना, लेखै खाना खाओ, लेखै वाट चलाइया, लेखै सुन वे खाओ, लेखै सा लवाइए पढ़े के पुछन जाओ, बाबा माया रहे।

रोवन वाले जेतड़े सब बन्ने पंड पराल, सबको आखे बहुत बहुत काट ना आखे कोए, कीमत किने ना पाया कहन ना वड्डा होए, साचा साहिब।

पर निंदा परमल मुख सुदी अग्न क्रोध चंडाल रस तस आप सलाहना एक कर्म मेरे करतार। बाबा बोलिए पत होए उत्तम से डर उत्तम कहिए नीच कर्म बहरोए रहाओ। रस सोयना रस रूपा कामन रस परमल की

कह कछ नाम निवास, जित बोले पत पाये सो बोलिया परवान। फिका बोल विगुचना सुन मूरख मन अजान, जो तिस पावे से पले होर के कहन वखान। तिन मत तिन पत तिन तन पल्ले, जिन हृदय रहा समाए। तिन का क्या सालाना अवर स्वाल्यो काए, नानक नदरी बाहरे राचे दान ननाए। श्री राग महला पहला, अमल गलोला कूड़ का जित्ता देवन हार। मत्ती मरण विसारिया खुशी की ती दिन चार, सच मिलिया तिन सोफिया राखन को दरबार। नानक साचे को सच जान, जित सेवे सुख पाये तेरी दरगह चले मान। रहाओ सच सरा गुड़ बाहरा, जिस विच सच्चा

तामन खीवा जानिए जा मैली पाए थाओ नाओ नीर चंगे आया सत परमल तनवास ता मुख वो वै उजला लख दाती इक दात दुख तिसे पै आखिए सुख जिसे ही पास सो क्यों मनो

रत्ता पैनन मन रत्ता सुपेदी सतदान नीली सियाही कदा करनी पैरन पैर त्यान कमर बंद संतोख

कारमंदर खुशी नाम की नदर तेरी परवार। हुकम सोई तुद पावसी होर आखन बहुत अपार। नानक सच्चा पातशाह पूछ ना करे विचार। बाबा होर सोना खुशी कुआर जित सुत्ते।

जा पत लेखे ना पवे सबा पूज खुआर। जिनको सतगुर था पिया तिन मेट ना सके कोए, ऊना अंदर नाम निदान है नामो प्रगट होए। नाव पूजिए नाव मनिए अखंड सदा सच सोए।

सच मिलै सच उपजै सच में साथ समाए सुरत होवे पत उगवे गुरु बचनी पौ खाए नानक सच्चा पा।

तात मिले पुन तात कहो सुस्ती सुप्त समाए। लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ, सच मिले संतोषिया हर जप एक।

विचार गुरुमुख मन समझाइए आत्म राम विचार तिद दिद कर्म कमाइए आस अंदेशा होए क्यों गुरु बिन त्रिकुटी छुटसी सहज मिले सुख होए निज कर मैल पछानिए नदर करे मल तोए।

आओ आप सुजान ना पुल्ले सच्चा वद किरसान पहला तरती साध के सच नाम दे दान नौनिद उपजे नाम एक कर्म पवे निशान गुर को जान ना जाने क्या किस चज अचार अंधले नाम विसारिया मनमुख अंध गुबार आवन जान न चुके मर जन्मे होए खुआर चंदन मोल अनाया कुंगू मांग संदूर चोआ चंदन बहु कना पाना नाल कपूर जे तन कंतना भावे ता सब अडंबर कूर सब रस पोगन बाद है सब सिगार विकार जब लग शब्द ना पेगी है क्यों सो है गुरुद्वार नानक।

निरोध कर्म मिले सच पाए गुरुमुख सदा निरोध सच्ची कार है सच मिले गुरुमत पल्ले पाए सुर नर जमे ना मरे ना आवे ना जाए नानक दर प्रधान सो दर्दे पैदा जाए श्री राग महला पहला तन जल बल माटी।

नाव तै सच राती देहुरी जीवा सच सुआओ सच्ची नदर निहालिय बहुड़ ना पावे ताओ साचे ते पवना भया पवने ते जल होए जल के त्रिभुवन साजिया कट कट जोत समोए निर्मल मेला ना किया शब्द रते पत होए इह मन साथ संतोखिया नदर करे तिस माहे

मैं अबर ना दूजा कोई रहाओ। आगे देखो डोजल है पाछे हरियो अंगूर, जिससे उपजे तिस्ते दिलसे काट काट सच परपूर। आपे मेल मिला वही साचे महल हदूर, साहे साहे तुझ संभला कदे ना विसारे हो। जो जो साहेब मन वसे गुरमुख अमृत पियो।

लख सियाणप जे करे लक्ष्यों प्रीत मिलाप बिन संगत साधना प्राप्तिया बिन नावे दुख संताप हर जप जिये रे।

हर गुर सरवर सेव तू पावे दरगे मान राव। राम नाम जप दिन सरात गुरमुख हर तन जान। सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान। नित एनस हर प्रभ

हो प्रभ सेज पतार। चारे अग्न निवार मर गुरुमुख हर जल पाए, अंतर कमल प्रगाशिया अमृत पड़िया अघाए, नानक सतगुरु मीत कर सच पावे दरगे जाए। श्री राग महला पहला। हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल, मन सच कसवटी लाइए तुलिए पूरे तोल, कीमत किने न पाइए रिद मानक मोल।

गुरुमुख पूर्ण न पावई, सच रत्ते सच भाए, साकत सच न भावई, कूड़े कूड़ी पाए, सच रत्ते गुर मेले है, सच्चे सच समाए, मन में मानक लाल नाम, रतन पदार्थ हीर, सच वखर तन नाम है, कट कट जहर गंभीर, नान

मिल सत संगत हर पाए, गुरमुख हर निवलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल सलल समाए। जिन हर हर नाम न चेत्यो, सो अवगुण आवे जाए, जिस सतगुरु पुरख न पेट्यो, सो पौ जल पचै पचाए। ए मानक जियो निर्मूल है, क्यों कौडी बदले जाए। जिना सतगुरु रस मिले, से पूरे पुरख सुजान, गुरु मिल पौ जल लंघिए, दरगे पत परवान। नानक

तैसी वस्त विसाही है जैसी निभ है नाल अग्गे साउस जान है लैसी वस्त समाल पाई रे राम कहो चित लाए हर जस वखर ले।

ते जात ना पत है खोट ना सी जिस कोए खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए नानक मन समझाई है गुर कै शब्द सलाह राम नाम रंग रखिया।

जाने नाम खुदाई। जे बहु तेरा पढ़िया होवे को रह ना परिये पाई। सोई काजी जिन आप तजिया

आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मंझ में आनो आपे वे सुने आपे ही कुदरत करे जहानो ज्योतिष पावे नानका हुक्म सोई।

आए। सतगुर मन कामना तीर्थ है, उसनो दे बुझाए। मन चिंदिया वर पावना, जो इच्छा सो फल पाए। नाउ पिलाई।

आए जिसनो आप दयाल होए सो गुरुमुख नाम समाए। पर पढ़ पंगत जोत की वाद करें विचार मत बुद्ध पवी न बुझई अंतर लोभ विकार लक्ष 84 परम दे परम परम होए खुआर।

तो देखो नजर कर नित वसे परपूर गुरमत जिनी पछाणिया से देखें सदा हदूर जिन गुण तिन सद मन।

अंगिन पवित्र रतिया मन तन निर्मल होए कूड़ा रंग कसुंब का बिन सजाए दुख रोए जिस अंदर नाम प्रगास है।

जन्म पदार्थ पाए कै हर नाम न चेत लिव लाए पग छुए रहना नहीं आगे ठौर न पाए ओ वेला हथ न आवई अंत दया पछताए जिस नदर करे सो उबरे हर से लिव लाए देखा देखी सब करे मनमुख बूझ न पाए जिन गुरुमुख हृदय शुद्ध है सेव पई तिन थाए हर गुण गावे हर

जिन्हें एक मन नाम से आया गुरमति विचार, तिनके मुख सद उजले एक सच्चे दरबार, ओए अमृत पीवे सदा सदा सच्चे नाम प्यार। पाई रे गुरमुख सदा पत होए, हर हर सदा त्याए मलहो में कदे तोय राव, मन मुख नाम न जाननी विन नामे पत जाए, शब्दे साधना आयो लागे दूजे पाए, विस्ता के कीड़े पवे विच विस्ता से विस्ता माई समाए, तिनका जन्म सफल है जो

नानक गुरमुख हर पाया सदा हर नाम समाए। श्री राग महला तीजा सुख सागर हर नाम है गुरमुख पाया जाए। अंदिन नाम त्याये सहजे नाम समाए। अंदर रचे हर सच सिउ रसना हर गुण गाए। पाई रे जग दुखिया दूजे भाए गुर सरनाई सुख लहे। अंदिन नाम त्याये रहाओ साचे मैल ना ला गई मन निर्मल हर त्याये। गुरमुख शब्द पछाणिए हर अमृत नाम समाए। गुर ज्ञान प्रचंड बलाया अज्ञान अंधेरा जाए। मन मुख मैले मल परे हों मैं तृष्णा विकार। बिन शब्द मैल ना उतरे मर जम्मे हुए खुआर। तातुर बाजी पलच रहे ना उर्वार न पार। गुरमुख जप तप संजमी हर के नाम प्यार। गुरमुख सदा त्याय एक।

हौ मैं गुरमुख होये नाम रते सुख होए मेरे मन एनस पूर रही नित आसा सतगुर सेव मोह पर जले कर ही माहे उदासा रहाओ गुरमुख कर्म कमावे बिकसे हर बैराग आनंद एनस भगत करे दिन राती हौ मैं मार निचिंद वड्डे भाग सत्संगत पाई हर पाया सहज आनंद सो साधु बैरागी सोई हृदय नाम वसाए अंतर लाग ना तामस मूले विच्चों आप गवाए नाम निधान सत

नानक शब्द रते हर नाम रंगाए बिन पै के ही लाग। श्री राग महला तीजा कर ही सौदा पाई है अंतर सब वच होए खिन खिन नाम समा

गुर प्रसादी मन वसै हों मैं दूर करे एहो मन तावत तां रहै जा आपे नदर करे पाई रे गुरमुख हर नाम से आए नाम निधान सद मन वसै महली पावै थाओ रहाओ मन मुख मन तन अंध है तिसनो ठौर न ठाओ बहु जोनी पौंदा फिरै ज्यों सुन्ये कर काओ गुरमति कट चानना।

कर कृपा में लायन हर नाम वस्या मन आए, पोते जिन कै पुन है तिन सत्संगत में लाए। पाई रे गुरमत साच रहाओ, साचो साच कमावना।

बिन गुर महल ना पाई नाम ना प्राप्त होए। ऐसा सतगुरु लोड़ लहो जिद्दू पाई है सच सोए। असुर संगार है सुख वसे जो तिस पावे सो होए। जेहा सतगुर कर जानिया ते हो जेहा सुख होए। एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए। नानक एक

अपना धर्म गवावे बूझे नाही अंधन दुख विहानी मन मुख अंध न चेत ही डूब मोए बिन पानी मन रे सदा पजो हर सरनाई गुर का शब्द अंतर वसे ता हर विसर न जाई रहाओ इहो शरीर माया का पुतला विच हो मैं दुष्टि पाई आवन जाना जम्मन मरना मन मुख पत गवाई सतगुर सेव सदा सुख पाया ज्योति ज्योत मिलाई सतगुर की सेवा अत सुखाली जो इच्छे सो फल पाए जत सत तप पवित्र शरीरा हर हर मन वसाए सदा आनंद रहे दिन राती मिल प्रीतम सुख पाए जो सतगुर की शरणागति हौं तिनके बल।

पाई रे गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाई है, जे लोचे सब कोए रहाओ, लख चौरासी फेर पया कामन दूजे भाए, बिन गुर नींद ना आवई दुखी रहन विहाए, बिन शब्द फिर ना पाए बिरथा जन्म गवाए। हौ हौ करती जग फिरी ना तन संपै नाल, अंधी नाम ना चेतई सब बाधी जमकाल, सतगुर मिले।

साए नानक रंग ना उतरे जो हर तुर छोड़िया लाए। श्री राग महला तीजा गुरुमुख कृपा करे भगत की जय बिन गुरु भगत ना होई आपे आप मिलाए बूझे ता निर्मल होवे सोई हर जियो साचा साची बाणी।

देख कुटंब मोह लुबाना चलदियां नाल न जाई। सतगुर सेव गुण निदान पाया तिस दी कीम न पाई। हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा अंते होए सखाई। अपने मन चित कहे कहाए बिन गुर आप न जाई। हर जियो दाता।

जिन जाया तन पिता प्रधान, सतगुर सेव सुख पाया विचों गया गुमान, दर सेवन संत जन खड़े पाइन गुणी निदान। मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए, गुर का शब्द मन वसै, मन तन निर्मल होए रहाओ, कर कृपा कर आया।

न बिछड़ जाए। जो किछ करना सो कर रहा अवर न करना जाए। चिरी विछुन्ने मेलियन सतगुर पन्ने पाए, आपे कार कराए सी।

गोविंद गुणी निदान है अंत ना पाया जाए। कथनी बदनी ना पाई है हों मैं विच्चों जाए। सतगुर मिले सद पै रचै आप बसे मन आए। पाई रे गुरमुख बूझे कोए बिन बूझे कर्म कमावणे।

काया सादै उर तप करे विच्चों हो में ना जाए अध्यात्म कर्म जे करे नाम ना कभी पाए गुर कै शब्द जीवत मरे हर नाम वसे मन आए। सुन मन मेरे पाच सतगुर सरना गुर प्रसादी छुट्टी है बिख पवजल शब्द गुर तरना रहाओ त्रै गुण सभा तात है दूजा पाओ विकार पंडित पढ़े बंधन मोह बाधा ने बूझे बिखिया प्यार सतगुर मिले तृप्ति छूटे चौथे पद मुक्त द्वार गुर ते मार्ग पाई।

गुर पाइए हर नामो दे दृढ़ाए, बिन गुर किने न पायो बिरथा जन्म गवाए, मन मुख कर्म कमावणे दरगे मिले सजाए, मन रे दूजा पाओ चुकाए, अंतर तेरे हर वसे गुर सेवा सुख पाए, रहाओ सच बाणी सच शब्द है जा सच तरे प्यार, हर का नाम मन वसे होमे क्रोध निवार, मन निर्मल नाम से आई है ता पाए मोख द्वार, होमे विच जग बिन सदा।

समाए। शब्द मने गुर पाई है विच्चों आप गवाए, अम दिन भगत करे सदा साचे की लिवलाए, नाम पदार्थ मन वस्या नानक सह समाए। श्री राग महला तीजा। जिन्नी पुरखी सतगुर ना सेवियो से दुखिए जुग चार, कर होंदा पुरख ना पछाणिया अभिमान मुठे अंकार। सतगुरु क्या फिटकिया

मन तन शीतल सास्यों सास न बिरथा कोए। मेरे मन हर का नाम ध्याए, साची भगत तासी है जा हर वसे मन आए। रहाओ सहजे खेती राही है, सच नाम बीज पा

नाम ते आए विन कर्मा पाया ना जाए पूरे पाग सत्संगत लहे सतगुर पेटे जिसे आए अंदिन नामे रत्या दुख बिखिया विच्चों जाए नानक शब्द मिलावड़ा नामे नाम समाए श्री राग महला तीजा अपना पाओ तिन पायोन जिन गुर का शब्द विचार सत्संगति सदा मिल रहे सच्चे के गुण सार दुबदा मैल चुकायन हर राखिया उरदार सच्ची बाणी सच मन सच्चे नाल प्यार मन मेरे हो मैं मैल पर नाल हर निर्मल सदा सोना शब्द सवारण हार रहाओ सच्चे शब्द मन मोहया प्रभ आपे लय मिलाए अंदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाए ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सतगुरु बूझ न पाए जिनको पूरब लिखिया सतगुरु पेटिया तिन आए विण नावे सब डुमणी दूजे पाए खुआए।

जिना सच नाम आधार, गुर शब्दी सच पाया दुख निवारण हार। सदा सदा साचे गुण गावे साचे नाए प्यार, कृपा करके अपनी दितोन भगत पंडार। मन रे सदा आनंद गुण गाए, सच्ची बाणी हर पाये हर स्यो रह समाए। रहाओ सच्ची भगती मन लाल थिया रत्ता सह सुवाए, गुर शब्दी मन मोहया कहना कछु न जाए। जेवा रत्ती शब्द सच्चे अमृत पीवे रस गुण गाए, गुरमुख एहो रंग पाये जिसनो कृपा करे र जाए। संसा एहो संसार है सुतिया रहन विहाए, एक अपने पाने कड लयन आपे लेन मिलाए। आपे ही आप मन वस्या माया मोह चुकाए, आप वडाई दितियन गुरमुख दे बुझाए। सबना का दाता एक है पुलिया ले समझाए, एक आपे आप खुआयन दूजे छड़ियन लाए। गुरमती हर पाये।

मिल प्रीतम दुख कटिया शब्द मिलावा होए, सच खटना सच रास है सच्चे सच्ची सोए, सच मिले से ना बिछड़े नानक गुरमुख होए।

तिना सुखे सुख विहाए, ज्ञान विहूनी पिर मुतिया पिरम न पाया जाए, अज्ञान मती अंधेर है बिन पिर देखे पुख ना जाए।

पाए। अन दिन रावे फिर अपना सहजे सच समाए। रहाओ शब्द रतिया सुहागणी सच्चे शब्द सिंगार। हर वर पायन कर अपने गुर कह हेत प्यार। सेज सुहावी हर रंग रवे।

गुरमती नाम सलाही है, दूजा अवर न कोई रहाओ। धर्म राय नो हुक्म है, बह सच्चा धर्म विचार। दूजे पाए दुष्ट आत्मा, ओ तेरी सरकार। अध्यात्मी हर गुण तास, मन जपे एक मुरार। तिनकी सेवा धर्म राय करे, तन सवारण हार। मन के विकार मनह तजे, मन चूके मोह अभिमान। आत्म राम पछाणिया, सहजे नाम समान। बिन सतगुरु मुक्त ना पाईए, मन मुख फिरे दीवान। शब्द नाची ने कथनी बदनी करे, बिख्या माए समान। सब किछ आपे आप है, दूजा अवर न कोए। ज्यों बोलाए त्यों बोलिए, जा आप बुलाए सोए। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। नानक नाम समाल तू, जित सेवे सुख होए। श्री राग महला तीजा। जग हो मैं मैल दुख पाया, मल लागी दूजे भाए। मल हो मैं तोती किवे ना उतरे, जेसो तीर्थ नाए। बहुविध कर्म कमा

गुर शरण आवे ता निर्मल होए, मनमुख हर हर कर थके मैल न सकी तोए। रहाओ मन मैले भगत ना हो वही नाम ना पाया जाए, मनमुख मैले मैले मोए जासन पत गवाए। गुर प्रसादी मन वसे मल हो मैं जाए समाए, ज्यों अंधेरे दीपक बालिए त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजा।

पहला, मैं मन तन बिरहो अत अगला, क्यों प्रीतम मिले कर आए, जा देखा प्रभ अपना, प्रभ देखे दुख जाए, जाए पूछा तिन सजना, प्रभ कित बिद मिले मिलाए, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवरना कोए, हम मूरख मुगत शरणागति, कर कृपा मेले हर सोए। रहाओ सतगुर दाता हर नाम का, प्रभ आप मिलावे सोए, सतगुर हर प्रभ बुझिया, गुर जेवड अवरना कोए, हौ गुर शरणाई टह पवा, कर दया मेले प्रभ सोए।

कूड़ कपट किने न पायो, जो बीजे खावे सोए सबना तेरी आस प्रभ, सब जी तेरे तू रास, प्रभ तुद्दो खाली को नहीं, दर गुरमुखा नो सावास, बिख पौजल डुबदे कड ले, जन नानक की अरदास। श्री राग महला चौथा। नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे त्रिग जीवास, कोई गुरमुख सज्जन जे

ना हो जीवा नाम ते आए, बिन नामे जीवन ना थी है, मेरे सतगुरु नाम दृढ़ाए रहाओ। नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुरु पास, सतगुरु सेवे लग्या कड रतन देवे प्रगास। तन वड़ पागिया जो आए मिले गुरु पास, जिना सतगुरु पुरख ना पेटेओ से पागहीन बस काल। ओए फिर जोन पवाईए विच विस्ता कर विकराल, ओना पास दुआस ना पिटिए जिन अंसर क्रोध चंडाल। सतगुरु पुरख अमृत सर वड़ पागी नावे आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ाए। जन नानक उत्तम पद पाया सतगुरु की लिवलाए। श्री राग महला चौथा, गुण गावा गुण विथरा गुण बोली मेरी माए, गुरमुख सज्जन गुण कारिया।

गुण दावा तृप्त मन होए, अंतर प्यास हर नाम की, गुर तुस मिलावे सोए रहाओ। मन रंगो वड पागी हो, गुर तुठा करे पसाओ, गुर नाम दृढ़ाए रंग स्यो, हौ सतगुर के बल जाओ, बिन सतगुर हर नाम न लब्बई, लख कोटि कर्म कमाओ। बिन पागा सतगुर ना मिले, कर बैठिया निकट नित पास, अंतर अज्ञान दुख परम है, विच पड़दा दूर पयास। बिन सतगुर पेटे कंचन नासिए, मन मुख लो बूढ़ा बेड़ी पास। सतगुर बोहित हर नाम है, कित बिद चढ़िया जाए, सतगुर के पाणे जो चले, विच बोहित बैठा आए। तन तन वड पागी नानका, जिना सतगुर ले मिलाए। श्री राग महला चौथा, हौं पंथ दसाई नित खड़ी, कोई प्रभ दसे

सतगुरु नो सब को लोचदा जेता जगत सब कोए बिन पागा दर्शन ना थिए पागहीन बैरोए जो हर प्रभ पाना सोथिया तुर लिखिया ना मिटे कोए आपे सतगुर आप हर आपे मेल मिलाए आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए सब जग जीवन जग आप है नानक जल जलें समाए। श्री राग महला चौथा। रस अमृत नाम रस अत पला कित बिद मिले रस खाए जाए पुछो सुहागणी तुसा क्यों कर मिलिया प्रभु आए ओए वे परवा ना बोलनी हौं मल मल तो वां तिन पाए पाई रे मिर सज्जन हर गुण सार सज्जन सतगुर पुरख है दुख कड्डे हौं मैं मार रहाओ गुरुमुखिया सुहागणी तिन दया पई मन आए सतगुर वचन रतन है जो मन्ने सो हर रस खाए सेवड पागी वड जानिए जिन हर रस खादा गुर पाए एहो हर रस वन तिन सबत है पागहीन नहीं खाए बिन सतगुर पल्ले ना पवे मन मुख रहे बिल लाए ओए सतगुर आगे ना निवे ओना अंतर क्रोध बलाए हर हर हर रस आप है आपे हर रस होए आप दया कर देवसी गुरमुख अमृत चोए सब तन मन हरिया होया नानक हर वसिया मन सोए। श्री राग महला चौथा। दिन चढ़े फिर आथवे रैन सवाई जाए आव कटे नर न बुझे नित मूसा लाज चुकाए गुड़ मिठा माया पसरिया मन मुख लग माखी पचे पचाए पाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए पुत कलत मोह बिख है अंत बेली कोई ना होए रहाओ गुरमत हर लिव उबरे अलिपत रहे सरनाए ओनी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए गुरमुख दर गए मनिए हर आप ले गल लाए गुरमुखानो पंथ प्रगटा दर ठाक न कोई पाए हर नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लिव लाए अनहद तुनी दर वज दे दर सच्चे शोभा पाए जिनी गुरमुख नाम सलाया तिना सब को कहे सवा।

कपड़ भोग लपटाया सोयना रूपा खाक हैवर गैवर बहुरंगे किए रथ अखाक किसी चित न पावही।

जिसनो तू पतियाए दा सोसन तुझे अनित अहंकार करे अहंकारिया व्याप्या मन की मत तिन प्रभु आप पुलाया ना तिस जात ना पत सतगुर पुरख मिलाया इको सज्जन सोए हर जन का राखा एक है क्या मानस हो मैं रोए जो हर जन पावे सो करे दर फेर ना पावे कोए नानक रता रंग हर सब जग में चानन होए श्री राग महला पंजवा मन बिलास बहुरंकणा दृष्ट पूल खुशिया छत्रतार बाद साइया विच सहसे परिया पाई रे सुख साध संग पाया लिखिया लेख तिन पुरख विदाते दुख सहसा मिट गया रहाओ जेते थान सनंतरा तेते पव आया तन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परया हुक्म चलाए निसंग होए वरते अफरिया सबको वसगत कर लेन बिन नामे खाक रलिया कोट तेती सेवका सिद्ध साधक दर खरिया गिरमबारी वड साहेबी सब नानक सुपंथिया श्री राग महला पंजवा पलके उठ पपोलिये बिन बुझे मुग्ध अजान सो प्रभ चित न आयो छुटेगी बेबान सतगुर से ती चित लाए सदा सदा रंगमान प्राणी तू आया लाहा लैन लगा कित कु पकड़े।

उठ चलिया पछताया परया वस जंदार अंधे तू बैठा कंधी पाहे जे होवी पूरब लिखिया ता गुर का बचन कमाहे रहाओ हरी नाही ने डडुरी पक्की वडनहार ले ले दात पहुंचया।

ते चाक चखाया चौथे पोर पया तद ही चित ना आयो जिन जियो पिंड दिया साध संगत को वारिया जियो किया कुर्बान जिसते सोजी मन पई मिलिया पुरख सुजान नानक डिठा सदा नाल हर अंतर जामी जान। श्री राग महला पंजवा सबे गल्ला विसरन इको विसरना जाओ तंदा सब जलाए कै।

बात जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ गुरते महल प्राप्ते जिस लिखिया हो वह मत मेरे मन एकस्यों चित लाए एकस बिन सब तंद है।

जपना आठ पहर प्रभ त्याय तू गुण गोविंद नित गाओ रहाओ तिसकी सरनी परमना जिस जेवड अवर न कोए जिस सिमरत सुख होए कणा दुख दर्द ना मूले होए सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोए साध संगत होए निर्मला कटिए जम की फास सुख दाता पै पंजनो।

त्याग, उपाव स्यान सगल छड़, गुर की चरणी लाग, तिसे प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवे पाग, तिसे प्राप्त पाई हो जिस देवे प्रभ आप, सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन सह हो मैं ताप, नानक।

इकस का मन आसरा इको प्राण आधार इस शरणाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार। मन मेरे सगल उपाव त्याग गुरपुरा आराध नित इकस की लिव लाग रहाओ। इको पाई मित इक इको मात पिता इकस की मन टेक है जिन जियो पिंड दिता। सो प्रभ मनो न विसरे जिन सब किछ वस कीता। कर इको बाहर इको थान थनंतर आप जी जंत सब जिन

जियो पिंड सब तिसका जो तिस पावे सो होए गुरपूरै पूरा भया जप नानक सच्चा सोए। श्री राग महला पंजवा जिना सतगुर स्यों चित लाया से पूरे प्रधान जिनको आप दयाल होए तिन उपजय मन ज्ञान जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम मन मेरे एको नाम से आए।

काल साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल। जन्म मरण की मल कटी है गुरु दर्शन देखने हाल। थान थान पर रव रया।

आओ वड पागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाहो कर सेवा सुख सागर है सिरसाहा पास साहो चरण कमल का आसरा।

हर जपिए आ राजिए आठ पहर गोविंद। जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद। नानक सगले दोख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद। श्री राग महला पंजवा। प्रीत लगी तिस सच स्यों मरे ना आवे जाए। ना वे छोड़िया विछड़े सब में रहा समाए। दीन दर्द दुख पंजना सेवक कै सत भाए। अचरज रूप निरंजनो गुर मेलाया माए। पाई रे मीत करो प्रभ सोए। माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसे कोए रहाओ। दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार। सखा सहाय अत वड़ा ऊंचा वड़ा अपार। बालक बिरद ना जानिए ने चल तिस दरबार। जो मंगी

एक मन एक त्याय मन की लाए भरांत गुण निधान नव तन सदा पूरन जाकी दात सदा सदा आराधी है दिन विसरो नहीं रात जिनको पूरब लिखिया तिनका सखा गोविंद तन मन तन अर्पी सबो सगल वारिय एह जिंद देखे सुने हदूर सद।

मन तन तन जिन प्रभ दिया रखिया सह सवार सर्व कला कर था प्या अंतर जोत अपार सदा सदा प्रभ सिमरी है अंतर रख उधार मेरे मन हर बिन अवर न कोय प्रभ शरणाई सदा रहो दुख ना व्यापे कोय रहाओ रतन पदार्थ मान।

मनमुख पस न पाक अंतर बाहर रव रहा तिसनो जाने दूर तृष्णा लागी रच रहा अंतर हो मैं कूर भक्ति नाम विहुणिया आवे मंजे पूर राख ले हो प्रभ करणहार जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखन हार महा बिकट जम पाया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हरमया श्री राग महला पंजवा मेरा तन अर तन मेरा राज रूप मैं देश सुतदारा बनता अनेक बहुत रंग अरवेश हर नाम हृदय न वसई कारज किते न लेख मेरे मन हर हर नाम ते आए कर संगत नित साधकी गुरचरणी चित लाए रहाओ नाम निधान ते आई है मस्तक हो वै पाग कारज सब सवारियां।

जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सुआओ। ऐसे मिले वडियाईया दरगे पावे थाओ, करे कराए आप प्रभ सब किछ तिस ही हाथ, मार आपे जी वालदा अंतर बाहर साथ, नानक प्रभ शरणागति सर्व कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा। शरण पए प्रभ अपने गुरु होआ कृपाल, सतगुर के उपदेश है बिनसे सर्व जंजाल, अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल, मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी एक निमख ना मनो विसार, रहाओ गुण गोविंद नित गाविए अवगुण कटन हार, बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे विस्तार, सहजे सिफती रत्या पवजल उतरे पार, तीरथ वर्त लख संजमा पाये साधु दूर, लूक कमावे किस्ते जा वेखे सदा हदूर, थान थनंतर रव रहा प्रभ मेरा परपूर, सच पात साही अमर सच सच्चे सच्चा थान, सच्ची कुदरत तारियन सच सिरज्योन जहान, नानक जपिए सच नाम हो सदा सदा कुर्बान। श्री राग महला पंजवा। उद्दम कर हर जापना वड़ पागी तन खाट, संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट, मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू, सब चूके सोग संताप, रहाओ जिस कारण तन तारिया सो प्रभ डिठा नाल, जल थल मैयल पूरिया प्रभ अपनी नजर निहाल, मन तन निर्मल होया लागी साच परीत, चरण पजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन ही कीत, रतन जवे हर मान का अमृत हर का नाओ, सुख सहज आनंद रस जन नानक हर गुण गाओ। श्री राग महला पंजवा। सोई सासत सौन सोए जित जपिए हर नाओ, चरण कमल गुर तन दिया मिलिया निथावे थाओ, साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ, कर कृपा प्रभ पेटिया मरण न आवन जाओ, मेरे मन हर पज सदा एक रंग, कट कट अंतर रव रहा सदा सहाई संग, रहाओ सुखा की मित क्या गणी जा सिमरी गोविंद, जिन चाखिया से तृप्ता सिया ओह रस जाने जिंद, संता संगत मन वसे प्रभ प्रीतम बख्शिंद, जिन सेव्या प्रभ आपना सोई राज नरिंद, अवसर हर जस गुण रमन जित कोट मज्जन स्नान, रसना उचरे गुणवती कोई न पुजे दान, दृष्ट तार मन तन वसे दयाल पुरख मेहरवान, जियो पिंड तन तिसदा हों सदा सदा कुर्बान, मिलिया कदे ना विछड़े जो मेलिया करतार, दासा के बंधन कटिया साचे सिरजनहार, पूला मार्ग पायुन।

रसना सच्चा सिमरिए मन तन निर्मल होए। मात पिता साथ अगले तिस बिन अवर न कोए। मेर करे जे आपनी चसा न विसरे सोए। मन मेरे साचा सेव जिचर सास, बिन सच्चे सब कूड़ है अंते होए विनाश। रहाओ साहिब मेरा निर्मला तिस बिन रह न जाए। मेरे मन तन पुख अत अगली कोई आन मिलावे माए। चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर न जाए। तिस आगे अरदास कर जो मेले करतार, सतगुर दाता नाम का पूरा जिस भंडार। सदा सदा सालाही है अंत न पारावार। परवदगार सालाही है जिस दे चलत अनेक, सदा सदा आराधी है एहा मत विशेख। मन तन मिठा तिस लगे जिस मस्तक नानक लेख। श्री राग महला पंजवां। संत जनों मिल पाइयो सच्चा नाम समाल, तोसा बंदो जी का एथे ओथे नाल। गुरपूरे ते पाईए अपनी नदर निहाल, करम प्राप्त तिस होवे जिसनो होए दयाल। मेरे मन गुर जेवड अवर न कोए, दूजा थाओ ना कोस जै गुर मेले सच सोए। रहाओ सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए। गुर चरणी जिन मन लगा सेवड पागी माए। गुरदाता समरथ गुर, गुर सब में रहा समाए। गुर परमेश्वर पार ब्रह्म गुर डुबदा ले तराए। कित मुख गुर सालाही है करण कारण समरथ, से मथे नहीं चल रहे जिन गुर तारिया हथ। गुर अमृत नाम पिया लिया जन्म मरण का पथ। गुर परमेश्वर सेविया पै पंजन दुख लथ। सतगुर गहर गंभीर है सुख सागर अगखंड, जिन गुर सेविया अपना जमदूत ना लागे डंड। गुर नाल तुल ना लग गई खोज डिठा ब्रह्मंड। नाम निदान सतगुर दिया सुख नानक मन में।

मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ तन सो तेरा थान रहाओ। जिचर वस्या कंत कर जियो जियो सब का हाथ जा उठी चलसी कंतड़ा ता कोई ना पुछे तेरी बात। पेई रणै सौ सेव तू सौ रणै सुख वस गुरमिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे दुख। सबना सोहरे वंजना सब मुकलावन हार नानक तन सुहार।

छोड़ सकल सियान पास साठ शब्द लिवलाए रहाओ। दुख कलेश ना पाओ व्यापे गुरु मंत्र हृदय होए। कोट जतना कर रहे गुरु बिन तरयो ना कोए। देख दर्शन मन साधार है पाप सगले जाहे। हौं तिनके बलिहारणे जे गुर की पैरी पाहे। साध संगत मन वसे साच हर का नाओ। सेवड पागी नानका जिना मन एहो पाओ। श्री राग महला पंजवा। संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार। जिन तू साज सवारिया हर सिमर होए उधार। जप मन नाम एक अपार प्राण मन तन जिन्हें दिया हृदय का आधार रहाओ। काम क्रोध अंकार माते व्याप्या संसार। पौ संत सरणी लाग चरणी मिटे दुख अंधार। सत संतोख दया कमावे ए करनी सार। आप छोड़ सब होए रेणा जिस दे प्रभ निरंकार। जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार। कहो नानक गुर परम काटिया।

रहाओ। सतगुरु विटो वारिया जिन दिता सचनाओ, अंदिन सच सलाहना सच्चे के गुण गाओ, सच खाना सच पहनना सच्चे सच्चा नाओ, सास गिरास ना विसरे सफल मूरत गुर आप, गुर जेवड अवर ना दिसई आठ पहर तिस जाप, नदर करे ता पाई है सच नाम गुणतात, गुर परमेश्वर एक है सब में रहा समाए, जिनको पूरब लिखिया से नाम से आए, नानक गुर शरणागति मरे ना आवे जाए।

साची प्रीत ना टुटई साचे मेल मिलाओ शब्द रती मन वेदिया हो सद बलिहारे जाओ सा तन रंड ना बैसई जे सतगुर माए समाए फिर रिसालू नौतनो साचो मरे न जाए नित रवे सुहागणी साची नजर जाए साच तड़ी तन मांडिये कापड़ प्रेम सिगार चंदन चीत वसाया मंदर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहणी मस्तक मणि प्यार शोभा सुरत सुहावणी साचे प्रेम अपार बिन फिर पुरख न जाने साचे गुर कै हेत प्यार निस अंधियारी सुतिए क्यों फिर बिन रैन विहाय अंक जलो तन जालियो मन तन जल बल जाए जा तन कंत

को पूछो जाए, सतगुर मेली पहवसी नानक प्रेम सखाए। श्री राग महला पहला, आपे गुण आपे कथे आपे सुन विचार, आपे रतन परख तू आपे मोल अपार, साचो मन महत तू आपे देवनहार, हर जियो तू करता करतार, ज्यो पावे त्यों राख तू हर नाम मिले आचार, रहाओ आपे हीरा निर्मला आपे रंग मजीत, आपे मोती उजलो आपे भगत बसीठ, गुर कै शब्द सलाहना कट कट डीठ अडीठ, आपे सागर बोहे था आपे पार अपार, साची वाट सुजान तू।

आवे जाए आपे निर्मल एक तू होर बंदी तंदे पाए गुर राखे से उबरे साचे स्यों लिवलाए। हर जियो शब्द पछाणिए साच रते गुरवाक तित तन मैल ना लग गई सच कर जिस ओताक नजर करे सच पाईए बिन नावे क्या साक जिन्नी सच पछाणिया।

ज्यों मच्छी त्यों मानसा पवे अचिंता जाल रहाओ। सब जग बादो काल को बिन गुर काल अफार। सच रते से उबरे दुबदा छोड़ विकार। हाँ तिनके बलिहारण दर सच्चे सच्यार। सीचाने ज्यों पंखिया जाली बद्धक हाथ। गुर राखे से उबरे होर फाथे चोगे साथ। बिन नावे चुन सुतिये कोई न संगी साथ।

पूरे ज्यों जल सोड़े मछली करण पलाव करे फिर पावे सुख पाईए जा आपे नदर करे फिर साला ही अपना सखी सहेली नाल तन सो है मन मोहया रत्ती रंग निहाल सबत सवारी सोहनी फिर रावे गुण नाल काम काम ना आवई खोटी अवगणियार ना सुख पेई है सौरे झूठ जली बेकार

त्रिभवन सो प्रभ जानिए साचो साचे नाए। सातन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग, मैली मैल बुलाये सो पिर रावे रंग। सच सुहागन सापली पिर मोही गुण संग, पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूगर जाओ। बन में पूली जे फिरा बिन गुर बूझना।

निरंजन पै पंजना देख निरंजन पाए गुपत प्रगट सब जानिए जे मन राखे ठाए ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे ले मिलाए कस कस वट्टी लाई है परखे हित चित लाए खोटे ठौर न पाए नी खरे खजाने पाए आस अंदेसा दूर कर क्यों मल जाए समाए सुख को मांगे सबको दुख ना मांगे कोए सुख है को दुख अगला मन मुख बूझ न होए सुख दुख सम कर जानिए सबद पेद सुख होए वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास मुन जन सेवक साधका नाम रते गुणतास सच रते से जिन गए हो सद बलिहारे जास चौ जुग मैले मल परे जिन मुख नाम न होए भगती पाए विहूनिया मुह काला पत खोए जिन्नी नाम विसारिया अवगुण मुठी रोए खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए आप पछाने कर वसे हों मैं तृष्णा जाए नानक निर्मल उजले जो राते हरनाए श्री राग महला पहला सुन मन फूले बावरे गुर की चरणी लाग हर जप नाम से आए तू जम डर पे दुख पाग दुख कणों दोहागनी क्यों थिर रहे सुहाग।

रहाओ। गुरमत पत्सावा तिस तिस के संग मिलाओ, तिस बिन कड़ी ना जीवो बिन नावे मर जाओ। मैं अंधले नाम ना विसरे टेक टिकी कर जाओ। गुरु जिना का अंधला चेले ना ही ठाओ, बिन सतगुरु नाव ना पाये बिन नावे क्या सुआओ। आए गया पछतावना ज्यो सुन्ने कर काओ, बिन नावे दुख देहोरी ज्यो कलर की पीत। तब लग महल न पाइए जब लग साच न चीत, शब्द रपे कर पाइए निर्बाणी पदनीत। हों गुर पूछो अपने गुर पुछ कार कमाओ, शब्द सलाही मन वसे हों मैं दुख जल जाओ। सहजे हुए मिलावड़ा साचे साच मिलाओ, शब्द रते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार। नाम सलाहन सद सदा हर राखे उर्धार, सो क्यों मनो विसारी है सब जिया का आधार। शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे ना दूजी वार, शब्द ही ते पाये हर नामे लगे प्यार। बिन शब्द जग पूला फिरे मर जन्मे वारो वार। सब साला है आपको वढ़ो वडेरी होए, गुर बिन आप ना चीनिए कहे सुने क्या होए। नानक शब्द पछाणिए हो मैं करे न कोए। श्री राग महला पहला। बिन फिर तन सिगारिए जोबन बाद खुआर, ना माने सुख सेजड़ी बिन फिर बाद सिगार। दुख कणो दोहागणी ना कर सेज पतार, मन रे राम जपो सुख होए। बिन गुर प्रेम ना पाइए शब्द मिले रंग होए। रहाओ गुर सेवा सुख पा।

गुण चार। सच मिलो वर कामणी फिर मोही रंग लाए, मंथन साच विकसिया कीमत कह न जाए, हर वर कर सुहागणी निर्मल साचे नाए। मन में मनुआ जे मरे ता फिर रावे नार, इकत तागे रल मिले गल मोतियन का हार, संत सवा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार। खिन में उपजे खिन खपे खिन आवे खिन जाए, शब्द पछाने रव रहे ना तिस काल संताए। साहिब अतुल ना तोलिए कथन ना पाया जाए, व्यापारी बन जा रहा।

तिस चिल न तमाए। गुरमुख तोल तोलाए सी सच तराजी तोल, आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल। आप तुलाए तोल सी पूरे पूरा तोल, कथने कह न छुटिए ना पढ़ पुस्तक पार। काया सोच न पाइए बिन हर भगत प्यार, नानक नाम ना विसरे मेले गुर करतार। श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे मिले।

ज्ञान ध्यान तुन जानी है, अकथ कहावे सोए, सफल्यो बिरख हरी आवला, छाव कनेरी होए, लाल जवे हरमान की गुर पंडार है सोए। गुर पंडार है पाई है निर्मल नाम प्यार, साचो वखर संची है पूरे कर्म अपार, सुखदाता दुख मेटनो सतगुर असुर संगार। पवजल बिखम डरावनो ना कंदी ना पार, ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिस वंज मलार, सतगुर पैका बोहे था नदरी पार उतार। एक तिल प्यारा विसरे दुख लागे सुख जाए, जेवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए, कट बिन से दुख अगलो जम पकड़े पछताए। मेरी मेरी कर गए तन तन।

बिन जल मरण तिने हे। मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, गुरमुख अंतर रल रहा, बक्से भगत पनार रहाओ। रे मन ऐसी हर्षो प्रीत कर, जैसी मछली नीर, ज्यों अद को त्यों।

ऐसी हर सों प्रीत कर जैसी चात्रिक में है। सर पर थल हरियावले एक बूंद ना पवे के है। कर्म मिले सो पाई है किस पया सिर गे है। रे मन ऐसी हर सों प्रीत कर जैसी जल दूध होए। आवतन आपे खवे दूध को खपन न दे। आपे मेल विछनिया सच वजे आई दे। रे मन ऐसी हर सों प्रीत कर जैसी चकवी सूर। चिन पल नींद न सोवई जाने दूर हजूर। मनमुख सो जी ना पवे गुरमुख सदा हजूर। मनमुख गणत गणावनी करता करे सोए। तासी कीमत ना पवे जे लोचे सब कोए। गुरमत होए ता पाईए सच मिले सुख होए। सच्चा नेहो ना तुटई जे सतगुर पेटे सोए। ज्ञान पदार्थ पाईए।

हमें मैल न जाए। सोहम आप पछाणिए शब्द तेज पति आए, गुरुमुख आप पछाणिए अवर के करे कराए। मिलिया का क्या मिलिए शब्द मिले पति आए, मन मत सो जीना पवे विचर चोटा खाए। नानक दर कर एक है अवर न दूजी जाए। श्री राग महला पहला, मन मत पुले पुलाइए पुली थौर न काए। गुरु बिन को ना दिखावे अंधी आवे जाए, ज्ञान पदार्थ खोया ठगिया मुठा जाए। बाबा माया परम पुलाए, परम पुली दोहाजनी ना फिर अंक समाए। रहाओ पुली फिरे दिसंतरी, पुली द्रोह तज जाए। पुली डूंगर थल चढ़े पर में मन डोलाए, तुरो विछनी क्यों मिले गर्भमुखी बिरलाए। विछड़िया गुर मेल सी हर रस नाम प्यारे, साथ सहज शोभा कणी हर गुण नाम आधार। ज्यो पावे क्यों रख तू मैं तुझ बिन कवन पतार। अखर पढ़ पढ़ पुलिये देखी बहुत अभिमान, तीरथ नाता क्या करे मन में मैल गुमान। गुरु बिन किन समझाइए।

जिन तन मन साज सुधारिया तिस सेती निवलाए रहाओ। तन दे संतर होमिए इक रत्ती तोल कटाए, तन मन समदा जे करी अंगन अगन जलाए। हर नामे तुल न पुजई जे लख कोटि कर्म कमाए, अर्ध शरीर कटाइए सिर करवत धराए। तन है मंचल गालिए ती मन के रोग न जाए, हर नामे तुल न पुजई सब जिठी ठोक बजाए। कंचन के कोट बत करी

ऊपर सच आचार। सबको ऊंचा आखिए नीच ना दिसे कोई, इतने पांडे साजे इक चानन के होलोए। कर्म मिले सच पाइए थोर बख्शना मेटे कोई, साध मिले साधु जने संतोष वसे गुर पाए। अकत तथा विचारी है जो सतगुर माहि समाए, ई अमृत संतोखिया दर्जे पैदा जाए। कट कट वाजे किंगुरी अंदिन शब्द सुभाए, विरले को सोजी पई गुरमुख मन समझाए।

ऊंचो पर्वत गाखड़ो ना पौड़ी तित पास, गुरमुख अंतर जानिया गुरमेली तरियास। पाई रे पावजल बिखम डराओ, पूरा सतगुर रस मिले गुर तारे हर नाओ। रहाओ चला चला जे करी जाना चलनहार, जो आया सो चलसी अमर सो गुर करतार। ही सच्चा सालाहना सच्चे थान प्यार, दर कर महला सोहने पक्के कोट हजार। हस्ती कोड़े पाखरे लश्कर लख अपार, किसी नाल न चलिया खप।

गुर राखे से निर्मले शब्द निवारी पाहे नानक करिए सच नाम सिर साहा पाप चाहो मैं हर नाम ना विसरे हर नाम रतन वेसा हो मन मुख पौ जल पच मोए गुरमुख करे अथा हो श्री राग महला पहला कर दूजा मुकाम कर कर बैसना।

गुरुमुख कृपा करे भगत की जय, बिन गुरु भगत न होए। आपे आप मिलाए बूझे, ता निर्मल हो वे कोय। हर जियो सच्चा सच्ची बाणी, शब्द मिलावा होए। पाई रे भगत हीन काहे जग आया।

जीवन दाता मन मुखपत गवाई, बिन सतगुरु को मग न जाने अंधे ठौर न काई, हर सुख दाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई। तेयड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया, अंग दिन भगत करे दिन राती हों मैं मोह चुकाया, जिस यो राता तैसो होवे सच्चे सच समाया। आपे नदर करे पाओ लाए गुर शब्दी विचार, सतगुर सेवे सहज उपजे हों मैं तृष्णा मार, हर गुण दाता सद मन वसे सच रखिया उद्धार। प्रभु मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए, नाम निधान हर मन वसे हो मैं दुख सब जाए, सतगुर शब्द सुनाया हो सद बलिहार जाऊं। अपने मन चित कहे कहाए दिन गुर आप ना जाए, हर जियो भगत वचन सुख दाता कर कृपा मन वसाई, नानक शोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वल्याई। श्री राग महला तीजा, हो मैं कर्म कमाव दे जम दंड लगे तिन आए, जे सतगुर सेवन से उबरे हर सेती लिवलाए, मन रे गुरमुख नाम ते आए तुर पूरब करते लिखिया किना गुरमत नाम समाए। रहाओ जिन सतगुर प्रतीत ना आवई, नाम ना लागो पाओ सुपने सुख ना पावई, दुख में सवै समाए, जे हर हर की कै बहुत लोची है किरत नाम ते आ जाए, हर का पाना भगती मनिया से भगत पे दर खाए। गुर शब्द दिलावे रंग स्यों बिन कृपा ले आना जाए, जो सो अमृत नीरी है पी दिख फल लागे ताए, से जन सच्चे निर्मले जिन सतगुरु नाल प्यार, सतगुरु का पाना

कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा पंखी दीर्घ सुहावना सच चुगे गुरु पा।

खवाए। मनमुख उबे सुख गए, ना फल तिन्ना चाओ, तिन्ना पास ना बहती है, ओना कर ना गिराओ, कटिया तै नित जालिए, ओना शब्द ना।

में सच समाओ। हुक्म ना जाने बपुड़े पूले सिरे गवार, मन हट कर्म कमाओ दे नित नित होए कुआर। अंतर सांत न आवई ना सच लगे प्यार, गुरमुखिया मोह सोने गुर के हेत प्यार। सच्ची पगती सच रते दर सच्चे सच्यार, आए से परवान है सब कुल का करे उधार। सब नदरी कर्म कमाओ दे नदरी बाहर न कोए, जैसी नदर कर देखे सच्चा तैसा ही को होए। नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा, गुरुमुख नाम से आये मनमुख बूझ न पाए। गुरुमुख सदा मुख उजले हर वस्या मन आ

आओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुरु भाए सदा फिर निचल पाए ना ओ मरे न जाए शब्द मिली ना बिछड़े फिर कै अंक समाए हर निर्मल अपूजला बिन गुरु पाया न जाए पाठ पढ़े ना बूझई तेसी परम पुलाए गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए माया मोह चुकाया गुरमति सह सुहाए

आए बिन शब्द परम न चूके ना विचों हो मैं जाए बिन प्रीति भगत न हो वही बिन शब्द छाए न पाए शब्दे हो मैं मारिये माया का परम जाए नाम पदार्थ पाये गुरमुख सह सुभाए बिन गुर गुण न जापनी बिन गुण भगत न होए भगत वचल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए नानक शब्द हरसा लाहिए करम प्राप्त होए श्री राग महला की जा माया मोह मेरे प्रभ कीना आके परम पुलाए।

ना मिलते पाई। दैत पुत कर्म तर्म किस संयम ना पड़े, दूजा पाव ना जाने। सतगुर पेके निर्मल हुआ, अंजन नाम बखाने। एको पड़े एको नाम बूझे, दूजा अवर न जाने। खट दर्शन जोगी सन्यासी, बिन गुर परम पुलाए। सतगुर सेवे ता गत मित पावे, हर जियो मन वसाए। सच्ची बाणी सोचित लागे, आवन जान रहा है। पंडित पर पढ़।

जा सतगुर मेल मिलाए। सत संगत में नाम हर उपजे, जा सतगुर मिले सुभाए। मन तन अर्पी आ

सबद अपार आपे बख्श मिलायन पूरे गुर करतार। सहजे अदृष्ट पछाणिए निरपौ ज्योत निरंकार, सबना जिया का इक दाता ज्योति ज्योत मिलावन हार। पूरे सबद सलाही।

हर नाम रह समाए, मन मेरे सतगुर स्यों चित लाए, निर्मल नाम सद नवतनो आप वसै मन आए। रहाओ हर जियो राखो अपनी शरणाई, ज्यो राखे त्यो रहना, गुर कह शब्द जीवत मरे गुरमुख पव जल करना। वड्डे पाग नाओ पाईए गुरमुख शब्द सुहाई, आपे मन वसया प्रभ करता सहजे रहा समाई। इतना मनमुख शब्द न पावे बंधन बंद पवाया, लक्ष्यो राशि फिर फिर आवे दिसा जन्म गवाया। भगता मन आनंद है सच्चे शब्द रंग राते, अंगिन गुण गावे सद निर्मल सहजे नाम समाते। गुरुमुख अमृत बाणी बोले सब आत्म राम पछाणी, एको सेवन एक आराधे गुरुमुख अकथ कहानी। सच्चा साहिब सेवी है गुरुमुख वसे मन आए।

रोए। सतगुरु जिनी ना सेवेओ सेखित आए संसार, जम दर बदे मारिए फूक न सुने पुकार। बिरखा जन्म गवाया मर जमे वारो वार। एहो जग जलता देख के पज पे सतगुर सरना, सतगुर सच दिलाया सदा सच संजम रहना। सतगुर सच्चा है बोहिखा सबदे पवजन करना। लख चौरासी फिर दे रहे बिन सतगुर मुक्त न होई, पर पंडित मोनी थके दूजे पाए पट खोई। सतगुर शब्द सुना।

योग ग्रस्त कुटुंब पलेत्या कद हरख कदे सोग गौण करे चौकुंट का करी न बैसन सोए चित आवे।

तीरथ गमन करे खट कर्मा ते दुगने पूजा करता नाए रंग न लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए राज मिलक सिकदारिया रस भोगन विस्तार बाग सुहावे सोने चले हुक्म आसार रंग तमाशे बहुविधि चाहे लग रहा चितना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया बहुत तनाद अचार वंत शोभा निर्मल रीत मात पिता सुत पाए।

एक लूक न देवे दर्शा, एक मन ही जाता काट ना सिन ही कहाया, सब कहते हैं पाया जिस मेले सो पगता, सगल उकत उपा

वखाणिए सतगुरु बाज न पायो सब सच्ची कर्म कमाए जियो। औ सतगुरु विटों कुमाया जिन परम पुला मार्ग पाया नदर करे जे आपनी आपे लहे रलाए जियो। तू सबना माहे समाया तिन करते आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जाको जोत करी सरकार जियो। आपे खसम निवाजिया जियो पिंड दे साजिया अपने सेवक की तैज रखिया दोए कर मस्तक तार जियो। सब संजम रहे स्यान पा मेरा प्रभ सब कुछ जानदा प्रगट प्रताप वरतायो सब लोक करे जयकार जियो। मेरे गुण अवगुण ना विचारिया प्रभ अपना बिरज समारिया कंठ लाए कह रखियो न लगे न तकी वाओ जियो। मैं मन तन प्रभु ते आया जिए इच्छेड़ा फल पाया सा पाप सा सिर खसम तू जप नानक जी वै नाओ जियो। तुद आपे आप उपाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सच्चो सच वर्तदा जिस पावे किसे बुझाए जियो। गुर प्रसादी पाया तिथे माया मोह चुकाया कृपा करके अपनी आपे ने समाए जियो। गोपी ने गोआ लिया

मन चिंदी सो फल पाएगा सबे काज सवारियन लायन मन की भुख जियो मैं सदया सबो तंगड़ा गोसाई सेवी सचड़ा नौ निज नाम निदान हरे मैं पल्ले बद्दा छिक जियो मैं सुखी हूँ सुख पाया गुर अंतर शब्द वसाया सतगुर पुरख दिखा लिया मत्त तर के हाँ।

لگا پائے جیو سن گلاں گر کہ آیا نامدان اس نام دلایا

तप अंतर करे वन जा रहा मित्रा खत्म से ती अरदास खत्म से ती अरदास वखाने उर्द ध्यान लिव लागा नामर जाद आया कल पीतर बाहुर जासी नागा जैसी कलम बुड़ी है मस्तक तैसी जीड़े पास कहो नानक प्राणी पहले पहरे हुकुम पया गरवास दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा विसर गया ध्यान हथो हथ नचाई वन जा रहा मित्रा ज्यो जसदा कर कान हथो हथ नचाई प्राणी माप कह सुत मेरा चेत अचेत मूर मन मेरे अंत नहीं कछ तेरा जिन रच रचिया तिसे न जाने मन भीतर कर ज्ञान कहो नानक प्राणी दूजे पहरे विसर गया ध्यान तीजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा तन जोबन सो चित हर का नाम न चेत ही बन जा रहा मित्रा बद्दा छुटे जित हर का नाम न चेत प्राणी विकल पया संग माया तन सो रखा जोबन मता अहला जन्म गवाया धर्म से की व्यापार ना की तो कर्म ना की तो मित कहो नानक की जय पहरे प्राणी तन जोबन सो चित चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा लावी आया खेत जा जम पकड़ चलाया वन जा रहा मित्रा किसे न मिलिया पेट पेट चेत हर किसे न मिलियो जा जम पकड़ चलाया झूठा रुदन हुआ दो आले खिन में पया पराया साई वक्त प्राप्त हो।

बालक बुद्ध अचेत खीर पिए खेलाए वन जा रहा मित्रा मात पिता सुत हेत मात पिता सुत

ज्ञान ध्यान गुण संयम नाही जन्म मरोगे झूठे। कीरत वर्त सुच संयम नाही कर्म तर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा। तीजे पैरे रैन कै बन जा रहा मित्रा सर हंस उलखड़े आए जो बन कटे जरुआ जिने बन जा रहा मित्रा आव कटे दिन जाए। अंत काल पछतासी अंगले जा जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिन में पया कराया। बुद्ध विसर्जी गई सियानप कर अवगुण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चेतो लिवलाए। चौथे पहरे रहन के बन जा रहा मित्रा बिद पया तन खीन

हर हर त्यावे हर उचरे मन जा रहा मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपे आराधे विच अग्नि हर जप जीविया बाहर जन्म पया मुख ला।

कर्म कमाने जैसा लिख तुर पाया, मात पिता पाई सुत बनता तिन भीतर प्रभु संजोया, कर्म सो कर्म कराए आपे इस जंग

गुरमुख नाम संभाल पुराणी अंके होए सखाई। इहो मोह माया तेरे संग ना चाले झूठी प्रीत।

जिन पेवकले नाम समालिया सब सफलो जन्म तिना दा गुरमुख जिना मन जिन पासा टालिया हर संत जना मिल कारज सोया वर पाया पुरख आनंदी हर सत मेरे बाबुला हर जन मिल जंज सुहंदी हर प्रभ मेरे बाबुला हर देवो दान में दाजो हर कपड़ो हर शोभा देवो जित सवरे मेरा काजो हर हर पंक्ति काज सुहेला गुर सतगुर दान दिवाया खंड वर पंड हर शोभा होई इहो दान ना रले रलाया और मनमुख दाज जे रख दिखा ले सो कूड़ अहंकार कच पाजो हर प्रभ मेरे बाबुला हर देवो दान में दाजो।

काम से आया। हर पुरुष ना कभी बिनसे जावे, नित देवे चढ़े सवाया। नानक संत संत हर एको, जप हर हर नाम सुहंदी, हर राम।

संग सहाई हर नाम ते आई बिरसा कोई न जाए मन सिंदे से फल पावे चरण कमल चित लाए जल थल पूर रहा बनवारी कट कट नजर निहाले नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग प्रम जाले मन प्यारिया जी मित्रा हर दिन झूठ पसारे मन प्यारिया जियो मित्रा बिख सागर संसारे चरण कमल कर बोहित करके सहसा दुख न व्यापे गुर पूरा पे टैवट पागी आठ पहर प्रभ जापे आप जुगादी सेवक स्वामी पगता नाम आधारे नानक सिख दे मन प्रीतम बिन हर झूठ पसारे मन प्यारिया जियो मित्रा हर लगदे खेप सवली मन प्यारिया।

दुख मिटाया। चित्रगुप्त का कागद फाड़िया, जमदूता कछु न चली। नानक सिख दे मन प्रीतम, हर लदे खेप सवली। मन प्यारिया जियो मित्रा, कर संता संग निवासो। मन प्यारिया जियो मित्रा, हर नाम जपत परगासो। सिमर स्वामी सुखे गामी, इच्छ सगली पुनिया। पुरबे कमाए श्री रंग पाए, हर मिले चिरी विचुनिया। अंतर बाहर सर्वत रविया, मन उपजिया दिशासो। नानक सिख दे मन प्रीतम, कर संता संग निवासो। मन प्यारिया जियो मित्रा, हर प्रेम भगत मन लीना। मन प्यारिया जियो मित्रा, हर जल मिल जीवे मीना। हर की अघाने अमृत बाने, सर्व सुखा मन उठे। श्री तर पाए मंगल गाए, इच्छ पुनी सतगुर तुटे। लड़ लीने लाए नौ निद पाए, नाओ सर्व सुखा कर दीना। नानक सिख संत।

हर हर उत्तम नाम है जिन श्रेया सब कोई जियो। हर जी सबे प्रतपाल दा कट कट रमैया सोए। सो हर सदा त्याई है तिस बिन अवर न कोए। जो मोहे माया चित लाए दे से छोड़ चले दुख रोए। जन नानक नाम ते आया हर अंत सखाई होए। मैं हर दिन अवर न कोए। हर गुरसरण आई पाई है मन जारिया मित्रा। वड भाग प्राप्त होए रहाओ। संत जना विण पाया हर किने न पाया नाओ। विच हो मैं कर्म कमाम दे ज्यों वेसुआ पुत ने नाओ। पिता जात ता होई है गुर तुठा करे पसाओ। वद पागी गुर पाया हर एनस लगा पाओ। जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीरत कर्म कमाओ। मन हर हर लगा चाओ गुर पूरे नाम दृढ़ाया। हर मिलिया हर प्रभ नाओ रहाओ। जब लग जोबन सांस है तब लग नाम से आए। चल जिया नाल हर चलसी हर अंते ले छड़ाए। हौ बलिहारी तिन तो जिन हर मन मुठा आए। जिनी हर हर नाम न चेत्यो से अंत गए पछताए। तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम से आए। मन हर हर पीत लगाए वड पागी गुर पाया। गुर सब्जी पार लगाए रहाओ। हर आपे आप उपायदा हर आपे दे वैले। हर आपे परम पुलायदा हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन प्रगास है से विरले के ही के। हौ बलिहारी तिन कौ जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल प्रगासिया मन हर हर उठड़ा है। मन हर हर जपन करे हर गुर शरण आई पज पो। जिंदु सब किलिख दुख पर हरे रहाओ। कट कट मैया मन वसे क्यों पाये कित पत। गुर पूरा सतगुर पेटिये हर आए वसे मन चित। मैं तार नाम आधार है हर नाम में ते गत मत। मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामे ही जत पत। जन नानक नाम तिराया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुर बचनी हर प्रभ जानिया। सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ। जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास। सेवक पाए बन जा रिया मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वणज वपारिया जिन वखर लगेड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिन पाया जिना आप तुठा गुणतास। हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी।

व्यो पाए, सतगुर सत दृढ़ाया सत रहो लिवलाए, नानक सब जी सच है करमी पल्ले पाए पौड़ी। हर अंदर बाहर इक तू, तू जाने पेत जो की कह सो हर जानदा, मेरे मन हर चेत सो डरे जे पाप कमावदा, तरमी विगसेत तू सच्चा आप न्याओ सच, ता दरिया केत जिना नानक सच पछाने।

लिखण वाला जल बलो जिन लिखिया दूजा पाओ नानक पूरब लिखिया कमावना अवर ना करना जाए महला तीजा होर कूड पढ़ना कूड बोलना माया नाल प्यार नानक बिन नामे को थिर नहीं पढ़ पढ़ हो एक वार पौड़ी हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का हर की वड्याई वड्डी है जा न्याओ है धर्म का हर की वड्याई वड्डी है जा फल है जी का हर की वड्याई वड्डी है जा ना सुनई कह चुगल का हर की वड्याई।

ले दूजे पाए दुख पाया सब जोही जमकाल नानक गुरमुख उबरे साचा नाम समाल महला पहला गली असी चंगिया आचारी बुरिया मनो कुसुद्दा कालिया बार चिटविया रीसा करह तिनाड़िया जो सेवे दर खलिया नाल खसमे रतिया माने सुख रलिया होंदे तान नितानिया रह निमानिया नानक जन्म सकार था जे तिनके संग मिला पौड़ी तू आपे जल मीना है आपे आपे ही आप जाल तू आपे जाल बताएदा आपे विच सेवाल तू आपे कमल अलिप्त है सह हत्था विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएदा एक निमक कड़ी कर ख्याल हर तुदो बार किच नहीं गुर सब्दी वेख निहाल श्लोक महला तीजा हुक्म ना जाने बहुता रोवे अंदर तोखा नींद ना सोवे जे तन खसमे चले रजाई दर कर शोभा महल बुलाई नानक कर्मी ए मत पाई गुर प्रसादी सच समाई महला तीजा मन मुख नाम विहूणिया रंग कुसुम्बा देख ना पुल इक्का रंग बिन खोड़िया सोचा इसदा मुल दूजे लगे पच मोए मूरख अंध गवार बिस्टा अंदर कीट से पे पचे वारो वार नानक नाम रते से रंगुले गुर के सह

पौड़ी सिस्त उपाय सब तुद आपे रिजक समाया एक वल छल करके खाम दे मुंह कूर कुसत तिन्नी ताया तुद आपे पावे सो करे तुद ओते कम कोय लाया इकना सच बुझायोन तिना अतुट पंडार देवाया हर चेत खाहे तिना सफल है अचेता हथ तदाया। श्लोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित वेद बखाने माया मोह सुआए दूजे पाए हर नाम विसारिया मन मूरख मिले सजाए जिन जियो पिंड दिता तिस कभू न चेते जो देंदा रिजक समाहे जम का पाथा गलो न कटी है फिर आवे जाए मन मुख किछु न सूजे अंगले पूरब लिखिया कमाए पूरे पाग सतगुर मिले सुखदाता नाम वसै मने आए सुख माने सुख पहनना सुखे सुख विहाए नाम सो ना मनो ना विसारिये जित दर सच्चे शोभा पाए। महला तीजा सतगुर सेव सुख पाया सच नाम गुण तास गुरमति आप पछाणिया राम नाम प्रगास सचो सच कमावना वड्याई वड्डे पास जियो पिंड सब तिसका शिव करे अरदास सच्चे सब सलाहना सुखे सुख निवास जप तप संजम मने माहे बिन नावे त्रिग जीवास गुरमति नाव पाई है मनमुख मोह विनाश ज्यों पावे त्यों रास तू नानक तेरा दास। पौड़ी सब को तेरा तू सब सदा तू सब ना रास सब तू दे पासो मंग दे नित कर अरदास जिस तू दे तिस सब किछ मिले इतना दूर है पास तुद बाजो थाओ को नाही जिस पासो मंगी है मन वेखो को निर्जास सब तुदे नो सलाह दे दर गुरुमुखा नो प्रगास। श्लोक महला तीजा पंडित पढ़ पढ़ उच्चा फूकदा माया मोह प्यार अंतर ब्रह्म न ची नहीं मन मूरख गावार दूजे पाए जगत प्रबोध दा न बुझे विचार बिरथा जन्म गवाया मर जम्मे वारो वार। महला तीजा जिन्नी सतगुर सेविया तिन्नी नाव पाया बूझो कर विचार सदा सांत सुख मन वसे चूके कूक पुकार आपे नो आप खाए मन निर्मल होवे गुर सबदी विचार नानक शब्द रते से मुक्त है हर जियो हेत प्यार। पौड़ी हर की सेवा सफल है गुरमुख पावे थाए जिस हर पावे तिस गुर मिले सो हर नाम पे आए गुर सबदी हर पाए हर पार लगाए मन हट किन न पायो पुछो वेदा जाए नानक हर की सेवा सो करे जिस लय हर लाए। श्लोक महला तीजा नानक सो तूरावरियाम जिन विच्चों दुष्ट अंकरण मारिया गुरमुख नाम सलाहे जन्म सवारिया आप होवा सदा मुक्त सब कुल निस्तारिया सोहन सच द्वार नाम प्यारिया मन मुख मरे अंकार मरण विगारिया सबो वर्ते हुकुम क्या करे विचारिया आपो दूजे लग खसम विसारिया नानक बिन नावे सब दुख सुख विसारिया। महला तीजा गुरपुरे हर नाम दिलाया तिन विच्चों परम चुकाया राम नाम हर कीरत गाई कर चावन मग दिखाया हों में मार एक लिव लागी अंतर नाम बसाया गुरमति जम जोहे न साके साचे नाम समाया सब आपे आप वर्ते करता जो पावे सो नाई लाया जन नानक नाम ले ता जीवे बिन नामे खिन मर जाया। पौड़ी जो मिलिया हर दीवान स्यों सो सबनी दीवानी मिलिया जिथे ओ जाए तिथे ओ सुरखरू उसके मोह जिथे सब पापी तरिया उस अंतर नाम निदान है
नाम परवरिया, नाव पूजिए, नाव मनिए, नाए किलविक सब।

सो ऐसा हर नाम से आये मन मेरे जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर लय चढ़ाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो गुरुमुख नाम जपिया वड पागी तिन निंदक दुष्ट सब कैरी पाए। नानक नाम आराध सबना ते वड्डा सब नामे अग्गे आन निवाए। श्लोक महला तीजा वेस करे कुरूप कुलखणी मन फूटे कूड़ियार तिर के पाणे ना चले हुक्म करे गावार। गुर के पाणे जो चले सब दुख निवारण हार लिखिया मेट न सकिए जो तुर लिखिया करतार। मन तन सौंपे कंत को सब दे तरे प्यार बिन नावे किने न पाया देखो हृदय विचार। नानक सा सुवालियो सुलखणी जे रावी सिरजनहार। महला तीजा माया मोह गुवार है तिसदा ना दिसे उरवार ना पार। मन मुख अज्ञानी मां दुख पाए दे डुबे हर नाम विसार। पलके उठ बहु कर्म कमावे दूजे पाए प्यार सतगुर सेवे अपना पौजल उतरे पार। नानक गुरमुख सच समावे सच नाम उरधार। पौड़ी हर जल तल मैयल भरपूर दूजा नाहे कोए हर आप बह करे न्याओ कुड़ियार सब मार कडोए। सचियारा दे वड्याई हर धर्म न्याओ की ओए सब हर की करो उस्तत जिन गरीब अनाथ राख लिए।

आला ही सो प्रभ सदा सदा गुर कै हे प्यार। नानक जिस नजर करे तिस मेल ले साई सुहागण नार। महला तीजा गुर सेवा ते हर पाई है जा को नजर करे मानस ते देवते पे त्याया नाम हरे। हौ मैं मार मिलायन गुर कै शब्द तरे नानक सहज समायन हर अपनी कृपा करे पौड़ी। हर अपनी भगत कराए वड्याई वे खालियन अपनी आप करे प्रतीत आपे सेव कालियन। हर भगतानो दे आनंद फिर करी बहालियन पापियानो ना दे फिर रहने चुन नरक कोर चालियन।

इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध कटत है। मोर मोर कर अधिक लाड कर, देखत ही जमराव हसे, ऐसा तैं जग परम लाया, कैसे बूझे जब मोया है माया। रहाओ कह कबीर छोड़ बिखिया रस, इस संगत ने चो मरना, रमैया जपो प्राणी अनंत जीवन बाणी, इन विद पव सागर तरना, जा तिस पावे ता लागे पाओ, परम पुलावा विचों जाए, उपजै सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसाद अंतर लिव लागे। इत संगत ना ही मरना, हुकम पछाण ता कसमे मिलना, रहाओ दूजा श्री राज त्रिलोचन का, माया मोह मन अगलड़ा प्राणी, जरा मरण पौ विसर गया, कुटंब देख बिगसे कमला ज्यों, पर कर जो है कपट नरा, दूरा आयो हो जमे तना, तिन आगलड़े में रहन न जाए, कोई कोई साजन आए कहे, मिल मेरे बीतला ले बाहरी बलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए। रहाओ अनक अनक भोग राज बिसरे, प्राणी संसार सागर पे अमर पया, माया मूठा चेतस नाही, जन्म गवायो आलसिया, बिखम कोर पंख चालना प्राणी, रव सत तहना परवे संग, माया मो तब बिसर गया, जा तजियले संसारं। आज मेरे मन प्रगट भया है, पेखियले तर्म राओ, तह कर दल करन महाबली, तिन आग लड़े में रहन न जाए, जे को मुंह उपदेश करत है, ता वन त्रिन रतड़ा नारायण, ऐ जी तू आपे सब किछ जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया। श्री राग भगत कबीर जीओ का। अचरज एक सुनो रे पंडिया, अब किछ कह न जाए, सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे, त्रिभुवन मेखली लाए, राजा राम अनहद किंगरी बाजे, जाकी दिस्त नाद लिव लागे। रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कनक कलश इक पाया, तिस में तार चुए अत निर्मल, रस में रसन चुआया, एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया, तीन पवन में एको जोगी, कहो कवन है राजा, ऐसे ज्ञान प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग राता, और दुनी सब परम पुलानी, मन राम रसायन माता। श्री राजबाणी भगत बेणी जियो की, पहरियां कह कर

रे नर गर्भ कुंडल जब आचत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मद ना एनस एक अज्ञान सोनागा। ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनो बिसारया। फिर पछतावेगा मूड़या तू कवन कुमत परम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरे अनरादा रहाओ। बाल विनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोह व्यापे रस मिस मेद अमृत बिख चाकी तो पंच प्रगट संतापे। जप तप संजम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना आराध्या उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधिया। तरुण तेज परत्रय मुख जो है सर अफसर ना पछाणिया उनमत काम महा बिख पूले पाप पुन ना पछाणिया। सुत संपत देख एओ मन गर्भिया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो पग मुख जन्म विगोया। कुंडर केस कुसुम ते तौले सपत पताल की बाणी लोचन समय बुद्ध बल नाथी ता काम पवस माधानी। ताते बिखे पई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछे पछताना। निकुटी देह देख तुन उपजे मान करत नहीं बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझे। थाका तेज उड़िया मन पंखी कर आंगन ना सुख।

अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा, जो पे हम ना पाप करंता, अहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे हुंता। रहाओ तुम जो नायक आछो अंतर।

हर हर नाम में हर मन भाया, वडपागी हर नाम ते आया, गुरपूरे हर नाम सिद्ध पाई, को विरला गुरमत चले जियो। मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले, मेरा प्राण सिखाई सदा नाल चले, गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया, हर नेचल हर तन पल्ले जियो। हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया, कोई आन मिलावे मेरे प्राण जीवाया, हों रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, हों रह ना सका बिन देखे मेरी माई, हर जियो कृपा करो गुर मेलो, जन नानक हर तन पल्ले जियो। माज महला चौथा। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा, हों हर बिन दूजा अवर ना जाना, कोई सज्जन संत मिले वडपागी, मैं हर तक प्यारा दसे जियो। हों मन तन खोजी पाल पलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई, मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभु वसे जियो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाला, मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुर जल मिल कमल विकसे जियो। मैं बिन गुर देखे नींद ना आवे, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावे, हर हर

चौथा हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए हर हर नाम कथा नित सुनिए मिल सत्संगत हर गुण गाए जग पौजल दुत्तर करिए जियो। आओ सखी हर मेल करेहा मेरे प्रीतम का मैं दे स्नेहा मेरा मित्र सखा सो प्रीतम भाई मैं दसे हर नर हरिए जियो। मेरी बेदन हर गुरु पूरा जाने हाँ रह ना सका बिन नाम वखाने मैं औखद मंत्र दी जय गुरपूरे मैं हर हर नाम उधरिए जियो। हम चात्रिक दीन सतगुर शरणाई हर हर नाम बूंद मुख पाई हर जल निद हम जल के मीने जन नानक जल बिन मरिए जियो। माज महला चौथा हर जन संत मिलो मेरे भाई मेरा हर प्रभ दसो मैं भूख लगाई मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते मिल हर दर्शन मन पी जय जियो। मिल सत्संग बोली हर बाणी हर हर कथा मेरे मन भाणी हर हर अमृत हर मन पावे मिल सतगुर अमृत पी जय जियो। वड पागी हर संगत पावे पागहीन प्रम चोटा खावे बिन पागा सत्संग न लब्बे बिन संगत मैल परी जय जियो। मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे हर हर नाम दया मन तारे गुरमत नाम मीठा मन पाया जन नानक नाम मन पी जय जियो। माज महला चौथा हर गुरु ज्ञान हर रस हर पाया मन हर रंग राता हर रस पी आया हर हर नाम मुख हर हर बोली मन हर रस टुल टुल पौदा जियो। आवो संत मैं गल में लाइए मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाइए हर के संत मिलो मन देवा जो गुरबाणी मुख चौदा जियो। वड पागी हर संत मिलाया गुरपूरे हर रस मुख पाया पागहीन सतगुरु नहीं पाया मन मुख गर्भ जूनी नित पौदा जियो। आप दयाल दया प्रवतारी मल हो मैं बिख्या सब निवारी नानक हट पट्टन विच काया हर लेंदे गुरमुख सौदा जियो। माज महला चौथा हाँ गुण गोविंद हर नाम ते आई मिल संगत मन नाम वसाई हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी मिल सतगुर हर रस की चै जियो। तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता जाए पुछा जन हर की बाता पाप मलोवा मल मल तोवा मिल हर जन हर रस पी चै जियो। सतगुर दाते नाम दृढ़ाया वड पागी गुर दर्शन पाया अमृत रस सच अमृत बोली गुरपूरे अमृत ली चै जियो। हर सत्संगत सतपुरख मिलाइए मिल सत्संगत हर नाम ते आइए नानक हर कथा सुनी।

तिसके हवारिया मिल सतसंगत लद्दा हर सज्जन हों सतगुरु विट्टों कुमाईया जीओ जै जै देखा तै तै स्वामी तू कट कट रविया अंतर जामी गुरपूरे हर नाल दिखा लिया हों सतगुरु विट्टों सदवारिया जीओ एको पवन माटी सब एका जोत सबाया सब इका जोत वरते पिन पिन नार लई किसे दीर लाया गुर प्रसादी इक नदरी आया हो सतगुरु विट्टों बताया जीओ जन नानक बोले अमृत बाणी गुर सिखा कै मन प्यारी पानी उपदेश करे गुर सतगुर पूरा गुर सतगुर पर उपकारिया जीओ सत चौपदे महले चौथे के माज महला पंजवा चौक दे घर पहला मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई बिल्प करे चात्रिक की न्याई त्रिखा ना उतरे सांस ना आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हों कोली जियो कोल कुमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सुहावा जियो सह तुन बाणी चिर होआ देखे सारंग पानी पांच सौ देश जहां तू वस्या मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो हों कोली हों कोल कुमाई गुर सज्जन मीत मुरारे जियो रहाओ एक कड़ी ना मिलते ता कल युग होता हुण कद मिली है प्रिय तुद भगवंता मोहे रैन ना बिहावे नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबारे जियो हों कोली जियो कोल कुमाई तिस सच्चे गुर दरबारे जियो रहाओ पाग हुआ गुर संत मिलाया प्रभ अविनाशी कर में पाया सेव करी पल चसा ना बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो हों कोली जियो कोल कुमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ राग माज महला पंजवा सारुत सुहावी जित तुद समाली सो कम सुहेला जो तेरी काली सो रिदा सुहेला जित रिदे तू उठा सबना के दाता राजियो तू सांझा साहिब बाप हमारा नौ निध तेरे अखुट पंडारा जिस तू दे सो त्रिपत अघावे सोई भगत तुम्हारा जियो सबको आसे तेरी बैठा कट कट अंतर तू है उठा सबे सांझी वाल सदाइन तू किसे न दिसे बहरा जियो तू आपे गुरमुख मुक्त कराए तू आपे मनमुख जन्म पवाए नानक दास तेरे बलिहार है सब तेरा खेल दसहरा जियो माज महला पंजवा अनहद बाजे सहज सुहेला शब्द आनंद करे सद केला सहज गुफा में तार

पाणे हर गुण गुरमुख गावा, पाणे परम पवे बहु जूनी, सब किछ तिसे रजाई जियो, ना को मूरख ना को स्याणा, वरते सब किछ तेरा पाणा, अगम अगोचर बे अंक अथ।

दर्शन पेखत मन आघावे, नानक मिलन सुभाई जियो। माज महला पंजवा, दुख तदे जा विसर जावे, उख व्यापे बहुविध तावे, सिमरत नाम सदा सुहेला, जिस देवे दीन दयाला जियो। सतगुर मेरा वड समरथा, जी संभाली ता सब दुख लथा, चिंता रोग गई हौ पीड़ा, आप करे प्रतपाला जियो। बारिक वांगी हौ सब किछ मंगा, देन दे तोट नाही प्रभ रंगा, पैरी पै पै बहुत मनाई, दीन दयाल गोपाला जियो। हौ बलिहारी सतगुर पूरे, जिन बंधन काटे सगले मेरे, हृदय नाम दे निर्मल किए, नानक रंग रस

ऊंच नीच करे प्रतपाला, नाम रसायन मंत्र पायण, गुरुमुख अमृत पीवा जियो। दुख सुख प्यारे तुद त्याई,

निर्मलिया सुखदाई दुख बिडारन हरिया अवर साध चख अगले देखे मन हर रस सबते मीठा जियो जो जो पीवे सो तृप्तावे अमर होवे जो नाम रस पावे नाम निधान तिसे प्राप्त जिस शब्द गुरु मन उठा जियो जिन हर रस पाया सो तृप्त अघाना जिन हर साध पाया सो नाहे डुलाना तिसे प्राप्त हर हर नामा जिस मस्तक पागी था जियो हर इकत हाथ आया वरसाने बहु तेरे तिस लग मुकत पै कनेरे नाम निधाना गुरुमुख पाये कहो नानक विरली डीठा जियो माज महला पंजवा निद सिद्ध रिद हर हर हर मेरे जन्म पदार्थ गैर गंभीर है लाख कोट खुशियां रंग रावे जो गुर लागा पाई जियो दर्शन पेखत पै पुनीता सगल उधारे पाई नीता अगम अगोचर स्वामी अपना गुर कृपा ते सच त्याई जियो जा को खोजे सर्व उपाय वड पागी दर्शन को विरला पाए ऊंच अपार अगोचर थाना ओ महल गुरु देखाई जियो गहर गंभीर अमृत नाम तेरा मुक्त पाया जिस हृदय सेरा गुर बंधन तिनके सगले काटे जन नानक सहज समाई जियो माज महला पंजवा प्रभु कृपा ते हर हर प्यावो प्रभु दया ते मंगल गावो उठक बैठक सोवत जागत हर त्याय सगल अवरदा जियो नाम औखद मोको साधु दिया किलबिक काटे निर्मल थिया आनंद पया निक्सी सब पीरा सगल बिना से दर्दा जियो जिसका अंग करे मेरा प्यारा सो मुक्ता सागर संसारा हत करे जिन गुरु पछाता सो काहे को डरदा जियो जब ते साधु संगत पाए गुर पेट तो हों गई बलाए सास सास हर गावे नानक सतगुर टाक लिया मेरा पर्दा जियो माज महला पंजवा ओत पोत सेवक संग राता प्रप्रत पाले सेवक सुखदाता पानी पखा पीसो सेवक कै ठाकुर ही का आहार जियो काट सिलक प्रभ सेवा लाया हुकम साहिब का सेवक मन पाया सोई कमावे जो साहिब पावे सेवक अंतर बाहर माहर जियो तू दाना ठाकुर सब विद जाने ठाकुर के सेवक हर रंग माने जो किछ ठाकुर का सो सेवक का सेवक ठाकुर ही संग जाहर जियो अपने ठाकुर जो पहराया बहुर न लेखा पुछ बुलाया तिस सेवक के नानक कुर्बानी सो गहर गंभीरा गहोर जियो माज महला पंजवा सब किछ कर में बाहर नाही बाहर टोले सो परम पुलाही गुर प्रसादी जिन अंतर पाया सो अंतर बार सुहेला जियो चिम चिम वर्षे अमृत धारा मन पीवे सुन शब्द बिचारा अनद विनोद करे दिन राती सदा सदा हर के ला जियो जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया साध कृपा ते सु का हरिया सुमत पाए नाम ते आए गुरमुख होए मेला जियो जल तरंग ज्यो जले समाया त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया कहो नानक प्रम कटे किवाड़ा बहुड़ना होइए जौला जियो माज महला पंजवा तिस कुर्बानी जिन तू सुनिया तिस बलिहारी जिन रसना पणिया वार वार जाई तिस विटो जो मन तन तुद आरा दे जियो तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले नैन निहाली तिस पुरख दयाले मन देवा तिस अपने साजन जिन गुरमिल सो प्रबला दे जियो सेवड पागी जिन तुम जाने सब के मदे अलिपत निर्बाणे साध के संग उन पौजल तरिया सगल दूत उन सा दे जियो
तिनकी शरण परया मन मेरा, मान तान तज मोह अंधेरा, नाम दान दीजे नानक तो, तिस प्रभ अगम अगा दे जियो। माज महला पंजवा, तू पेड़ साख तेरी फूली, तू सूखम होआ अस्थूली, तू जल निद तू फेन बुदबुदा, तुद बिन अवर न पाली है जियो। तू सूत मणिये भी तू है, तू गंठी मेर सिर तू है, आद मद अंत प्रभ कोई अवर न कोई दिखा लिए जियो। तू निर्गुण सरगुण सुखदाता, तू निर्माण रसिया रंग राता, अपने कर सब आपे जाने, आपे तुद संभालिए जियो। तू ठाकुर सेवक फुन आपे, तू गुपत प्रगट प्रभ आपे, नानक दास सदा गुण गावे, एक पोरी नदर निहालिए जियो। माज महला पंजवा, सफल सोबाणी जित नाम वकाणी, गुर प्रसाद किने विरले जानी, तन सोवेला जित हर गावत सुनना, आए ते परवाना जियो। से नेत्र प्रवान जिनी दर्शन पेखा, से कर पले जिनी हर जस लेखा, से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले, हों बल तिन संग पछाना जियो। सुन साजन मेरे मीत प्यारे, साध संग खिन माहे उदारे, किलविक काट हुआ मन निर्मल, मिट गए आवन जाना जियो। दो कर जोड़ एक बिनो करी जाए, कर कृपा दुगदा पत्थर लीजे, नानक कहो प्रभ पय कृपाला, प्रभ नानक मन पाना जियो। माज महला पंजवा, अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी, जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। सुख पया दुख दूर पराना, संत रसन हर नाम

प्रीतम ठाकुर अतपारी तुमरे कर्तव्य तुम ही जानो तुमरी ओट गोपाला जियो। गुण गावत मन हरिया होवे कथा सुनत मल सगली खोवे पेटत संग साध संतन कै सदा जपो दयाला जियो। प्रभ अपना साथ साथ समारो ए मत।

पाया, कर कृपा प्रभ सगल रजाया, दात करो मेरे दातारा, जी जंत सब त्रापे जियो, सच्चा साहिब सच्ची नाई, गुर प्रसाद तिस सदा त्याई, जन्म मरण पै काते मोहा, बिनसे सोग संतापे जियो, सास सास नानक साला है, सिमरत नाम काटे सब पाहे, पूरन आस करी खिन पीतर, हर हर हर गुण जापे जियो, माज महला पंजवा, आओ साजन संत मीत प्यारे, मिल गावे गुण अगम अपारे, गावत सुनत सबे ही मुक्ते, सो त्याय जिन हम किए जियो, जन्म जन्म के किल विख जावे, मन चिंदे से ही फल पावे, सिमर साहिब सो सच स्वामी, रिजक सबस को दिए जियो, नाम जपत सर्व सुख पाये, सब पौ बिन से हर हर त्याये, जिन से व्यासो पार ग्रामी, कारज सगले थिए जियो, आए पया तेरी शरणाई, ज्यों पावे त्यों लह मिलाई, कर कृपा प्रभ भक्ति लावो, सच नानक अमृत पिए जियो, माज महला पंजवा, पय कृपाल गोविंद गोसाई, मेघ वर्षे

हमारे जो बार माता समारे दुख पंजन सुख सागर स्वामी देत सगल आहारे जियो जल थल पूर रहा मेहरवाना सद बलिहार जाइए कुर्बाना रैन दिन सत्य सदा ते आए जे खिन में सगल उधारे जियो राख लिए सगले प्रभ आपे उतर गए सब सोग संतापे नाम जपत मन तन हरियावल प्रभ नानक नदर निहारे जियो माज महला पंजवा जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से अखल सोइन चुबारे जिथे नाम ना जपिए मेरे गोविंदा से नगर उजाड़ी जियो हर रुखी रोटी खाए समाले हर अंतर बाहर नदर निहाले खाए खाए करे बद फैली जान विसुकी वाड़ी जियो संता सेती रंग न लाए साकत संग विकर्म कमाए दुलब दे कोई अज्ञानी जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो तेरी शरण मेरे दीन दयाला सुख सागर मेरे गुरु गोपाला कर कृपा नानक गुण गावे राखो शर्म असाड़ी जियो माज महला पंजवा चरण ठाकुर के हृदय समाने कल कलेश सब दूर पयाने शांत सुख सहज तुन उपजी साधु संग निवासा जियो लागी प्रीत ना टूटे मूले हर अंतर बार रहा पर पूरे सिमर सिमर सिमर गुण गावा काटी जमकी फाता जियो अमृत वर्ष है अनहद बाणी मन तन अंतर शांत समाणी त्रिपत अघाए रहे जन तेरे सतगुर किया दिलासा जियो जिसका साथ तिस्ते फल पाया कर कृपा प्रभ संग मिलाया आवन जान रहे वड पागी नानक पूरन आसा जियो माज महला पंजवा मियो पया परमेश्वर पाया जी जंत सब सुखी वसाया दया कलेस पया

प्रभ तुम ते लहना तू मेरा गहना जो तू दे सोई सुख सहना जिथे रखे बेकुंठ सिथाई तू सबना के प्रतपाला जियो सिमर सिमर नानक सुख पाया आठ पहर तेरे गुण गाया सगल मनोरथ।

जल फल मैयल दैदिस वरसाया, साख पई बुझी सब कृष्णा, अनग पया सब थाई जियो। सुखदाता दुख पंजन हारा, आपे बख्श करे जी सारा, अपने कीते नो आप प्रतपाले, तै पैरी तिसे मनाई जियो। जा की शरण पया गत पाये, साफ साफ हर नाम ते आये, तिस बिन होर ना दूजा ठाकुर, सब तिसे किया जाई जियो। तेरा मान तान प्रभ तेरा, तू सच्चा साहिब गुणी गहेरा, नानक दास कह बेनंती, आप पहर तू त्याई जियो। माज महला पंजवा, सबे सुख पए प्रव तुठे, गुरपूरे के चरण मन उठे, सह समाध लगी लिव अंकर, सो रस सोई जाने जियो। अगम अगोचर साहिब मेरा, कट कट अंतर वरते मेरा, सदा अलिप्त जिया का दाता, को विरला आप पछाने जियो। प्रभ मिलने की ए निशानी, मन इको सच्चा हुकुम पछाने, सहज संतोष सदा तृप्ता से, अनद खसम कह पाने जियो। हक की दिक्की प्रभ देवन हारे, जन्म मरण रोग सब निवारे, नानक दास किए प्रभ अपने, हर कीर्तन रंग माने जियो। माज महला पंजवा, तीनी दया गोपाल गुसाई, गुर के चरण वसे मन माही, अंगीकार किया तिन करते है, दुख का डेरा काया जियो। मन तन वसिया सच्चा सोई, बिखड़ा खान न दिसे कोई, दूत दुश्मन सब सज्जन होए, एको स्वामी आया जियो। जो किस करे सो आपे आपे, बुद्ध सियाणप किछु न जापे, अपने संतानो आप सहाय, प्रभ परम पुलावा लाया जियो। चरण कमल जन का आधारो, आप पैर राम नाम वपारो, सहज आनंद गावे गुण गोविंद, प्रभ नानक सर्व समाया जियो। माज महला पंजवा, सो सत मंदर जित सच त्याई है, सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है, सा करत सुहावी जित वसे हर जन सच्चे नाम वितो कुर्बानो जियो। सत वडाई कीम ना पाई, कुदरत कर्म ना कहना जाई, त्याए त्याए जीवे जन तेरे, सत शब्द मन मानो जियो। सत सालाहन बड़ पादमी पाई है, गुर प्रसादी हर गुण गाई है, रंग रते तेरे तुद पावे हैं, सच नाम निशानो जियो। सच्चे अंत ना जाने कोई, थान संतर सच्चा सोई, नानक सच से आई है सद ही, अंतर जामी जानो जियो। माज महला पंजवा, रैन सुहावड़ी दिन सुहेला, जप अमृत नाम संत संग मेला, करी मूरत सिमरत पल वंजे, जीवन सफल तिथाई जियो। सिमरत नाम दोख सब लाके, अंतर बाहर हर प्रभ साथे, तै पाओ परम खोया गुरपूर है, देखा सब नी जाई जियो। प्रभ समरथ वड ऊंच अपारा, नौ निज नाम परे पंडारा, आद अंत मद प्रभ सोई, दूजा लवे न लाई जियो। कर कृपा मेरे दीन दयाला, जाचित जाचे सादर वाला, देह दान नानक जन मांगे, सदा सदा हर त्याई जियो। माज महला पंजवा, ऐसे तू है आगे आपे, जी जंत्र सब तेरे थापे,

तुद बिन अवर न कोई करते, मैं कर ओत तुम्हारी जियो। रसना जप जप जीवे स्वामी, पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी, जिन सेव्या तिन ही सुख पाया, सो जन्म न जुए हारी जियो। नाम अवखद जिन जन तेरे पाया, जन्म जन्म का रोग गवाया, हर कीर्तन गावो दिन राती, सफल एहा है कारी जियो। दृष्ट तार अपना दास सवारिया, कट कट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, इकत बिन होर दूजा नाही, बाबा नानक ए मत सारी जियो। माज महला पंजवा, मन तन रत्ता राम प्यारे, सर्व सु दीजे अपना वारे, आठ पैर गोविंद गुण गाये, बिसर न कोई सासा जियो। सोई साजन मीत प्यारा, राम नाम साध संग बिचारा, साधु संग तरी जय सागर, कटिये जम की फासा जियो। चार पदार्थ हर की सेवा, पार जात जप अलख अपेवा, काम क्रोध किल बिख गुर काटे, पूरन होई आसा जियो। पूरन पाग पै जिस प्राणी, साध संग मिले सारंग पानी, नानक नाम वस्या जिस अंतर, परवान गृहस्थ उदासा जियो। माज महला पंजवा, सिमरत नाम हृदय सुख पाया, कर कृपा पंक्ति प्रगटाया, संत संग मिल हर हर जपिया, बिन से आलस रोगा जियो। जा कै गृह नव निध हर पाई, तिस मिलिया जिस पूर्व कमाई, ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर, प्रभ सबना गल्ला जोगा जियो। किन में थाप उठा पनहारा, आप इकंती आप पसारा, लेप नहीं जग जीवन दाते, दर्शन डिठे लैन विजोगा जियो। अंचल लाए सब सिस्त्राई, अपना नाव आप जपाई, गुरबो हित पाया कृपा ते, नानक तुर संजोगा जियो। माज महला पंजवा, सोई करना जे आप कराए, जिथे रखे सा पली जाए, सोई सियाना सो पतवंता, हुक्म लगे जिस लीठा जियो। सब परोई इकत तागे, जिस लाए ले सो चरणी लागे, ऊंद कवल जिस होए।

नानक नाम त्याय त्याय जीवे बिनस्या परम पौ तीथा जियो। माज महला पंजवा, झूठा मंगन जे कोई मांगे तिसको मरते करी ना लागे, पार ब्रह्म जो सद ही सेवे सो गुरमिल ने चल कहना। प्रेम भगत जिसके मन लागी गुण गावे अंदिन नित जागी, बाह पकड़ तिस स्वामी मेले जिसके मस्तक लहना। चरण कमल भगता मन उठे बिन परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की तूड़ नित बांचे नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाय जिस सिमरत वर ने चल पाई, नानक कहो प्रभु होए दयाला तेरा कीता सहना। राग माज अष्टपदिया महला पहला कर पहला, इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। शब्द रंगाए हुक्म सवाए, सच्ची दरगे मैल बुलाए, सच्चे दीन दयाल मेरे साहिबा सच्चे मन पति आवणिया। हों वारी जियो वारी सबद सुहावणिया, अमृत नाम सदा सुख दाता गुरमति मन वसावणिया। रहाओ ना को मेरा हों किस केरा, साचा ठाकुर त्रिभुवन मेरा, हों मैं कर कर जाए कनेरी कर अवगण पछोतावणिया। हुकुम पछाणे सो हर गुण वखाणे, गुर के शब्द नाम निशाने, सबना का दर लेखा सके छूटत नाम सुहावणिया। मनमुख फूला ठौर ना पाए, जम दर बद्दा चोटा खाए, बिन नामे को संग ना साथी मुक्ते नाम ते आवणिया। साकत कूड़े सच

ताही अवगण मुठी महल न पाए अवगण गुण बख्शावणिया पेयड़े जिन जाता प्यारा गुरमुख बूझे तत बिचारा आवन जाना ठाक रहाए सच्चे नाम समावणिया गुरमुख बूझे अकथ कहावे सच्चे ठाकुर साथियो पावे नानक सच कह बेनंती सच मिले गुण गावणिया माज महला तीजा कर पहला कर्म होवे सतगुरु मिलाए सेवा सुरत शब्द चित लाए हों में मार सदा सुख पाया माया मोह चुकावणिया हों वारी जियो वारी सतगुर के बलिहारणिया गुरमती प्रगास हुआ जी अंगन हर गुण गावणिया रहाओ तन मन खोजे ता नाउ पाए तावत राखे ठाक रहाए गुर की बाणी अंदन गावे सहजे भगत करावणिया इस काया अंदर वस्त असंखा गुरमुख साच मिले ता वेखा नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द बजावणिया सच्चा साहिब सच्ची नाई गुर प्रसादी मन वसाई अंदिन सदा रहे रंग राता दर सच्चे सोजी पावणिया पाप पुन की सार न जानी दूजे लागी परम पुलानी अज्ञानी अंधा मग न जाने फिर आवन जावणिया गुर सेवा ते सदा सुख पाया हों मैं मेरा ठाक रहाया गुर साखी मिटिया अंधियारा बजर कपाट खुलावणिया हों मैं मार मन वसाया गुर चरणी सदा चित लाया गुर कृपा ते मंतन निर्मल निर्मल नाम ते आवणिया जीवन मरना सब तू दैताई जिस बख्शे किस दे वडियाई नानक नाम त्याए सदा तू जम्मन मरण सवारणिया माज महला तीजा मेरा प्रभ निर्मल अगम अपारा बिन तकड़ी तोले संसारा गुरमुख हो वह तोई बूझे गुण कह गुणी समावणिया हों वारी जियो वारी हर का नाम मन वसावणिया जो सच लागे से अंदन जागे दर सच्चे शोभा पावणिया रहाओ आप सुने ते आपे वेखे जिसनो नदर करे सोई जन लेखे आपे लाए ले सो लागे गुरमुख सच कमावणिया जिस आप पुलाए सो किथे हथ पाए पूरब लिखिया सो मेटना ना जाए जिन सतगुर मिलिया सेवड पागी पूरे कर्म मिलावणिया पेयड़े तन अंगन सुती कंक विसारी अवगण मुती अंगन सदा फिरे बिल लादी बिन फिर नींद न पावणिया पेयड़े सुखदाता जाता हों मैं मार गुर शब्द पछाता सेज सुहावी सदा फिर रावे सत सिगार बनावणिया लख चौरासी जी उपाय जिसनो नजर करे तिस गुरु मिलाए किल बिख का सदा जन निर्मल दर सच्चे नाम सुहावणिया लेखा मांगे ता किन दिए सुख नाही फुन दूए तीए आपे बख्श ले प्रभ साचा आपे बख्श मिलावणिया आप करे तै आप कराए पूरे गुर के शब्द मिलाए नानक नाम मिले वडियाई आपे मेल मिलावणिया माज महला तीजा इको आप फिरे परछन्ना गुरमुख वेखा ता एहो मन पिन्ना तृष्णा तज सहज सुख पाया एको मन वसावणिया हों वारी जियो वारी इकस क्यों चित लावणिया गुरमती मन इकट कर आया सच्चे रंग रंगावणिया रहाओ एहो जग पूला तें आप पुलाया इक विसार दूजे लोभाया अन दिन सदा फिरे परम पूला बिन नावे दुख पावणिया जो रंग राते कर्म विदाते गुर सेवा ते जुग चारे जाते जिसनो आप दे वडियाई हर के नाम समावणिया माया मोह हर चेते नाही जमपुर बद्दा दुख सहाही अन्ना बोला किछ नदर ना आवे मन मुख पाप पचावणिया इक रंग राते जो तुद आप लिव लाए पाए भगत तेरे मन पाए सतगुर सेवन सदा सुख दाता सब इच्छा आप पुजावणिया
ਹਰ ਜੀਉ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਸਰਣਾਏ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੈ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਜਮ ਕਾਲ ਤਿਸ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਿਆ, ਅੰਨ ਦਿਨ ਰਾਤੇ ਜੋ ਹਰ ਪਾਏ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਏ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸੱਚ ਬੁਝਾਵਣਿਆ, ਜਿਨ ਸੱਚ ਜਾਤਾ ਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਣੇ,

काल ना चापे दुख ना संतापे ज्योति विच मिल जोत समाणी सुन मन सच समावने आ हों वारी जियो वारी हर कै नाए शोभा पावने आ सतगुर सेव सच चित लाया गुरमती सहज समावने आ रहाओ काया कच्ची कच्चा चीर हंडाए दूजे लागी महल ना पाए।

छूटे सच कमाए सतगुर सेवन से तनवंते ऐथे ओथे नाम समावणिया तै पाए सिंगार बनाए गुर प्रसादी महल कर पाए अन दिन सदा रवै दिन राती मजीथे रंग बनावणिया सबना पिरवसे सदा नाले गुर प्रसादी को नदर निहाले मेरा प्रभ अत ऊचो ऊचा कर कृपा आप मिलावणिया माया मोय इहो जग सुत्ता नाम विसार अंत विगुत्ता जिसते सुत्ता सो जा गाए गुरमत सोजी पावणिया अप्यो पिए सो परम गवाए गुर प्रसाद मुकत गत पाए भगती रखा सदा बैरागी आप मार मिलावणिया आप उपाय संदै लाए लख चौरासी रिजक आप अपड़ाए नानक नाम से आए सच राते जो तिस पावे सो कार करावणिया माज महला तीजा अंदर हीरा लाल बनाया गुर के शब्द परख परखाया जिन सच पल्ले सच वखाणे सच कसवटी लावणिया होवारी जियो वारी गुर की बाणी मन वसावणिया अंजन माहे निरंजन पाया ज्योति ज्योत मिलावणिया रहाओ इस काया अंदर बहुत पसारा नाम निरंजन अप अगम अपारा गुरमुख हो वै सोई पाए आपे बख्श मिलावणिया मेरा ठाकुर सच दिड़ाए गुर प्रसादी सच चित लाए सचो सच वरते सबनी थाई सच्चे सच समावणिया रे प्रवाहो सच मेरा प्यारा किलविख अवगुण काटन हारा प्रेम प्रीत सदा त्याई है पै पाए भगत दृढ़ावणिया तेरी भगत सच्ची जे सच्चे पावे आपे दे ना पछो तावे सबना जिया का एको दाता सब दे मार जीवावणिया हर तुद बाजो मैं कोई नाही हर तुद है सेवी तै तुद सलाही आपे मेल लहो प्रभ साचे पूरे कर्म तू पावणिया मैं होर न कोई तुदे जेहा तेरी नदरी सीजस देहा अंदिन सार समाल हर राखे गुरमुख कह समावणिया तुद जेवड़ मैं होर न कोई तुद आपे सिरजी आपे गोई तू आपे ही कर पन सवारे नानक नाम सुहावणिया माज महला तीजा सब कट आपे भोगण हारा अलख वरते अगम अपारा गुर के शब्द मेरा हर प्रभ त्याई सहजे सच समावणिया हो वारी जियो वारी गुर शब्द मन वसावणिया शब्द सूजे ता मन स्यों लूजे मनसा मार समावणिया रहाओ पंच दूत मुहे संसारा मनमुख अंधे सुध ना सारा गुरमुख हो वैसो अपना कर राखे पंच दूत शब्द पचावणिया एक गुरमुख सदा सच्चे रंग राते सहजे प्रभ सेवे अंदिन माते मिल प्रीतम सच्चे गुण गावे हर दर शोभा पावणिया एकम एक आप उपाया दुबदा दूजा त्रिविध माया चौथी पौड़ी गुरमुख ऊंची सचो सच कमावणिया सब है सच्चा जे सच्चे पावे जिन सच जाता सो सह समावे गुरमुख करनी सच्चे सेवे साचे जाए समावणिया सच्चे बाजो को अवर ना दुआ दूजे लाग जग खप खप मुआ गुरमुख हो वैसो एको जाने एको सेव सुख पावणिया जी जंत सब शरण तुम्हारी आपे तर देखे कच्ची पक्की सारी अंग दिन आपे कार कराए आपे मेल मिलावणिया तू आपे मेले वेखे हदूर सब मैं आप रहा भरपूर नानक आपे आप वरत गुरमुख सोजी पावणिया माज महला तीजा अमृत बाणी गुर की मीठी गुरमुख विरले किने चख दीठी अंतर प्रगास महारस की वह दर सच्चे शब्द बजावणिया हों वारी जियो वारी गुर चरणी चित लावणिया सतगुर है अमृत सर साचा मन नावे मैल चुकावणिया रहाओ तेरा सच्चे किने अंत न पाया गुर प्रसाद किने विरले चित लाया तुद सला है न रजा कबहू सच्चे नावे की पुख लावणिया एको वेखा अवर न बिया
गुर प्रसादी अमृत पिया, गुर कै शब्द तिखा निवारी, सहजे सुख समावणिया। रतन पदार्थ पलर त्यागे, मन मुख अंधा दूजे पाए लागे, जो बीजे सोई फल पाए, सुखने सुख न पावणिया। अपनी कृपा करे सोई जन पाए, गुर का शब्द मन वसाए, अंदिन सदा रहे पै अंदर, कै मार परम चुकावणिया। परम चुकाया सदा सुख पाया, गुर प्रसाद परम पद पाया, अंतर निर्मल निर्मल बाणी, हर गुण सहजे गावणिया। सिमरत शास्त्र वेद वखाणे, परमे पूला तत न जाने, बिन सतगुर सेवे सुख न पाए, दुखो दुख कमावणिया। आप करे किस आखे कोई, आखन जाइए जे पूला होई, नानक आपे करे कराए, नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा, आपे रंग हर रंग चढ़ाए, मन तन रत्ता रसना रंग चलूली, पै पाए रंग चढ़ावणिया। हों वारी जियो वारी, निरपौ मन वसावणिया, गुर कृपा से हर निरपौ त्याया, बिख पौ जल शब्द करावणिया। रहाओ मन मुख मुग्ध करे चतुराई, नाता तोता थाए ना पाई, जेहा आया तेहा जाती, कर अवगण पछोतावणिया। मन मुख अंधे किछु न सूजे, मरण लिखाए आए नहीं बुझे, मन मुख कर्म करे नहीं पाए, बिन नावे जन्म गवावणिया। सच करनी शब्द है सार, पूरे गुर पाईए मोख द्वार, अंधिन बाणी शब्द सुनाए, सच राते रंग रंगावणिया। रसना हर रस राती रंग लाए, मन तन मोहया सहज सुभाए, सहजे प्रीतम प्यारा पाया, सहजे सहज मिलावणिया। जिस अंदर रंग सोई गुण गावे, गुर के शब्द सहजे सुख समावे, हौ बलिहारी सदा तिन विटो, गुर सेवा चित लावणिया। सच्चा सच्चो सच पति जय, गुर प्रसादी अंदर पी जय, बैठ सुखान हर गुण गावे, आपे कर सत मनावणिया। जिसनो नजर करे सो पाए, गुर प्रसादी हो में जाए, नानक नाम वसै मन अंतर, दर सच्चे सोबा पावणिया। माज महला तीजा, सतगुर सेवे वड्डी वड्याई, हर जी अचिंत वसै मन आई, हर जी ओ सफलियो बिरख है अमृत, जिन पीता तिस तिखा लहावणिया। हौ वारी जियो वारी, सत संगत मेल मिलावणिया, हर सत संगत आपे मेल है, गुर शब्दी हर गुण गावणिया। रहाओ सतगुर सेवी शब्द सुहाया, जिन हर का नाम मन वसाया, हर निर्मल हो मैं मैल गवाए, दर सच्चे शोभा पावणिया। बिन गुर नाम न पाया जाए, सिद्ध साधक रहे बिन लाए, बिन गुर सेवे सुख न होवी, पूरे पाग गुर पावणिया। एहो मन आरसी कोई गुरमुख वेखे, मोर्चा ना लागे जाहो मैं सोखे, अनहत बाणी निर्मल शब्द बजाए, गुर शब्दी सच समावणिया। बिन सतगुर क्यो ना देखिया जाए, गुर कृपा कर आप जिता दिखाए, आपे आप मिल रहया, सहजे सहज समावणिया। गुरमुख हो वै सो इक स्यों लिवलाए, दूजा परम गुर शब्द जलाए, काया अंदर वणज करे वा पारा, नाम निधान सच पावणिया। गुरमुख करनी हर कीरत सार, गुरमुख पाए मोख द्वार, अंदिन रंग रता गुण गावे, अंदर महल बुलावणिया। सतगुर दाता मिले मिलाया, पूरे पाग मन शब्द वसाया, नानक नाम मिले वड्याई, हर सच्चे के गुण गावणिया। माज महला तीजा, आप वंजाए ता सब किछ पाए, गुर शब्दी सच्ची लिवलाए, सच वणन जै सच संग्रह, सच व्यापार करावणिया। हौ वारी जियो वारी, हर गुण अंदिन गावणिया, हौ तेरा तू ठाकुर मेरा, शब्द वड्याई देवणिया। रहाओ वेला वक्त सब सुहाया, जित सच्चा मेरे मन भाया, सच्चे सेवे सच वड्याई, गुर कृपा ते सच पावणिया। पाओ भोजन सतगुर तुथे पाए,
अनरस चूके हर रस मन वसाए, सत संतोख सहज सुख बाणी पूरे गुरते पावणिया। सतगुर ना सेवे मूरख अंध गवारा, फिर ओए कित्थों पाएं मोख द्वारा, मर मर जमे फिर आवे जमदर चोटा खावणिया। शब्द साफ जाने ता आप पछाने, निर्मल बाणी शब्द वखाने, सच्चे सेव सदा सुख पाएन नौनिद नाम मन वसावणिया। सो थान सुहाया जो हर मन भाया, सत संगत बह हर गुण गाया, अंदिन हर सालाहे साचा निर्मल नाद वजावणिया। मन मुख खोटी रास खोटा पासारा, कूर कमावन दुख लागे पारा, परमे पूले फिरन दिन राती, मर जन में जन्म गवावणिया। सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, पूरे गुर के शब्द आधारा, नानक नाम मिले वडियाई दुख सुख सम कर जाननिया। माज महला तीजा, तेरिया खानी तेरिया बाणी, बिन नावे सब परम पुलाणी, गुर सेवा ते हर नाम पाया, बिन सतगुर कोई न पावणिया। हौ वारी जियो वारी हर सेती चित लावणिया, हर सच्चा गुर भगती पाईए सहजे मन वसावणिया। रहाओ सतगुर सेवे ता सब कुछ पाए, जे ही मनसा कर लागे तेहा फल पाए, सतगुर दाता सबना वस्तु का पूरे पाग मिलावणिया। एहो मन मैला इक ना त्याए, अंतर मैल लागी बहु दूजे पाए, तट तीरथ दिसंतर पवे अहंकारी, होर वधेरे हों मैं मल लावणिया। सतगुर सेवे ता मल जाए, जीवत मरे हर स्यों चित लाए, हर निर्मल सच मैल न लागे, सच लागे मैल गवावणिया। बाज गुरु है अंग गुवारा, अज्ञानी अंधा अंध अंधारा, बिस्ता के कीड़े बिस्ता कमावे, फिर बिस्ता माए पचावणिया। मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, हौ में ममता सबदे खोवे, अंधिन हर जियो सच्चा सेवी पूरे पाग गुर पावणिया। आपे बख्शे मेल मिलाए, पूरे गुरते नाम निध पाए, सच्चे नाम सदा मन सच्चा, सच सेवे दुख गवावणिया। सदा हजूर दूर न जानो, गुर सबदी हर अंकर पछाणो, नानक नाम मिले वडियाई पूरे गुरते पावणिया। माज महला तीजा, ऐसे साचे सो आगे साचे, मन सच्चा सच्चे शब्द राचे, सच्चा सेवे सच कमावे, सच्चो सच कमावणिया। हौ वारी जियो वारी सच्चा नाम मन वसावणिया, सच्चे सेवे सच समावे, सच्चे के गुण गावणिया। रहाओ पंडित पढ़े साध न पावे, दूजे पाए माया मन परमावे, माया मोह सब सुध गवाई कर अवगुण पछो तावणिया। सतगुर मिले ता तत पाए, हर का नाम मन वसाए, शब्द मरे मन मारे अपना, मुक्ति का दर पावणिया। किलविख काटे

गुर के सबद सदर है समाए सच सलाहे सब खट अंतर सचो सच सुहावणिया सच सलाही सदा हजूरे गुर के सबद रहा पर पूरे गुर प्रसादी सच नदरी आवे सच्चे ही सुख पावणिया सच मन अंदर रहा समाए सदा सच निश्चल आवे न जाए सच्चे लागे सो मन निर्मल गुरमति सच समावणिया सच सलाही अवर न कोई जित सेवे सदा सुख होई नानक नाम रते विचारी सचो सच कमावणिया माज महला तीजा निर्मल शब्द निर्मल है बाणी निर्मल जोत सब माहे समाणी निर्मल बाणी हर सलाही जप हर निर्मल मैल गवावणिया हों वारी जियो वारी सुख दाता मन वसावणिया हर निर्मल गुर सब सलाही सबदो सुन पिसा मिटावणिया रहाओ निर्मल नाम वस्या मन आए मन तन निर्मल माया मोह गवाए निर्मल गुण गावे नित साचे के निर्मल नाद बजावणिया निर्मल अमृत गुर ते पाया विच्चों आप मुआ तिथे मोह न माया निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल निर्मल बाणी मन वसावणिया जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवे होमे मैल गुर शब्दे तोवे निर्मल वाजे अनहद तुन बाणी दर सच्चे शोभा पावणिया निर्मल ते सब निर्मल होवे निर्मल मनुआ हर शब्द पर होवे निर्मल नाम लगे बड़ पागी निर्मल नाम सुहावणिया सो निर्मल जो शब्दे सो है निर्मल नाम मन तन मोहे सच नाम मल कदे न लागे मुख उजल सच करावणिया मन मैला है दूजे पाए मैला चौका मैले छाए मैला खाए फिर मैल वधाए मन मुख मैल दुख पावणिया मैले निर्मल सब हुक्म सवाए से निर्मल जो हर साचे भाए नानक नाम वसै मन अंतर गुरमुख मैल चुकावणिया माज महला तीजा गोविंद उजल उजल हंसा मन बाणी निर्मल मेरी मनसा मन उजल सदा मुख सो है अत उजल नाम ते आवणिया हों वारी जियो वारी गोविंद गुण गावणिया गोविंद गोविंद कह दिन राती गोविंद गुण शब्द सुहावणिया रहाओ गोविंद गावे सह सुबाए गुर कै पै उजल होमे मन जाए सदा आनंद रहे भगत करें दिन राती सुन गोविंद गुण गावणिया मनुआ नाचे भगत दृढ़ाए गुर कै शब्द मने मन मिलाए सच्चा ताल पूरे माया मोह चुकाए शब्दे नृत करावणिया ऊंचा कूके तने पछाड़े माया मोह जोहया जमकाले माया मोह इस मने नचाए अंतर कपट दुख पावणिया गुरुमुख भगत जा आप कराए तन मन दाता सह सुभाए बाणी वजे शब्द वजाए गुरुमुख भगत साए पावणिया बहुताल पूरे वाजे वजाए ना को सुने ना मन वसाए माया कारण पिड़ बंद नाचे दूजे पाए दुख पावणिया जिस अंतर प्रीत लगे सो मुक्ता इंद्री वस सच संजम जुगता गुर कै शब्द सदा हर त्याए एहा भगत हर पावणिया गुरमुख भगत जुग चारे होई होरत भगत ना पाए कोई नानक नाम गुर भगती पाईए गुर चरणी चित लावणिया माज महला तीजा सच्चा सेवी सच सलाही सच्चे नाए दुख कभी नाही सुख दाता सेवन सुख पायन गुरमत मन वसावणिया हौ वारी जियो वारी सुख सह समाध लगावणिया जो हर सेवे से सदा सोहे शोभा सुर सुहावणिया रहाओ सबको तेरा भगत कहाए से भगत तेरे मन पाए सत बाणी तुदे सलाहन रंग राते भगत करावणिया सबको सच्चे हर जियो तेरा गुरमुख मिले ता चूके फेरा जा तुद पावे ता नाए रचावे तू आपे नाओ जपावणिया
गुरमति हर मन वसाया, हरख सोग सब मोह गवाया, इक स्यों लिव लागी सदी हर नाम मन वसावणिया। भगत रंग राते सदा तेरे चाए, नौ निद नाम वखरा मन आए, पूरे पाग सतगुर पाया सबदे मेल मिलावणिया। तू दयाल सदा सुखदाता, तू आपे मेले गुरमुख जाता, तू आपे देवे नाम वडाए, नाम रते सुख पावणिया। सदा सदा साचे तुद सलाहे, गुरमुख जाता दूजा को नाही, एक स्यों मन रहा समाए, मन मने मन है मिलावणिया। गुरमुख होवे सो साला है, साचे ठाकुर वे परवाहे, नानक नाम वसे।

तेरे पद सो है साचे दरबारे, गुर के शब्द नाम सवारे, सदा आनंद रहे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया।

होए तू कर कर वेखे जाने सोए आपे करे कराए करता गुरमत आप मिलावणिया कामन गुणवंती हर पाए पै पाए सिगार बनाए सतगुरु सेव सदा सुहागण सच उपदेश समावणिया शब्द विसारण तिना ठौर न ठाओ तम पूले जो सुन्ने कर पाओ हलत पलत तिनी दोवे गवाए दुखे दुख विहावणिया लिखदिया कागद मस कोई दूजे पाए सुख पाए न कोई कूड़ लिखे ते कूड़ कमावे जल जावे कूड़ चितलावणिया गुरमुख सच्चो सच लिखे विचार से जन सच्चे पावे मोख द्वार सच कागज कलम मसवाणी सच लिख सच समावणिया मेरा प्रभ अंतर बैठा वेखे गुर प्रसादी मिले सोई जन लेखे नानक नाम मिले वड्याई पूरे गुरते पावणिया माज महल है तीजा आत्म राम प्रवास गुरते होवे हों मैं मैल लागी गुर शब्दी खोवे मन निर्मल अंदिन भगती राता भगत करे हर पावणिया हों वारी जियो वारी आप भगत करन अवरा भगत करावणिया तिना भगत जना को सदा नमस्कार कीजे जो अंदिन हर गुण गावणिया रहाओ आपे करता कारण कराए जित पावे तित पारे लाए पूरे भाग गुर सेवा होवे गुर सेवा ते सुख पावणिया मर मर जीवे ता किछ पाए गुर प्रसादी हर मन वसाए सदा मुक्त हर मन वसाए सहजे सहज समावणिया बहु कर्म कमावे मुक्त न पाए।

परम पद पाए, सतगुर आपे मेल मिलाए, मिल प्रीतम सुख पावणिया। एक कूड़ लागे कूड़े फल पाए, दूजे पाए बिरथा जन्म गवाए, आप डूबे सगले कुल डूबे, कूड़ बोल बिखावणिया। इस तन में मन को गुरमुख देखे, पाले पगत जाहों में सोख है, सिद्ध साधिक मोन तारी रहे लिव लाए, तिन भी तन में मन ना दिखावणिया। आप कराए करता सोई, हो के करे कीते क्या होई, नानक जिस नाम देवे सो लेवे, नामो मन वसावणिया। माज महला तीजा, इस गुफा में अखुट पंडारा, तिस विच वसे हर जियो अलख अपारा, आपे गुप्त प्रगट है आपे, गुर सबदी आप मजावणिया। हौ वारी जियो वारी, अमृत नाम मन वसावणिया, अमृत नाम महा रस मीठा, गुरमती अमृत पियावणिया। रहाओ हौ में मार बजर कपाट खुलाया, नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया, बिन शब्द नाम न पाए कोई, गुर कृपा मन वसावणिया। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चामन अज्ञान अंधेर गवाया, ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, हर दर शोभा पावणिया। शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम नाल है बहुत व्यवहार दुख पाए, मन मुख अंधे सूजे नाही, फिर किर आए गुरमुख वत पावणिया। गुर प्रसादी सच्चा हर पाए, मन तन वेखे हो में मैल जाए, बैस सुतान सद हर गुण गावे, सच्चे सबद समावणिया। नौ दरखा के तावत रहाए, दसवें निज करवासा पाए, ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरमती शब्द सुनावणिया। बिन शब्द अंतर आनेरा, ना वसल है ना चूके फेरा, सतगुर हथ कुंजी होरत दर खुले नाही, गुर पूरे पाग मिलावणिया। गुप्त प्रगट तू सबनी थाई, गुर प्रसादी मिल सोजी पाई, नानक नाम सलाहे सदा तू, गुरमुख मन वसावणिया। माज महला तीजा, गुरमुख मिले मिलाए आपे, काल न जो है दुख न संतापे, हौ में मार बंधन सब तोड़े, गुरमुख शब्द सुहावणिया। हौ वारी जियो वारी, हर हर नाम सुहावणिया, गुरमुख गावे गुरमुख नाचे, हर से ती चित लावणिया। रहाओ गुरमुख जीवे मरे प्रवाण, आर जा ना छीजे शब्द पछाण, गुरमुख मरे न काल न खाए, गुरमुख सच समावणिया। गुरमुख हर दर शोभा पाए, गुरमुख विच्चों आप गवाए, आप करे कुल सगले तारे, गुरमुख जन्म सवारणिया। गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर, गुरमुख हों में चूके पीर, गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे, गुरमुख सह समावणिया। गुरमुख नाम मिले वड्याई, गुरमुख गुण गावे शोभा पाई, सदा आनंद रहे दिन राती, गुरमुख शब्द करावणिया। गुरमुख अन दिन सब दे राता, गुरमुख जुग चारे है जाता, गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल, शब्दे पगत करावणिया। बाज गुरु है अंध अंधारा, जम काल गरठे करें पुकारा, अन दिन रोगी बिष्टा के कीड़े, बिष्टा में दुख पावणिया। गुरमुख आपे करे कराए, गुरमुख हृदय उठा आप आए, नानक नाम मिले वड्याए, पूरे गुरते पावणिया। माज महला तीजा, एका जोत जोत है शरीरा, शब्द दिखाए सतगुर पूरा, आपे फर्क की तोन कट अंतर, आपे बनत बनावणिया। हौ वारी जियो वारी, हर सच्चे के गुण गावणिया, बाज गुरु को सहज न पाए, गुरमुख सहज समावणिया। रहाओ तू आपे सो है, आपे जग मोहे, तू आपे नदरी जगत परोवे, तू आपे दुख सुख दे रहे करते, गुरमुख हर देखावणिया। आपे करता करे कराए, आपे शब्द गुर मन वसाए, शब्दे उपजे अमृत बाणी, गुरमुख आप सुनावणिया।
आपे करता आपे पुगता, बंधन तोड़े सदा है मुक्ता, सदा मुक्त आपे है सच्चा, आपे अलख लखाणिया। आपे माया आपे छाया, आपे मोह सब जगत उपाया, आपे गुणदाता।

आप जीवाए, आपे मेले मेल मिलाए, सेवा ते सदा सुख पाया, गुरुमुख सहज समावणिया। आपे ऊंचा ऊंचो होई, जिस आप विखाले सो वेखे कोई, नानक नाम वसै कट अंतर, आपे वेख विखालणिया। माज महला तीजा, मेरा प्रभ पर

सब पावणिया आपे वस राखे आपे दे गुरमुख वणजे केई के नानक जिस नजर करे सो पाए पर कृपा मन वसावणिया माध महला तीजा हर आपे मेले सेव कराए गुर के शब्द पाओ दूजा जाए हर निर्मल सदा।

सच्चा नाम सदा है निर्मल, गुर शब्दी मन वसावण्या रहाओ। आपे गुरदाता कर्म विधाता, सेवक सेवे गुरमुख हर जाता। अमृत नाम सदा जन सोवे, गुरमत हर रस पावण्या। इस गुफा में एक थान सुहाया, पूरे गुर हो में परम चुकाया। अंदिन नाम सलाहन रंग राते, गुर कृपा ते पावण्या। गुर के शब्द एहो गुफा विचारे, नाम निरंजन अंतर वसे मुरारे। हर गुण गावे शब्द सुहाए, मेरे प्रीतम सुख पावण्या। जम जागाती दूजे पाए कर लाए, नामों पुल्ले देश जाए। करी मोहत का लेखा लेवे, रतियो मासा।

सचो सच रवे दिन राती केहो मन सच रंगावणिया। जो सच रते तिन सचो पावे आपे दे ना पछो तावे। गुर कै शब्द सदा सच जाता मेरे सच्चे सुख पावणिया। ऊर कुसत तिना मैल ना लागे गुर प्रसादी अंदिन जागे। निर्मल नाम वसे पट पीतर ज्योति ज्योत मिलावणिया। त्रै गुण पने हर पत ना जाने मूलो फुले गुर शब्द ना पछाने। मोह व्यापे किस सूजे नाही गुर शब्दी हर पावणिया। वेद पुकारे त्रिविध माया मन मुख ना बूझे दूजे पाया। त्रै गुण पढ़े हर एक ना जाने बिन बूझे दुख पावणिया। जा किस पावे ता आप मिलाए गुर शब्दी सहसा दुख चुकाए। नानक नावे की

पंडित होई आप तरह सगले कुल तारे हर नाम मन वसावणिया हो वारी जियो वारी हर वस चक साध पावणिया हर वस चाखे से जन निर्मल निर्मल नाम ते आवणिया रहाओ सो नेह कर्मी जो शब्द विचारे अंतर तत् ज्ञान हो मैं मारे नाम पदार्थ नौ निद पाए त्रै गुण मेट समावणिया हो मैं करे नेह कर्मी ना होवे गुर प्रसादी हो मैं खोवे अंतर विवेक सदा आप विचारे गुर शब्दी गुण गावणिया हर सर सागर निर्मल सोई संत चुगे नित गुरमुख होई इस नाम करें सदा दिन राती हों मैं मैल चुकावणिया निर्मल हंसा प्रेम प्यार हर सर वसे हों मैं मार एन सुप्रीत शब्द साचे हर सर वासा पावणिया मन मुख सदा बग मैला हों मैं मल लाई इस नाम करे पर मैल न जाई जीवत मरे गुर शब्द विचारे हों मैं मैल चुकावणिया रतन पदार्थ करते पाया पूरे सतगुर शब्द सुनाया गुर प्रसाद मिटिया अंधियारा घट चानन आप पछानणिया आप उपाय तै आपे वेखे सतगुर सेवे सो जन लेखे नानक नाम वसे घट अंतर गुर कृपा ते पावणिया माज महला तीजा माया मोह जगत सवाया तै गुण दीसे मोहे माया गुर प्रसादी को विरला बूजे चौथे कद लिवलावणिया हों वारी जियो वारी माया मोह शब्द जलावणिया माया मोह जलाए सो हर्ष्यो चित लाए हर दर मैली सो बा पावणिया रहाओ देवी देवा मूल है माया सिमरत सास जिन उपाया काम क्रोध पथरिया संसारे आए जाए दुख पावणिया तिस विच ज्ञान रतन इक पाया गुर प्रसादी मन वसाया जप सत संजम सच कमावे गुर पूरे नाम ते आवणिया पेयड़े तन परम पुलाणी दूजे लागी फिर पछो ताणी हलक पलक

गुरुमुख सदा रह रंग राती मिल सच्चे शोभा पावणिया। मन मुख कर्म करे अंकारी जुए जन्म सब बाजी हारी अंतर लोभ महा गुबारा फिर आवन जावणिया। आपे करता दे वड़ियाई जिनको आप लिखत तुर पाई नानक नाम मिले पौ पंजन गुर सबदी सुख पावणिया। माद महला पंजवा कर पहला अंतर अलख ना जाई लखिया नाम रतन लै गुजा रखिया अगम अगोचर सब।

सोतम ममता सो वड साहा जो गुर चरणी मन लावण्या। पहलो देते रिजक समाहा पिछो देते जंत उपाहा तुझे वरदाता अवर न स्वामी लवे न कोई लावण्या। जिस तू तुथा सो तुद त्याए सात जना का मंत्र कमाए आप करे सगले कुल तारे तिस दरगे खाक न पावण्या।

कौन सो बक्ता, कौन सो गिरही, कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जियो। किन बिद बांदा, किन बिद छूटा, किन बिद आवन जावन टूटा, कौन कर्म कौन नेह कर्मा, कौन सो कह कहाए जियो। कौन सो सुखिया, कौन सो दुखिया, कौन सो सन्मुख।

कौन सो चाल जित पार ब्रह्म ते आए, किन विद कीर्तन गाए जियो। गुरुमुख मुक्ता गुरुमुख जुगता, गुरुमुख ज्ञानी गुरुमुख बक्ता, तन गिर ही उदासी गुरुमुख, गुरुमुख कीमत पाए जियो। होमे बांदा गुरुमुख चूटा, गुरुमुख आन जान टूटा, गुरुमुख कर्म गुरुमुख ने कर्मा, गुरुमुख करे सो सुभाए जियो। गुरुमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरुमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरुमुख मिलिए मनमुख विचरे, गुरुमुख विद प्रगटाए जियो। गुरुमुख अक्षर जित तारत रहता, गुरुमुख उपदेश दुख सुख सम सहता, गुरुमुख चाल जित पार ब्रह्म ते आए, गुरुमुख कीर्तन गाए जियो। सगली बनत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे, इकस से होयो अनंता, नानक एकस माए समाए जियो। माज महरा पंजवा, प्रभ अविनाशी ता क्या काड़ा, हर परवंता ता जन खरा सुखाला, जी प्राण मान सुख दाता, तू करे सोई सुख पावनिया। हों वारी जियो वारी, गुरुमुख मंतन पावनिया।

चाड़े कर कृपा दास नगर निहाले गुण गावे पूरन अविनाशी कह सुन तोट ना आवणिया ऐसे ओथे तू है रखवाला मात गर्भ में तुम ही पाला माया अगर न पोहे तिनको रंग रते गुण गावणिया क्या गुण तेरे आख समाली मंतन अंतर तुद नगर निहाली तू मेरा मीत।

तू साहिब शरण सुखदाता सत संगत जप प्रगटावणिया तू ऊंच अथाओ अपार अमोला तू साचा साहिब दास तेरे गोला तू मीरा साची ठकुराई नानक बल बल जावणिया माज महला पंजवा कर दूजा नित नित दया संभालिए मूल न मनो विसारिए रहाओ संता संगत पाइए जित जम के पंथ न जाइए तोसा हर का नाम।

सेव संत साध के सगल मनोरथ पूरे कट कट एक वर्तदा जल फल महियल पूरे पाप विनाशन सेविया पवित्र संतन की दूरे सब छदाई खसम आप हर जप पई थरूरे करते किया कपाव सो दुष्ट मोए होए मूरे।

जल बिन साफ कुमलावती उपजे नाही दाम, हर ना न मिलिए साजने कत पाए विश्राम। जित पर हर कंस न तगती पथ नगर से ग्राम, सर्व सिगार तंबोल रस सन देही सब खाम। प्रभ स्वामी कंक विहूनिया।

मानन हर जेठ रंगीला तिस्तनी जिसके पाग मथन असार तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास असार तपंदा तिस लगे।

प्रभ तुध बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास आसार सुहंदा किस लगे, जिस मन हर

धर्म मिलावन हार जिन्नी सखिए प्रभ पाया हौ तिनके सब बलिहार नानक हर जी मया कर शब्द सवारन हार सावन तिना सुहागनी जिन राम नाम उरहार पादोए परम पुलाणिया दूजे लगा हेत लग सिगार बनाया कारज नाही केत जित दिन देह बिनस सी तित वेले कैसन प्रेत पकड़ चलायन दूत जम किसे ना देनी पेत छंद खड़ोते खिने माहे जिनस्यों लगा हेत हाथ मरोड़े।

इच्छुकुनी वड पागुनी वर पाया हर राय। मिल सैया मंगल गावही गीत गोविंद अलाय। हर जेहा अवर न दिसई कोई दूजा लवे न लाए। हालत पलत

सरे हर गुर पूरा आराध्या दरगे सच खरे सर्व सुखा निज चरण हरे

अरे मन तन अंतर वस रहे नानक नहीं सुमार, दिन रहन जे प्रभ को सेव दे तिनके सद बलिहार। संत आराधन

नानक जीवै जप हरि दोष सबे ही हंत दिन रैन जिसना विसरै सो हरिया होवै जंत। सर्व कला प्रभ पूर्णो मंद निमानी थाओ हर ओट गही मन।

तू न जाने अकबल टंडोलिम टूंडिम डिख में नानक जग तू का कमल हर पौरी तू करता पुरख अगम है आप सृष्ट उपाति रंग तरंग उपार्जना बहु बहु विधि पाती तू जाने जिन उपाय सब खेल तुमाती एक आवे एक जाहे उठ बिन नावे मर जाती गुरुमुख रंग चलू लिया रंग हर रंग राती सो सेवो सत निरंजनो हर पुरख विदाती तू आपे आप सुजान है वड पुरख वडाती जो मन चित तुद त्याय दे मेरे सच्चा बल बल हों तिन जाती।

मर जम में आया जाया दिन सतगुरु मोह न टूटई सब थके कर्म कमाया गुरमति नाम की आई है सुख रजा जा कुद पाया कुल उधारे अपना तन जने दी माया शोभा सुरत।

पौड़ी एक रतन पदार्थ वणज दे एक कच्चे दे वापारा सतगुर सुठे पायन अंदर रतन पंडारा गिन गुर किने ना लद्या अंधे पौके मुए कुड़ियारा मन मुख दूजे पच मुए ना बूझन विचारा एक सबाजो दूजा को नहीं किस अगे करे पुकारा एक दिल तन सदा पौक दे एक ना परे तुजारा गिन नावे होर तन नाही होर बिख्या सब छारा नानक आप कराए करे आप हुकम सवारन हारा। श्लोक महला पहला। मुसलमान कहावन मुश्किल जा होए ता मुसलमान कहावे अवल औल दीन कर मिठा मस्कल माना माल मुसावे।

जामन नाही सच्चा सोए। क्या मेवा क्या क्यो गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मास, क्या कपड़ क्या सेज खाली, कीजे भोग विलास। क्या लश्कर क्या नेब खवासी, आवे महली वास। नानक सच्चे नाम विण, सबे तोल विनाश। पवड़ी जाति दे क्या हाथ सच परखिए, मोहरा होवे हाथ मरिए चखिए। सच्चे की सरकार जुग जुग जानी है, हुक्म मने सिरदार दर दीवानी है। खुरमानी है कार खसम पठाया, तबल बाज भी चार सबक सुनाया। एक होए असवार इतना साखती,

कण लया तन चाड़, दोई कुड़ चक्की जोड़ कै पीसन आए बैठ, जो दर रहे सोबरे नानक अजब जिठ। महला पहला वेख जे मिठा कटिया, कट कुट बद्दा पाए, खुंडा अंदर रख कै देन सो मल सजाए। रस कस तत्तर पाई है तपै तै बिल लाए, पीसो फोग संभाली है दिच्चे अग जलाए। नानक मिठ है पत्री है वेखो लोका आए। पावड़ी। इक ना मरन ना चित आस कने रिया, मर मर जमे नित किसे ना के रिया। आप नड़े मन चित कहन चंगे रिया, जम राज नित नित मन मुख हे रिया। मन मुख लून हराम क्या ना जानिया, बद्दे करन सलाम खसम ना पाणिया। सच मिले

श्लोक। मच्छी तारू क्या करे, पंखी क्या आकाश, पत्थर पाला क्या करे, खुसरे क्या घरवास, कुत्ते चंदन लाई है, पीसो कुत्ती ताट, बोला जे समझाए।

बेदा गंग बोले सच कोए, मोया गंड ने की सत होए, एक गंड वरते संसार, मूरख गंड पवे मोहे मार, नानक आखे एहो विचार, सिफती गंड पवे दरबार। पौड़ी आपे कुदरत साज के आपे करे विचार, एक खोटे एक खरे आपे परखन हार।

पौड़ी सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया गुरमति आप गवाए सच पछाणिया सच तेरा दरबार शब्द निशाणिया सच्चा शब्द विचार सच समाणिया मनमुख सदा कूड़ियार परम कुलाणिया विष्टा अंदर वास साध ना जानिया गिन नामे दुख पाए।

काओ थान तिना मास्थ वाले एह चलाए रहा नदियां विच टिब्बे दे खाले थली करे असदा कीड़ा खाप दे पात साई लश्कर करे स्वाहा जेते जी जीवे ले साहा जीवाले ताके असाहा नानक ज्यो

एक निरंकारी नाम आधार जीवा दाता मरे न कोई नानक मुठे जाहे नाही मन सोए पौड़ी पूरे गुर की कार कर्म कमाई है गुरमति आप गवाए नाम से आई है दूजी कार है लग जन्म गवाई है बिन नाम है सब विश्व जय खाई है सच्चा सबल सलाह सच समा

मीत पवार गया ई उठ रचियों वाद सहवरिया की पिड़ बदी सबे वेला वक्त सब जे अठी पौ होए नानक साहिब मन वसै सच्चा नावण होए महला दूजा सही पूरे साहा जिनी पूरा पाया अठी रे प्रवाह रहन इक तैरंग दर्शन रूप अथा विरले पाये करम पूरे पूरा गुरु पूरा जा का बोल नानक पूरा जे करे कटे नाही तोल पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाई है मुठी तंदे चोर महल न पाई है इने चित कठोर सेव गवाई है जित काट सच न पाए सो पन कढ़ाई है क्यों कर पूरे वट तोल तुलाई है कोई ना आखे तट हो मैं

त्रासी बहुर ना पाई ताओ। सती पैरी सत पला बही है पड़िया पास, उसे पाप पुन बिचारी है कूड़े कत्ते रास। उसे खोटे सती है खरे की चैसा बास, बोलन फादल नानका दुख सुख खसमे पास। महला दूजा पौन गुरु पानी पिता माता करत मात, दिन रात

फुल फल ज्ञान रस रसिया हरिया सदा पक्के कर्म त्यान पत के साध खादा लह दाना कै सिरदान महला पहला सोने का बिरख पत पर वाला फूल जवे हर लाल कित फल रतन लगे मुख पासित हृदय हृदय निहाल नानक कर्म होवे मुख मस्तक लिखिया होवे लेख असर तीरथ गुर की चरणी पूजे सदा विशेख हंस हेत लोभ कोप चारे नदियां अग पवे दज्जे नानका करिये करमी लग पौड़ी जीव दिया मर मार ना पछोताइए झूठा इह संसार किन समझाइए सच ना करे प्यार तंदे ताइए काल बुरा छे काल सिर दुनिया आइए हुक्मी सिर जंदार मारे दाइए आपे दे प्यार मन वसाइए मोहत ना चसा विलम परिये पाइए गुर प्रसादी बुझ सच समाइए श्लोक महला पहला तुम्ही तुम्हा विश अक तक पूरा ने

पुजै पावना, खर दर्शन कै पेख किसे सच समावना, सच्चा पुरुष अलख शब्द सुहावना, मन्ने नाव विसंख दर्द है पावना, खालक को आदेश तादी गावना, नानक जुग जुग एक मन वसावना। श्लोक महला दूजा, मंत्री होए अथ

मोया जीव दिया गत होवे जा सिर पाये पानी नानक सिर फुटे सैतानी इना गल न पानी वुठे हुए हुए बिलावले जिया जुगत समानी वुठे अन कमाद कपाहा सबसे पर्दा होवे वुठे काहु चरे नित सुरही सातन दही बिलोवे तित के होम जग सद पूजा पै कारज सो है गुरु समुंद नदी सब सिखी नाते जित वजाई नानक जे सिर फुते नावन नाही ता सत चटे सिर छाई महला दूजा अग्नि पाला के करे।

तू सच्चा दातार नित देवे चरे सवाया नानक मंगे दान जो तुद पाया। श्लोक मैला दूजा दीखिया आप बुझाया सुस्ती सच समेओ तिनको।

डर डर जाए, सो डर के हाँ जित डर डर पाए, तुद बिन दूजी नाही जाए, जो किछ वरते सब तेरी रजाए। डरिए जे डर हो वै होर, डर डर डरना मन का सोर, रहाओ ना जियो मरे ना डूबे तरे, जिन किछ किया सो किछ करे, हुक्मे आवे हुक्मे जाए, आगे पाछे हुक्म समाए। हंस हेत आखा समान,

तू सबना का सोए जाके जी जंत तन माल नानक आखण दुखम विचार। गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख

देही माटी बोले कौन, बुजरे ज्ञानी मुआ है कौन। मुई सुरत बाद अंकार, ओ नाम हुआ जो देखन हार। जय कारण तट तीरथ जाही, रतन पदार्थ कट ही माही। पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाने, पीकर हो दी वत न जाने। हौ नाम हुआ मेरी मुई बलाए, ओह नाम हुआ जो रहा समाए। कहो नानक गुरु ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नजर न आया। गौड़ी मेला पहला दखनी, सो सुन गूजे माने नाओ। ताके सब बलिहारे जाओ, आप पुलाए ठौर न ठाओ। तू समझावे मेल मिलाओ, नाम मिले चले मैं।

ठीक हुकम संजोगी गढ़ दस द्वार पंच वसे मिल जोत अपार आप तुले आपे वनजार नानक नाम सवार नहार गौड़ी महला पहला जातो जाए कहां से आवे कह उपजे कह जाए समावे।

मन से उपजे मन माए समाए, गुरमुख मुक्तो बंद न पाए, शब्द विचार छुटे हर नाए, तरवर पंखी बहु निस्वास, सुख दुखिया मन मोह विनाश, साज बिहाग तक है आगास, देह दिस सारे कर्म लिखियास। नाम संजोगी गोयल ठाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट, बिन वखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट, साध मिले पूरव संजोग, सच रहसे पूरे हर लोग, मन सन दे ले सहज सुभाए, नानक तिन कह ला।

पर पंच व्याप रहा मन दोए, फिर नारायण करे सो होए। बोहित चढ़ो जावे वार, ठाके बोहित दरगे मार, सत्साला ही तन गुरुद्वार, नानक दर कर एकंकार। गौड़ी महला पहला।

ऐ मन माने अमृत रस पी जय रहाओ, जन्म जीत मरण मन मानिया, आप मुआ मन मन ते जानिया, नजर पई कर कर ते जानिया, जप सत तीरथ मज्जन नाम, अजक विचार करो किस काम, नर नारायण अंतर जाम, आन मनो तो कर कर जाओ, किस जाचो नहीं को थाओ, नानक गुरमत सहज समाओ, नानक गुरमत सहज समाओ, गौड़ी महला पहला, सतगुरु मिले सो मरण दिखाए, मरण रहन रस अंतर पाए, गर्भ निवार गगनपुर पाए, मरण लिखाए आए नहीं रहना, हर जप जाप रहन हर शरणा रहाओ, सतगुरु मिले त दुबदा पागे, कमल विगास मन हर

किरत पया नहीं मेटे कोए, क्या जाना क्या आगे होए, जो तिस पाना सोई हुआ, अगर ना करने वाला दुआ, ना जाना कर्म केवट तेरी दात, कर्म कर्म तेरे नाम की जात रहाओ, तू एवड दाता देवन हार, सोत नाही खुद भगत पंडार, किया गर्द न आवे रात, जियो पिंड सब तेरे पास, तू मार जीवाले बख्श मिलाए, जो पावी त्यो नाम जपाए, तू दाना बीना साचा सिर मेरे, गुरमत दे परोसे तेरे, तन में मैल नाही मन राता, गुरबचनी सच शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वड्याई, नानक रहना भगत शरणाई, गौड़ी महला पहला, जिन अतक कहाया अपियो पियाया, हम सह विसरे नाम समाया, क्या डरिए डर डरे समाना, पूरे गुर के शब्द पछाना रहाओ, जिस नर राम हृदय हर वास, सह सुभाए मिले सावास, जाए सवारे सांझ बिहाल, इत उत मन मुख बांधे काल, एनस राम हृदय से पूरे, नानक राम मिले परम दूरे, गौड़ी महला पहला।

शास्त्र पंडित भुख सोई, बिन गुर अर्थ विचार न पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जाऊ कै हृदय वस्या हर सोई, गुरुमुख भगत प्राप्त होई। हर की भगत मुक्त आनंद, गुरुमत पाए परमानंद। जिन पाया गुरु देख दिखाया, आशा माहे निराश बुझाया। दीना नाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता। गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रह सुखाली। बाजी एहो संसारो, लब लोभ मुच

हाँ तुद आखा मेरी काया तू सुन सिखामारी निंदा चिंदा करे पराई झूठी लाए तबारी वेल पराई जो है जियड़े करे चोरी बुरियारी हंस चलिया तू पिछे रहिए छुटर होई है नारी तू काया रही है सुपनंतर तुद क्या कर्म कमाया कर चोरी मैं जा किछ लिया तामन पल्ला पाया हल्त न सोबा पल्त न टोई एहला जन्म गवाया हाँ खरी दुहेली होई बाबा नानक मेरी।

पूजा मेवा मैं सब किछ चाखिया, एक अमृत नाम तुम्हारा। दे दे नीव दीवाल उसारी, पस मंदर की तेरी, संचे संच ना दे किसी, अंध जाने सब मेरी। सोइन लंका सोइन माड़ी, संपे किसे न केरी, सुन मूरख मन अजाना, भोग तिसे का पाना। रहाओ साओ हमारा ठाकुर पारा, हम तिसके वन जा रे। जियो पिंड सब रास तिसे की, मार आपे जी वाले। गौड़ी चेती महला पहला, अगर पंच हम एक जना, क्यों राखो कर बार मना। मारे लूटे नीत नीत, किस आगे करी पुकार।

प्राते कट पीतर मुंदरा काया की जय खिन खाता पंच चेले वश की जय रावल इहो मन की जय डंडाता जोग जुगत इव पावसता एक शब्द दूजा होर नास्त कंद मूल मन लावस्ता रहाओ मूंड मुंडाए जे गुर पाये हम गुर की नी गंगा पार त्रिभवन तारण हार स्वामी एक न चेत संधाता कर पटंग गली मन लावस संसा मूल न जावस्ता एक चरणी दे चितलावे लब लोभ की तावस्ता जपस निरंजन रचस मना काहे बोले जोगी कपट खना रहाओ काया कमली हंस इआना मेरी मेरी करत बिहानी का प्रणवत नानक नागी दाजे फिर पाछे पस्तानी का गौड़ी चेती महला पहला औखद मंत्र मूल मन एक है जे कर दृढ़ चित की जय रे जन्म जन्म के पाप कर्म के काटन हारा ली जय रे मन एको सा

एके ते पंख उड़ाए। हट पटन बिज मंदर पन्ने कर चोरी कर आवे, अगों देखे पिछो देखे तुझते कहां छपावे। तट तीरथ हम नवखंड देखे हट पटन बाजारा, लेके तकड़ी तोलन लागा।

तरे अंश न चाहया जाए, अंश को चाहन जो गए से आए अंश गवाए। आपन लिया जे मिले ता सबको पागत होए, कर्मा ऊपर निबड़े जे लोचे सब कोए। नानक करना जिन किया सोई सार करे, हुक्म न जाती खत्म का किसे बढ़ाई दे।

तेरा सौ मिले वार वार हों जाओ जियो। मैं बन जारन राम की तेरा नाम वखरवा पार जी रहाओ। कोकिल होवा अंब बसा सहज सबद विचार सहज सुबह मेरा सौ मिले दर्शन रूप अपार। मछली होवा जल बसा जी जंत सब सार पुरवार पार मेरा सौ वसे हों मिलोंगी बां पसार। नागन होवा तर वसा शब्द वसे कौ जाए नानक सदा सुहागणी जिन ज्योति ज्योत समाए। गौरी पूर्वी।

अंत न पारावार, मेरा प्रभु बख्शे बख्शनहार। गुरु मिले सब मत बुद्ध होए, मन निर्मल वसे सत सोए, साच वसे साची सब पार, उत्तम करनी शब्द विचार। गुर ते साची सेवा होए, गुरमुख नाम पछाणे कोए, जीवे दाता देवन हार, नानक हरना में लगे प्यार।

पूरे पाग मिले गुर आए, साचे सहज साथ समाए रहाओ। गुर मिले कृष्णा अग्न बुझाए, गुर ते सांत वसे मन आए, गुर ते पवित्र पावन सुच होए, गुर ते शब्द मिलावा होए। बाद गुरु सब परम पुलाई, बिन नामे बहुता दुख पाई, गुरमुख हो वैसो नाम से आए, दर्शन सत्य सच्ची पत होई। किसनो कही है दाता इक सोई, कृपा करे शब्द मिलावा होई, मिल प्रीतम साचे गुण गावा, नानक साचे साथ समावा। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, सो थाओ सच मन निर्मल होए, सच निवास करे सच सोए, सच्ची बाणी जुग चारे जाते, सब किस साचा आपे आते। कर्म होवे सब संग मिलाए, हर गुण गावे बैस सुखाए, रहाओ जलो एह जेवा दूजे पाए, हर रस न चाखे फीका आलाए, बिन बूझे तन मन फीका होए, बिन नावे दुखिया चलिया रोए। रसना हर रस चाखिया सहज सुदाए, गुर कृपा ते सच समाए, साचे राती गुर शब्द विचार, अमृत पीवे निर्मल तार। नाम समावे जो पांडा होए, उंदे पांडे टिके ना कोए, गुर शब्दी मन नाम निवास, नानक सच पांडा जिस शब्द प्यास। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, इक गावत रहे मन साधना पाए, हौ मैं विच गावे बिरथा जाए, गावन गावे जिन नाम प्यार, साची बाणी शब्द विचार। गावत रहे जे सतगुर पावे, मन सन राता नाम सुहावे, रहाओ इक गावे इक भगत करे, नाम न पावे बिन असनेहे, सच्ची भगत गुर शब्द प्यार, अपना तिर राखिया सदा उद्धार। भगत करे मूर्ख आप जनावे, नच नच टपे बहुत दुख पावे, नचिए टपिए भगत न होए, शब्द मरे भगत पाए जन सोए। भगत वचल भगत कराए सोए, सच्ची भगत विचों आप होए, मेरा प्रभु साचा सब विद जाने, नानक बक्से नाम पछाने। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, मन मारे तात मर जाए, बिन मुए कैसे हर पाए, मन मरे दारू जाने कोए, मन शब्द मरे बूझे जन सोए। जिसनो बख्शे देवड़े आई, गुर प्रसाद हर वसे मन आई, रहाओ गुरमुख करनी कार कमावे, ता इस मन की सोजी पावे। मन में मत मैगल मित धारा, गुर अंकत मार जीवा लनहारा, मन असाध साधे जन कोए, अचर चरे ता निर्मल होए, गुरमुख एव मन ले।

नानक गुरमुख नाम पछाणे गौड़ी द्वारे री महला की जा होमे विच सब जग बोराना दूजे पाए परम फुलाना बहुत चिंता चितवे आप न पछाना तंदा करत्या अंदिन विहाना हृदय राम रमो मेरे पाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाओ गुरमुख हृदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हों मैं मार गुर शब्द पछा।

जित सेवे दरगह पत परवाना, हर के नाम विटो बल जाओ, तू विसरे तद ही मर जाओ रहाओ, तिन तू विसरे जे तुझ आप भुलाए, तिन तू विसरे जे दूजे पाए, मनमुख अज्ञानी जो नी पाए, मनमुख अज्ञानी जो नी पाए, जिन एक मन तुठा से सतगुरु सेवा लाए, जिन एक मन तुठा तिन हर मन वसाए।

गुर शब्द समावे बूझे हर सोई, सुन सुन वेखे शब्द मिलाए, वड्डी वड्याई गुर सेवा ते पाए। नानक नाम रते हर नाम समाए, नानक नाम रते हर नाम समाए। गौड़ी ग्वारे दी महला तीजा, मनमुख सूता माया मोह प्यार, गुरमुख जागे गुण ज्ञान विचार, से जन जागे जिन नाम प्यार, सहजे जागे सवे न कोए, पूरे गुर से बूझे जन कोए रहाओ, असंत अनाड़ी कदे न बूझे, कथनी करे तय माया नाल लूझे, अंध अज्ञानी कदे न सीजे, इस जुग में राम नाम निस्तारा, बिरला को पाए गुर शब्द विचारा, आप करे सगले कुल उधारा, इस कल युग में कर्म कर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल कह कर होई, नानक नाम बिना

सच्चै राते हर वे परवाहो, सच्चै मैल सच नाम समाहो। सुन मन मेरे शब्द विचार, राम जपो पल जल उतरो पार। रहाओ परमे आवे परमे जाए, ए जग जन्मिया दूजे पाए। मन मुख न चेते आवे जाए, आप खुला के प्रत आप खुलाया। इहो जियो विडानी चाकरी लाया, मां दुख खटे बिरसा जन्म गवाया। कृपा कर सतगुरु मिलाए, एको नाम चेते विच्चों परम चुकाए। नानक नाम जपे नाओ नौ निध पाए, गौड़ी ग्वारे री महला तीजा। जिना गुरुमुख त्याया चिन पूछो जाए, गुरु सेवा ते मन पति आए। से तनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सो जी पाए। हर हर नाम जपो मेरे पाई, गुरुमुख सेवा हर काल साए पाई। गुरुमुख सेवा हर काल साए पाई। रहाओ आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावे सोए। हर गुण गावे मत उत्तम होए, सहजे सहज समावे सोए। दूजे पाए ना सेवे आ जाए, हों मैं माया महा बिख खाए। पुत कुटुंब गृह मोहया माए, मन मुख अंधा आवे जाए। हर हर नाम देवे जन सोए, अंजन भगत गुर सबदी होए। गुरमत विरला बूझे कोए, नानक नाम समावे सोए। नानक नाम समावे सोए, गौड़ी ग्वारे री महला तीजा। गुर सेवा जुग चारे होए, पूरा जनकार कमावे कोई। अखुट नाम तन हर कोट न होई, ऐसे सवा सुख दर शोभा होई। ए मन मेरे परम न कीजै, गुरुमुख सेवा अमृत रस पीजै। रहाओ सतगुर सेवे से मां

सतगुर सेवे सदा मन दाता, होमे मार कमल प्रगाता, अनहद वाजे निज कर वासा, नाम रते कर माहे उदासा। सतगुर सेवे तिनकी सच्ची बाणी, जुग जुग पवती आस वखाणी। हम दिन जपें

योग हृदय नाम नित हर रस कोग गुरुमुख प्राणी नाम हर चाहे जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ ज्ञान स्यान गुर शब्द है मीठा गुर कृपा से किने विरले चक दीठा कर्म कांड बहु करे अचार बिन नावे त्रिग त्रिग अहंकार बंधन बांधियो माया पास जन नानक छूटे गुर प्रगास महला तीजा गौड़ी बैरागण जैसी धरती ऊपर मेघुला बरसत है क्या धरती मदे पानी नाही जैसे धरती मदे पानी प्रगासिया बिन पगा बरसत।

पुरुष होए के क्या ओए कर्म समाही, नाना रूप सदा है तेरे तुझ ही माहि समाही। इतने जन्म फूल परे थे जा पाया ता फूले नाही, जा का कार्य सोई पर जाने जे गुर के सबल समाही। तेरा शब्द तू है आपे परम कहाई, नानक तत तत क्यों मिलिया पुनरप जन्म न आही। गौरी बैरागन महला तीजा, सब जग काले वस है बांदा दूजे पाए, हो मैं कर्म कमाऊं दे मन मुख मिले सजाए, मेरे मन गुर चरणी चित लाए, गुरमुख नाम निधान ले दरगे ले छबाए रहाओ। लक्ष चौरासी परम दे मन हस आवे जाए, गुरु का शब्द न कीन्यो फिर जो नहीं पाए, गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसिया मन आए, अंदिन भगती रत्या हर नामे सुख समाए। मन शब्द मरे प्रतीत होए हो मैं तजे विकार, जन नानक करमी पायन हर नामा भगत पंडार। गौरी बैरागन महला तीजा, कई अड़े दिन चार है हर हर लिख पाया, सोगावंती नार है गुरमुख गुण गाया, तेल कड़े गुण समले सौरे वास पाया, गुरमुख सहज समानिया हर हर मन पाया। ससुरे पेय फिर वसे कहो कित विद पाये, आप निरंजन अलख है आपे मेलाये रहाओ। आपे ही प्रभ दे मत हर नाम ते आये, वड़पागी सतगुरु मिले मुख अमृत पाये। हो मैं दुबदा बिनस जाए सहजे सुख समाये, सब आपे आप वर्तदा आपे नाए लाये। मन मुख गर्भ न पायो अज्ञान ए आने, सतगुरु सेवा ना करें फिर पछताने। गर्भ जो नी वास पाए दे गर्भे गल जाने, मेरे करते एवे पामदा मन मुख परमाने। मेरे हर प्रभ लेख लिखाया दुर्मस्तक पूरा, हर हर नाम से आया पेटिया गुरसूरा। मेरा पिता माता हर नाम है, हर बंधक बीरा हर हर बस मिलाए प्रभ जन नानक कीरा। गौरी बैरागन महला तीजा, सतगुरु ते ज्ञान पाया हर सत बिचारा, मत मलीन प्रगट पई जत नाम मुरारा, शिव सकत मिटाया चूका दियारा, तुरमस्तक जिन को लिखिया तिन हर नाम प्यारा। हर कित विद पाई है संत जनो जिस देखो जीवा, हर बिन चसाना जीवती गुर मेलियो हर रस पीवा रहाओ। हर हर गुण गावा नित हर सुनी, हर हर गत कीनी, हर रस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी। तन तन गुर सतपुरख है जिन भगत हर दीनी, जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी। गुण दाता हर

हर शरणागत राखले हो, मूड मुग्ध निस्तारे सहज आनंद सदा गुरुमति, हर हर मन प्याया सज्जन हर प्रभ पाया, पर सोहेला गाया हर दया तार प्रभ बेनती, हर हर चेताया जन नानक मंगे तूर तिन, जिन सतगुर पाया गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, चौथा चौक दे इको अंकार सतगुरु प्रसाद। पंडित खास सिमरत पढ़िया, जोगी गोरख गोरख करिया, मैं मूरख हर हर जप पढ़िया, ना जाना क्या गत राम हमारी, हर पद मन मेरे।

सूद वैस पर किरत कमावे, मैं मूरख हर नाम छुड़ावे। सब तेरी सृष्ट तू आप रहा समाई, गुरमुख नानक दे वड्याई। मैं अंधले हर टेक टिकाई, मैं अंधले हर टेक टिकाई। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, निर्गुण कथा कथा है हर की। पज मिल साधु संगत जन की, तर पौजल अकथ कथा सुन हर की। गोविंद सत्संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए। रहाओ जो जन चावे हर हर नामा, तिन बासन दास करो हम रामा। जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर

कामन प्रीत जा फिर कर आवे, हर जन प्रीत जा हर जस गावे, सारंग प्रीत बसे जल तारा, नरपत प्रीत माया देव पसारा, हर जन प्रीत जपे निरंकारा, नर प्राणी प्रीत माया तन खाते, गुरसिख प्रीत गुर मिले गलाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, पीखक प्रीत पीख प्रभ पाए, भूखे प्रीत होवे अन खाए, गुरसिख प्रीत गुर मिल आघाए, हर दर्शन दे हो हर आस तुम्हारी, हर कृपा लोच पूर हमारी, रहाओ सचवी प्रीत सूरज मुख लागे, मिले प्यारे सब दुख त्यागे, गुरसिख प्रीत गुरु मुख लागे, बछरे प्रीत खीर मुख खाए, हृदय बिबसे देखे माए, गुरसिख प्रीत गुरु मुख लाए, और सब प्रीत माया मोका चा, बिनस जाए कूड़ा कट पाचा, जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा, जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम ते आया हर तनी, जिन हर जपिया तिन पीछे छूटी कणी, गुरसिख हर बोलो मेरे भाई, हर बोलत सब पाप लह जाई, राव जब गुर मिलिया तब मन वस आया, तावत पंच रहे हर त्याया, अंदिन नगरी हर गुण गाया, सतगुर पग तूर जिना मुख लाई, तिन कूड़ त्यागे हर लिव लाई, ते हर दरगे मुख उजल पाई, गुर सेवा आप हर पावे, कृष्ण बल पद्र गुर पग लग त्यावे, नानक गुरमुख हर आप तरावे, नानक गुरमुख हर आप तरावे। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, हर आपे जोगी डंडा तारी, हर आपे रब रहा बनवारी, हर आपे तप

चौथा साहो हमारा तू कणी जैसी तू रास दे तैसी हम ले हर नाम बनन जय रंग से हो जे आप दयाल होए दे हम बन जा रे राम के हर वंज करावे दे रास रे रहाओ लाहा हर तगत तन खटिया हर सच्चे सा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आया और वंज करे वपारिये अनंत तरंगी दुख माया ओए जे है वंज हर लाया फल से हा तिन पाया हर हर वंज सो जन करे जिस कृपाल होए प्रभ दे जन नानक सा।

आए। हल जोते उद्यम करे मेरा पुत ती खाए। त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छाए। मैं मूरख की गत की जय मेरे राम गुर सतगुर से।

सो जंतर है जो दासन दास जन नानक नाम से आया गुरुमुख परगास। गौड़ी बैरागन महला चौथा। नित दिन सरात लालच करे पर मैं परमाया वेगार सिरे वेगारिया सिर पार उठाया। जो गुर की जन सेवा करे सो कर कह कम हर लाया। मेरे राम तोड़ बंधन माया कर कह कम लाए। नित हर गुण गावे हर नाम समाए रहाओ। नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजे अर्थ सब माया। कै बंदे कै दान ले कै नरपत मर जाया। तन तन सेवा सफल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया। नित सौदा सूद की चै बहु पात कर माया कै ताई। जा लाहा दे ता सुख मने तोटे मर जाए। जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाए। जितनी भूख अन रस साध है तितनी भूख फिर लागे। जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे। जन नानक हर रस तृप्तिया फिर भूख ना लागे। गौड़ी बैरागन महला चौथा। हमरे मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा। जिन प्रीत लाई सो जानता हमरे मन चित हर बहुत प्यारा। हों कुर्बानी गुर आपने जिन विछड़िया मेलिया मेरा सृजनहारा। मेरे राम हम पापी शरण परे हर द्वार। मत निर्गुण हम मैले कबहू अपनी कृपा तार रहाओ। हमरे अवगुण बहुत बहुत हैं बहु बार बार हर गणत नावे। तू गुणवंता हर हर दया।

सतगुरा जब गुरु बोले तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुरु राख लिए छड़ाए। तू गुरु पिता तू है गुरु माता, तू गुरु बंदब मेरा सखा।

तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे, गौरी बैरागन महला चौथा। कंचन नारी में जियो लुबत है मोह मीठा माया, कर मंदर कोड़े खुशी मन अन रस लाया, हर प्रभ चित न आवई क्यों छूटा मेरे हर राया। मेरे राम ए नीच कर्म हर मेरे, गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा, बख्श अवगुण सब मेरे। रहाओ किछ रूप नहीं किछ जात नहीं, किछ ढंग न मेरा, क्या मोह ले बोले गुण विहून नाम जपया ना तेरा। हम पापी संग गुर उबरे, उन सतगुर

अंतर बाहर मुख दे गिरास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारिक हर प्रभु।

जरा मरा ताप सिरत साफ सब हर कै बस है, कोई लाग न सके बिन हर का लाया। ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावो, जन नानक जो अंति औस

आओ कर कृपा हर मेले आ मेरा सतगुर पूरा इच पुनी जन केरिया ले सतगुर तूरा हर भगत दृढ़ावे हर भगत सुने तिस सतगुर मिलिए तोटा मूल न आवे हर लाभ नित दृढ़िए जिसको हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उदरे हर गुण गावाही महला चौथा गौरी पूर्वी हर दयाल दया प्रभ कीनी मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग पाया अत गूड़ा हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभ की हौ बोली जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ करो विवेक संत जन पाई खोज हृदय देख टंडोली हर हर रूप सब जोत सब आई हर निकट वसे हर कोली हर हर निकट वसे सब जगते अपरंपर पुरख अतोली हर हर प्रगट कियो गुरु पूरे सिर वेचियो गुरु कहमोली हर जी अंतर बार तुम शरणागत तुम वड पुरख वडोली जन नानक अंदिन हर गुण गावे मिल सतगुर गुर वे चोली गौरी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी जगदीशर पुरख विदाते जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी तित मार्ग हम जाते राम मेरा मन हर सेती राते सत संगत मिल राम रस पाया हर राम में नाम समाते रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते तिनके पाप दोख सब बिन से जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सरनाते दुर्मत मैल गई सब तिनकी जो राम नाम रंग राते राम तुम आपे आप आप प्रभ ठाकुर तुम जेवड अवर न दाते जन नानक नाम ले ता जीवे हर जपिए हर किर

यो अति निर्मल जप हर हर हर मन माचे राम मेरा मन तन बेद लियो हर साचे जी काल के मुख जगत सब ग्रसिया गुर सतगुर के वचन हर हम बाचे रहाओ जिनको प्रीत नाही हर सेती ते साकत मूड नर काचे तिनको जन्म मरण अत पारी विच विष्टा मर मर पाचे तुम दयाल शरण प्रतपालक मोको दीजे दान हर हम जाचे हर के दास दास हम कीचे मन निरत करे करनाचे आपे साहा वडे प्रभ स्वामी हम बन जा रहे हैं ताचे मेरा मन तन जियो रास सब तेरी जन नानक के साहा प्रभ साचे गौड़ी पूर्वी महला चौथा तुम दयाल सर्व दुख पंजन एक बिनो सुनो दे काने जिससे तुम हर जाने स्वामी सो सतगुर मेल मेरा प्राणे राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने हम मूर मुग्ध अशुद्ध मत होते गुर सतगुर के बचन हर हम जाने राव जितने रस अनरस हम देखे सब तितने फीक फीकाने हर का नाम अमृत रस चाखिया मेरे सतगुर मीठ रस गाने जिनको गुर सतगुर नहीं पेटिया ते साकत मूड दीवाने तिनके कर्महीन तुर पाए देख दीपक मोय कचाने जिनको तुम दया कर मेलो ते हर हर सेव लगाने जन नानक हर हर हर जप प्रगते मत गुरमत ना

पहुंचिए हर आपके बस ले प्रभ साचा हर आप छदाए छुटिए मेरे मन जप हर हर हर मन जपिए सतगुर की शरणाई पज को मेरे मना गुर सतगुर की छह छुटिए रहाओ मेरे मन से वो सो प्रभु सर्व सुखदाता जित सेवे निज कर वसिए गुरुमुख जाए लहो कर अपना कस चंदन हर जस खसिए मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम ले लाहा हर मन हसिए हर हर आप दया कर देवे ता अमृत हर रस चखिए मेरे मन नाम बिना जो दूजे लागे ते साकत नर जम कुटिए ते साकत चोर जिना नाम विसारिया मन तिनके निकट न फिटिए मेरे मन सेवो अलख निरंजन नरहर जित सेवे लेखा छुटिए जन नानक हर प्रभु पूरे किए खिन मासा तोल न कटिए गौड़ी पूर्वी महला चौथा हमरे प्राण वसगत प्रभु तुमरे मेरा जियो पिंड सब तेरी दया करो हर दर्श दिखावो मेरे मन सन लोच कनेरी राम मेरे मन सन लोच मिलन हर केरी गुर किरपाल कृपा किंचत गुर कीनी हर मिलिया आए प्रभु मेरी रहाओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम हर जानो मेरी अंदिन नाम जपी सुख पाई नित जीवा आस हर तेरी गुर सत गुर दाते पंथ बताया हर मिलिया आए प्रभ मेरी अंदिन अनद पयावड पागी सब आस पुजी जन केरी जगन्नाथ जगदीशर करते सब वसगत है हर केरी जन नानक शरणागत आए हर राखो पै जन केरी।

में आगे जो हर रात है त्यों ठाने हम फूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे काडे। गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु परे आमिर साधु खंडल खंडा है पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर दंडौत पुन वड्डा है राव सात हर रस सा।

आया हम अपराध पाप भोकी ने कर दुष्टि चोर चुराया अब नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर भाया गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाद गुरमत मनुआ गावे बदपागी गुर दर्शन पाया तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर लिवलावे रहाओ हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे हम मल मल तोवे पाम गुरु के जो हर हर कथा सुनावे हृदय गुरमत राम रसायन जिहवा हर गुण गावे मन रसक रसक हर रसायन।

जन नानक कहो हर कृपा तारी, मत गुरमत नाम दृढ़ावे। राग गौड़ी माज महला चौथा, गुरमुख जिंदु जत नाम करम्मा, मत माता मत जियो नाम मुख रामा। संतोख पिता कर गुर पुरख अजन्मा, वड पागी मिल रामा। गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो। वड पागी मिल सुगड़ सुजानी जियो, मेरा मन तन हर रंग पिन्ना। आवो संतो मिल नाम जपाहा, विच संगत नाम सदा लैलाहा जियो। कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो, मिल पूरब लिखियड़े तुर कर्मा। सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो, मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया। हर अमृत उठड़ा

मन अनदिन अनद्रस जियो हर पायणा वद पागई मेरे गोविंदा नित लैला हा मन हस जियो हर आप उपाय हर आपे वेखे हर आपे कार लाया जियो इक खावे बस टोट ना आवे इतना फक्का पाया जियो इक राजे तख्त बहे नित सुखिए इतना भिख मंगाया जियो सब इको शब्द वर्तदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम ते आया जियो गौड़ी माज महला चौथा मन माही मेरे गोविंदा हर रंग रता मन माही जियो हर रंग नाल ना लखिए मेरे गोविंदा गुरपुरा अलख लखाही जियो हर हर नाम परदासे।

वद पागी नाम समाही जियो, नैनी मेरे प्यारिया, नैनी मेरे गोविंदा, किने हर प्रभ डिठदा नैनी जियो। मेरा मन तन बहुत बहरा गया मेरे गोविंदा, हर बाजो तन कुम लैनी जियो, संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा, मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो, हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा, मैं सुख बिहानी रहनी जियो। मैं मेलो संत मेरा हर प्रभ सज्जन, मैं मन तन पुख लगाया जियो, हूँ रह ना सको बिन देखे मेरे प्रीतम, मैं अंतर बिरहो हर लाया जियो, हर लाया मेरा सज्जन प्यारा, गुर मेले मेरा मन जीवाया जियो, मेरे मन तन आस

जियो आपे जगत उपाएगा मेरे गोविंदा हर आप खेले बहुरंगी जियो एक ना भोग पुगाएगा मेरे गोविंदा एक नगन फिरे नग नंगी जियो आपे जगत उपाएगा मेरे गोविंदा हर दान देवे सब मंगी जियो भगता नाम आधार है मेरे गोविंदा हर कथा मंगे हर चंगी जियो हर आपे भगत कराएगा मेरे गोविंदा हर भगता लोच मन पूरी जियो आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा रब रहा नहीं दूरी जियो हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा हर आप रहा पर पूरी जियो हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा हर वेखे आप हदूरी जियो हर अंतर वाजा कौन है मेरे गोविंदा हर आप वजाए त्यों वाजे जियो हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा गुर शब्दी हर कब गाजे जियो आपे शरण पवाएगा मेरे गोविंदा हर भगत जना राख लाजे जियो वडभागी मिल संगती मेरे गोविंदा जन नानक नाम सिदका जय जियो गौड़ी माज महला चौथा मैं हर नामे हर बिरहो लगाई जियो मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो मेरा नाम सखा हर पाई जियो गुण गावो संत जियो मेरे हर प्रभ केरे जियो जप गुरमुख नाम जियो भाग वडेरे जियो हर हर नाम जियो प्राण हर मेरे जियो फिर बहुड़ न पव जल फेरे जियो क्यों हर प्रभु वेखा मेरे मन तन चाओ जियो हर मेलो संत जियो मन लगा पाओ जियो गुर शब्दी पाये हर प्रीतम राओ जियो वड पागी जप नाओ जियो मेरे मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो हर मेलो संत जियो गोविंद प्रभ पासा जियो सतगुर मत नाम सद

जीवा जियो, मन अंदर अमृत गुरमत हर मुईवा जियो, मन हर रंग रतना हर रस सदा पीवा जियो, हर पायड़ा मन जीवा जियो, मेरे मन तन प्रेम लगा।

हाउ नाम विटो कुर्बान जियो, हाउ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो, हर दसो संतो जी हर खोज पवाई जियो, सतगुर तुठड़ा दसे हर पाई जियो, हर नामे नाम समाई जियो, मैं वेदन प्रेम हर बिरहों लगाई जियो, गुर सरदा पूर अमृत मुख पाई जियो, हर हो दयाल हर नाम त्याई।

इन विद कुशल होत मेरे पाई, क्यों पाई है हर राम सहाई। रहाओ कुशल ना ग्रे मेरी सब माया, ऊंचे मंदर सुंदर छाया, झूठे लालच जन्म गवाया। हस्ती कोड़े देख विगासा, लस्कर जोड़े नेब खवासा, गल जेवड़ी हूं मैं के फासा, राज कमावे दैग सारी, माने रंग भोग बहुनारी, जो नरपत सुपने पे खारी। एक कुशल मोको सतगुरु बताया, हर जो किछ करे सो हर क्या पगता पाया, जन नानक हूं मैं मार समाया। इन

साफ कर उपाया, लख 84 जोन परमाया, साध संग पयो जन्म परापत, कर सेवा पद हर हर गुरमत, त्याग मान झूठ अभिमान, जीवत मरहे दर्दे।

कहो नानक हर हर गुण गाए, गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। करम पूम में बोहो नाम, पूरन होए तुम्हारा काम। फल पावे मिटे जम त्रास, नित गावे हर हर गुण जास। हर हर नाम अंतर उर्धार।

सदा अविनाशी गुर के बचन कति जम फांसी गुर का बचन जी के संग गुर के बचन रचे राम के रंग जो गुर दिया सो मन के काम संत का किया सत्कर्मान रहाओ गुर का बचन अटल अछेद गुर के बचन कटे परम पेद गुर का बचन कतो न जाए गुर के बचन हर के गुण गाए गुर का बचन जी के साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ गुर के बचन नरक ना पवे गुर के बचन रसना अमृत रवे गुर का बचन प्रगट संसार गुर के बचन न आवे हार जिस जन हुए आप कृपाल नानक सतगुर सदा दयाल गौरी ग्वारे री महला पंजवा जिन कीता माटी ते रतन गर्भ में राखिया जिन कर जतन जिन दीनी शोभा वड्याई किस प्रभ को आस पहरते आई रमैया रेन साध जन पावो गुर मिल अपना खसम ते आवो रहाओ जिन कीता मूर ते बक्ता जिन कीता बेसुरत ते सुरता जिस प्रसाद नवे निध

गुरका शब्द अमृत रस चाख। अवर जतन कहो कौन काज, कर कृपा राखे आप लाज। क्या मानस कहो क्या जोर, चूठा माया का सब शोर। करण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। सर्व सुखा सुख साचाए हो, गुरु उपदेश मने में ले हो। जाको राम नाम लिव लागी, कहो नानक सो तन वड पागी। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, सुन हर कथा उतारी मैल। महा पुनीत पय सुख सैल, वदे पाग पाया साध संग। पार ब्रह्म सो लागो रंग, हर हर नाम।

सिर ऊपर ठाडो तवन राए, मीठी कर कर बिखिया खाए। हौ बंदो हौ साधो बैर, हमरी पूम कौन काले पैर। हौ पंडित हौ चतुर सिंह।

मन मेरे गौहर नाम का ओला, तुझे ना लागे ताता चोला। रहाओ जो बोहित पे सागर माहे, अंधकार दीपक दीपाहे, अगन शीत काल।

कर कृपा जिस आप दीवावे, हर हर नाम जाके हृदय वसे, दुख दर्द ते नानक नसे, गौड़ी द्वारे री महला पंजवा, बहुत दर्ब कर मन ना अघाना, अनक रूप देख नहीं पता।

तन त्रिग तन माया संग राते राव जो बिगारी कैसिर दीजे दाम ओए खसमे कै गृह उन दुख सहाम जो सुपने हुए बैस

होन न पाये राम के दासा, कवन सो विद जित राम गुण गाए, कवन सो मत जित तरे ए माए राव। जो पलाई सो बुरा जाने, साच कहे सो विखे समाने, जाने नाही जीत अर हार, इहो वलेवा साकत संसार। जो हला हल सो पीवे बौरा, अमृत नाम जाने कर कौरा, साध संग के नाही नेर, लख चौरासी परमता फेर। एक जाल पहाए पंखी, रस रस को

प्रभु कृपा ते नाम से आये, प्रभु कृपा ते बंधन छुटे, तो कृपा ते हौ मैं टूटे। तुम लावो तो लागे सेव, हम ते कछु न होवे देव। रहाओ खुद पावे ता गावा बाणी, खुद पावे ता सच वखाणी, खुद पावे ता सतगुर मया, सर्व सुखा प्रभु तेरी दया। जो तुद पावे सो निर्मल कर्मा, जो तुद पावे सो सच धर्मा, सर्व निदान गुण तुम ही पास, तू साहिब सेवक अरदास, मन तन निर्मल होए हर रंग।

निमखना कृष्णा तेरी लाके हर रास्ता तू चाखे साद चाखत होए रहे विस्माद अमृत रसना पियो प्यारी ए रस राती होए तृप्तारी रहाओ हे जेवे तू राम गुण गाओ निमख निमख हर हर हर त्याओ आन न सुनिए कतहु जाइए साध संगत वड पागी पाइए आठ पैर जेवे आराद पार ब्रह्म ठाकुर आजाद इहा उहा सदा सुहेली हर गुण गावत रसन अमोली बनस्पत मौली फल फूल पेगे ए रस राती बोर न छोड़े आन न रस कस लवे न लाई कहो नानक गुर पे है सहाय गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा मन मंदिर।

कवन बपारी जाका उहां विसाहो, नाम रतन को व्यवहारी अमृत भोजन करे आहारी रहाओ, मन तन अर्पी सेव करी जय कवन सो जुगत जित कर पी जय, पाए लगो तज मेरा तेरे कवन सो जन जो सौदा जोर है।

संगा ठाकुर नाम कियो उनवर्तन त्रिपत अगावन हर कै दर्शन हर संग राते मन तन हरे गुरपुरे की सरनी परे रहा चरण कमल आत्म आधार एक निहारे आज्ञाकार एको बनज एको व्योहारी अवर न जाने बिन निरंकारी हरक सोग दोहूं ते मुक्ते सदा अलिपत जोग हर जुगते।

पार ब्रह्म का ओए ध्यान करके संतन की महिमा कवन वखानो, अगाध बोध किछ मित नहीं जानो, पार ब्रह्म मोहे।

व्यापत पुत्र कलत्र संग्राता, व्यापत हस्त कोड़े अर बस्ता, व्यापत रूप जोबन मदमस्ता, व्यापत

व्यापत कर्म करे हो फासा, व्यापत ग्रस्त व्यापत उदासा, आचार व्यवहार व्यापत ए जात, सब कुछ व्यापत बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहां व्यापे माए, तहु नानक जिन

जागत रहे साबत वक्त ओह अपनी लहे रहाओ सगल सहेली अपने रसमाती जिन अपने की खबर न जाती मुसनहार पंच बटवारे सुने नगर परे ठगहारे उनते राखे बाप न माई उनते राखे मीत न पाई दर्ब स्यान अपना ओए रहते साध संग ओए दुष्ट वस होते कर कृपा मोय सारंग पान संतन तूर सर्व

सगल भगत जा का नाम आधार, सर्व व्यापत पूरन तनी जा की शोभा कट कट बनी। जिस सिमरत दुख डेरा कहे, जिस सिमरत जम किछु ना कहे, जिस सिमरत होत सूखे हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे। संत

संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन से छुटे, संत कृपा ते मिटे मोह परम, साध रेण मज्जन सब कर्म, साध कृपाल दयाल गोविंद, साधा मैं ए हमरी जिंद, कृपा निध कृपाल से आवो, साध संग ता बैठन पावो, मोहे निर्गुण को प्रभु कीनी दया, साध संग नानक

कर अब मत बिन सी दुष्ट बिगानी जब ते सुनिया हर जसानी रहाओ सहज सुख आनंद निधान राखन।

सो सुखदाता जे नाम जपावे कर कृपा तिस संग मिलावे रहाओ जिस होए दयाल तिस आप मिलावे सर्व निधान गुरु ते पावे आप त्याग मिटे आवन जाना साध के संग।

पार ब्रह्म परमेश्वर त्याए गुर पूरे ते ए मत पाए रहाओ करण करावन हार दयाले जी जम सगले प्रतपाल अगम अगोचर।

सो सिमरो अनाथ को नाथ, प्रभु चित आए सब दुख जाए, तै सब दिन से हर कहनाए, दिन हर पौ काहे का माने, हर बिसरत काहे सुख जाने रहाओ। जिन तारे बहु तरण आगास, जाकी जोत जी प्रगास, जाकी

प्रभ सेवक साचा वेसा हो गुर पूरे राखे दे हाथ नानक पार ब्रह्म सम्राट गौड़ी द्वारे री महला तमवा गुरु प्रसाद नाम मन लागा जन्म जन्म का सोया जागा अमृत गुण उचरे प्रभ बाणी पूरे गुरु की सुमत प्राणी प्रभ सिमरत

माया मगन ना कछुए मोह उदरे आप करे संसार राम नाम जप के संकार आप कमाओ अमरा उपदेश राम नाम हृदय प्रवेश जाके माथे एहो निदान सोई पुरख जते भगवान आप तैर हर हर गुण गाओ कहो नानक हो।

बिचर आ गया पिचर भोग भोग जले न पाये राम स्नेह किरत संयोग सती उठ होई रहाओ देखा देखी मन हट जल जाये प्रिय संग न पावे बहु जोन को आये शील संजम प्रिय आज्ञा माने किस नारी को दुख न जमाने कौ नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जानिया तन सती दरगे परवानिया गौरी ग्वारे री महला पंजवा हम तनवंत पाग

सतगुरु अपनी कौ बलिहार है, छोड़ न जाई सर पर तार है। रहाओ दुख रोग सोग बिसरे जब नाम, सदा आनंद जा हर गुण गाम। बुरा पला कोई ना कही जाए, छोड़ मान हर चर

सहज आनंद हर साधु माहे, आज्ञाकारी हर हर राय, रहाओ जाके अचिंत वसे मन आए, ताको चिंता कतहु नाहे, जाके दिन सो मन से फरमा, ताके कछु नाही डर जमा, जाके हृदय दियो गुरनामा, कहो नानक ताके सगल निधाना, गौड़ी महला पंजवा, अगम रूप का मन में थाना, गुरु प्रसाद किने विरले जाना, सहज कथा के अमृत कुंटा, जिसे प्राप्त

जिस कर कृपा सतगुरु मिले दयाल, तिस ही गुण तिन ही प्रभ जाता, जिसकी मान ले सुखदाता रहाओ दूजा। गौरी महला पंजवा, आपन तन नहीं जाको गरबा, राज मिलक नहीं आपन दरबा, आपन नहीं काको लपटायो, आपन नाम सतगुर के पायो रहाओ। सुत बनता आपन नहीं पाई, इष्ट मीत आप बाप ना माई, सोईना रूपा सुन नहीं दाम, हैवर गैवर आपन नहीं काम। कहो नानक जो गुरु बख्श मिलाया, इसका सब किस जिसका।

चाहे हर सा प्रीतम कर मन मीत प्राण आधार राखो सब चीत रहाओ। रे मन मेरे तू ताको सेव आद पुरख अपरंपर देव किस ऊपर मन कर तू आसा आद जुगाद जा का परवासा जा की प्रीत सदा।

कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया, केवल नाम रिदमाए समाया। गौड़ी महला पंजवा, साकी माई काको बाप, नाम तारीख झूठे सब साथ, काहे को मूर्ख पकलाया।

राज योग हर के मार्ग पतित पुनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करण हार सद वसै हदूरा कहु नानक मेरा।

के अघकोट संत प्रसाद जन्म मरण के छोट संत का दर्श पूरन स्नान संत कृपा ते जपिए नाम रहाओ संत है संग मिटिया अंकार दृष्ट आवे सब एकंकार संत सो प्रसन्न आए वक्त पंचा अमृत नाम हृदय ले संचा कहो नानक जाका पूरा कर्म किस केते साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा हर गुण जपत कमल प्रगाते हर सिमरत त्रास सब नाते सामत पूरी जित हर गुण गावे वडे पाग साधु संग पावे रहाओ साध संग पाये निज नामा साध संग पूरन सब कामा हर की भगत जन्म परवान गुर कृपा ते नाम बखान कहो नानक सो जन परवान जाके हृदय वसे भगवान गौड़ी महला पंजवा एक जाका मन राता विसरी तिसे पराई पाता बिन गोविंद ना दिसे कोई करण करावन करता सोई रहाओ मने कमावे मुख हर हर बोले सो जन इत उत्कत है न डोले जाके हर तन सो सत्साओ गुरपूरे कर दीनो विसाओ जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवा नाम भगत के प्राण आधार नामो तन नामो व्योहार नाम वडाई जन शोभा पाए कर कृपा जिस आप दिवाए रहाओ नाम भगत के सुख स्थान नाम रत सो भगत परवान हर का नाम जन को तारे साफ साफ जन नाम समारे कहो नानक जिस पूरा पाग नाम संग ताका मन लाग गौड़ी महला पंजवा संत प्रसाद हर नाम से आया तब के तावत मन तृप्ताया सुख विश्राम पाया गुण गाए श्रम मिटिया मेरी हति बलाए रहाओ चरण कमल आराध भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब तज अनाथ एक शरण आयो ऊंच स्थान तब सहजे पायो दुख दर्द परम पौ नसिया करण हार नानक मन

कहा हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे इस जन दुख निकट नहीं आवे हर की टहल कर जन सोहे ताको माया अगर न पोहे मन तन मुख हर नाम दयाल नानक तजियले अवर जंजाल गौड़ी महला पंजवा छाड़ सियानप बहुचत।

दुख बिन से सुख हर गुण गाए, गुरपूरा पेटिया लिव लाए, रहाओ हर का नाम दियो गुर मंत्र, मिटे वसूरे उतरी चिंत, अनद पए गुर मिलत कृपाल, कर कृपा काटे जमजाल, कहो नानक गुर पूरा पाया, ताके बहुर न व्यापे माया। गौड़ी महला पंजवा, राख लिया गुरपूरे आप, मन मुख को लागो संताप।

मृतक देह साध संग बिहुना आवत जात जोनी दुख छीना रहाओ। अनेक वस्त्र सुंदर पहराया जो डरना खेत माहे डराया सगल शरीर आवत सब काम नेफल मानुक जपे नहीं नाम कहो नानक जा को कह दयाला साध संग मिल पजे गोपाला। गौड़ी महला पंजवा कल कलेश गुर शब्द निवारे आवन जान रहे सुख सारे तय दिन से निरपो हर के आया साध संग हर के गुण गाया रहाओ। चरण कवल हृदय अंतर तारे अग्न सागर गुर पार उतारे बूढ़त जात पूरे गुर कांडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कहो नानक किस गुर बलिहारी जिस पेतत गत पई हमारी। गौड़ी महला पंजवा साध संग ताकी सरनी परो मन तन अपना आगे तरो अमृत नाम पीवो मेरे पाई सिमर सिमर सब तपक बुझाई रहाओ। तज अभिमान जन्म मरण निवारो हर के दास के चरण नमस्कारो सास सास प्रभ मने संभाले सो तन संचो जो चाले नाले तिसे प्राप्त जिस मत

अमृत दृष्ट संत जीवाए, पाते कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव, रहाओ मिट गई चिंत पुनी मन आशा, करी दया सतगुरु गुण ताशा, दुख नाठे सुख आए समाए, हील न परी जा गुर फरमाए, इच पुनी पूरे गुर मिले, नानक के जन सुख।

सगल रोग का दिल सिया खाओ। सैंक सुभाए बोले हर बाणी, आज पहर प्रभ सुनरो प्राणी। दुख दर्द जम नेड़ ना आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे। गौड़ी महला पंजवा, पले दिन पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग। ओ बेला को हों बल जाओ, जित मेरा मन जपे हर नाओ। रहाओ सफल मूरत सफल।

चले हर मार्ग, कहो नानक भला मेरा कर्म, जित पेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा, गुरु का शब्द रास मन माहे, नाम सिमर चिंता सब जाहे, दिन भगवंत नाही अनकोए, मारे राखे को सोए। रहाओ गुरु के चरण हृदय उर्धार, अगन सागर जब उतरे पार, गुरु मूरख्यो लाए ध्यान, ईहा ऊहा पावे मान, सगल त्याग गुर शरणी आया, मिटे अंधेसे नान सुख पाया। गौड़ी महला पंजवा, जिस सिमरत दुख सब जाए, नाम रतन वसे मन आए, जब मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन वखाणी। रहाओ इक्कस बिन नाही दूजा कोए, जाकी दृष्ट सदा सुख होए, साजन मीत सखा कर एक, हर हर अक्षर मन में लेख, रव रया सरबत स्वामी, गुण गावे नानक अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, पै में रचियो सब संसारा, तिस पौ नाही जिस नाम अधारा, पौ ना व्यापे तेरी सरना, जो तुझ पावे सोई करना। रहाओ सोग हरख में आवन जाना, तिन सुख पाया जो प्रभु पाना, अगन सागर मा व्यापे माया, से शीतल जिन सतगुरु पाया, राख ले प्रभु।

तुम मन वसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा से परम पौ पागे। पार ब्रह्म अपरम पर स्वामी, सगल कथा के अंतर जामी। करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सतरास। गौड़ी महला पंजवा, कण बिना जैसे थोथर तुखा, नाम विहून सुने से मुखा। हर हर नाम जब

जो कुछ वर्ते सब तेरा पाना, हुक्म बूझे सो सच समाना, कर कृपा दीजे प्रभु दान, नानक सिमरै नाम निधान। गौड़ी मैला पंजवा, ताका दर्श पाये वड़ पागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाके

ताके संग किलविक दुख जाए, जन की महिमा कछु न जाए, पार ब्रह्म जन रहा समाए, कर कृपा प्रभु जिनो सुनी जय, दास की सूर नानक को दी जय। गौरी महला पंजवा, हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण वसे मन आए।

गुरपूरे का निर्मल मनता शोध उपाव एक टेक रास महापदार्थ अमृत रस चाट दिखम सागर ते जन तरे नानक जाको नदर करे गौरी महला पंजवा हृदय चरण कमल प्रभ तारे पूरे सतगुर मिल निस्तारे गोविंद गुण गावो मेरे पाई मिल साधु हर नाम से आई रहाओ दुलभ दे होई परवान सतगुर ते पाया नाम निशान हर सिमरत पूरन पद पाया साध संग तय परम मिटाया जत तत देखो तत

चरण कमल हृदय उर तारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होवे प्रवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत तूर पाये वड पागी, नानक गुर पेटत हर सों लिव लागी। गौड़ी महला पंजवा, करे दुह कर्म दिखावे होर, राम की दरगे बांदा चोर, राम रमे सोई रामाना, जल सल मैयल एक समाना, रहाओ अंतर बिक मुख अमृत सुनावे, जमपुर बादा चोटा खावे, अनक पर्दे में कमावे विकार, खिन में प्रगट हो है संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक तिसके

आनंद निवासे राम जना को राम परोसा नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा रहाओ साध संग कछ पौ ना पराती गुण गोपाल गाये दिन राती कर कृपा प्रभ बंदन छोट चरण कमल की दीनी ओट कहो नानक मन पई प्रतीत निर्मल जस की रह जननीत गौड़ी महला पंजवा हर चरणी जा का मन लागा दुख दर्द प्रमता।

सांस आनंदा जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिटे कलेश चरण कमल मन में प्रवेश उचरो राम नाम लख बारी अमृत रस पीवो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध के संग किलबिख सब टोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजे सागर वाला गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पैने खाए किस क्यों आलस क्यों बने माए खसम विसार आन कम लागे कौडी बदले रतन त्यागे रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोबा दास सलाम करत कत सोबा अमृत रस खावे खान पान जिन दिए तिसे न जाने स्वान कहो नानक हम लून हरामी बख्श ले हो प्रभ अंतरगामी गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मन माए ध्यान सगल तीर्थ मजन स्नान हर दिन हर सिमरन मेरे पाई कोट जन्म की मल ले जाए रहाओ हर की कथा रिद माए बताए मन बाचत सगले फल पाए जीवन मरण जन्म परवान जाके हृदय वसे भगवान कहो नानक से जन पूरे जिना प्राप्त साधु पूरे गौड़ी महला पंजवा खादा पैन दा मुँह कर पाए किसनो जो है दूत धर्म राए किस क्यों बेमुख जिन जियो पिंड दीना कोट जन्म पर मैं बहुजूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किस तरह सगल विपरीत जियो प्राण जिन मन तन तारिया सोई ठाकुर मनो विसारिया बदे विकार लिखे बहु कागर नानक उदर कृपा सागर पार ब्रह्म तेरी।

सगल मनोरथ मुक्त पद दीत, ऐसा मीत करो सब कोए, जाके बिरथा कोई न होए। रहाओ अपने स्वाए हृदय ले तारिया, दुख दर्द रोग सकल बिदारिया। रखना जी दी बोलत राम, पूर्ण होए सगले काम। अनेक बार नानक बलिहारा, सफल दर्शन गोविंद हमारा। गौड़ी महला पंजवा, कोट विघन हिरे खिन माहे, हर हर कथा साध संग सुनाहे, पीवत राम रस।

औखद मंत्र तंत्र सब सार करने हार हृदय में तार सब सब परम पजियो पार ब्रह्म कौ नानक अतल ए धर्म गौरी महला पंजवा कर कृपा पेटे गुरसोई तित बल रोग न व्यापे कोई राम रमन करण तै सागर करण सूर फारे जम कागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम ए आसर पूरन पै काम जप तप संजम पूरी वडियाई गुर कृपाल हर पै साई मान मोह खोए गुर परम तेख नानक पसरे पार ब्रह्म गौरी महला पंजवा दिखे राज के अंदुला पारी दुख लागे राम नाम सितारी तेरे दास को तुही वड्याई माया मगन नरक ले जाई रहाओ रोग ग्रस्त सितारे नाओ दिख माते का ठौर न ठाओ चरण कमल स्यो लागी प्रीत आम सुखा नहीं आवे चीत सदा सदा सिमरो प्रभु स्वामी मिल नानक हर अंतर जामी गौरी महला पंजवा आठ पैर संगी बटवारे कर कृपा प्रभु ले निवारे ऐसा हर रस रमो सब कोए सर्व कला पूरन प्रभु सोए रहाओ महातप सागर संसार प्रभु खिन में पार उतारन हार अनित बंधन तोरे नहीं जाहे सिमरत नाम मुक्त फल पाए उकत स्यान किसके कछ नाहे कर कृपा नानक गुण गाहे गौरी महला पंजवा थाती पाई हर को नाम विचर संसार पूरन सब काम वड पागी हर कीर्तन गाये पार ब्रह्म तू देहता पाये रहाओ हर के चरण हृदय उर्धार।

नानक दर्गे पाइए मान गौड़ी महला पंजवा जल थल मैयल पूरन हर मीत ब्रह्म बिन से गाए गुण गीत उठत सोवत हर संग पहरुआ जा के सिमरन जम नहीं डरुआ रहाओ चरण कमल प्रभ हृदय निवास सगल दुख का होया नास आसा मान तान तन एक साचे साकी मन में टेक महा गरीब जन साध अनाथ नानक प्रभ राखे देहात गौड़ी महला पंजवा हर हर नाम मजन कर तूके कोट ग्रहण पुन फल मूचे रहाओ हर के चरण हृदय में बसे जन्म जन्म के किल विख नसे साध संग कीर्तन फल पाया जम का मार्ग दृष्ट न आया मन बच क्रम गोविंद आधार ताते छुटियो बिक संसार कर कृपा प्रभ कीनो अपना नानक जाप जपे हर जपना गौड़ी महला पंजवा पौ शरणाई जिन हर जाते मन तन शीतल चरण हर गाते कै पंजन प्रभ मन ना बसाही दर्पत दर्पत जन्म बहुत जाही रहाओ जा के हृदय बसियो हर नाम सगल मनोरथ ताके पूरन काम जन्म जरा मृत जिस वास सो समरथ सिमर सास गिरास मीत साजन सखा प्रभ एक नाम स्वामी का नानक टेक गौड़ी महला पंजवा बार राख्यो हृदय समाल कर आए गोविंद ले नाल हर हर नाम संतन कै संग मंतन राता राम कै रंग रहाओ गुरु प्रसादी सागर तरिया जन्म जन्म के किल विख सब हिरिया शोभा सुरत नाम भगवंत पूरे गुरु का निर्मल मंत चरण कमल

पेख जीवे प्रताप गौड़ी महला पंजवा तन एहो थान गोविंद गुण गाए कुशल खेम प्रभ आप बसाए रहाओ विपत तहां जहां हर सिमरन नाही कोट आनंद जह हर गुण गाही हर बिसरे दुख रोग कनेरे प्रभ सेवा जम लगे ननेरे सोवड पागी निचल थान जह जपिए प्रभ केवल नाम जह जाइए ते नाल मेरा स्वामी नानक को मिलिया अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा जो प्राणी गोविंद त्यावे पढ़िया अन पढ़िया परम

टोल महारस हर अमृत की जय रहाओ। निर्मल उद्दक गोविंद का नाम, मज्जन करत पूरन सब काम। संत संगते गोष्ट होए।

साज तूर कर सुद मंजाई, अनक जला जे तो वै दे, मैल न उतरे सुद ना ते। सतगुर पेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर कात्या पौ काल। मुकत पुगत जुगत हर नाओ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवा, जीवन पदवी हर के दास। जिन मिलिया आत्म प्रगास, हर का सिमरन सुन मन कानी। सुख पावे हर द्वार प्राणी, रहाओ आठ पैर से आइए गोपाल। नानक दर्शन देख निहाल, गौड़ी महला पंजवा। सांस पाई गुरु गोविंद पाई, पाप पाप दिन से मेरे पाई। रहाओ राम नाम नित रसन बखान, दिन से रोग पय कल्याण। पार ब्रह्म गुण अगम विचार, साधु संगम है निस्तार। निर्मल गुण गावो नित नीत, गई ब्याज उभरे जनमीत। मन बच क्रम

दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की कैद रखी करकारे, बादशाह सा सब वस्त्र दीने, अमृत नाम मार।

अस्थिर पै बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन। गौरी महला पंजवा, कोट मज्जन तीनो स्नान, लाख अरब खरब दीनो दान। जा मन वस्यो हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल। ताप मिटे साधु शरण दयाल, रहाओ बहुत उर्द तप साधन सादे। अनिक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम रसन आरादे। सिमरत सासत वेद बखाने, जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने। नाम जपते प्रभ सो मन माने, अगाध बोध हर अगम अपारे। नाम जपत नाम हृदय विचारे, नानक को प्रभ कृपा धारे। गौरी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुर हृदय बसाया। गुरु गोविंद।

माई प्रभु की शरण उभरे सब कोए कर्म कराव पूर्ण सच सोए रहाओ अब मन बसिया करने हारा कै दिन से आत्म सुख सारा कर कृपा अपने जन राखे जन्म जन्म के

राम को बल पूरन पाई, ताके बिरथा ना व्यापे काई। रहाओ जो जो चितवे दास हरमाई, सो सो करता आप कराई। निंदक की प्रभ पत गवाई, नानक हर गुण निरपोगाई। गौड़ी महला पंजवा, उज बल वीर ब्रह्म सुख सागर। गर्त परत जह लेहो अंगुरिया, रहाओ श्रवण ना सुरत, नैन सुंदर नहीं आरत। द्वार रटत पिंगुरिया, दीना नाथ अनाथ, करुणा में साजन नीत।

सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम मां रस माए सो प्रसन्न पय केशवा से जन हर गुण गाए मात पिता।

सर्व कल्याण सुख सच पावे रहाओ। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिजले काहू एक लिव लागी, जिन हर पाया सेवड पागी। ब्रह्मादित सन का दुख चाहे, जोगी जति सिद्ध हर आहे। जिसे प्राप्त सो हर गुण गाहे, ताकि शरण जिन बिसरत नाही। वद पागी हर संत मिला।

मन अर्पो तन राखो आगे, मन की मत मोह सगल त्यागी, जो प्रभु की हर कथा सुनावे, हम दिन फिरो तिस पिछे विरागी, पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे, पेटियो पुरुष रसिक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी, गौड़ी महला पंजवा, निकसरे पंखी।

है कोई संत मिला वे मेरा रहाओ सेवा करो दास दासन की अनित पांच करो निहोरा तुला तार तोले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा संत प्रसाद दाए गुण सागर जन्म जन्म को जात बहोरा अनद सुख पेटत।

कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहे मार्ग दे बताई रहाओ। अंतर अलख न जाई लखिया विच पर्दा हो मैं पाई माया मो सबो जग सोया तिहु परम कहो क्यों जाई। एका संगत इकत गृह बसते मिल बात न करते पाई एक बस्त बिन पंच दुहेले ओ बस्त अगोचर ठाई। जिसका गृह तिन दिया ताला कुंजी गुर सो पाई अंत उपाव करे नहीं पावे बिन सतगुर शरणाई। जिनके बंधन काटे

खेद करें और बहुत संतावे हैं। आयो शरण तुहारे कर कर हारो अंत बहु पाती छोड़े कतहु नाही। एक बात सुनता की ओटा साध संग मिट जाहे कर कृपा संत मिले मोह तुमते तीरज पाया संती मंत दियो मोह निरपो गुर का शब्द कमाया जीत ले ओए महा दुखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन पाया परगासा पाया पद निर्वाणी। गौड़ी महला पंजवा ओ अविनाशी राया निरपो संग तुम्हारे बसते इहो डर कहाँ ते आया रहाओ एक महल तू हुए अफारो एक महल निवानो

एक महल तू सब कुछ ग्राहज, एक महल कछु न लेता। काश की पुत्री कहाँ करे बकरी, खिलान हारो जाने जैसा पेट करावे बाजीगर। ओ कैसो ही साज आने, अनक कोठरी बहुत पाप करिया, आप हुआ रखवारा जैसे महल राख है तैसे रहना।

जो मोहयो उन मोहनी बाला उसते कटे नाहे रुच चसुआ जग ऐसा मोहे गुरह दिखायो तो शरण पर्यो तज गर्भ सुआ मार्ग प्रभ को

इकतरा एकसके वस्तिये दस बैरागन आज्ञाकारी तब निर्मल जोगी थिए। परम जराए चराई विपूता पंच एक कर पेखिया सहज सुख सोकीनी पुगता जो ठाकुर मस्तक लेखिया। जय कहो नाही ता आसन बांधियो सिंगी अनहत बानी तत विचार डंडा कर राखियो जुगत नाम मन पानी। ऐसा जोगी वद पागी पेटे माया के बंधन काटे सेवा पूज करो तिस मूरत की नानक तिस पग चाटे। गौड़ी महला पंजवा अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याय ले मीता हर औषध जा को गुर दिया ताके निर्मल चीता। रहाओ अंधकार मिट्यो किन तंते गुर शब्द दीपक पर दासा प्रम की जाली।

प्रवराते पोत पोत भगतन संग जोरी प्रयो प्रयो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओ चंद चकोरी राम संत में भेद किछ नाही एक जन कई महलाख करोरी जा कहिय प्रगट प्रभु हुआ हम दिन कीर्तन रसन रमोरी तुम समरथ अपार अत ऊंचे सुखदाते प्रप्राण अधोरी।

जय। हर नाम मेरा मन जाके, संत प्रसाद नानक हर पेटे, मन तन शीतल कराके, गौरी महला पंजवा, सह समायो देव मोको सतगुर।

जिन तार ग्रह मंद खंड हर ताको नाम जपी जय रे रहाओ मन की मत त्यागो हर जन हुकम बूझ सुख पाए रे जो प्रभ करे सोई फल मानो सुख दुख ओही त्याए रे कोट पतित उधारे किन में करते बार न लागे रे दीन दर्द दुख पंजन स्वामी जिस पावे तिसे निवाजे रे

इहा उहा सर्व सुख दाता सगल कथा प्रतिपारे रहाओ महा कष्ट काते खिन पीतर रसना नाम चितारे शीतल सांत सुख हर सरणी जलती अग्नि निवारे गर्भ कुंड नरक के राखे पव जल पार उतारे चरण कमल आराधत मन में जम की त्रास बिदारे पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम

तारे गुण गावत त्यावत सुख सागर जुए जन्म न हारे काम क्रोध लोभ मोहे मन हीनो निर्गुण के दा तारे कर कृपा अपनो।

अमित जुगत नहीं पाया, गुर चाकर ले लाया, मारे पंच दिखा दिया, गुर कृपा ते दल सा दिया, बख्शीश बजो मिल एक नाम।

तेरे ओला नाम का अवर जे कर्म करावनो तिन में पव है जाम का रहाओ अवर जतन नहीं पाये वदे पाग हर के आये।

दिए संत संग हर मन वसे कर्म मोह पौसा दिए रहाओ वेद पुराण सिमरत पने सब ऊंच विराजत जन सुने सगल स्थान कै पीत चीन राम सेवक पै रहत कीन लख चौरासी जोल फिरे गोविंद लोक नहीं जन्म मरे बल बुद्ध सियान पहु में रही हर साध शरण नानक गही गौड़ी महला पंजवा मन राम नाम गुण गाये नीत नीत हर सेविये सास सास हर त्याये रहाओ संत संग हर मन वसे दुख दर्द अनेरा प्रम नसे संत प्रसाद हर जापी है सो जन दुख ना व्यापी है जा को गुर हर मंत्र दे सो उबरिया माया अगन ते नानक को

आनंद कना आगे जी के संग काम रहाओ, कटिये तेरा अनुरोग, तू गुरु प्रसाद कर राज योग, हर रस जिन जन चाखिया, ताकि कृष्णा लाखिया, हर विश्राम निध पाया, सो

गौरी महला पंजवा जाको बिसरे राम नाम ताहू को पीर साध संगत मिल हर रवे से गुणी गहीर रहाओ जाको गुरमुख हृदय बुद्ध ताके कर तल नव निसिद्ध जो जाने हर प्रभ तनी किछ नाही ताके कमी करने हार पछानिया सर्व सुख रंग माणिया हर तन जाके गृह वसे कहो नानक तिन संग दुख नसे गौरी महला पंजवा गर्भ

पान प्रब का खाना रहाओ। ऐसे है रे खसम हमारा छिन में साज सवार नहारा। काम करी जे ठाकुर पावा गीत चरित प्रभ के गुण गावा।

अज्ञानी मानुख पया जो नाही सो लो रैन अंधारी कारिया कवन जुगत जित पोरे परम तो हारिया।

सुख भय अकाल पुरख अगाध बोध सुनत जसो कोट अग खे कृपा निध प्रभ मया तार नानक हर हर नाम लय गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए जा दिन बिसरे प्राण सुख दाता सो दिन जात अजाए रहाओ एक रैन के पावन तुम आए बहु जुग आस बदाए गृह मंदिर संपे जो दिसे जो तरवर की छाए तन मेरा संपे सब मेरी बाग मिलख सब जाए देवन हारा बिसरियो ठाकुर चिन्मय होत पराए

तन जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बलहरिय रहाओ, जेते सास ग्रास मन लेता, तेते ही गुण गाइए, जो होए दयाल सतगुर अपना, ताए मत बुद पाइए।

कारी बुरा पला नहीं सुझिए, बुरा पला नहीं सुझिए। अनक बंधन माया परमत परमाया, गुंड नहीं जाया मन बिछे ही मैं लुझिए। जा को रे कृपा करे जीवत सोई मरे, साध संग माया।

आवे दुखों पंथ पयान रहाओ सेवक सेवक सदा सेव तेरे संग बस्त है काल कर सेवा तू साध की हो काती है जम जाल होम जग तीरथ किए दुख हो में बदे विकार नरक सुरग दोए पुंचना।

सुख रे। हरख सोग हान मिर्त दुख सुख चित संसर गुर मिले। राव जौ लो हों किस सोचो चितो तौ लो दुखन परे। जो कृपाल गुर पूरा पेटिया सो अनद सहजे। जेती स्यान कर्म हों किए तेते बंद परे। जो साधु कर मस्तक तरयो तब हम मुक्त भये। जो लो मेरो मेरो करतो तौ लो बिखेरे। मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए। जो लो पोट उठाई चलियो तौ लो दान परे। पोट डार गुर पूरा मिलिया तौ नानक निर्भय। गौड़ी माला महला पंजवा पावन त्यागियो री त्यागियो। त्यागियो मैं गुरु मिल त्यागियो। सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोविंद आग्यो। रहाओ मान अभिमान दो समाने। मस्तक डार गुर पाग्यो। संपत हरख ना आपत दुखा रंग ठाकुर लाग्यो। बास बासरी एक है स्वामी उद्यान दृष्टाग्यो। निरपो पे संत प्रम डार्यो पूरन सर्वाग्यो। जो किस करते कारण कीनो मन बुरो न लाग्यो। साध संगत प्रसाद संतन के सोयो मन जाग्यो। जन नानक और तुहारी परयो आयो शरण आग्यो। नाम रंग सहज रस माने।

चल थिया। सतगुर सब समाया रहाओ, लाठी पूख त्रिसन सब लाठी, चिंता सगल बिसारी, कर मस्तक गुर पूरे तरयो, मन जीतो जग सारी। त्रिप अधाए रहे रिद अंतर, दोलन ते अब चूके, अखुट खजाना सतगुरु दिया, तोट नहीं रे मुके। अचरज एक सुनो रे पाई, गुर ऐसी बूझ बुझाई, लाए परदा ठाकुर जो पेटियो, तो बिसरी तात पर आई। कहो ना जाई एहो अचंबो, सो जाने जिन चाखिया, कहो नानक सच पए बिगाता, गुर निधान हृदय।

सूरत राजा राम की सरणी, सर्व लोक माया के मंडल गिर गिर परते तरणी। चढ़ाओ शास्त्र सिमरत वेद विचारे, माँ पुरखन यूं कहया बिन हर भजन नाहीं निस्तारा, सूख न किन्हू लया। तीन पवन की लखनी जोरी, बूझत नाहीं लहरे, बिन हर भगत कहाँ स्थित पावे, फिर तो पहरे पहरे। अनक बिलास करत मनमोहन, पूरन होत न कामा, जल तो कभू न बूझत, सगल बिरसे बिन नामा। हर का नाम जपो मेरे मीता, यह सार सुख पूरा, साध संगत जन्म मरण निवारे, नानक जन की।

किस इन्हें कमानो जब तब कछू न सादा दैदिस ले इहो मन दौरायो कवन कर्म कर बांदा मन तन तन भूम का ठाकुर हों इसका इहो मेरा परम मोह कछू जस नाही ए पैखर पे पैरा तब इहो कहां कमावन परया जब इहो कछू ना होता जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब किछ आपे करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिन

हर दिन अवर क्रिया बिरते जब तब संयम कर्म कमाने एह ओरे मूसे रहाओ वर्त नेम संयम में रहता तिनका आद न पाया आगे चरण और है पाई उहां कामना आया। तीरथ नाए अर करनी प्रमता आगे ठौर न पावे उहां कामना आवे एह बिद ओ लोगन ही पति आवे। चतुर्वेद मुख बचनी उचरे आगे महल न पाये बूझे नाही एक सुदाकर ओ सगली चाक चखाइए। नानक कह तो यो बिचारा जे कमावे सो पार ग्रामी गुर से वो अर नाम ते आवो त्यागो मनोगुमानी। गौड़ी माला पन्नवा मादो हर हर हर मुख कही है हम ते कछु न होवे स्वामी ज्यों राखो त्यों रही है रहाओ क्या किस करे के करने हारा क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लावो तित ही लागा

जिन प्रभ त्याया सो सो बावंता जियो, जिस साधु संगत तिस सब सो करनी जियो, जन नानक सहज समाई जियो। गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रैन दिनस साथ साथ सितारे जियो, संत देव संदेशा पै चरण हारे जियो, खुद दिन कित बिद करिए जियो, संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, वन तिन त्रिभवन सुख परमानंदा जियो, सेज सुहावी इहो मन बिद संदा जियो, पेख दर्शन इहो सुख लई है जियो, चरण पठार करी नित सेवा जियो, पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकुर पै कही है जियो, इच पुन्नी मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, इहो अजर नानक सुख सही है जियो। गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन मन विच प्यारे जियो, मन तन तेरा इहो जियो पेवारे जियो, विसरना ही प्रभ प्राण आधारे जियो, सदा तेरी शरण आई जियो, जिस मिले मन जीवे पाई जियो, गुरु प्रसादी सो हर हर पाई जियो, सब किछ प्रभ का प्रभ किया जाए जियो, प्रभ को सद बल जाई जियो, एहो निधान जपै वट पागी जियो, नाम निरंजन एक लिव लागी जियो, गुरपूरा पाया सब दुख मिटाया जियो, आठ पैर गुण गाया जियो, रतन पदार्थ हर नाम तुम्हारा जियो, तू सच्चा साहु भगत मन जारा जियो, हर तन रात सच बा

कहाओ जित कटवस्ते पार ब्रह्म सोई सुहावा थाओ जम कंकर नेड़ न आवई रसना हर गुण गाओ सेवा सुरत न जानिया ना जापे आराध ओट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम आगाज पाए किरपाल गुसाया नखे सोग संताप तत्ती वाव न लग गई सतगुर रखे आप गुर नारायण दय गुर गुर सच्चा सृजन हार गुर तुठे सब किस पाया जन नानक सद बलिहार गौड़ी माज महला पंजवा हर राम राम राम रामा जप पूरन होए कामा रहाओ राम गोविंद जपेंदिया हुआ मुख पवित्र हर जस सुनिए जिससे सोई पाई मित्र सब पदार्थ सब फला सर्व गुणा जिस माहे क्यों गोविंद मनो विसारिये जिस सिमरत दुख जाहे जिस लड़ लगे है जीविये पव जल पई है पार मिर साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रात नानक उबरे नाम जप दर सच्चे साबास गौड़ी माज महला पंजवा मीठे हर गुण गाओ जिंदू तू मीठे हर गुण गाओ सच्चे सेती रतिया।

फिर जो करे फिट सो जीवन सोए अंचल गह के साध का तरना इव संसार पार ब्रह्म आराधी है उदरे सब परवार साजन बंग सो मित्र सो हर नाम हृदय दे अवगुण सब मिटाए के पर उपकार करे माल खजाना थो कर हर के चरण निदान नानक जाचक।

साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते ऐनस पागो रहाओ। सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अपमाना, हर शोक ते रह अतीता तिन जग तत पछाना। उस तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा, जन नानक एव खेल कथन है किन्हो गुरमुख जाना। गौड़ी महला नामा साधो रचना राम बनाई, एक दिन से एक अस्थिर माने।

शरणाई गौड़ी महला नावा। प्राणी को हर जस मन नहीं आवे एन इस मगन रहे माया में, कहो कैसे गुन गावे रहाओ पूत मीत माया ममता स्यो ए विद आप बंधावे। मृग तृष्णा ज्यो झूठो इहो जग देख ताक उठतावे, भुगत मुकत का

निज सिद्ध निर्मल नाम विचार पूरन पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी बिमल मजार गुर की मत जिए आई कार। इन विद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम सुखाया लाल पहे सुहा रंग माया नगर पही दिख ठाक रहाया उल्ट पही जीवत मर जा गया शब्द रवे मन हर क्यों ला गया रस संग्रह दिख पर हर त्या गया पाए बसे जम का पौ पा गया साध रहे बादंग अंकारा चित हर क्यों राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोई न देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी रात्यो हर नाए सिखिया दीखिया भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज कर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म त्याना जोत पई ज्योति माए समाना लिखत मिटे नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना न पंडित न चतुर सियाना न फूलो न परम फुलाना कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमत है समाना गौड़ी ग्वारे री महला पहला मन कुंचर काया उद्याने गुर अंकस सच शब्द निशाने राज द्वारे शोभ सुमाने चतुराई ने चीनिया जाए बिन मारे क्यों कीमत पाए रहाओ कर में अमृत पस कर ले नन्ना कार ना कोई करे राखे आप वड्याई दे नील अनिल अगन इक थाई जल निवरी गुर बूझ बुझाई मन दे लिया रहत गुण गाई जैसा कर बाहर सो तैसा बैस गुफा में आँखों कैसा सागर डूगर निरपो ऐसा मुए को कहो मारे कौन निडरे को कैसा डर कवन शब्द पछाने कीने पौन जिन कहया तिन कहन वखानिया जिन बूझिया तिन सहज पछानिया देख विचार मेरा मन मानिया कीरत सूरत मुक्त इक नाई तही निरंजन रहा समाई निज कर व्याप रहा निज ठाई।

तरण गगन नह देखो दोए, नारी पुरुष सब आई लोए, रव सस देखो दीपक उजियाला, सर्व निरंतर प्रीतम बाला, कर कृपा मेरा चित लाया, सतगुरु मोको एक बुझाया, एक निरंजन गुरुमुख जाता, दूजा मार शब्द पछाता, एको हुक्म वर्ते सब लोई, एक से सब ओपत होई, राह दोवे खसम एको जान, गुर के शब्द हुक्म पछाण, सगल रूप वर्ण मन माही, कहो नानक एको सालाही, गौड़ी महला पहला, अध्यात्म कर्म करे साचा, मुक्त फेर क्या जाने काचा, ऐसा जोगी जुगत विचार है, पंच मार साच उधार है, रहाओ जिसके अंतर साच बसावे, जोग जुगत की कीमत पावे, राम सत एको गृह उद्यान है, करनी कीरत कर्म समान है, एक शब्द एक पिछला मांगे, ज्ञान ध्यान जुगत फट जागे, पैर अच रहे ना बाहर जाए, कीमत कौन रहे लिवलाए, आपे मेले परम सुखाए, गुर प्रसाद परम पद पाए, गुर की सेवा शब्द विचार, हमें मारे करनी सार, जब तब संजम पाठ पुराण, कहो नानक अपरम परमान, गौरी महला पहला, हिमा गही व्रत शील संतोखं, रोग ना व्यापे ना जम दोखं, मुक्त पाए प्रभ रूप न रेखं, जोगी को कैसा डर होए, रूख बिरख गृह बार सोए, रहाओ निरपौ जोगी निरंजन त्यावे, अंदिन जागे सच लिवलावे, सो जोगी मेरे मन पावे, सो जोगी मेरे मन पावे, काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे, जरा मरण गत गर्भ निवारे, आप तरह पितरी निस्तारे, सतगुर सेवे सो जोगी होए, पैरच रहे सो निरपो होए, जैसा सेवे तैसो होए, नर नहीं केवल निरपो ना हो, अनाथे नाथ करे बल चाओ, पुनरप जन्म ना ही गुण गाओ, अंतर बार एको जाने, गुर के शब्दे आप पछाने, साचे शब्द दर निशाने, शब्द मरे तिस निज कर वासा, आवे ना जावे चूके आसा, गुर के शब्द कमल पर गासा, जो दिसे तो आप निराशा, काम क्रोध बिक भूख पे आता, नानक बिरले मिले उदासा, गौरी महला पहला, ऐसो दास मिले सुख होई, दुख विसरे पावे सत सोई, दर्शन देख पई मत पूरी, अखट मज्जन चरने तूरी, रहाओ नेत्र संतोखे एक लिव तारा, जेवा सूची हर रस सारा, सत करनी अब अंतर सेवा, मंत्र तास्या अलख अपेवा, जय जय देखो तें तें साचा, बिन बूझे जगत जग काचा, गुर समझावे सोजी होई, गुरमुख बिरला बूझे कोई, कर कृपा राखो रखवाले, बिन बूझे पशु कहे बेताले, गुर कहया अवर नहीं दूजा, किस कहो देख करो अन पूजा, संत हेत प्रभ त्रिपवन तारे, आत्म चीने सो तप विचारे, साच हृदय सच प्रेम निवास, प्रणवत नानक हम ताके दास, गौड़ी मेला पहला, ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया, वेद की विपत पड़ी पछतानिया, जह प्रभ सिमरे तही मन मानिया, ऐसा गर्भ बुरा संसार है, जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार है, रहाओ बल राजा माया अंकारी, जगन करे बहु पार असारी, बिन गुर पूछे जाए प्यारी, हरी चंद दान करे जस लेवे, बिन गुर अंक ना पाए अपेवे, आप पुलाए आपे मत देवे, दुर्मत हरणाख दुराचारी, प्रभ नारायण गर्भ परहारी, प्रहलाद उधारे कृपा तारी, पूलो रावण मुग्ध अचेत, लूटी लंका सीत समेत, गर्भ गया बिन सतगुर हेत, सहस बाहो मद कीट में खासा, हरणाखस ले नखो विदासा, दैत संगारे बिन भगत अभ्यासा, जरा संद काल जमुन संगारे,
रसत बीज काल नेम बिदारे दैत संगार संत निस्तारे। आपे सतगुर शब्द विचारे दूजे पाए दैत संगार।

जन को दुख पचे दुख होई, जन में जय गुर शब्द न जानिया, क्यों सुख पावे परम पुलानिया, इक तिल भूले बौर पछतानिया, कंस के चांडूर ना कोई, राम ना छीनिया अपनी पत कोई, बिन जगदीश ना राखे कोई, बिन गुर दर्ब ना मेटिया जाए, गुरमत धर्म तीरज हर नाए, नानक नाम मिले गुण गाए, गौड़ी महला पहला, चोआ चंदन अंक चढ़ावो, पाठ पटंबर पहर हटावो, बिन हर नाम कहाँ सुख पावो, क्या पहरो क्या ओढ़ दिखावो, बिन जगदीश कहाँ सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला, लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहाँ सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोर सिगार करे अति प्यारी, बिन जगदीश पजे नित खुआरी, दर कर महला सेज खाली, एनक फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो देह दुखाली, हैवर गैवर नेजे वाजे, लक्कर नेब खवासी पाजे, बिन जगदीश चूठे दिवाजे, सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बुलावो, ताज कुल है सिर खतर बनावो, बिन जगदीश कहाँ सच पावो, खान मलूक कहावो राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द ना सवरस

रंगमत नानक शरण तुम्हारी। गौड़ी महला पहला सेवा एक ना जानत अवरे, पर पंच ब्याज त्यागे कवरे, पाई मिले सच साचे फसरे, ऐसा राम भगत जन होई, हर गुण गाय मिले मल सोई, रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत अग्न जगत पर जा रहे, सो उभरे गुर शब्द विचार है, प्रिंग पतंग कुंचर अर मीना, मृग मरे सह अपना कीना, तृष्णा रात तत नहीं दीना, काम चिते कामन हितकारी, क्रोध विनाश है सगल विकारी, पत मत खोवे नाम विसारी, पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदे लपटाए, गुरमुख छूटस हर गुण गाए, जो तन विधवा पर को दे, काम दाम चित पर वसे, बिन फिर त्रिपत ना कभू होई, पर पढ़ पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़े सुन साटा, बिन रस राते मन बौ नाटा, ज्यो चात्रिक जल प्रेम प्यासा, ज्यो मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस पी तृप्ताता। गौड़ी महला पहला हठ कर मरे ना देखे पावे, वेद करे बहु पसम लगावे, नाम विसार बहुर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम विसार सह जम दुख, रहाओ चोआ चंदन अगर कपूर, माया मगन परम पद दूर, नाम विसारे सब कूड़ो कूर, नेजे वाजे तख सलाम, अद की तृष्णा व्यापे काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम, वाद अहंकार नाही प्रभ मेला, मन दे पावे नाम सुहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला, बिन दम के

किसको वाह वाह जी शब्द सुनावे, किसको वाह वाह जी मेल मिलावे, वाह वाह किसको जिसका इहो जियो, गुर सब जी मत अमृत पियो, नाम वडाई तुद पाने दियो, नाम बिना क्यों जीवा माए, अनदिन जपत रहो तेरी शरणाए, नानक नाम रते पत पाए, कौड़ी मैला पहला हूं मैं करत देखी नहीं जानिया, गुरुमुख भगत बिरले मन मानिया, हूं करत नहीं सच पाई है, हूं मैं जाए परम पद पाई है, रहाओ हूं मैं कर राजे बहुत आवे, हूं मैं खपे जन्म मर आवे, हूं मैं निवरे गुर शब्द विचार है, चंचल मत त्यागे पंच संगार है, अंतर साच सहज कर आवे, राजन जान परम गत पावे, सच करनी गुर परम चुकावे, निरपो के कर तारी लावे, हों कर मरना क्या पावे, पूरा गुर पेटे सोच अगर चुकावे, जेती है तेती क्यों नाही, गुरमुख ज्ञान पेट गुण गाही, हों में बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे, गौरी मैला पहला प्रथमे ब्रह्मा काले कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया, आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजे सो काल संगारिया, हम हर राखे गुर शब्द विचारिया, रहाओ माया मोहे देवी सब देवा, काल न छोड़े बिन गुर की सेवा, ओ अविनाशी अलख सेवा, सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना, नामो पूले जम का दुख सहना, मैं कर नाम ज्यों राखो रहना, चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, सा मरे संचे माया दाम, मैं तन जी जय हर अमृत नाम, रैयत मेहर मुकदम सिकदार है, नेकल कोई न

ओ गुरमुख जापे ता पत होई, काजी शेख पेख फकीरा, वडे कहावे हो मैं तन पीरा, काल न छोड़े बिन सतगुर की तीरा, काल जाल जेवा अरनैनी, कानी काल सुने बिख बैनी, बिन सबदे मूठे दिन रैनी।

गुरमत साच सहज हर बोले, पीवे अमृत तत विरोले। सतगुरु देखिया दीखिया लीनी, मन तन अर्पियो अंतर गत कीनी। गत मित पाई आत्म चीनी, ओजन नाम निरंजन सार। परमहंस सच जोत अपार, जह देखो तह एकंकार। रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुरु चरणी। मन से मन मानिया चूकी अंग प्रमणी, इन विद कौन कौन नहीं तारिया। हर जस संत भगत निसारिया, प्रभ पाए हम अवर न पारिया। सात महल गुर अलख लखाया, नेचल महल नहीं छाया माया। सात संतोखे परम चुकाया, जिनके मन वसिया सत होई। तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक सात नाम मल खोई। गौरी महला पहला, राम नाम चितरा पै जाका। उपजंप दर्शन की जय ताका। राम ना जपो अपार कुमारा, जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा। रहाओ गुरमत राम जपे जन पूरा, इत कट अनहत बाजे तूरा। जो जन राम भगत हर प्यार, से प्रभ राखे कृपा तार। जिनके हृदय हर हर सोई, तिनका दर्प परस सुख होई। सर्व जिया में एको रवे, मन मुख अंकारी फिर जूनी पवे। सो बूझे जो सतगुरु पाए, हों मैं मारे गुर सबदे पाए। अर्ग उर्द की संग क्यों जाने, गुरुमुख संग मिले मन माने। हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन करिए। हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन करिए। सोलह अष्टपदिया।

की सेवा करें, ठाकुर नहीं दीसे, पोखर नीर विरोली है, माखन नहीं दीसे। इस पद जो अर्थाए ले सो गुरु हमारा, नानक की ने आपको सो अपर अपारा, सब आपे आप वर्तदा, आपे परमाया, गुर कृपा से बूझिए।

मन का सूतक दूजा भाओ, परने पूले आवो जाओ, मन सूतक कवे न जाए, जिचर शब्द न पीजे हर कहनाए राओ। सबो सूतक जेता मो आकार, मर मर जमे वारो वार, सूतक अग्न पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किसाहे, सूतक कर्म न पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए, सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए, सातक सिमरत सोध देखो कोए, बिन नावे को मुक्त न होए, जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल में गुरमुख उतरत पार, साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रह समाए, गौड़ी मैला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा, हर जियो राखो हृदय उर्धारा, गुरमुख सोबा सात द्वारा, पंडित हर पर तजो विकारा, गुरमुख पौजल उतरो पारा रहाओ। गुरमुख विचो हो मैं जाए, गुरमुख मैल ना लागे आए, गुरमुख नाम वसे मन आए, गुरमुख कर्म कर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो सुने न कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई, मनमुख डंफ बहुत चतुराई, जो किस कमावे सो थाए न पाई, आवे जावे खौर न काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभिमाना, बग जो लाए बहन चाना, जम पकड़िया तभी पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई, गुरमुख जात पत नामे।

आई। राम पढ़ो मन करो विचार, गुर प्रसादी मैल उतार रहाओ। वाद विरोध ना पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए। गुर के शब्द सच लिवलाए, हो मैं मैला यो संसारा। नित तीर्थ नावे ना जाए अहंकारा, बिन गुर पेटे जम करे खुआरा। सो जन साचा जे हो मैं मारे, गुर के शब्द पंच संगारे। आप तरह सगले कुल तारे, माया मोह नट बाजी पाई। मनमुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई। बहुते पेख करे पेख तारी, अंतर तिसना फिरे अंकारी। आप ना चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतुराई। माया मोह अत परम पुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई। नाम रते सदा बैरागी, ग्रही अंतर साच लिव लागी। नानक सतगुर सेवे सेवड़ पागी, गौड़ी महला तीजा। ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा, तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा। त्रै गुण परमे नाही निज करवासा, हम हर राखे सतगुरु मिलाया। अनदिन भगत हर नाम दृढ़ाया रहाओ। त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पर वाद वखाणे सिर मारे जमकाला। तत नाचीने बन्ने पंड पराला, मनमुख अज्ञान को मार्ग पाए। हर नाम विसारिया बहु कर्म दृढ़ाए, पवजल डूबे दूजे पाए। माया का मोहताज पंडित कहावे, बिखिया राता बहुत दुख पावे। जम का गल जेवड़ा नित काल संतावे, गुरुमुख जमकाल ने

परम फुलाए, मनमुख अंधे सदा बिख खाए, जम डंड सह सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की शरणाई, हों मैं मार सच लिवलाई, सदा रहे हर नाम लिवलाई, सतगुर सेवे से जन निर्मल पवित्ता, मन स्यों मन मिलाए सब जग जीता, इन विद कुशल तेरे मेरे नीता, सतगुरु सेवे सो फल पाए, हृदय नाम विच्चों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द बजाए, सतगुरु ते कवन कवन नासी।

पावन हारा मर्ज मैं फिर वारो वारा अंधे गुरु ते परम न जाई मूल छोड़ लागे दूजे पाई बिका माता बिख माए समाई माया कर मूल जंत्र पर माए हर जियो विसरिया दूजे पाए जिस नजर करे सो परम गत पाए अंतर साच बार साच वरताए साच न छपे जे को रखे छपाए ज्ञानी बूझे सह सुबाए गुरुमुख साच रहा लिव लाए हों मैं माया शब्द जलाए मेरा प्रभ साचा मेल मिलाए सतगुरु दाता शब्द सुनाए तावत राखे ठाक रहाए पूरे गुरते सोजी पाए आपे करता सृष्ट सिर्ज जिन गोई तिस बिन दूजा अवर न कोई नानक गुरमुख बूझे कोई गौड़ी महला तीजा नाम अमोलक गुरमुख पावे नामो सेवे नाम सहज समावे अमृत नाम रसना नित गावे जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे अंदिन हृदय जपो जगदीसा गुरमुख पावो परम पद सुखा रहाओ हृदय सुख पया प्रगास गुरमुख गावे सच गुण दास दासन दास नित होवे दास गृह कुटुंब मैं सदा उदास जीवन मुक्त गुरमुख को होई परम पदार्थ पावे सोई त्रै गुण मेटे निर्मल होई सहजे साच मिले प्रभ सोई मोह कुटुंब स्यों प्रीत न होए जा हृदय वस्या सच सोए गुरमुख मन बेदिया अस्थिर होए हुकम पचाने बूझे सच सोए तू करता मैं अवर न कोए तुझ सेवी तुझ ते पत होए कृपा करें गावा प्रभ सोए नाम रतन सब जग में लोए गुरमुख बाणी मीठी लागी अंतर बिकसे अंदिन लिव लागी सहजे सच मिलिया प्रसादी सतगुर पाया पूरे वडपागी हों मैं ममता दुर्मत दुख नास जब हृदय राम नाम गुणतास गुरमुख बुद्ध प्रगति प्रभ जास।

सबद मन रंगिया लिव लाए, निज कर वस्या प्रभ की रजाए, सतगुरु सेवे जाए अभिमान, गोविंद पाईए गुणी निधान रहाओ। मन बैरागी जा शब्द पौ खाए, मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहा समाए, गुर कृपा ते मिले मिलाए, हर दासन को दास सुख पाए, मेरा हर प्रभ इन विद पाया जाए, हर कृपा ते राम गुण गाए, त्रिग पहु जीवन जित हर नाम न लगे प्यार, त्रिग से सुखाली कामन मोगवार, तिन सफल जन्म जिन नाम आधार, त्रिग त्रिग गृह कुटुंब जित हर प्रीत न होए, सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए, हर नाम बिना मैं अवर न कोए, सतगुर ते हम गत पत पाई, हर नाम ते आया दुख सगल मिटाई, सदा आनंद हर नाम ले विलाई, गुर मिलिए हमको सरी।

सतगुर ते जो मोह फेरे ते वे मुख बुरे दिसन अंजन बद्दे मारियन फिर वेला ना लहन हर हर राखो कृपा तार सतसंगत मेलाए प्रभ हर हृदय हर गुणसार रहाओ से भगत हर पाव दे जो गुरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार ओहो क्यों मनो विसारी है हर रखिए हृदय तार नाम मिले पत पाए नाम मने सुख होए सतगुर ते नाम पाए कर्म मिले प्रभ सोए सतगुर ते जो मोह फेरे होए प्रम दे ना टिकन तर्क असमान ना चले विच विस्ता पह पचन इहो जग परम पुलाया मोह टगौली पाए जिना सतगुर पेटिया तिन नेड़ ना पिटै माए सतगुर सेवन सो सोहणे हौं मैं मैल गवाए।

मन करहला गुरु गोविंद समाल रहाओ, मन करहला विचारिया मन मुख फाथिया महाजाल, गुरुमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम समाल, मन करहला मेरे प्यारिया सत्संगत सतगुर पाल, सत्संगत लग हर त्याये हर हर चले तेरे नाल, मन करहला वड पादिया हर एक नजर निहाल, आप छाए छुट्टी है सतगुर चरण समाल, मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत समाल, गुरु नौ निज नाम विखा लिया हर दात करी दयाल, मन करहला तू चंचला चतराई छड़ विकराल, हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल, मन करहला बड पागिया तू ज्ञान रतन समाल, गुर ज्ञान खड़ग हत तारिया जम मारे अड़ा जमकाल, अंतर निधान मन करहले प्रम पवे बार पाल, गुर पुरख पूरा पेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल, रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा समाल, हर रंग कदे ना उतरे गुर सेवा शब्द समाल, हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल, वड पागी गुरु

जब हो मन में करत गुमाना तब एहो बावर फिरत बिगाना जब एहो हुआ सगल की रीना ताते रमैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मस्कीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको एहो जान समंदा तब सगले इस मेले फंदा मेर तेर जब इन्हें चुकाए ताते इस संग नहीं बैराए जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल पारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा पेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किछ कर माने पेदा तब ते दुख दंड अरखेदा जब इन एको एक ही बूझिया तब ते इसनो सब किछ सूझिया जब एहो तावे

कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी। करन करावन सब किछ एक है, आपसे बुद्ध विचार विवेक है, दूर ना ने

आस जपत पाव अपदा जाए तावत मनुआ आवे खाए जास जपत फिर दुख ना लागे जास जपत ए हो मैं पागे जास जपत वस आवे पंचा जास जपत हृदय अमृत संचा जास जपत ए तृष्णा बुझे जास जपत हर दरगे सिजे जास जपत कोट मिटे अपराध जास जपत हर होवे साध जास जपत मन शीतल होवे जास जपत मल सगली खोवे जास जपत रतन हर मिले बहुर न छोड़े हर संग हिले जास जपत कई बैकुंठ वास जास जपत सुख सह निवास जास जपत ए अग्न न पोहत जास जपत एहो काल न जोहत जास जपत तेरा निर्मल माथा जास जपत सगला दुख लाता जास जपत मुश्किल कछु न बने जास जपत सुन अनहत तुने जास जपत ए निर्मल सोए जास जपत कमल सीधा होए गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी जिसके हृदय मंत्र दे हरी अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा कहो नानक जिस सतगुरु पूरा गौड़ी महला पंजवा गुर का शब्द निरिद अंतर तारे पंच जना स्यों संग निवारे दस इंद्री कर राखे वास ताके आत्मे होए प्रगास ऐसी दृढ़ता ताके होए जा को दया मया प्रभ सोए रहाओ साजन दुष्ट जाके एक समान है जेता बोलन तेता ज्ञान है जेता सुनना तेता नाम जेता पेखन तेता ध्यान सहजे जागन सहजे सोए सहजे होता जाए सोए सहज बैराग सहजे ही हसना सहजे चूप सहजे ही जपना

जो इस मारे तिसे वड्याई, जो इस मारे तिसका दुख जाई। ऐसा कोई जे दुबदा मार दवावे, इसे मार राज जोग कमावे। रहाओ जो इस मारे तिसको पौना है, जो इस मारे

सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता, जो इस मारे सोई जति, जो इस मारे तिस होवे गति, जो इस मारे तिसका आया गनी, जो इस मारे सो नहीं चलतनी, जो इस मारे सोवड पागा, जो इस मारे सो अंधिन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता।

इस मारी बिन झूठ ना तोई, इस मारी बिन सब किछ मैला, इस मारी बिन सब किछ जौला। जाको पै किरपाल किरपा निज, इस पै खलासी होई सगल सिद्ध। गुरदुबदा जाकी है मारी, कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी। गौड़ी महला पंजवा, हर स्यों जुरे ता सब को मीत, हर स्यों जुरे ता ने चल चीत। हर स्यों जुरे ना व्यापे काड़ा, हर स्यों जुरे ता होए निस्तारा। रे मन मेरे तू हर स्यों जोर, काज तुहारे नाही होर। रहाओ वडे वडे जो दुनियादार, काहू काज नाही गावार। हर का दास नीच कुल सुने, तिसके संग खिन में उदरे। कोट मजन जा।

मन अपने में फिर चेत बिनस जाहे माया के हेत। हर अविनाशी तुमरे संग मन मेरे रच राम के रंग। जा के काम उतरे सब भूख जा के काम ना जो है दूत। जा के काम तेरा वड गमर जा के काम होवे तू अमर। जा के

जाके ऊन नाही काहू बात, एक आप अनेक पात, जाकी दृष्ट होए सदा निहाल, मन मेरे कर्ता की काल, ना को चतुर नाही को मूड़ा, ना को हीन नाही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जिस पागा, गौड़ी महला पंजवा, बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी, त्यों जीवे साकत नाम बिसारी, एक निमख जो सिमरन में जिया, कोट दिनस लाग

बोले कूर साकत मुखकारा बिन सिमरन गर्दब की न्याई साकत थान परिष्ट फिराई बिन सिमरन कूकर हर काया साकत लोभी बंद न पाया बिन सिमरन है आत्म काती साकत नीचे तिस कुल नहीं जाती जिस पया कृपाल तिस सत्संग मिलाया कहो नानक गुर जगत कराया गौड़ी महला पंजवा गुर के बचन मोह परम गत पाई गुर पूरे मेरी पैज रखाई गुर के बचन से आयो मोह नाओ गुर प्रसाद मोह मिलिया छाओ रहाओ गुर के बचन सुन रसन वखाणी गुर कृपा से अमृत मेरी बाणी गुर के बचन मिटिया मेरा आप गुर की दया ते मेरा वड प्रताप गुर के बचन मिटिया मेरा परम गुर के बचन पेख्यो सब ब्रह्म गुर के बचन कीनो राज जोग गुर के संग तरिया सब लोग गुर के बचन मेरे कार्य सिद्ध गुर के बचन पाया नाउ निद जिन जिन कीनी मेरे गुर की आशा तिसकी कटिया जम की फासा गुर के बचन जागिया मेरा कर्म नानक गुर पेटिया पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवा तिस गुर को सिमरो सास सास गुर मेरे प्राण सतगुर।

अपना दासरा आपे मुल लियो, आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुरु को करी नमस्कार। कल कलेश पै परम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समराथा। गौड़ी मैला पंजवा, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देहो, नाम बिना त्रिग त्रिग असनेहो, रहाओ नाम बिना जो पहरे खाए, जो कूकर जूठन में पाए, नाम बिना जेता व्यवहार, जो मृतक मिथ्या सिगार, नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग, नाम त्याग करे अनकाज, बिनस जाए चूठे सब पाज, नाम संग मन प्रीत न लावे, कोट कर्म कर तो नरक जावे, हर का नाम जिन मन ना आराधा, चोर की न्याई जमपुर बादा, लाख अडंबर बहुत विस्तारा, नाम बिना चूठे पासारा, हर का नाम सोई जन ले, कर कृपा नानक जिस दे। गौड़ी मैला पंजवा, आद मध्य जो अंत निवा है, सो साजन मेरा मन चाहे, हर की प्रीत सदा संग चाले, दयाल पुरख पूरन प्रतपाले, रहाओ बिन सत नाही छोड़ न जाए, जह पेखा तह रया समाए, सुंदर सुगड़ चतुर जी दाता, पाई पूत पिता प्रभ माता, जीवन प्राण आधार मेरी रास, प्रीत लाई कर हृदय निवास, माया सिरक काटी गोपाल, कर अपना लीनो नगर निहाल, सिमर सिमर काटे सब रोग, चरण ध्यान सर्व सुख भोग, पूरन पुरख नवतन नित बाला, हर अंतर बार संग

पंजवा ओंकार सतगुरु प्रसाद। खोजत फिरे असंख अंत न पारिया, सेई होए भगत जिना कृपारिया। हों वारिया हर वारिया रहाओ, सुन सुन पंथ डराओ बहुत पहारिया। मैं तक्की ओर संता लेहो उबारिया। मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया, गुर निव निव लागो पाए देहो दिखारिया। मैं किए मित्र अनेक इकस बलिहारिया, सब गुण किसी नाहे हर पूर पंडारिया। चौ दिस जपिए नाउ सूख सवारिया, मैं आही और तुहार नानक बलिहारिया। गुर काढ़ियो पूजा पसार मोह कुपारिया, मैं जीत्यो जन्म अपार बहुर नहारिया। मैं पायो सर्व निदान अकत कथारिया, हर दरगे शोभावंत बाल उडारिया। जन नानक लगा रतन अमोल अप

नारायण हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, राव तज हो मैं गुरु ज्ञान पजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दी सह सो संग न गयो, साकत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रव रहे, कोट मदे किने गुरमुख लयो, हर संतन कर नमो नमो, नौ निद पावे अतुल सुखो, नैन अलोवो साध जनो, हृदय गावो नाम निदो, काम क्रोध लोभ मोह तजो, जन्म मरण दोहते रहो, दुख अंधेरा करते मिट्यो, गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो, जिन सेव्या सो पार परयो, जन नानक गुरमुख जगत करयो। महला पंजवा गौड़ी, हर हर गुर गुर करत परम गए, मेरे मन सब सुख पायो, रहाओ बल तो जल तो तौ क्या, गुर चंदन शीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया, गुर ज्ञान दी पायो, पावक सागर गहरो, चर संतन।

हम कर्म ना कर्म सुच प्रभ गह पूजा अपायो पौ खंडन दुख पंजनो भगत वचल हर नायो अनाथ नाथ किरपाल दीन समरथ संत ओटायो निर्गुनी आरे की बेनती देहो दरस हर आयो नानक शरण तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो। गौड़ी महला पंजवा रंग संग बिखिया के पोगा इन संग अंध ना जानी हौ संचो हौ खाटता सगली अवध बिहानी रहाओ हौ सूरा प्रधान हो को नाही मुझे समानी जो बनवंत अचार कुलीना मन में होए गुमानी जो उलझायो बाद बुद्ध का मर्त्या नहीं बिसरानी पाई मीत बंदव सके पाछे तिन्हों को संपानी जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी आंग बुद्ध सुच कर्म कर ए बंधन बंदानी दयाल पुरख।

मुंद रैन दुहे लड़िया जियो नींद ना आवे सातन दुबलिया जियो पिर कै हावे तन थी दुबल कंक हावे केव नैनी देखे सिगार मिठ रस भोग भोजन सब झूठ किते ना लेखे मैं मत जोबन गर्भ गाली दुद्दा थनी ना आवे नानक सातन।

बिन करवास नाही पुछो सखी सहेलिया, बिन नाम प्रीत प्यार नाही वसे साथ सुहेलिया। सच मन सज्जन संतोख मेला, गुरमति सो जानिया नानक नाम ना छोड़े सातन नाम सहज समानिया। मिल सकी सहेलड़ियो हम पिर रावे हा, गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द स्नेहा। शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया, निकस जातो रह अस्थिर जाम सच पछाणिया। साच की मत सदा नौतन

हम कर साजने आया, मिलवर नारी मंगल गाया, गुण गाए मंगल प्रेम रहती, मुंद मन उमा हो, साजन रहन से दुष्ट व्यापे, साच जप सच लाहो, कर जोड़ सातन करे बिनती, रैन दिन रस पिनिया, नानक पिरता।

सुनना प्रभु जियो एक लड़ी बनवाहे, क्यों ती रहगी ना बिना प्रभु वे परवाहे। तन ना बाजो रह न साके बिखम रहन कनेरिया, नह नींद आवे प्रेम पावे सुन बेनंती मेरिया। बाजो प्यारे कोई न सारे एक लड़ी कुर लाए, नानक सा तन

हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे किसी का सो होवे पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल तोवे नाम बिना गत कोई न पावे हाथ निग्रह बेबाने नानक सच कर शब्द सिंजापे दुबदा महल के जाने तेरा नाम सच्चा जियो शब्द सच्चा विचारो तेरा महल सच्चा जियो नाम सच्चा वापारो नाम का वापार मीठा भगत लाहा अंदिनो जिस बाज वखर कोई ना सूजे नाम लेवो खिन खिनो परख लेखा नदर साची कर्म पूरे पाया नानक नाम।

तन बिनो करे जियो हर के गुण सारे खिन पल रह न सके जियो बिन हर प्यारे बिन हर प्यारे रह न सके गुर बिन महल न पाई है जो गुर कहे सोई पर की जय तिसना अग्न बुझाई है हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवे सुख न पाए नानक सा तन मिले मिलाई जिसनो आप मिलाए तन रैन सुहेलड़िए जियो हर स्यो चित लाए सतगुरु सेवे पाओ करे जियो विच्चों आप गवाए विच्चों आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा पाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर के शब्द समाओ हर गुण सारी ताकंत प्यारी नामे तरी प्यारो नानक कामन ना प्यारी राम नाम गलहारो तन एक लड़ी जियो बिन ना प्यारे दूजे पाए मुठी जियो बिन गुर शब्द करारे बिन शब्द प्यारे।

नानक कामन सदा रंग राती, हर जियो आप मिलाए। ता मिलिए हर मेले जियो, हर बिन कौन मिलाए। बिन गुर प्रीतम अपने जियो, कौन परम चुकाए। गुर परम चुकाए, यूं मिलिए माए, तासा तन सुख पाए। गुर सेवा बिन कोर अंधार, बिन गुर मग न पाए। कामन रंग राती सहजे माती, गुर कै शब्द विचारे। नानक कामन हर वर पाया।

कापड़ तन ना सुहाए, कापर तन सुहावे जा पिर पावे, गुरमति चित लाये सदा सुहागन जा सतगुर सेवे, गुर के अंक समाये गुर शब्द मेला ता पिर रावी, लाहा नाम संसारे नानक कामन ना प्यारी, जा हर के गुण सारे सा तन रंग माने जियो अपने नाल प्यारे, एनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे, गुर शब्द विचारे हों मैं मारे, इन बिद मिलो प्यारे सा तन सुहागन सदा रंग राती, साचे नाम प्यारे अपने गुर मिल रही है अमृत गई है, दुबदा मार निवारे नानक कामन हर भर।

गुरु शब्द सेवे सच समावे, विच्चों हो मैं मारे हर का नाम हृदय वसाए, ऐसा करे सिगारो नानक कामण।

पानी अन्न न पावे मरिए हावे बिन फिर क्यों सुख पाए। गुर आगे करो बिनंती जे गुर पावे ज्यो मिले तिवे मिलाये आपे मेल ले सुखदाता आप मिलिया करे।

हर कह सह सुवाए, मन मोहन मोहलिया जियो दुबदा सह समाए, दुबदा सह समाए कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए, एहो शरीर कूर कुसत परिया गल काई पाप कमाए, गुरमुख भगत जित सहज तुन उपजै, बिन भगती मैल न जाए, नानक कामन पिरै।

स्त्री पुरुष काम व्यापे जियो राम नाम की विद नहीं जानी। मात पिता सुत पाई खरे प्यारे जियो डूब मोए बिन पानी। डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी। हो मैं ताप संसारे जो आया सो सबको जासी। उबरे गुर विचारे गुरमुख होवे राम नाम वखाणे। आप तरह कुल तारे नानक नाम वसे कट अंतर। गुरमत मिले प्यारे राम नाम बिन को थिर नाही। जियो बाजी है संसारा दृढ़ भगत सच्ची जियो। राम नाम वा पारा राम नाम वा पारा अगमा पारा। गुरमति तन पाई है सेवा सुरत भगत के साची। विचों आप गवाई है हम मत हीन मूरख मुगद अंधे। सतगुरु मार्ग पाए नानक गुरमुख शब्द सुहावे। अंदिन हर गुण गाए आप सराय करे आप जियो। आपे शब्द सवारे आपे सतगुरु आप शब्द जियो। जुग जुग भगत प्यारे जुग जुग भगत प्यारे हर आप सवारे। आपे भगती लाए आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए। आपे गुण दाता अवगुण काटे हृदय नाम वसाए। नानक सद बलिहारे।

साद गवाए, सदा हर रस पाए, जहाँ हर पाए, रसना सब सुहाए, नाम प्याए सदा सुख पाए, नाम रहे लीलाए, नामे उपजय नामे दिन से नामे सच समाए, नानक नाम गुरु।

दूजे किने सुख न पायो पिरा जियो बिख्या लोभ लुभाए बिख्या लोभ लुभाए परम पुलाए ओ क्यों कर सुख पाए चाकरी विदानी खरी दुखाली आप वेच कर्म गवाए माया बंधन टिके नाही छिनछिन दुख संताए नानक माया का दुख तदे चूके जा गुर सबदी चितलाए मन मुख मुकुट गवार पिरा जियो शब्द मन ना वसाए माया का परम अंग पिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए क्यों मार्ग पाए बिन सतगुरु पाए मन मुख आप गणाए हर के चाकर सदा सुहेले गुर चरणी चित लाए जिसनो हर जियो कृपा करे सदा हर के गुण गाए नानक नाम।

मन आस दर्श निमानिया सास सास ना करी विसरे पल मूरत दिन राते नानक सारंग ज्यो प्यासे क्यों मिलिए प्रभु दाते। एक बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे मेरा मन तन मोह लिया जियो देख चलत तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों ती रहे गुणवंत ना दयाल बाला सर्व गुण भरपूर है फिर दोष नाही सुखै दाते हो विछड़ी बुरे आरे बिनवंत नानक दया तारो कर आवो नहा प्यारे। हो मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हो।

रहे। जहाँ साध संत एकत्र हो गए हैं तहाँ तुझे त्यावे। कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा, बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली, मोहन तू माने एक जी अवर सब राली। माने ता एक अलेख ठाकुर जिन्हें सब कल तारिया, खुद बचन गुर कह वस किया आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहया आप सब कल तारिया, बिनवंत नानक पैज राख।

तेन दाना जमकाल तिन को लगे नाही जो एक मन त्यावे मन बचन कर्म जे तुद आराधे से सबे फल पावे मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर सो ज्ञाना बिन वंत नानक राज निचल पूरन पुरुष भगवाना मोहन तू सुफल फलिया।

बेअंत गुण तेरे कथे न जाहे, सतगुरु पुरख मुरारे बिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरिया संसारे। गौरी महला पंजवा श्लोक। पतित असंख पुनीत कर पुने पुने बलिहार, नानक राम नाम जप पा।

प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम अपारो शरण जोग समरथ मोहन सर्व दोख बिदारो रोग सोग सब दोख बिनसे जपत नाम मुरारी बिनवंत नानक करो कृपा समरथ सब कल धारी गुण गाओ मना अचुत अविनाशी सबके ऊंच दयाला दिसंबर देवन को एक सर्व करे प्रतपाला प्रतपाल महादयाल दाना दया तारे सब किसे काल कंटक लोभ मोह नाशे जी जाके प्रभु बसे सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूरन काला बिनवंत ना।

हर संते मान त्याग कर भगत खगौरी मोहे साधु मनते सखी वस आया फिर छोड़ न जाई ते रीत पली भगवंत नानक जरा मरण।

गोविंद गाय कल कलेश मिटे क्रम नासे मन चिंदिया फल पाई है पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर नानक नाम ते आई है। सखी इच्छ करी नित सुख मनाई प्रभु मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख मिलाए नानक तिन मिलिया सुर।

परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन गुरुदेव बंदक सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत्र निरोधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूर पापी जित लग करा गुरुदेव सत गुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा श्लोक आपे किया कराया आपे करने जोग नानक एक और रव रहा दूसर हुआ न होग पौड़ी ओं साध सतगुर नमस्कार आद मद अंत निरंकार आपे सुन आपे सुख आसन आपे सुनत आप ही जासन आपन आप आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो आपे सुखम आपे अस

पौड़ी ओम गुरुमुख कियो अकारा एक सूत पर ओवन हारा तिन तिन त्रै गुण विस्तारं निर्गुण ते सरगुण दिष्टारं सगल पाप कर करे उपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दोहू पाप ते आप निरारा नानक अंत न पारा वारा। श्लोक से सहा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन के पास। पवड़ी सत्सा सत सत सत सौ सत पुरख ते पिन न को सौ शरण परे जे पायं सिमर सिमर गुण गाय सुनायं संशय परम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप पाहु को जापत सो साधु ए पहुंचन हारा नानक ता कह सद बलिहारा। श्लोक तन तन कहां पुकारते माया मोह सब कूर

रुच लिया मनुआ तन नहीं बांचे सुर्ग न आछे अत प्रे प्रीत साद रज राचे तंदे कहां व्यापे ताहो जो एक छाद अनकते न जाहो जा कहिय दियो प्रभ नाम नानक साध पूरन भगवान। श्लोक अनिक पे

आज्ञा दृढ़ जाके उसन सीत समसर सब ताके ज्ञानी तत् गुरुमुख बिचारी नानक जाको कृपा धारी। श्लोक आमन आए सृष्ट में बिन बूझे पस्तोरे।

आया गर्भ कुंड में उर्ग तप करते सास सास सिमरत प्रब रहते उर्ज परे जो छोड़ छदाना देवन हार मने बिसराना तारो कृपा जिसे गुसाई इत उत नानक तिस बिसरो नाही श्लोक आव

कहो उपाया जाते तरो विथम ए माया कर कृपा सत्संग मिलाए नानक ताके निकट न माए। श्लोक किरत कमावन शुभ अशुभ कीने तिन प्रभ आप बस आपन हो।

या जुग जित जित आपे लायो सो सो पायो जो आप दिवायो ओवा का अंत न जाने को जो जो करे सो फुन हो एक के सगला विस्तारा नानक आप सवार नहारा। श्लोक रात

0: पौड़ी
1: रे मन बिन हर जय रचो कहते बंधन पाहे जे विद कतहु ना छूटी है।

जोड़ा ते रंग एक कै नानक गूड़ा रंग पौड़ी रारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना रे रे दरगे कह न को आओ बैठ आदर सुख देऊ।

या माया में जन्मे मरना, जो जो हुक्म तिवे त्यों करना, को ऊन ना को पूरा, को सुगर ना को मूरा, जित जित लावो तित।

को गमिये जास रसन हर हर जस पन्ने आए बसे साधु के संगे आम दिन नाम त्यावे रंगे आवत सो जल नामे राता जाको दया मया विदाता एक आवन फिर जोन ना आया नानक हर के दर्श समाया श्लोक यास जपत मन होए आनंद बिनसे दूजा पाओ दुख दर्द किसना बुझे नानक नाम समाओ। पौड़ी यैया जारो दुर्मत दो किसे त्याग सुख सहजे सो यैया जाए परो संत सरना जे आसर एया पव जल करना यैया जन्म ना आवे सो एक नाम ले मने परो यैया जन्म ना हारिये गुरपुरे की टेक नानक ते सुख पाया जाके ही रह एक। श्लोक अंतर मन तन बस रहे पीत ऊत के बीत गुरपुरे उपदेशया नानक जपिये नीत। पौड़ी अंदिन सिमरो तास को जो अंत सहाय होए ए बिखिया दिन चार छे छार चलो सब कोए ताको मात पिता सुत दिया ग्रे बनता कछ संग न लिया।

पूरक कुंभक रेचक कर माता ज्ञान ध्यान तीर्थ स्नानी सोम पाक अपरस उद्यानी राम नाम संग मन नहीं एता जो कछ तीनों सौ अनेता ओ आते उत्तम गनो चंडाला नानक जे मन बसे गोपाला। श्लोक कुंट चार दह दुष्प्रमे कर्म किरत की रेख सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख। पौड़ी तक्का कारण करता सो लिखियो लेख न मेटत को नहीं होत कछ दो बारा करने हार न पूलन हारा काहू पंथ दिखारे आपे काहू उद्यान परमत पछतापे आपन खेल आप ही कीनो जो जो दीनो सो नानक लीनो। श्लोक खात खर्चत बिलछत रहे टूट न जाहे पंडार हर

खर्च खजाना नाम तंग या भगतन की रास खिमा गरीबी आनंद सहज जपत रहे गुणतास खेले बिकसे अनद स्यों जा को होत कृपाल सदीव गनीव सुहावने राम नाम गृहमाल खेद न दुख न दान ते।

लोग आस अनित गुरुमुख मिटाए नानक नाम अरोग पौड़ी गद्दा गोविंद गुण रमो सास सास जपनीत कहां विशासा देह का विलम न करहो मीत न बारक न जोगने न बिरदी कछ बंद ओ बेरा न बूझिए जो आए परे जम

गुर प्रसाद सिमरत रहे जाहू मस्तक पाग नानक आए सफल ते जाको प्रिय सुहाग। श्लोक कोठे शास्त्र देव सब आन न कस्तो कोए आप जुगा दी हुन होवत नानक एक कै सोए पौड़ी।

है चरना काल काल अनेक पछतावे बिन हर भगत कहा थित पावे कोल महारस अमृत ते पिया नानक हर गुरु जाको दिया। श्लोक काले सब दिवस।

काल के जो साकत प्रवकीन अनेक जोन जन्मे मरे आत्म राम न चीन ज्ञान ध्यान ताहु को आए कर कृपा जी आप दिवाए गणती गणी नहीं को छूटे काची गागर सर पर फूटे सो जीवत जे जीवत जपया प्रगट पे नानक ने छपया श्लोक चित चित वो चरणार बिंद ऊद कवर बिग सांत

सभागा चार कुंट देह दुष्क्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो। चार विचार बिन सो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ चिंत

पौड़ी जजा जाने हो कछुआ बांध्यो जो नलनी प्रम सुआ जो जाने हो भगत ज्ञानी आगे ठाकुर तिल नहीं मानी जो जाने मैं कथनी करता व्यापारी बसदा जो फिरता साध

बिनस्तो कास्यो करिए संग ज्ञानो या विद सही चित झूठो माया रंग। ज्ञानत सोई संत सोए प्रमते की चत पिन अंधकूप ते तेह कढ़ो जे होवो सो प्रसन्न। ज्ञा कै

या डेरा को श्रम कर काले जाका तसू नहीं संग चाले। ओ आडेरा की सो मित जाने जाको दृष्ट पूरन भगवान है डेरा ने चल सच।

साध संग अहं बुद्ध विकराल सुख पावो सहजे बसो दर्शन देख निहाल। तेरी जा मैं जम मरे गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपतत रहे हों हों आवे जाए। तहत तहत अब

मनुआ जी तै हर मिले ते सूरतन वेश। ना को जाने आपनो एक टेक आधार, रेण दिन सिमरत रहे सो प्रभ पुरुष अपार। रेण सगल या मन करे एऊ कर्म कमाए, हुक्मे बूझे सदा सुख नानक लिखिया पाए। श्लोक। तन मन तन अर्पो तिसे प्रभु मिलावे मोहे, नानक प्रम को काटी है चूके जमकी जो। पौड़ी। तत्ता तास्यों प्रीत कर गुण निद गोविंद राय, फल पावे मन बाँचते तपत तुहारी जाए। त्रास मिटे जम पंथ की जास बसे मन नाओ, गत पावे मत होए परगास मैली पावे ठाओ। ताहू संग न तन चले ग्रे जोबन ने राज, संत संग सिमरत रहो यह तुहारे काज। ताता कछु न होई है जो तात निवारे आप, प्रतपाले नानक हमें आपे माई बाप। श्लोक। थाके बहु विध काल ते तृप्त ना तृष्णा लाथ, संच संच साकत हुए नानक माया ना साथ। पौड़ी। थथा थिर को नहीं काय पसारो पाव, अनिक बंच बल छल करो माया एक यो पाव। थैली संचो श्रम करो थाक परो गावार, मन के कामना आवई अंते अवसर बार। हित पावो गोविंद पजो,

नानक नाम ते आईए कारज आवे रास पौड़ी। तद्दा तावत तो मिटे संत संग होए बास तुरते।

जाके मन तन नाम बसाही, नाम निधान गुरुमुख जो जपते, बिख माया में ना ओए खपते। नन्ना कार ना होता ता कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो। निध निधान हर अमृत पूरे, तह बाजे नानक अनहद तूरे। श्लोक

कौड़ी। पत्ता परमित पार न पाया, पतित पावन अगम हर राया। होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपे मिल साधु। पर पच त्रोह मोह मिटनाई, जाको राखो आप गुसाई। पात साओ छत्र सिर सो, नानक दूसर अवर्ण को। श्लोक। फाहे काटे मिटे गम, फते पई मन जीत। नानक गुर ते थित पाई, फिरन मिटे नितनीत। पौड़ी। फफा फिरत फिरत तू आया, दुर्लभ दे कल युग में पाया। फिर या अवसर चरे न हाथा, नाम जपो तो कटिए फासा। फिर आवन जान ना होई, एक जपो जप सोई। करो कृपा प्रभु।

तैं पंजन अग दुख नास मने अराद हरे संत संग जे रिद बस्यो नानक तेना प्रमे पौड़ी पब्बा परम मिटावो अपना या संसार सगल है सुखना परमेश्वर नर देवी देवा परमेश्वर साधिक ब्रह्मेवा परम परम मानुख डह काए दुत्तर महा विखम ए माए गुरुमुख

मन मूर्ख कह करें पुकार। जो मांगे तो मांगे दिया, जाते कुशल न काहू थिया, मांगन मांगता एक मांग, नानक जाते।

दुख सुख ओआ के समत विचारा, नरक सुर्ग रहत अवतारा। ताहू संग ताहू निर्लेपा, पूरन कट कट पुरख विशेखा। ओआ रस में ओआहू सुख पाया, नानक लिपत नहीं ते माया। श्लोक। यार मीत सुन साजनो, बिन हर छूटन नाहे। नानक ते बंधन कटे, गुर की चरणी पाहे। पौड़ी। यैया जतन करत बहु विदिया, एक नाम बिन कह लोस दिया। याहू जतन कर होत छुटारा, वाहू जतन साध संगारा। या उबरन तारे सबको, वाहे जपे बिन उबर न हो। याहू तरन तारन समराथा, राख लेहो निर्गुण नरनाथा। मन बच कर्म जे

पौड़ी। हेरो काट काट सगल कै पूर रहे भगवान, होवत आए सद सदीव दुख पंजन गुर ज्ञान। हौ छुटकै होए आनंद ते हौ नाही ते आप, हटे दुख जन्म मरन संत संग परताप। हित कर नाम दृढ़ दयाला, संते संग होत कृपाला, पूरे कछु न किन्हू किया, नानक सब कछ प्रभु।

बेगाना अल्प मत जियो पिंड जिन सुख दिए ताहे न जानत तत। लाहा माया कारने दैद स्टूडन जाए देवन हार दार प्रभ निमख न मने बसाए। लालच झूठ बिकार मोह या संपे मन माहे लंपट चोर निंदक महा तिन्हों संग बिहाए। खुद पावे ता बख्श ले खोटे संग खरे नानक पावे।

मिलत सतगुरु बचन समाए, खिमा गई सच संचयो खायो अमृत नाम, हरि कृपा ठाकुर भई अनद सुख विश्राम, खेत निबाही बहुत लाभ कर आए पतवंत, खरा दिलासा गुर दिया आए मिले भगवंत, आपन किया करें आप आगे पाछे आप, नानक सो सराही है जे कट कट रहा ब्याप। श्लोक आए प्रभ शरणागति कृपा निद दयाल, एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी अखर में त्रिभवन प्रभ धारे, अखर कर कर वेद विचारे, अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन वख्याना, अखर मुक्त जुगत पै परमा, अखर कर्म कीर्त सुच परमा, दृष्टमान अखर है जेता नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। श्लोक हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती, पुस्तक कह न जाए।

ये निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है भी होवन हार, हे संत के सदा संग, निधारा आधार। हे ठाकुर हूँ दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोए, नानक दी जय।

जन गुरुदेव बंदत सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत्र निरोधरा गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभु।

प्रभ के सिमरन दुख जन वसे, प्रभ के सिमरन काल पर हरे, प्रभ के सिमरन दुश्मन तरे, प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागे, प्रभ के सिमरन अंधन जागे, प्रभ के सिमरन पाव न व्यापे, प्रभ के सिमरन दुख न संतापे, प्रभ का सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग, प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध, प्रभ के सिमरन जप तप पूजा, प्रभ के सिमरन विनसै दूजा, प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ के सिमरन दरगे मानी, प्रभ के सिमरन होय सो भला, प्रभ के सिमरन सो फल फला, से सिमरन जिन आप सिमराए, नानक का कैला गुपाए, प्रभ का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभ के सिमरन उदरे मूचा, प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभ के सिमरन सब किछ सुझे, प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ के सिमरन पूर्ण आशा, प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नामृत माहि सुनाए, प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरे से तनवंते, प्रभ को सिमरे से पतवंते, प्रभ को सिमरे से जन प्रवान, प्रभ को सिमरे से पुरुष प्रदान, प्रभ को सिमरे से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभ को सिमरे से सुखवासी, प्रभ को सिमरे सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला, प्रभ को सिमरे से परोपकारी, प्रभ को सिमरे तिन सद बलिहारी, प्रभ को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरे तिन सुख बिहावे, प्रभ को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरे तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरे तिन अनंत घनेरे, प्रभ को सिमरे बसे हर नेरे, संत कृपा ते अंदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभ के सिमरन कारज पूरे, प्रभ के सिमरन कभो न झूरे, प्रभ के सिमरन हर गुण बानी, प्रभ के सिमरन सहज समानी, प्रभ के सिमरन निचल आसन, प्रभ के सिमरन कमल विगासन, प्रभ के सिमरन अनहद जुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार, सिमरे से जन जिन को प्रभ नया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर पगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेत उपाय, हर सिमरन तय सुध जति दाते, हर सिमरन नीच चौ कुंट जाते, हर सिमरन तारी सर करना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरुमुख हर सिमरन तिन पाया श्लोक, दीन दर दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभु साथ, अष्टपदी, जय मात पिता सुत नीत न भाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाई, जय मां प्यान दूत दम दले, ते केवल नाम संग तेरे चले, जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माए उदारी, अनित पुने चरण कर्त नहीं तरे, हर को नाम कोट पाप पर हरे, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख घनेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया, लाख करोरी वंदना करे, हर का नाम जपत निस्तर है, अनेक माया रंग सिखना बुझावे, हर का नाम जपत आभावे, जे मार के हो जात इकेला, ते हर नाम संगोत सोएला, ऐसा नाम मन सदा ते आई है, नानक गुरुमुख परम गत पाई है, छूटत नहीं कोट लखबाही, नाम जपत ने पार कराही, अनेक विघ्न जय आए संगारे, हर का नाम तत्काल उधार है, अनेक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हौ मैला मल कभो न धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नाम पाये साध के संग, जे मार्ग के गने जाए न कोसा, हर का नाम उहा संग तोसा, जे पैंदे महा अंग गुबारा, हर का नाम संग जियारा, जहां पंख तेरा को न जानू, हर का नाम तह नाल पहचानू, जय महा प्याम कपट बहु काम, तय हर के नाम की तुम
परछाम जहाँ त्रिखामन तुझ आकर खै तह नानक हर हर अमृत बरख है। भगत जना की बरकर नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जम कोट हर जस पर संत दिन रात हर हर औसत साध समात हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन के बिरत विवेक है। हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर के नाम जन को तृप्त भूत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत तब करे न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन सो बापाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत पछवाए वियोग जन वाता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन के माल खजीना हर तन जन को आप सब दीना हर हर जन के ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रसमाते आठ पैर जन हर हर जपे हर का पगत प्रकट नहीं छपे हर की पगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते तरे पार जात ए हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सबसे उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लखा नाम की महिमा संत रिद वसे संत प्रताप दीर्घ सब नसे संत का संग वड भागी पाये संत की सेवा नाम ध्याये नाम तुल कछ अगर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए। श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ज्ञान खत शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनेक प्रकार की ये बहु जतना पुन दान हो में बहु रतना शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्त नेम करे बहु पासी नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिरजीव महा उदास कपि सरथीव अगन माए होमत प्राण कनक अश्व है वर भूम दान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संजम अच्छादन निमक निमक कर शरीर कटावे तो भी हो मैं मेल न जावे हर के नाम संसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गप पाहे मन कामना तीरथ दे छुटे गर्भ गुमान न मन ते हुटे सोच करे दिन अर रात मन की मैल न तनते जात इस देही को बहु साधना करे मन से कभू न बिख्या करे जल तो वह बहु दे अनीत शुद्ध कहा होए काची वीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतित बहुमूच बहुत श्यान जम का पौ व्याप है अनेक जतन कर प्रसन्ना ध्याप है पेट अनेक अगर नहीं बुझे कोट उपाव दर गहनी सिजाय छूट अपना ही ऊप बयाल मोह व्याप है माया जाल अवर करतूत सगली जमदान गोविंद पदन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सह सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे साफ जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी शोभा लोरे साध संग ए हो मैं चोरे जे को जन्म मरण से डरे साफ जना की सरनी परे जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक का कह बल बल जासा सगल पुरुख में पुरुख प्रदान साफ संग जा का मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गनी है सबसे ऊंचा जा का मन होए सगल की रीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना देखे सगल सृष्ट साजना सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेता निर्तन को तन तेरो नाओ निथावे को नाओ तेरा थाओ निमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटा को देवो दान।

अंतर जामे अपनी गत मुख जानो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी उस्तक तुमते होए नानक अवर न जानस कोए सर्व कर्म में श्रेष्ठ कर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग जुर्मत मल हिरिया।

उबारिया बाल व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोवन भोजन सुख सूद बिर पया ऊपर साख सैन मुख प्याओ बैठ को देन त्यों निर्गुण गुण कछु न बूझे बख्श लियो तो नानक सीजे जे प्रसाद तर ऊपर सुख बसे सुत प्रात मीत बनता संग हसे जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमूला जे प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करम नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंग व्यापे नानक काज लेहो प्रव्यापे आद अंत जो राखनहार तिस्यो प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नव निध पावे तास्यो मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर सब सदा हजूरे ताको अंदा जानत दूरे

संग मचे। जो छदना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर कराने। छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाई तिसका हरे। चंदन लेप उतारे धोए, गर्द प्रीत पसंद संग होए। अंधकूप में पतित विकराल, नानक काट लियो प्रभु दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। बाहर पेट अंतर मल माया, छप सुनाए कछ करे छिपाया। बाहर ज्ञान त्याग स्नान, अंतर व्यापे लोभ सुवान। अंतर अगन बाहर तन सुहा, जल पाथर कैसे करे अथाहा। जाके अंतर बसे प्रभ आप, नानक तेजम सह समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गए लो और निभावे। कहां बुझारत बूझे डोरा, निष्कैय तो समझे पोरा। कहां बिशन पद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुरभंग। कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं होत उहा उस गवन। करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा करे। संग सहाई सो आवे ना चीत, जो बैराई तासो प्रीत। बलुआ के गृह पीतर बसे।

त्याहु जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर करम। तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बार तेरे तुमरी कृपा में सुख गनेरे।

पर बताओ सो जो लावे ने ताको हाथ ना आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या तन तन कुटुंब सबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या।

करत गुमान, अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे। मिथ्या नेत्र पेखत

सब ताके जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु ऊचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद अपूखन कहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अस्वहस्त अस्वारी मन किस प्रभु को कभू ना बिसारी जे प्रसाद बाग मिलख तना रात पर होए प्रभु अपने मन

पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस कहै। जे प्रसाद सुने करन नाद, जे प्रसाद पेखे विस्माद, जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजे बसना, जे प्रसाद हस्त कर चले, जे प्रसाद संपूर्ण फले, जे प्रसाद परम गत पावे, जे प्रसाद सुख सह समावे, ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो, गुर प्रसाद नानक।

खोत साध के संग मिटै अभिमान, साध के संग प्रगटे सो ज्ञान, साध के संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब होत निवेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माए समानी, साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ल है,

साधु कैसं कद कद जीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पै हमारी, साध कैसं मिटे सब रोग, नानक साध पेटे।

दर्श बड़ पागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाये, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माहे।

आप ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उर्दारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार है, नानक ओ अपरस सगल निस्तार है।

अष्टपदी, कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पय तीर्थवासी, कई कोट वन क्रमे उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आपम ध्यान तारे, कई कोट कब काब विचारे, कई कोट नर्तन नाम ध्यावे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभिज आत्म निकोर।

जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख मिट जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत धारे, नारक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे, कई कोट राजस्ताम सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत हर शास्त्र, कई कोट

जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर न आवे। कहो मानस के क्या होए आवे, जो तिस पावे सोई करावे। इसके हाथ होए ता सब पिछले, जो तिस पावे सोई करे। अनजानत बिख्या में रचे, जे जानत आपन आप बचे। परने पूला दे दिस्तावे, निमक माए चार कुंट फिर आवे। कर कृपा।

गुर प्रसाद नानक सच कहे। कभू होए पंडित करे बखान, कभू मोन तारी लावे ध्यान। कभू तट तीर्थ स्नान, कभू सिद्ध साधक मुख ज्ञान। कभू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनेक जोन परमे परमिया। नाना रूप जो स्वादी दिखावे, जो प्रभ पावे तिवे न चावे। जो तिस पावे सोई होए, नानक दूजा वरना कोए। कभू साध संगत हो पावे, उस स्थान ते बहुर ना आवे। अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रते इक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग। जो जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु के सद्गुरु।

अष्टपदी, जिसके अंतरराग अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने में जो बनवंत सो होवत विस्ता का जंत।

संसार, अनित तपस्या करे अंकार, नरक सुरग सिर सिर अवतार। अनित जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगह कहो कैसे गवे।

तब इसको सुख नाही कोय। जब ए जाने में कुछ करता तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब तारे को बैरी नीत तब लग नेचर नाही चीत। जब लग मो मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए। प्रभु कृपा से बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे। सहस खटे लखो सावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनेक भोग दुखिया के करे न तृप्त आवे खप खप मरे। बिना संतोष नहीं को राजे सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे। नाम रंग सर्व सुख होए बड़ पागी किसे प्राप्त होए।

अपने चलित आप करने हार, कौतुक करे रंग अपार, मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभु स्वामी, गुर प्रसाद किने बख्यानी, सच सच सच सब कीना, कोट मदे किने बिरले चीना।

अष्टपदी संत के दुखन आरजा कटे हैं, संत के दुखन जमते नहीं छुटे, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन।

नानक संत पावे तां ले मिलाए। संत का दोखी अद बीच से टूटे, संत का दोखी किते काज ना पहुंचे। संत के दोखी तो उद्यान बरमाइए, संत का दोखी उजड़ पाइए। संत का दोखी अंतर ते थो था, जो सांस बिना मृतक की लो था। संत के दोखी की जड़ किछ ना है, आपन बीज आपे ही खाए। संत के दोखी को अवर ना राखन हार, नानक संत पावे ताले उबार। संत का दोखी यूं बिललाए, जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दोखी भूखा नहीं राजे, जो पावक ईंधन नहीं त्रापे। संत का दोखी छुटे अकेला, जो बुआर तिल खेत माहे दुएला। संत का दोखी तरम ते रहत, संत का दोखी सब मिथ्या कहत। कीर्त निंदक का तुरही पया, नानक ज्योतिष पावे सोई थिया। संत का दोखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दोखी को दरगह मिले सजाए। संत का दोखी सदा सहकाई है, संत का दोखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दोखी की पूजा ना आशा, संत का दोखी उठ चले निराशा। संत के दोख ना त्रिष्टे कोए, जैसा पावे तैसा कोई होए। पया किरत न मेटे कोए, नानक जाने सच्चा सोए। सब कर तिसके ओ करने हार, सदा सदा तुसको नमस्कार। प्रभ की उस्तत करो दिन रात, तिसे ते आवो सास विरास। सब कछवर तय तुसका किया, जैसा करे तैसा को थिया। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार। जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़ पागी नानक जन से श्लोक। तजो सियानक सुरजनो सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाए। अष्टपदी। मानुक की टेक बिरथी सब जान, देवन कोई क्या भगवान।

तें पाप जपिए हर बिंद कह हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानक उजल मथा बड़ता गीते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार से तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने इत उत कियो सो जी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिने निरंजन जानिया गुरु प्रसाद आपन आप सुजय तिसकी जानो तृष्णा बुझय साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओ हर जन रहत हम दिन कीर्तन केवल ख्यान ग्रस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटिए जन की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक किसे न लागे दुख जिसको हर प्रभु मन चित आवे सो संत सुहेला नहीं बुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक कहो किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सीजिया गुरु प्रसाद तक सब बुझिया जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सुखम सोई अस्थूल न किस जन्मे न किस मरे आपन चलित आप ही करे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनेक जुगत रखाप उथाप अविनाशी नाही किस खंड तारण तार रहे हो ब्रह्मंड अलख अभेद पुरुष प्रताप आप जपाए त नानक जाप जिन प्रभु जाता सो शोभावंत सगल संसार उदरे तिन मंत प्रभु के सेवक सगल उदारन प्रभु के सेवक दुख विसारन आपे मेल ले कृपाल गुरु का शब्द जप पे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करे बड़पा गए नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरुष को उत्तम करमान जो किछ करे सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुबाए होवे सो होए करने हार पछाने सोए प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उपजे तिस माहि समाए ओए सुख निदान उन्हों बने आए आप उसको आप दीनो मान नानक प्रभु जन एक को जान श्लोक

अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए जे सो प्राणी लोचै कोए तिस दिन नाही तेरे किछ काम गत नानक जप एक हर नाम। रूपवंत होए नाही मोह प्रभ की जोत सगल कट सो है धनवंता होए क्या को गर्व है जा सब किस किसका दिया दरबै।

जिस गुर प्रसाद तू तै हो रोग, नानक सोजन सदा अरोग। ज्यो मंदर को था मैं थमन, त्यो गुर का शब्द मने अस्थमन। ज्यो पाखान नाल चढ़ तरे, प्राणी गुर चरण लगत निस्तर। ज्यो अंधकार दी पत्तर गास, गुर दर्शन देख मन होए विगास। ज्यो महा उद्यान में मार्ग पावे, त्यो साधु संग मिल जोत प्रगटावे। इन संतन की बाँचो तूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूरख काहे बिललाये, पूर्व लिखे का लिखिया पाइये। दुख सुख कर देवन हार, अवर त्याग तू किस चितार। जो कछ करे सोई सुखमान, पूला काहे फिरे अजान। कौन बख्त आई तेरे संग, लपट रहे हो रस लोभी पतंग। राम नाम जप हृदय माहे, नानक पथ सेती कर जाहे। जिस वक्र को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। तज अभिमान लो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल। लाभ खेप संतन संचाल, अवर त्याग दिखिया जंजाल। तन तन कहे सब कोए, मुख उजल हर दरगे सोए। क्यों व्यापार बिरला व्यापार है, नानक का कह सब बलिहार है। चरण साध के तो पियो, अरब साध को अपना जियो। साध की तूर करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान। साध सेवा वड पागी पाइये, साध संहर कीर्तन गाइये। अनेक विघ्न पे साधु राखे, हर गुण गाय अमृत रस चाखे। ओट गई संतें दर आया, सर्व सुख नानक ने पाया। मृतक को जीवालनहार, पूखे को देवत आधार। सर्व निधान जा की दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लेना पाए। सब किस किस का ओ करने जोग, किस दिन दूसर हुआ न होग। जप जन सदा सदा दिन रहनी, सबसे ऊंच निर्मले करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोजन निर्मल थिया। जा के मन गुर की प्रतीत, किस जन आवे हर प्रवचीत। भगत भगत सुनिए ते लोए, जा के हृदय को होए। सच करनी सचा की रहत, सच हृदय सतमुख कैत। साची दृष्ट साचा आकार, सच वर्ते साचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। श्लोक रूप न रेख न रंग किछ, त्रिगुण ते प्रभु भिन्न। तिसे बुझाए नानका, जिस होवे सो प्रसन्न। अष्टपदी अभिनाश।

अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुर्मत मल हिरे गुर बचनी हर नाम उचरे सतगुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हाटे सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख वड़ पागी है सतगुर सिख का हल्क पलक सवार नानक सतगुर सिख को जी नाल समार गुर के गृह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कार्य रास सेवा करत होए ने कामी किसको हो प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मतले बीस विश्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म जन राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक है आप नहीं कछ भ्रम सह श्यान ले आना जाइए नानक ऐसा गुर बड़ पागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेखत संग राम गुण गवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुनकर वचन करन आघाने मन सुन दो खासम पतियाने पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखे हो संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जीवा एक पुस्तक अनेक सतगुर पूरन विवेक काहू बोल न पहुचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनेक भगत बंधन मुक्त करे चरण कमल हृदय सिमरे सब बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस पर साथ ऐसा प्रभ जतने क्यों हर रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुण पास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया के संग ना लेप मन में राखे हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक परम मोह दुख तैसे नासे तपत माए ठाठ वरताई अंध भया दुख नाठे भाई जन्म मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे पहुंचू का निरपौ होय बसे सगल व्याद मनते खैनते जिसका साथ तिन कृपा भारी साध संग जप नाम मुरारी थित पाई चूके क्रम गवन सुन नानक हर हर दस श्रवण निर्गुण आप सरगुण भी ओही कलाकार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जाना ही कोए सर्व निरंतर एक को सोए पोत पोत रव्या रूप रंग कहे प्रभा साध कै संग रच रचना अपनी कल तारी अनेक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चाले बिन भजन दिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक इहो धमसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपास पर मीत विसारो चरण कमल में उधार करण कारण सो प्रभ संगरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वत यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंठ उठ धावे सो तन हर सेवा ते पा

अपज है कीसरनी, अनेक उपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर औखद लाए, सर्व निदान में हर नाम निदान, जप नानक दरगह परवान, मंत्र गो दो हर कहनाए, दैद स्थावत आवे ठाए, ताको बिघन ना लागे कोए, जा कह हृदय बसे हर सोए, कल पाती ठांडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पौ बिन सह पूरन होए आस, भगत पाए आत्म प्रगास, चित कर जाए बसे अविनाशी, कहो नानक काटी जम फासी, तत विचार कहे जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा, आवागमन मिटे प्रभु सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव, त्यों रतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार, अनेक उपाव न छूटन हारे, सिमरत सास वेद विचारे, हर की पगत करो मन लाए, मन बंशत नानक फल पाए, संग ना चाल तेरे धना, तू क्या लगता में मूर्ख मना, सुत मीत कुटम अर्गनता, इनसे कहो तुम कर्म सनाता, राज रंग माया विस्तार, इनसे कहो कर्म छुटकार, अहस्ती रथ असवारी, चूठा डंप चूट पासारी, जिन दिए तुस बुझे ना बेगाना, नाम विसार नानक पछताना, गुर की मत तू ले आने, पगत बिना धो डूबे स्याने, हर की पगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारे चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल बिछ जाए, आप जपो अगरा नाम जपाओ, सुनत कहत रहत गत पाओ, सार भूत सत हर को नाओ, सह सुबह नानक गुन गाओ, गुन गाव तेरी उतरस मैल, बिनस जाए हो मैं विकफैल, हो है अचिंत बसे सुखनाल, साफ ग्रा सर नाम समाल, छाड़ स्यान सगली मना, साफ संग पावे सतधा, हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दरगे जयकार, सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख, एको जप एको सलाह, एको सिमर एको मन आहे, एक के गुण गाव अनंत, मंथन जाप एक भगवंत, एको एक एक हर आप, पूरन पूर रहो प्रव्याप, अनेक विस्तार एक ते भये, एक अराज प्राशक गए, मंथन अंतर एक प्रव्राता, गुरु प्रसाद नानक एक जाता, श्लोक, फिरत फिरत प्रभु आया।

हस्तपदी जाचक जन जाचे प्रदान कर कृपा देवो हर नाम। साधना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो साथ साथ प्रभ में ध्यावो। चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत। एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रसार। प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाख्या से जन तृप्ता में पूरन पुरख नहीं डोलाने। सुवर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध के संग। परे शरण आम सब त्याग अंतर प्रगास हम दिन लिवलाग। बड़ पागी जपिया प्रभ सोए नानक नाम रति सुख होए। सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभ होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख क्रम गया। इच पुनी सरदा सब पूरी रव रया सब संग हजूरी। जिस पासा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरे जे काल न पाने सो क्यों बिसरे जे की आ जाने। सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाखे। सो क्यों बिसरे जे बिखते काडे जन्म जन्म का टूटा गांडे। गुरपुरे सत्य है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो यो काम आम त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो। भगत पाए तर यह संसार बिन भक्ति तन हो सी छार। सर्व कल्याण सुख निदनाम बूढ़त जाप पाए विश्राम। सगल दुख का होत नाश नानक नाम जपो गुणकास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मंथन अंतर एहि सुआव। नेत्रों पेट दर्श सुख होए मन विकसे साध चरण तोए। भगत जना के मंथन रंग बिरला को पावे संग। एक बस दीजे कर माया गुरु प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कहीं न जाए नानक रहया सर्व समाए। प्रभ संग दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कर्त कृपाल। आद पुरुष कारण करतार भगत जना के प्राण आधार। जो जो जप है सो हो पुनीत भगत पाए लावे मनहित। हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरुष भगवान। सर्व वैकुंठ मुक्त मोक्ष पाए एक निमख हर के गुण गाए। अनेक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन भाई। बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत। फली सो करनी सो बातनवंत हृदय बसे पूरन गुरमंत। साध संग प्रभ देव निवास सर्व सुख नानक प्रगास। श्लोक हर गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप। आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब अकार यो कचना दृष्टि ताप पाप पुन तब कहते होता। जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकमात। जब इसका वरण चेन ना जापत तब हरक शोक कोक्षे व्यापक। जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत भरम। आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी।

तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे। आपन आप ही अचर जा, नानक आपन रूप आप ही उपर जा। जय निर्मल पुरुष पुरुष पत होता, तह बिन मैल कहो क्या चोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कौमान कौन अभिमान।

सारा बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा नानक आपस को आते पहुंचा। जय आप रचियो प्रपंच आकार त्यो गुण में कीनो विस्तार। पाप पुण्य तह पई कहावत कौ नरक कौ स्वर्ग बंछावत। आल जाल माया जंजाल होमे मोह परम तय पार। दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की योग ज्ञान। आपन खेल आप कर देख है खेल संकोच है तो नानक एक है। जय अवगत भगत है आप जय पसरे पासा संत प्रताप। दो पाप का आपे धनी उनकी शोभा उन्हों बनी। आपे कौतक करे अनंत चोज आपे रस को गन निर्जोग। जिस पावे तिस आपन ना इलावे जिस पावे तिस खेल खिलावे। बेसुमार अथा अगनत अतोले ज्यों बुलावो त्यों ना।

नानकिए को पसरिया दूजा कह विस्तार। अष्टपदी आप कहे आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार जात स्थावे ता सृष्ट उपाए अपने भाणे ले समाए कुंते पिन नहीं किछ होए आपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभु जीव आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तप का देता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंत्र सब का कह हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस तज अवर कहा को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जा कह सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निदान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप।

संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर करो हर तन के पर ले हो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार केम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद।

अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अनुलीक लाल ए रतन सुनत कमावत होत उधार आप करे लोके निस्तार।

शब्द अनाहद वाजे, सुन सुन अनद करे प्रभु राजे, प्रगटे गोपाल मात के माथे, नानक उदरे तिन के साथे

ज्ञान सर्व इच्छा ताकि पूरन होए प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए सबसे ऊंच पाए अस्थान बहु न होवे आवन जान हर तन काट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद्ध नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तें सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान

आस सुंदर चतुर तत्व का बेता संघर्षी एक दृष्टेता ए फल किस जन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपे मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतात केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा ते जम ते छुटे जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन

दुख रोग बिन से पे परम साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते ऊंचता की शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुखमनी सब ते ऊंचता की शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुखमनी।

से लाभ मिले तो ताहिर है हर दर गए पतवंत राम नाम तन संच वै साच सा भगवंत उठत बैठत हर पजो साधु संग परीत नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। श्लोक तीन ब्यापे जगत को तुरिया पावे कोय नानक संत निर्मल पये जिन मन वसया सोए। पौड़ी तृतीया त्रै गुण बिखे फल कब उत्तम कब नीच नरक सुर्ग प्रमतो कणो सदा संगारे मीच। हरक सोग सहसा संसार हौ हौ करत बिहाये जिनकी ये तिसे न जाननी चित में अनक उपाय। आद ब्याद उपाद रस कभो न टूटे ताप पार ब्रह्म पूरन तनी नह बूझे परताप। मोह परम बूढ़त कणो महानरक में वास कर कृपा प्रभ राख।

पौ बिन से अमृत रसे रंग रते निरंकार दुख दारद अपवित्रता नासे नाम आधार। सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला।

आए पंडार संत संगत में पाई है अंत न पारावार। आप तजो गोविंद पजो शरण परो हर राए, दुख हरे पव जल तरे मन चिंदिया फल पाए। आठ पैर मन हर जपे सफल जन्म परवा।

जम कंकर जोए न सकई, नानक प्रभु दयाल। पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नवनिध, सगल पदार्थ पूरन बुद्ध, कवल प्रगास सदा आनंद, निर्मल रीत निरोधर मंत, सगल धर्म पवित्र स्नान, सब में ऊंच विशेष ज्ञान, हर हर भजन पूरे गुर संग, जप करिए नानक नाम हर रंग।

प्रीत हर नाम न जपें करत विपरीत पर त्रै रमें बकें साध निंद करन न सुनही हर जस बिंद हिरे पर दर्ब उदर कहताई अगन न निवरे तृष्णा न बुझाई हर सेवा बिन ए फल लागे नानक प्रभु बिसरत मर जमें अपागे। श्लोक दस दिस खोजत मैं फिरियो जत देखो तत सोए मन बस आवे नानका जे पूरन कृपा होए। पौड़ी दसवीं दस द्वार बस कीने मन

एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्व जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखे इकठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए, सब में पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एव धर्म।

द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तज मान, हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रवरंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंच पू आत्मा हर नाम रस कोख है, गुर पूरे ते ए नेचो पाये, नानक राम रमत फिर जोन न आईये। श्लोक तीन गुणा में व्याप्या पूरन होत न काम, अतित उदाहरण मन बसे नानक छूटे नाम। पौड़ी त्रौदशी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन नाम मन में आयो, सुख सागर प्रभु निमख न गायो, हरख सोग का देह कर बांधियो, दीर्घ रोग माया आसादियो, दिने विकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर विसरत होवत ए हाल, शरण नानक प्रभु।

वैकुंठ प्रभ आप सगल पवन पूरन प्रताप दशे दिशा रविया प्रभ एक करण आकाश सब में प्रभ टेक जल थल वन पर्वत पाताल परमेश्वर तें बसे दयाल सूखम अस्थूल सगल भगवान नानक गुरुमुख ब्रह्म।

काम दुर्मत मिटी हो मैं छुटी सिमरत हर को नाम। शरण गई पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप तरे कुटुंब स्यो गुण गोविंद प्रभ रमन। हर की टहल कमावनी जपिए प्रभु।

हर राय मन चिंदे फल पाया, नानक हर गुण गाए पौड़ी। कोई गावे को सुने कोई करे विचार, को उपदेश है को दृढ़ है तिसका होए उदार। किलबिख का तय होए निर्मला, जन्म जन्म मल जाए हलत पलत मुख ऊ

सतगुर पुरख दयाल है जिसनो समत सब कोए, एक दृष्ट कर देखदा मन पावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है हर उत्तम हर पद सोए, नानक कृपा ते हर

रंग स्यों गुरुमुख हर गुण तास जन नानक हर शरणागति हर मेले गुर साबास। पौड़ी तू करता पुरख अगम है किस नाल तू वड़ी है तुद जेवड़ होए सो आखी है तुद जेहा तू है पड़ी है तू कट कट एक वर्तदा गुरुमुख पर गड़ी है तू सच्चा सब सदा खसम है सब दू तू चढ़ी है तू करें सो सच्चे।

जन नानक सुख सवन। महला चौथा, सतगुर दाता दयाल है जिसनो दया सदा होए, सतगुर अंदरों निर्वैर है सब देखे ब्रह्म इक सोए। निर्वैरा नाल जे वैर चलाएंदे तिन विच्चों तिस्तिया न कोए, सतगुर सबना दा कला मनाएंदा तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुरु नो जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोए, नानक करता।

बिन सतगुर सोजी ना पवै अंकार न विचों जाए अंकारिया नो दुख भुख है हाथ तड्डे कर कर मंगाए कूड़ ठगी गुज्जी ना रहे मुलम्मा पाज ले जाए जिस होवे पूरब लिखिया तिस सतगुर मिले प्रभ आए ज्यों लोहा पारस पेटी है मिर संगत सुवरन होए जाए जन नानक के प्रभ तू तनी ज्यों पावे तिवे चलाए पौड़ी जिन हर हृदय सेविया तिन हर आप मिलाए गुण की साज तिन स्यो करी सब अवगुण शब्द जलाए अवगुण विकण पलरी जिस देह सो सच्चे पाए बलिहारी गुरे आपने जिन अवगुण मेट गुण प्रगति आए वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए श्लोक महला चौथा सतगुर विच वड्डी वड्याई जो अंदिन हर हर नाम से आवे हर हर नाम रमत सुत संजम हर नाम ही तृप्तावे हर नाम तान हर नाम दीबाण हर नामो रख करावे जो चित लाए पूजे गुरमूरत सो मन इच्छे फल पावे जो निंदा करे सतगुर पूरे की तिस करता मार दिवावे फिर ओ वेला ओ हथ ना आवे ओ अपना बीजिया आपे खावे नरक कोर मुह काले खड़िया ज्यो तस्कर पाए गलावे फिर सतगुर की सरणी पवे ता उबरे जा हर हर नाम से आवे हर बाता आख सुनाए नानक हर करते एवे पावे महला चौथा पूरे गुर का हुक्म ना मन्ने ओ मनमुख अज्ञान मुठा बिख माया उस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझे अनहोंदे झगड़े दे उस दे गल पाया ओ गल परोसी करे बहु तेरी उस दा बोलिया किसे न पाया ओ कर कर हंडे जो रन दुहागन उस नाल मोह जोड़े उस भी लक्षण लाया गुरमुख होए सो अलिप सो वरते उस दा पाक छड गुर पाक बह जाया जो गुरगो पे अपना सो परा नाही पंचो उन लाहा मूल सब गवाया पहला आगम निगम नानक आप सुनाए पूरे गुर का बचन ऊपर आया गुर सिखा वड्या।

तिन अंदर पूर फिट फिट मोह फिके, ओए बोले किसे ना पावनी मोह काले सतगुर ते चुके। श्लोक महला चौथा, हर प्रभु का सब खेत है, हर आप किरसानी लाया, गुरमुख बस जमायन मन मुखी मूल गवाया, सबको बीजे अपने पले नो, हर पावे सो खेत जमाया, गुर सिखी हर अमृत बीजिया, हर अमृत नाम फल अमृत पाया, जम चूहा किरस नित कुरकदा, हर करते मार कढाया, किरसानी जमी पाओ कर, हर बोहल बख्श जमाया, तिनका काड़ा अंदेशा सब लायोन, जिनी सतगुर पुरख ते आया, जन नानक नाम आराध्या, आप तरिया सब जगत तराया। महला चौथा, सारा दिन लालच अटिया, मन मुख होरे गल्ला, राती ऊंगे दबिया नवे, सोत सब तिल्ला, मन मुखा दे सिर जोरा, अमर है नित देवे पला, जोरा दा आखिया पुरख कमाव दे, से अपवित अमेद खला, काम व्यापक सुद नर, से जोरा पुछ चला, सतगुर के आखिया जो चले, सो सत पुरख पल पला, जोरा पुरख सब आप उपायन, हर खेल सब खिला, सब तेरी बनत बनावनी, नानक पल पला।

नाम से आवे, जो सास विरास से आए मेरा हर हर, सो गुरु सिख गुरु मन पावे। जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी, तिस गुरु सिख गुरु उपदेश सुनावे। जन नानक तूर मंगे तिस गुरु सिख की, जो आप जपे अवरे नाम जपावे। पौड़ी, जो तुद सच त्याय दे से विरले थोड़े, जो मन चित इक अराद दे तिनकी बरकत खाए असंख करोड़े। तुदनो सब त्याय दी से थाए पए, जो साहेब लोड़े। जो बिन सतगुर सेवे खांदे पहन दे, से मोए मर जम्मे कोड़े। ओए हाजर मिठा बोल दे, बाहर विष कडे मुख खोले। मन खोटे दया विछोले। श्लोक महला चौथा। मल जूई परया नीला काला खिदोलड़ा, तिन वे मुख वे मुखैनो पाया। पास न दे कोई बहन, जगत में गू पड़ सगवी। मल लाए मन मुखाया, पराई जो निंदा चुगली। नो वे मुख कर कै पेजिया, ओथे भी मुह काला दुआ वे मुखा दा कराया। पर सुनिया सबत जगत विच पाई, वे मुख सने नफरे। पौली पौदी फावा होए कै उठ कर आया। अगे संगति कुड़मी वे मुख रलना ना मिले, ता वोटी पतीजी फिर आन कर पाया। हलत पलत दोवें गए नित पुखा कूके तिहाया। तन तन स्वामी करता पुरख है, जिन न्याओ सच बह आप कराया। जो निंदा करे सतगुर पूरे की, सो साचे मार पचाया। एहो अखर तिन आखिया, जिन जगत सब उपाया। महला चौथा। साहिब जिसदा नंगा पुखा होवे, जिसदा नफर किथों रज खाए। जे साहिब कै कर वथ होवे, सो नफरे हथ आवे। अनहोंदी किथों पाए, जिसदी सेवा कीती फिर लेखा मंगिए। सा सेवा औखी होई, नानक सेवा करो हर गुर सफल दर्शन की। फिर लेखा मंगे न कोई। पौड़ी, नानक विचार है संत जन, चार वेद कहन दे। भगत मुख है ते बोल दे, से वचन हो वंदे। प्रगट पहारा जापदा सब लोग सुनन दे। सुख न पायन मुग्ध नर, संत नाल खान दे। ओए लोचन ओना गुणे नो, ओए अंकार सरन दे। ओए विचारे क्या करें, जा पाग तुर मंदे। जो मारे तिन पार ब्रह्म, से किसे ना संदे। वैर करें निर्वैर नाल, धर्म न्याय पचंदे। जो जो संत सरापिया, से फिरें पवंदे। पेड मुंडा हूं कटिया, तिस नाल सुकंदे। श्लोक महला चौथा। अंतर हर गुरु त्याय दा वड्डी वड्याई, कुछ दित्ती पूरे सतगुरु कटे नाही। इक तिल किसे दी कटाई, सच साहिब सतगुरु के वल है। ता चक चक मरे सब लोकाई, निंदका के मोह काले करे हर करते आप वदाई। ज्यो ज्यो निंदक निंद करे, त्यों त्यों नित नित चढ़े सवाई। जन नानक हर आराध्या, तिन पैरी आन सब पाई। महला चौथा। सतगुर सेती गणत जे रखे, हलत पलत सब तिसका गया। नित चहिया पाए चगू सुटे, चखदा चखदा चढ़ पया। नित उपाव करे माया तन कारण, अगला तन पी उड़ गया। क्या ओ खते क्या ओ खावे, जिस अंदर सहसा।

पूरे सतगुरु से हुन सतगुरु मारे जे मेलन नो बहुते आलोचिए ना दे मिलन करतारे सत संगत तोई ना लहन विच संगत बुर विचारे कोई जाए मिले हुन ऊना नो तिस मारे जम जंदारे गुर बाबे फिटके से फिटे गुर अंगद की ते

कोई पुत्र सिख सेवा करे सतगुरु की तिस कार्य सब सवारे जो इच्छे सो फल पाए सी पुत तन लक्ष्मी खर मेले हर निस्तारे सब निधान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर्धारे सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत लिलारे जन नानक मांगे तूर तिन जो गुर सिख मित प्यारे। महला चौथा जिनको आप दे वड्याई जगत दी आपे आन तिनको पैरी पाए डरिये ता जे किछ आप दू कीचे सब करता अपनी कला वधाए देखो पाई इहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का जिन अपने जोर सब आन निवाए अपने आप भगता की रख करे हर स्वामी निंदका दुष्टा के मोह काले कराए सतगुर की वड्याई नित चढ़े सवाई हर कीरत भगत नित आप कराए आन दिन नाम जपो गुर सिखो हर करता सब

गुर सिखा के मोह उजले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार सबत कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए पौड़ी। तू सच्चा साहिब आप है सच हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रवण जारे थारे, सच सेवे सच वणंज ले गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लिखारे। श्लोक महला चौथा, जिस अंदर ताप पराई होवे किसदा कदे न होवी पला, उस दे आख्या कोई न लगे नित ओजारी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अनहोंदी पराई मोह कड न सके उसदा काला भया, कर्म करती शरीर कल युग विच जेहा को बीजे तेहा को खाए, गला ऊपर तपावस न होई विच खादी तत्काल मर जाए, पाई वेखो न्याओ सच करते का जेहा कोई करे तेहा कोई पाए, जन नानक को सब सोजी पाई हर दर किया बाता आप सुनाए। मेला चौथा, होंदे प्रतख गुरु जो विछड़े तिनको दर टोई नाहीं, कोई जाए मिले तिन निंदका मोह फिके थुक थुक मोह पाही, जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके, नित पंबल पूसे खाई जिन गुरु गोपिया अपना से लेंदे तहा फिराई, तिनकी पुख कदे ना उतरे नित पुखा पुख कुकाही, ओना दा आखिया को ना सुने नित हौले हौल मराही, सच गुर की वड्याई वेख न सकनी ओना अगे पिछे थाओ नाही, जो सतगुरु मारे तिन जाय मिले रेंदी खोंदी सब पत गवाई, ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके जे ओस मिले तिस कुष्ट उठाही, हर तिन का दर्शन ना करो जो दूजे पाए चित लाही, कुर करते आप लिख पाया तिस नाल क्यों चारा नाही, जन नानक नाम अराध तू तिस अपड़ को ना सकाही, नावे की वड्याई वड्डी है नित सवाई चढ़े चढ़ाई। मेला चौथा, जे होंदे गुरु बह टिकिया तिस जन की वड्याई वड्डी होई, तिसको जगत निव्या सब पैरी पया जस वर्त्या लोई, तिसको खंड ब्रह्मंड नमस्कार करें जिसके मस्तक हाथ करया गुर पूरे सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़े सवाई अपर को नास कोई, जन नानक हर करते आप बैठ क्या आपे पैज रखे प्रभ सोई पौड़ी। काया कोट अपार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वक्त संभाले, नाम निदान हर वणजी है हीरे परवाले, बिन काया जे होर से तन खोज दे से मूड बेताले, से उजड़ परम पवाये ज्यों चार मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा, जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग में होया, नरक कोर दुख खू है ओथे पकड़ को टोया, कूक पुकार को ना सुने को औखा होय होय रोया, ओन हलत पलत सब गवाया लाहा मूल सब खोया, ओ तेली संदा बलद कर नित पलके उठ प्रभ जोया, हर वेखे सुने नित सब किछ तिद्दू किछ गुज्जा ना होया, जैसा बीजे सो लुणे जेहा पुरब किने बोया, जिस कृपा करे प्रभ अपनी तिस सतगुर के चरण तोया, गुर सतगुर पिछे तर गया ज्यो लोहा कार संगोया, जन नानक नाम से आए तू जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा, वड पागिया सोहागनी जिना गुरमुख मिलिया हर राय, अंतर जोत पर गासिया नानक नाम समाए पौड़ी, एवो शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच जोत, गुहज रतन विच लुक रहे कोई गुरमुख सेवक कड्डे कोत, सब आत्म राम पछाणिया ता इक रविया इको ओत पोत, इक देखिया इक मन्या इको सुनिया श्रवण स्रोत, जन नानक नाम सलाहे तू
सच सच्चे सेवा तेरी होत। श्लोक महला चौथा। सब रस तिन कह हृदय है जिन हर वस्या मन माहे, हर दरगह ते मुख उजले तिन को सब देखन जाहे। जिन निरपो नाम से आया तिन को पौ कोई ना है, हर उत्तम तिनी सरेविया जिनको तुर लिखिया है। ते हर दरगे पे नाई है जिन हर वुथा मन माहे, ओए आप तरे सब कुटम स्यो तिन पिछे सब जगत छदाहे। जन नानक को हर वेल जन तिन वेख वेख हम।

से जंत भय हरियावले, जिनी मेरा सतगुरु देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। तन तन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिनी दिखा तिना ले छाए। हर सतगुर मेलो दया कर, जन नानक तो वह पाए। पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है, जिस अंदर हर उधारिया। सच सच्चा सतगुरु पुरख है, जिन काम क्रोध बिख मारिया। जान डिठा पूरा सतगुरु, ता अंदरों मन साधारिया। बलिहारी गुर आपने सदा सदा कुंवारिया। गुरमुख जिता मनमुख हारिया, गुरमुख जिता मनमुख हारिया। श्लोक महला चौथा। कर कृपा सतगुरु मेलियुन, मुख गुरमुख नाम ते आए सी। सो करे जी सतगुरु पावसी, गुर पूरा करी वसाए सी। जिन अंदर नाम निदान है, तिनका पौ सब गवाए सी। जिन रखन को हर आप होए, होर के ती चक चक जाए सी। जन नानक नाम ते आए तू, हर हालत पलत छोड़ाए सी। महला चौथा। गुर सिखा के मन पाव दी, गुर सतगुरु की वड्याई। हर राखो पैज सतगुरु की, नित चढ़े सवाई। गुर सतगुरु के मन पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म छड़ाई। गुर सतगुर तान दीवान हर, तिन सब आन निभाई। जिन्नी दिखा मेरा सतगुर पाव कर, तिनके सब पाप गवाई। हर दरगे ते मुख उजले, बहु शोभा पाई। जन नानक मंगे तूर तिन, जो गुर के सिख मेरे पाई। पौड़ी हौ आप सलाही सिर्फ सच, सच सच्चे की वड्याई। सलाही सच सलाह सच, सच कीमत किने न पाई। सच सच्चा रस जिन्नी चखिया, से तृप्त रहे आघाई। इहो हर रस से

है। क्यों संतो निर्मल होए, गुरमुख गुण वे हाजी है, मल हो मैं कड्डे तोए। सच वणन जय रंग स्यों, सच सौदा होए, तोटा मूल न आवई, लाहा हर पावे सोए। नानक तिन सच वणंजिया, जिना तुर लिखिया प्राप्त होए। पौड़ी साला ही सच सलाहना, सच सच्चा पुरख निराले, सच सेवी सच मन वसे, सच सच्चा हर रखवाले। सच सच्चा जिनी अरादया, से जाय रले सच नाले। सच सच्चा जिनी न सेविया, से मनमुख मूड बेताले। ओह आल पताल।

सच्चा शब्द पतार है सदा सदा रावे। ज्यो उबली मजीठ है रंग गहगा त्यों सच्चे नो जियो दे। रंग चलू ले

सत संगत में हर उस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया। ओए पुरख प्राणी तन जन है, उपदेश करें पर उपकारिया। हर नाम दृढ़ावे हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारिया। गुर वेखण को सब कोई लोचे, नव खंड जगत नमस्कारिया। तुद आपे आप रखिया, सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया। तू आपे पूजे पूज करावे, सतगुर को सिरजन हारिया। कोई विछड़ जाए सतगुरु पासो, तिस काला मोह जम मारिया। तिस अग्गे पिछे टोई नाही, गुर सिखी मन विचारिया। सतगुरु नो मिले सही जन उबरे, जिन हृदय नाम समारिया। जन नानक के गुर सिख पुतो, हर जप्यो हर निस्तारिया। महला तीजा, हौ मैं जगत पुलाया, दुर्मत बिखिया बिकार। सतगुर मिले ता नदर होए, मनमुख अंध अंधियार। नानक आपे मेल ले, जिसनो शब्द लाए प्यार। पौड़ी, सच सच्चे की सिफत सलाह है, सो करे जिस अंदर पिजे। जिन्नी इक मन इक अरादिया, तिनका कंध ना कबहू छिजे। तन तन पुरख सवास है, जिन सच रसना अमृत पिजे। सच सच्चा जिन मन पामदा, से मन सच्ची दरगह लिजे। तन तन जन्म सचियारिया, मुख उज्जल सच करिजे। श्लोक महला चौथा, साकत जाए निवे गुर आ गए, मन खोटे कूड़ कूड़ यारे। जा गुर कहे उठो मेरे पाई, बह जाहे कुसर बगुलारे। गुर सिखा अंदर

जन नानक अगम विचारिया पौड़ी सच सुत्या जिनी आराध्या जा उठे ता सच चवे से विरले जुग में जानिए जो गुरमुख सच रवे हौ बलिहारी तिन कहो जे अम दिन सच लवे जिन मंतन सच्चा पामदा से सच्ची दरगे गवे जन नानक बोले सच नाम सच सच्चा सदा नवे।

चौथा सतगुर सेविए अपना पाये नाम अपार पौजल डुबदिया कढ ले हर दात करे दातार तन तन से सहा है जे नाम करे व्यापार वनजारे सिख

जन भगत है सच सच्चा जिनी अराध्या, जिन गुरमुख खोज टंडोलिया तिन अंदरों ही सच ला दिया। सच साहिब सच जिनी सेविया, काल कंटक मार तिनी साध्या। सच सच्चा सब दू वड़ा है, सच सेवन से सच रला दिया। सच सच्चे नू

रंग सुभाए सतगुर सेती मन रता रखिया बणत बनाए जिहवा सालाहे ना रजई हर प्रीतम चित लाए नानक नावे की मन पुख है मन तृप्त है हर रस खाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाया सो सच सालाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याया सालाही सच सलाह सच सच कीमत किने न पाया जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजिर नदरी आईया सच गुरमुख जिनी सलाहया तिना पुखा सब गवाईया। श्लोक महला चौथा। मैं मन तन खोज खोजेंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़ विस्त

गुरमुख जापे शब्द लिव लाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए, ज्योतिष पावे सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी, तू करता सब किछ जानदा, जो जी अंदर वरते, तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणते, सब कीता तेरा वरतदा, सब तेरी बनते, तू कट कट इक वरतदा, सच साहिब चलते, सतगुरु नो मिले सो हर मिले, नाही किसे परते। श्लोक महला चौथा। एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है, गुरमुख लाई है चित, क्यों सास गिरास विसारी है, बहंदियां उठदियां नित, मरण जीवन की चिंता गई, इहो जीड़ा हर प्रभु वस, ज्यों पावे त्यों रख।

दुख विहाए, सतगुर पुरख निर्वैर है आपे लय जिस लाए, नानक दर्शन जिना विखा लियोन तिना दरगे ले छड़ाए। महला तीजा, मनमुख अज्ञान दुर्मत अंकारी, अंतर क्रोध जुए मत हारी, कूड कुसत ओह पाप कमावे, क्या ओह सुने क्या आप सुनावे, अन्ना बोला कोई उजड़ पाए, मनमुख अंधा आवे जाए, बिन सतगुरु पेटे थाए न पाए, नानक पूरब लिखिया कमाए। पौड़ी, जिनके चित्त कठोर है से बह ना सतगुरु पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास, ओए वल छल कर चत कट दे फिर जाए बह कूड़ियारा पास, विच सच्चे कूड़ न गड़े मन वेखो को निर्जास, कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले सच्चार सिख बैठे सतगुरु पास। श्लोक महला पंजवा, रहंदे खोंदे निंदक मारियन कर आपे आहर, संत सहाई नानका।

आपो आपनी आपे पछतानी अजराइल फिरस्ता तिन पीड़े कानी। श्लोक महला पंजवा। सेवक सच्चे साह के सेई परवान, दूजा सेवन नानका से पच पच मोए अजान।

था। मन मुख मूलो पुल्या विच लब लोभ अंकार, झगड़ा कर दिया अन दिन गुदरे शब्द ना करें विचार, शुद्ध मत करते सब हिरलई बोलन सब विकार, जिते किते ना संतोखिये अंतर तिसना बहु अज्ञान अंध्यार, नानक मन मुखा ना

दे सुख ना पाएन मुगद नर संत नाल खांदे ओए लोचन ओना गुणा नो ओए अहंकार सड़न दे ओए बेचारे क्या करें जा पाग तुर मंदे जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसे न संदे वैर करन निर्वैर ना

पंजवा गुरु नानक हर नाम दृढ़ाया पन्नन करण समरथ प्रभ सदा संभाले मित्र तू दुख सबाया लथ। महला पंजवा खुद आवंत ना जाने लाज कुलाज कुबो

गुरमुख ज्ञान विवेक बुद्ध होए, हर गुण गावे हृदय हार परोए, पवित्र पावन परम विचारी, जे उस मिले तिस पार उतारी, अंतर हर नाम वासना समाणी, हर दर शोभा महा उत्तम बाणी, जे पुरख सुने सो

सतगुरु पावे गुर सिखा अंदर सतगुरु वरते जो सिखा नो लोचे सो गुर खुशी आवे सतगुर आखे सो कार कमावन सो जप कमावे गुर सिखा की काल सच्चा थाए पावे विन सतगुर के हुक्मे जे गुर सिखा पासों कम कराया लोड़े तिस गुर सिख फिर नेड़ ना

ब्रह्म विचार नानक आख सुनावे, जे बिन सतगुर के मन मने कम कराए, सो जंत महा दुख पावे। पौड़ी तू सच्चा साहिब अत वड्डा, तुहे जेवर तू वड वड्डे, जिस तू मेले सो तुद मिले, तू आपे बख्स लहे लेखा छड़े, जिसनो तू आप मिलाएंदा, सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े, तू सच्चा साहिब सच तू, सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे, ज्यों पावे त्यों

हर हर नाम जो जन जपै सो आया परवान, तिस जन के बलिहारण जिन पजिया प्रभ निर्वाण, जन्म मरण दुख कटिया हर पेटिया पुरख।

क्रोध लोभ मोह संग सादा पखे कर कृपा प्रभ अपनी हर आप परखे नानक चलत ना जापनी को सके न लखे। श्लोक महला पंजवा।

जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर पुख रह न काई, सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई, तुद जेवड़ तू है पार।

औड़ी सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीव न जानी जो जन पेटे साध संग सो हर रंग माणी सच नाम करता पुरख ए रतना खानी मस्तक होवे लिखिया हर सिमर पराणी तो सा दिच्चे सच नाम नानक मेहमानी। श्लोक महला पंजवा। अंतर चिंता नैनी सुखी मूल न उतरे पुख नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथो दुख। महला पंजवा। मुठड़े से ही साथ जिन्नी सच न लद्या नानक से साबास जिन्नी गुरमिल इक पछाणिया। पौड़ी जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा ओए सेवन समरथ अपना बिनसे सब मंदा पतित उदाहरण पार ब्रह्म संत वेद कहंदा भगत वछल तेरा बिरद है जुग जुग वर्तंदा नानक जा।

नित चितारिया निखुट ना जाई मूल अतुल पंडारिया नानक शब्द अपार तिन सब किच सारिया महला पंजवा सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी ओथे अमृत वंडी है सुखिया हर करने जम के पंथ न पाये फिर ना ही मरने जिसनो आया प्रेम रस से ही जरने बाणी उचरे साध जन अम्यो चले चरने पेख दर्शन नानक जीव्या मन अंदर तरने श्लोक महला पंजवा सतगुरु पूरे

विखय कौड़तन सगल माहे जगत रही लपताए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाम पौड़ी। ए निशानी साधकी जिस पेटत तरिय जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरिय पव सागर संसार बिख सो पार उतरिय हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरिय।

जिन हर उठा चित गाली अल पला लिया कम न आवे मित। महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूरन अगम विस्माद नानक राम नाम तन कीता पूरे गुर प्रसाद। पौड़ी तो वो ना चली खसम नाल लब मोहे विगुते करतब करन पलेरिया मद माया सुते फिर जून पवायन।

लालच अटिया नित फिरे स्वार्थ करे न कोए जिस गुर पेटे नानका तिस मन वसिया सोए पौड़ी सबे वस्तु कौड़िया सच्चे नाव मिठा साध आया तिन हर जना चख सादी डिठा पार ब्रह्म जिस लिखिया मन तिसे उठा एक निरंजन रव रहा पाव दोया कुठा हर नानक मंगे जोड़ कर प्रभ देवे तुठा। श्लोक महला पंजवां।

जन रंग रूप रस बाद के करें प्राणिया जिस पुलाए आप तिस कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावही नानक शरण द्वार जे तुद पावही पौड़ी जम्मन मरण ना तिन को जो हर लड़ लागे जीवत से परवान।

दह दिशा जल पर्वत बन राए, जिथे डिठा मृत को इल बैठी आए। पौड़ी जिस सर्व सुखा फल लोड़िए, सो सच कमावो, नेड़े देखो पार ब्रह्म इक नाम ते आवो। कोई सगल की रेण का हर संग समावो, दुख न दे किसे जी पत स्यों कर जावो। पतित पुनीत करता पुरख नानक सुनावो। श्लोक दोहा महला पंजवा, एक जे साजन मैं किया सर्व कला समरथ, जियो हमारा खनिए हर मंतन संदड़ी वत। महला पंजवा, जे कर गए प्यारड़े तुद ना छोड़ा मूल, हर छोड़न से दुर्जना पढ़े दोज कैसूल। पौड़ी सब निधान कर जिस दे, हर करे सो होवे, जप जप जीवे संत जन पापा मल तोवे। चरण कमल हृदय वसे संकट सब खोवे, गुरपुरा जिस पेटिए मर जन्म ना रोवे। प्रभ दर्श प्यास नानक घणी कृपा कर देवे। श्लोक दखना महला पंजवा, पूरी परम वंजाए प्री मोहब्बत हिक तू, जिथों वंजे जाए तिथाऊ मौजूद सोए। महला पंजवा, चढ़ के कोड़े कुंदे पकड़े खूंडी दी खेडारी, हंसा से ती चित उलासे कुकड़ दी ओडारी। पौड़ी रसना उचरे हर श्रवणी सुने, सो उदरे मिता हर जस लिखे लाए पावनी से हस्त पविता। अठ सठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता, संसार सागर ते उदरे बिखिया गढ़ जिता। नानक लड़ लाए।

14। अब मोहे जलत राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया, रहाओ मन मारन कारण बन जाये, सो जल बिन भगवंत न पाये, जे पावक सुर

तू सतगुर हौ नौ तन चेला, कह कबीर मिल अंत की बेला। गौरी कबीर जी, जब हम एक को एक कर जानिया, तब लोगे काहे दुख मानिया। हम अपत्ते अपनी पत खोई, हमरे खोज परो मत कोई। रहाओ हम मंदे मंदे मन माही, साझ पात काहू स्यो नाही। पत अपत ता की नहीं लाज, तब जानोगे जब उगरे गोपाज। कहो कबीर पत हर परवान, सर्व त्याग पज केवल राम। गौरी कबीर जी, नगन फिरत जो पाये जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम। रहाओ मूड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गैया काई। बिंद राख जो तरिये पाई, खुश रे क्यों ना परमगत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौरी कबीर जी, संध्या प्रात स्नान कर

देव कहो कबीर भगत कर पाया, पोले पाए मिले रघुराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती। कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह कह जन्म मत खोए। रहाओ जो तू ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण।

मोती, तित लागे कंचुआ फल मोती, कवन सो कर जो निरपो कही है, पौ पज जाए अभय होए रही है। रहाओ तट तीरथ नहीं मन पतिया।

लाज न मरो कहो कर मेरा, अंक की बार नहीं कच तेरा रहाओ। अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली, चोआ चंद

पंच पनिहारी टूटी लाज परे मतहारी, कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओ कूटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी, अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनेक जन्म किए बहुरंगा, ऐसे कर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। रहाओ जोगी जति तपि ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी, साकत मरे संत सब जीवे, राम रसायन रसना पीवे। कहो कबीर प्रभ कृपा की जय, हार परे अब पूरा दी जय। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा, ऐसो अचरज देखो कबीर, दद के पोले बिरोले नीर। रहाओ हरी अंगूरी गधा चरे, नित उठा सही गय मरे, माता पैसा अमुहा जाए, कुद कुद चरे रसा तल पाए। कहो कबीर प्रगट पई खेड, ले ले को चूगे नित पेड, राम रमत मत प्रगति आई, कहो कबीर गुरसो जी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे, ज्यो जल छोड़ बाहर पयो मीना, पूरब जन्म हो तप का ही ना, अब कहो राम कवन गत मोरी, सजीले बनारस मत पई थोरी। रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया, बहुत वर्ष तप किया काशी, मरन पया मगहर की बासी। काशी मगहर संबिचारी, ओछी पगत कैसे उतरस पारी, कहो गुर गज शिव सब को जाने, मुआ कबीर रमत श्री राम। गौड़ी कबीर जी, चोआ चंदन मर्दन अंगा, सो तन जले काठ के संगा, इस तन तन की कवन बढ़ाई, तरन परे उरवार न जाई। रहाओ रात जे सोवे दिन करे काम, एक खिन लेहे ना हर को नाम, हाथ ता डोर मुख खायो तंबोर, मरती बार कस बांध्यो चोर, गुरमत रस रस हर गुण गावे, रामे राम रमत सुख पावे। कृपा करके नाम दृढ़ाई, हर हर बात सुगंध बसाई, कहत कबीर चेतरे अंदा, सत राम झूठा सब तंदा। गौड़ी कबीर जी तिप दे चार तुके, जमते उलट पए है राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, बैरी उलट पए है मीता, साकत उलट सुजन पे चीता, अब मोहे सब कुशल कर माने।

कोट उपाद उलट पाई सुख सह समाद आप पछाने आपे आप रोग न व्यापे तीनों ताप अब मन उलट

जिन राम जानिया तिने पछानिया, ज्यों गूंगे साकर मन मानिया, ऐसा ज्ञान कथे बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुखमन नारी, रहाओ सो गुर करो जे बहुर न करना, सो पद रहो जे

मोल अब मोहे राम अपना कर जानिया सह सुभाए मेरा मन मानिया रहाओ ब्रह्म कथ कथ अंत न पाया राम भगत बैठे कर आया कहो कबीर चंचल मत त्यागी केवल राम भगत निज पागी गौड़ी कबीर जी जिह मरने सब जगत तरासिया सो मरना गुर शब्द प्रगासिया अब कैसे मरो मरन

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन भावे। रहाओ जे कट राम रहा परपूर, तिनकी पग पंकज हम तू।

सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगिया पावे। विख्या अजो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साच कर जाना। सनकादिक नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। गुर प्रसादी जय दियो नामा, भगत के प्रेम इन्हीं है जाना। इस मन

कह कबीर पूरन जग सोई, जाके हृदय अवरना कोई। कौन को पूत पिता को काको, कौन मरे को दे संतापो, हर ठग

आई, जन्म मरण कट परम गत पाई, रहाओ साधु संगत दियो रलाए, पंच दूत ते लियो छड़ाए, अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना, सतगुर कीनो पर उपकार, काड लीन सागर संसार, चरण कमल स्यो लागी प्रीत, गोविंद बसे निता नित चीत, माया तपत बुझिया अंग्यार, मन संतोख नाम आधार, जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पेखो तत अंतर जामी, अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूरब लिखत मिलिया मेरे पाई, जिस कृपा करे तिस पूरन साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज, जल है सूतक थल है सूतक, सूतक ओ पत होई, जन्मे सूतक मुए फुन सूतक, सूतक परज बिगोई, कहो रे पंडिया कौन पवीता, ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता, रहाओ नैनो सूतक बैनो सूतक, सूतक श्रम नहीं होई, उठत बैठत सूतक लागे, सूतक परैर

गौड़ी जीवत मरे मरे फुन जीवे ऐसे सुन समाया अंजन माय निरंजन रही है बौड़ न पवजल पाया मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है गुरमत मनुआ अस्थिर राखो इन विद अमृत पियोई है रहाओ गुर के बाण बजर कल छेदी प्रगटिया पद परगासा सकत अंधेर जेवड़ी प्रम चूका नेचल शिव कर बासा तिन बिन बाणे तनुख चढ़ाई है इहो जग बेदिया पाई दह दिस बूढ़ी पवन चुलावे डोर रही लिवलाई उन मन मनुआ सुन समाना दुबदा दुर्मत पागी कहो कबीर अनुपव इक देखिया राम नाम लिवलागी गौड़ी बैरागन तिप दे उल्टत पवन चक्र खट पे दे सुरत सुन अनरागी आवे न जाए मरे न जीवे तास खोज बैरागी मेरे मन मन ही उल्ट समाना गुर प्रसाद अकल पई अवरे नातर था बेगाना रहाओ निवरे दूर दूर फुन निवरे जिन जैसा कर माने

रात दिन सते नाही, जल नहीं पवन पावक फुन नाही, सतगुर तहां समाही। अगम अगोचर रहे निरंतर, गुर कृपा ते लहिए, कहो कबीर बल जाओ गुर अपने, सत्संगत मिल रही है। गौड़ी पाप पुन दोए बैल बिसाहे, पवन पूजी प्रगास्यो, तृष्णा गुण परी कट पीतर, इन विद टांड बिसाहो। ऐसा नायक राम हमारा, सगल संसार कियो बनजारा, रहाओ काम क्रोध दोए पै जगाती, मन तरंग बटो।

पंडित गुणी सूर हम दाते ए कहें बड हम ही। जिसे बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है। सतगुर मिले अंधेरा चूके इन विद मानक लही है। तज बावे दहने विकारा हर पद दृढ़ कर।

जोड़न हारो सदा अतीता, ए कहिए किस माहे। जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे, जब लग होए विनाशी, काको

सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा परमित बाहर खिंथा सुन गुफा में आसन बैसन कल्प विवर्जत पंथा मेरे राजन में बैरागी जोगी मर्त न सोग वियोगी रहाओ खंड ब्रह्मांड में सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा तारी ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे होए पसारी मन पवन दोए तूंबा करी है जुग जुग सारद साजी हिर पई तंती सूटस नाही अनहद किंगरी बाजी सुन मन मगन पए है पूरे माया डोल न लागी कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं खेल गयो बैरागी गौड़ी गज नव गज दस गज इक्कीस पुरिया एक तनाई साठ सूत नव खंड बेहतर पाठ लगो अधिकाई गई बुनावन माहो कर छोड़े जाए जुलाहो रहाओ गजी न मिनिये तोल न तुलिये पाचन शेर अढ़ाई जो कर पाचन बेग न पावे चगर करे करहाई दिन की बैठ खसम की बरकस ए बेला कति आई

महोए। जित काट नाम ना उपजे, फूट मरे जन सोए। सावल सुंदर रामैया, मेरा मन लागा तो है। रहाओ साध मिले सिद्ध पाई।

कर्म कर्म करते बहु संजम अहं बुद्ध मन जा रहे रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो विसारे रे हीरा लाल।

उनमत मान हिरियो मन माही गुर का शब्द न तारियो रे स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो मद रस लैत बिकारियो रे कर्म पाग संतन संगाने कासट लोह उधारियो रे तावत जोन जन्म प्रम थाके अब दुख कर हम हारियो रे कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भगत निस्तारियो रे गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरारे चलत रचियो जगदीश काम सुआए गज बस परे मन बौरारे अंकस कहो शीश बिखे बाच हर राज समझ मन बौरारे निरपय हुए न हर पजे मन बौरारे गयो न राम जहाज राहो मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरारे लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परे।

राम नाम तन कर संचौनी सो तन कथि न जावे। हमरा तन मादो गोविंद तरनी तर यह सार तन कही है। जो सुख प्रभ गो

ठाकुर ओट लयो गौड़ी। पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी, मैं ना ही कछ आए न मोरा, तन तन सब रस गोविंद तोरा। रहाओ इस माटी में पवन समाया, चूठा परपंच जोर चलाया, किन्हू लाख पांच की जोरी, अंक की बार गगरिया फोरी। कह कबीर इक

जग में आयो लागत पवन खसम बिसरायो जीरा हर के गुना गाओ रहाओ गर्भ जोन में उर्द तप करता पौ जठर अगर मैं रहता लख चौरासी जोन प्रम आयो अब के छुटके ठौर न ठायो कहो कबीर।

रमैया गुण गाय जाते पाये परम निधान रहाओ। क्या जप क्या तप संजमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जुगत न जानिए पाओ भगत भगवान। संपै देख ना हरखिए विपत देख ना रोए ज्यों संपै।

पूर्णा पीजे पग न खिसे, हर दर्शन की आशा उड़ो न कागा कारे, बेग मिली जय अपने राम प्यारे, रहाओ कह कबीर जीवन पद कारण हर की।

वहां पया नर देवा तोखे क्या जल बोरियो गया का जीरे जाहेगा मैं जाना अवगत समझ आना जत जत देखो।

0: कह कबीर इक राम नाम बिन या जग माया अंधा। गौरी बारवा
1: मन रे छाडो परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे। सूर के सन्मुख रंगते डरपे सती के सांचे पांडे। डगमग छाड़ रे मन बहुरा अब तो जरे मरे।

जाइए नाम पदार्थ मने बसाइए हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपड़े निंदक तोए निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माए हमारा।

दिखे रोग पै बंधन पागे मन निज कर सुख जाना ना। एक सुमत रत जान मान प्रभ दूसर मने ना अनाना। चंदन बास पे मन बासन त्याग कट्यो अभिमाना ना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है थाना ना। ते बड़ पाग बस्यो मन जाके कर्म प्रदान मथाना ना। काट सकत

अक्षर लोक त्रय सब कछ इन्हीं माहे, ए अक्षर खिर जाएंगे ओए अक्षर इनमें नाहे। जहाँ बोलते अक्षर आवा, जह अबोलते मन ना रहावा, बोल अबोल मद है सोई, जस ओ है तस लख न कोई। अल्लह लहो तो क्या कहूं, कहूं ता को उपकार, बटक बीज में रव रहो जा को तीन लोक विस्तार। अल्लह लहंता पेद छे, कछ कछ पायो पेद, उलट पेद मन भेदियो, पायो अपंग अछे।

लिख अर मेटे ताहे न माना, ओंकार लखे जो कोई सोई लख मेटना ना होई। कक्का किरण कमल में पावा, सस बिगास संपट नहीं आवा। अर जे तहां कुसुम रस पावा, अकह कहां कह का समझावा। खखा एह खोड़ मन आवा।

टट्टा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के न जाही, देख अटल टल कतह न जावा, रह लपट कट पर चो पावा। ठट्ठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा, जिन ठग ठगिया सगल जग खावा, सो ठग ठगिया ठौर मन आवा। डड्डा डर उपजे डर जाई, कहां डर में डर रहा समाई, जो डर डरे तब

जोत्रे भवन तन माहे समावा तो तत्ते तत मिलिया सच पावा थथा अथा था नहीं पावा ओ अथा एहो थिर ना रहावा थोड़े थल थानक आरंभे बिन ही थांबे मंदर थंबे दद्दा देख जो बिन सनहारा जस अदेख तस राख बिचारा दसवें द्वार कुंची जब दीजे तो दयाल को दर्शन कीजे तद्दा अर्दे उर्द निवेरा अर्दे उर्दे मंज बसेरा अर्दे छाड़ उर्द जो आवा तो अर्दे उर्द मिलिया सुख पावा नन्ना निस दिन निरखत जाई निरखत नैन रहे रतवाई निरखत निरखत

अरे बल बल जे बिसंतना जस गावे विसन मिले सभी सच पावे वाह वाह वाही जानिए वाह जाने एहो होए एहो

अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा, तब ए त्रिय ओकंत कहावा। हा हा होत होए नहीं जाना, जब ही होए तब है मन माना।

अंतरजामी राम समारो, जीवत पावो मोख द्वार, अनपौ शब्द तत निज सार, चरण कमल गोविंद रंग लागा, संत प्रसाद पै मन निर्मल, हर

ना ओ बढ़े ना कटता जाए, अकुल निरंजन एक है पाए। तृतीया तीने सम कर ल्यावे, अनद मूल परम पद पावे। साध संगत उपजे विश्वास, बाहर पीतर सदा प्रगास। चौथे चंचल मन को गहो, काम क्रोध संग कभो ना बहो।

नीच ऊंच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल सामान। चौदस चौदह लोक मजार, रोम रोम में बसे मुरार।

दे सब सिद्ध होए। कर्म अकर्म विचारिय शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय बसै कौन हिरै अभिमान। बाहर उदक पखारिय कट पीतर विविध विकार, शुद्ध कमन पर होए वो सुच कुंच।

परम परस गुर पेटिए पूरब लिखत लिलाट उन मन मन मन ही मिले छुटकत बजर कपाट भगत जुगत मत सत करी।

गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध विचारे, गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पड़े रखी सर जुग जुग वेदा नाले, गावन तुदनो मोहनिया।

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावे तुझ जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सर्व

हरत्या में तुझी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पे जिन हरत्याया जियो तिन टूटी जम की फांसी जिन हर निरपो त्याया जियो तिनका पौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी पगत पंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे पगत सरान तुझी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनक करें हर पूजा जी तपता पै जपै बेअंता तेरे अनेक पढ़े वो सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से पगत पले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुझ जेवड अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू ने चल करता सोई तुझ आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करें सो होई तुझ आपे श्रेष्ठ सब उपाय जी तुझ आपे श्री सब

सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कह न जाई तेरी तिल वड्याई, सब सत सब तप सब चंगियाईया।

तित रंग नाचो रख रख पाओ। पाओ फेरी होवै मन चीत, बैंदिया उठदिया नीता नीत, लेटन लेट जाने तन स्वाहा, तित रंग नाचो रख रख पाओ। सिख सभा दीख्या का पाओ, गुरमुख सुनना साचा नाओ, नानक आखन वेरा वेर, इत रंग नाचो रख रख पैर। आसा मैला पैला पौन उपाय तरी सब तरती, जल अग्नि का बंद किया, अंधले दे दिस मूंड कटाया, रावण मार क्या वड़ा भया। क्या उपमा तेरी आखी जाए, तू सर्वे पूर रहा लिवलाए, रहाओ जी उपाय जुगत हथ कीनी, काली नाथ क्या वड़ा भया। किस तू पुरख जोरू कौन कही है, सर्व निरंतर रव रहा, नाल कुटम साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सृष्ट गया, आगे अंत न पायो ताका, कंस छेद क्या वड़ा भया। रतन उपाय तरे खीर मथिया, और पखलाए जे असी किया,

पनत नानक सबना का फिर एको सोए, जिसनो नदर करे सा सुहागण होए, आसा मैला पहला ग्रियो बन समतर तय सुबाए, दुर्मत गत पई कीरत ठाए, सच पौड़ी साचो मुख नाओ।

सर्व ज्योत पूरन भगवान रहाओ अधिक त्यास पेक बहु करे दुख बिखिया सुख तन पर हरे काम क्रोध अंतर तन हिरे दुबदा छोड़ ना।

तन मन हर पै आ गए जिंद, झूठ विकार महा दुख देह, देख वरन दिसे सबके, जो उपजे सो आवे जाए, नानक अस्थिर नाम रजाए, आसा मेला पहला, एको सर्वर कमल अनूप, सदा

लागी मैल मिटे सतनाए गुर प्रसाद रहे लिवलाए है हजूर हाजर अरदास दुख सुख साच करते।

जो हर राते से जन परवान, तिनकी संगत परम निधान, हर बार जिन पाया तन नारी, हर स्यो राती शब्द विचारी, आप तरह संगत कुल तारे, सतगुरु सेव तत विचारे, हमरी जात पथ सच नाओ, कर्म तर्म संजम सत भाओ, नानक बस

एक तरन गगन में ठौर न पावे, से कर्महीन हर नाम न त्यावे, गुर पूरे ते गत मित पाई, इहो संसार बिखवत अत पौजल।

ज्यो जल अम्ब ऊपर कमल निरारे, बुरा पला को किसनो कही है, दिसे ब्रह्म गुरुमुख सच लही है, अकथ कथो गुरुमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार, सात वेद सिमरत बहु भेद, अठ अठ मज्जन हर रस।

0: पोखरे।
1: ऐसा गुरमत रमत शरीरा, हर पद मेरे मन गहर गंभीरा रहाओ। अनत तरंग पगत हर रंगा, अनदिन सूचे हर गुण संगा। मिथ्या जन्म साकत संसारा, राम पगत जन रहे निरारा। सूची काया हर गुण गाया, आत्म चीन रहे लिवलाया। आद अपार अपरंपर हीरा, लाल रता मेरा मन धीरा। कथनी कहे कहे से मुए, सो प्रभ दूर नाही प्रभ तू है। सब जग देखिया माया छाया, नानक गुरमत नाम ते।

अंध जीव रस नाही तन्नी पवन न वाजे चरनी चले पजूता आगे बिन सेवा फल लागे अखर बिरख बाग पोए चोख।

सब जप तप जिस हर हृदय अलख व्यवहार नानक राम नाम मन राता गुरमत पाए सहज सेवा आसा महला पहला पंच पदे।

चौपदे। विद्या विचारी ता पर उपकारी, जा पंच राशी ता तीर्थ वासी। कुंगरु वाजे जी मन लागे, तो जम कहा करे मोसो आ गए रहाओ। आस निरासी तो सन्यासी, जा जत जोगी ता काया कोगी। दया दिगंबर दी बिचारी, आप मरे अवरा ने मारी।

मौन स्पर्शों में रहो, आस प्यासी से जय आवा, आगे से पावा के न पावा, क्या जाना क्या होएगा री माई, हर दर्शन बिन रह न जाई राव, प्रेम न चाखिया मेरी तिस न बुझानी, दया सो जोबन तन पछतानी।

नहीं कोई नदर करे मेलावा होई राव सरोरड़े तन साथ पछाणिया सह सुभाए अपना फिर जानिया गुर प्रसादी ऐसी मत आवे तां कामण कंते मन भावे कहत नानक पै पाव का करे सिदार सधी से जैरवे।

कै कोई जातिस पावे बख्शे सोई वो प्रसादी दुर्मत खोई जय देखा तह को सोई कहत नानक ऐसी मत आवे ताको सच्चे सच समावे आसा मैला पहला दुख दे तित सरवरण भई ले निवासा पानी पावक तिन्ह किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबी अले मन एक न चेतस मूर मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हो जति सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक।

अनेक जयकार करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए राव विश्वे चस्या करिया पैरा सिती वारी माओ भया सूरजे को रुत अनेक नानक करते के केते वेश इको अंकार सतगुरु प्रसाद आशा करती जा मैला पैला लख लख कर लख वाजे ने जे लख उठ करे सलाम लखा उपर फुरमाइश तेरी लख उठ राखे मान जा पत लेखे ना पवे ता सब निराफल का।

लख खटिए लख संजिए खाजे लख आवे लख जाए जा पत लेखे ना पवे ताजी किथे फिर पाए लख सासत समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवे ता सबे कुपरवान सच नाम पत उपजे कर्म नाम करतार एनस हृदय जे वसे नानक नदरी पार आसा मेला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओ सोखिया चूका जमस्यो मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मरिया कर एक थे एक रतीले पाए रहाओ पिंड पत्तल मेरी के सो क्रिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाछे इहो मेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्म राहो सच्चा नावन काफी है जा एनस लागे पाओ इक लोकी होर छमिछरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड

कर कर पगवे पेख पए। तौ कारण साहिबा रंग रते, तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कहन न जाही तेरे गुण के ते रहाओ। दर कर महला हस्ती कोड़े, छोड़ विलायत देश वे, पीर पे कांबर सालिक साधक, छोड़ी दुनिया खाए पए। साध सहज सुख रस कस तजियले, कापड़ छोड़े चमड़ लिए, दुखिये दर्द वंद दर तेरे, नाम रते दरवेश भय। खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी, सिखा सूत तोती कीनी, तू साहिब हो सांगी तेरा, प्रणवे नानक जात कैसी। आसा खर पंजवा महला पहला, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। तीतर पंच गुप्त मनवासे, फिर न रहे जैसे पवे उदासे, मन मेरा दयाल सेती फिर न रहे, लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाओ। फूल माला गल पहरोगी हारो, मिलेगा प्रीतम तब करोगी सिगारो, पंच सखी हम एक पतारो, पेट लगी है जीड़ा चालन हारो, पंच सखी मिल उदन करेहा, साहो पजूता कणवत नानक लेखा देहा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद।

सावन तन पहरे है रावे लाल प्यारी। लाल बहु गुण कामन मोही तेरे गुण हो है नावरी राव। हर हर हार कंठले पहरे दामोदर दंतले कर कर करता कंगन पहरे किन विद चित तेरे। मधुसूदन कर मुंद्री पहरे परमेश्वर पटले तीरज कड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे। मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राव जब सेजे आवे ता नानक भोग करे। आसा मेला पहला कीता होवे करे कराया तिस क्या कही है भाई। जो किछ करना सो कर रहया कीते क्या चतुराई। तेरा हुकुम पला खुद पावे नानक ताको मिले वडाई। साचे नाम समावे रहाओ किरत पया परवाना लिखिया बौड़ हुकुम ना होई। जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट ना सके कोई। जे को दरगे बहुता बोले नौ पवे बजारी शतरंज बाजी पक्के नाही कच्ची आवे सारी। ना को पढ़िया पंडित बिना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर।

जो किछ करे पला कर मानो, सहज जोग निध पावो। बाबा जुगता जियो जुग है जुग जोगी, परम तंत में जोगं। अमृत नाम निरंजन पाया, ज्ञान काया रस पोगं। रहाओ शिव नगरी में आसन बैसो, कल्प त्यागी बादं। सिंगी शब्द सदा तुम सो है, एन स्तूर नादं। पत विचार ज्ञान मत दंडा, वर्तमान विपूतं। हर कीरत रह रास हमारी, गुरुमुख पंथ अतीतं। सगली जोत हमारी सम्या, नाना वर्ण अनेकं। कहो नानक सुन परथर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकं। ऐसा मेला पहला, गुर कर ज्ञान ध्यान कर पावे, कर करनी कस पाई है।

रच रहा एन सुबनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गया रहाओ पूरा साच प्याला सहजे तिसे पियाए जा को नदर करे अमृत का व्यापारी हो वह क्या मद छूछे पाव करे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम हो वह मुक्त वैकुंठ करे क्या सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म न हारे कहो नानक सुन कर पर जोगी खीवा अमृत धारे आशा मेला फैला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न दे करता जमकर मुगल

हर दर्शन पावे वड भाग, गुर के सब सच्चे बैराग। खट दर्शन वरते वरतारा, गुर का दर्शन अगम अपारा। गुर के दर्शन मुक्त गत होए, साचा आप वसे मन सोए। रहाओ गुर दर्शन उदरे संसारा, जे को लाए पाओ प्यारा। पाओ प्यारा लाए विरला कोए, गुर के दर्शन सदा सुख होए। गुर के दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवे परवार साधार। निगुरे को गत पाई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाई। गुर के शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुख का तो लगे न पीर। जम काल किस नीड़ ना आवे, नानक गुरमुख सा।

समाए सेवड पागी जिन नाम ते आया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण संग्रह है तिन बलिहार है जाओ दर साचे साचे गुण गाओ आपे देव सह सुभाए नानक कीमत कह न जाए ऐसा मैला तीजा सतगुरु विच वड्डी वड्याई चिरी विचुने मेल मिलाई आपे मेले मेल मिलाए अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन विध होए हर अपरंपर अगम

पाए। जो मन गाते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगे मिले सुगाए रहाओ। शब्द चाखे साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभु सदा रहा परपूर, आपे नेड़े आपे दूर। आखण आखे बके सब कोए, आपे बक्स मिलाए सोए, कहने कथन न पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए। गुरमुख विच्चों आप गवाए, हर रंग राते मो चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सवारण हार। आसा मैला तीजा, दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरथा जन्म गवाया।

संत संगत मिल हर गुण गाए, नौमे नाम करे विचार, आप तरह कुल उदनहार। गुर की बाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गवाया। आसा महला तीजा, मन मुख मरे मर मरण विगाड़े, दूजे पाए आत्म संगारे, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म न चीने पर मैं विसूता। मर मोया सब दे मर जाए, उस तक निंदा गुर समझण आई, इस युग में लाहा हर जप ले जाए। रहाओ नाम विहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लोभाए, नाम विहूनी दुख जले सबाई, सतगुरु पूरे बूझ बुझाए। मन चंचल बहु चोटा खाए, एथो छुड़किया ठौर न पाए, गर्भ जोन विष्टा का वास, तित कर मनमुख करे निवास। अपने सतगुरु को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मिलाई, निर्मल बाणी निज कर वासा, नानक हो मैं मारे सदा उदासा। आसा मेला तीजा, लाले अपनी जात गवाई, तन मन अर्पे सतगुर शरणाई, हृदय नाम वड्डी वड्याई, सदा प्रीतम प्रभ होए सखाई। सो लाला जीवत मरे, सोग हरक दोई समकर जाने, गुर प्रसादी शब्द उदरे। रहाओ करणी कार तुरो फुरमाई, बिन शब्द को थाए न पाई, करणी कीरत नाम वसाई, आपे देवे तिल न पाई। मन मुख परम पुले संसार, बिन राशि कूड़ा करे वपार, बिन राशि वखर पल्ले न पाए, मन मुख पुला जन्म गवाए। सतगुर सेवे सो लाला होए, उत्तम जाति उत्तम सोए, गुर पौड़ी सबदू ऊंचा होए, नानक नाम वडाई हो।

दोहागणी का मन देख सिंगार, पुत्र कलत तन माया चितलाए, चूत मोह पाखंड विकार। राव सदा सुहागण जो प्रभ पावे, गुर शब्दी सिंगार बनावे, सेज सुखाली अंदिन हर रावे, मिल प्रीतम सदा सुख पावे। सा सुहागण साची जिस सा

कर्म कमाए सब दे ऊंचो ऊंचा होए नानक साथ समावै सोए आसा मेला तीजा भगत रता जन सहज सुभाए गुर कै पैसा चै साठ समाए बिन गुर पूरे भगत न होए मन मुख रुने अपनी।

अंतर निर्मल अमृत शरण आए, सदा सूचे साथ समाए। हर तब वेखे सदा हजूर, गुर प्रसाद रहा भरपूर, जहा जाओ तै वेखा सोए, गुर बिन दाता वरना कोए। गुर सागर पूरा पंडार, उत्तम रतन जवाहर अपार, गुर प्रसादी देवन हार, नानक बख्शे बख्शन हार, आसा मैला तीजा। गुर सायर सतगुर सच सोए, पूरे पाग गुर सेवा होए, सो बुझे जिस आप बुझाए, गुर प्रसादी सेव कराए, ज्ञान रतन सब सोजी होए, गुर प्रसाद अज्ञान विनाशे, अंधन जागे वेखे सच सोए, रहाओ मोह गुमान गुर शब्द जलाए, पूरे गुर पे सोजी पाए, अंतर महल गुर शब्द पछाणे, आवन जान रहे फिर नाम समाने। जम्मा मरना है संसार, मनमुख अचेत माया मोह गुबार, पर निंदा बहुपूर कमावे, विष्टा का कीड़ा विष्टा माए समावे। सत संगत मिल सब सोजी पाए, गुर का शब्द हर पल दृढ़ाए, पौना मन्ने सदा सुख होए, नानक सच समावे सोए। आसा मैला तीजा पंच पदे, शब्द मरे तिस सदा आनंद, सतगुर पेटे गुरु गोविंद, ना फिर मरे ना आवे जाए, पूरे गुरते साज समाए। जिनको नाम लिखिया तुरलेख, ते अंदिन नाम सदा त्यावे, गुर पूरे ते भगत विशेख, रहाओ जिनको हर प्रबले मिलाए, तिनकी गहन गत कहीं ना जाए। पूरे सतगुरु दित्ति वड्याई, उत्तम पदवी हर नाम समाए। जो किछ करे सो आपे आप, एक कड़ी में थाप थाप, कह कह कहना आप सुनाए, जे सो काले थाए ना पाए। जिनके पोते पुन तिना गुरु मिलाए, सच बाणी गुर शब्द सुनाए, जहाँ शब्द वसे तहाँ दुख जाए, ज्ञान रतन साचे सहज समाए। नावे जेवड होर पर नाही कोए, जिसनो बख्शे साचा सोए, पूरे शब्द मन वसाए, नानक नाम रते सुख पाए। आसा मैला तीजा, नृत्य करे बहु वाजे बजाए, यो मन अंधा बोला है किस आँख सुनाए। अंतर लोभ परम अनलवाओ, दीवा बले न सोजी पाए। गुरमुख भगत कट चानन होए, आप पछाण मिले प्रभ सोए, रहाओ गुरमुख नृत हर लागे पाओ, पूरे ताल विच्चों आप गवाए। मेरा प्रभ साचा आपे जान, गुर के शब्द अंतर ब्रह्म पछाण। गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार, गुर का शब्द सहज विचार। गुरमुख भगत जुगत सच सोए, पाखंड भगत नृत दुख होए। एहा भगत जन जीवत मरे, गुर प्रसादी पव जल तरे। गुर के वचन भगत खाए पाए, हर जियो आप वसे मने आए। हर कृपा करे सतगुरु मिलाए, नेचल भगत हर सियो चित लाए। भगत रते तिन सच्ची सोए, नानक नाम रते सुख होए।

बस है मनमुख अंद द्वार हर के पाने जन सेवा करे बूझे सच सोई हर के पाने सलाही है पाने मने सुखोई हर के पाने जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई नानक नाम सलाहे तू गुरमुख गत होई आसा महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद तू करता सच्यार में दासाई

विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सब ही आख वखाने, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजावर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरुमुख प्रगट होए। इको ओंकार सतगुर प्रसाद, रागा सा हर दूजा मेला चौथा

सिकदार चौधरी नाल अपने सुहाई हमारा तरा हर रया समाई हम हर स्यों तरा किया मेरी हर केक मैं हर दिन पक तरा और ना कोई हूँ हर गुण गावा असंख अनेक रहाओ जिन स्यों तड़े करे से जाहे झूठ कड़े कर पछोताहे फिर ना रहे मन खोट कमाहे हम हर स्यों तरा किया जिसका कोई समर्थ ना है ये सब कड़े माया मोह पसारी माया को लूजे गवारी जन्म मरे जुए बाजी हारी हमरे हर तरह जे हलत पलत सब सवारी कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए काम क्रोध लोभ मोह अभिमान वधाए जिसनो कृपा करे तिस सत्संग मिलाए हमरा हर तरह जिन एह तड़े सब गवाए मिथ्या दूजा पाओ तरे बह पावे पराया छिद्र अटकले अपना अहंकार वधावे जैसा बीजे तैसा खावे जन नानक का हर तरा कर्म सब श्रेष्ठ जिने आवे आसा मेला चौथा हृदय सुन सुन मन अमृत पाया गुरबाणी हर अलख लखाया गुरमुख नाम सुनो मेरी बहना एको रव रया कट अंतर मुख बोलो गुर अमृत बहना रहा मैं मन तन प्रेम महा बैराग सत गुर पुरख पाया वडपाग दूजे पाए पवे बिख माया पाग हीन नहीं सत गुर पाया अमृत हर रस हर आप पियाया गुर पूरे नानक हर पाया गुर पूरे नानक हर पाया आसा महला चौथा।

शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, नानक गुरुमुख मुख कट कडिए। आसा मैला चौथा, नाम सुनी नामो मन पावे, वडे पाग गुरुमुख हर पावे, नाम जपो गुरुमुख परगासा।

सखाए नानहीन गए मूड़ नंगा पच पच मोए बिख देख पतंगा आपे थापे थाप उठापे नानक नाम देवे हर आपे आसा मेला चौथा गुरमुख हर हर वेल वधाई फल लागे हर रस रसाई हर हर नाम जप अनत तरंगा जप जप नाम गुरमुख सालाही मारिया काल जम कंकर पुयंगा रहाओ हर हर गुर में पगत रखाई गुर सुखा सिख देवे मेरे भाई हो मैं कर्म किस विद नहीं जाने जो कुंचर नाए खाक सिर छाने जे वड पाग हो वे वड ऊचे नानक नाम जपे सच सूचे आसा मेला चौथा हर हर नाम की मन भूख लगाई नाम सुने मन तृप्त है मेरे भाई नाम जपो मेरे गुरु सिख मीता नाम जपो नाम में सुख पावो नाम रखो गुरमत मन चीता रहाओ नामो नाम सुनी मन सरसा नाम लाहा ले गुरमत बिकता नाम बिना कुष्टि मोह अंधा सब ने फल कर्म किए दुख तंदा हर हर हर जस जपे वड पागी।

गुरमत हर गुण बोलो जोगी त्यो मनुआ हर रंग पेन। जोगी हर दियो मति उपदेश जुग जुग हर हर एको वर्त है तिस आगे हम आदेश राओ। गावे राग पात बो बोले एहो मनुआ खेले खेल जो वे कूप सिंचन को बसदा उठ बैल गए चरबेल। पाया नगर में कर्म हर बोवो हर जा में हरिया खेत मनुआ सिर बैल मन जोवो हर सिंचो गुरमत जेत। जोगी जंगम श्रिष्ट सब तुमरी जो देहो मती तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जानी हर लागो मनुआ पेल। आसा मैला चौथा कब को पाले कुंगरू ताला कब को बजावे रबाब आवत जात बार खिन लागे हों कब लग समारो नाम। मेरे मन ऐसी पगत बन आई हम हर बिन खिन पल रह न सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहाओ। कब को मेले पंच सत गायन कब को राग तुम उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे कब लग मेरा मन राम गुन गावे। कब को नाचे पाव पसारे कब को हाथ पसारे हाथ पाव पसारत बिलम तिल लागे कब लग मेरा मन राम समारे। कब को लोगन को पतियावे लोक पति ने ना पत होए जन नानक हर हृदय सब त्यावो ता जय जय करे सब कोए। आसा मैला चौथा सत संगत मिलिए हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया कट चानन अज्ञान अंधेरा जाए। हर जन नाचो हर हर त्याए ऐसे संत मिले मेरे पाई हम जन के तो मैं पाए रहाओ। हर हर नाम जपो मन मेरे अन दिन हर लिव लाए जो इच्छो सोई फल पाओ फिर भूख न लागे आए। आपे हर अपरंपर करता हर आपे बोल बुलाए से संत पले तुद पावे जिनकी पट पावे खाए। नानक आख ना राजे हर गुण जो आखे त्यों सुख पाए भगत भंडार दिए हर अपने गुण गाहक वनज ले जाए। एक ओंकार।

जीवन मरण सुख होए जिना गुरु पाया, नानक सच्चे सच सच समाया। आसा मैला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया, गुरु प्रसादी बुझ सच समाया। जिन पुर लिखिया लेख तिन्नी नाम कमाया, दर्श कैश्चार मैल बुलाया राव। अंतर नाम निधान गुरु मुख पाइए, अंजन नाम से आए हर गुण गाइए। अंतर वस्त अनेक मन मुख नहीं पाइए, हूँ मैं गर्भ गर्भ आप खुआइए। नानक आपे आप खुआइए, गुरमत मन पर गास सच्चा पाइए। राग आसावरी कर सोलवा के।

कीर्तन करो। सतगुरु मोको हर नाम बताया, हम हर दिन खिन पल रह ना सको रहाओ। हम रह श्रवण सिमरन हर कीर्तन, हम हर दिन रह न सको हों एक खिन। जैसे हंस सरवर बिन रह न सके, तैसे हर जन क्यों रहे हर सेवा बिन। किन्हु प्रीत लाई दूजा पाओ, रिज तार किन्हु प्रीत लाई मोह अपमान। हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद नानक सिमर।

हाँ हर बिन खिन पल रह न सको जैसे कर हल बेल दी जाई राव। हमरा मन बैराग बिरकत कहो हर दर्शन मीत कहताई। जैसे अल कमला बिन रह न सके तैसे मोय हर बिन रह न जाई। राज करण जगदी सुर प्यारे मोय सरदा पूर हर गुसाई। जन नानक के मन अंध होत है हर दर्शन निमक दिखाई।

कोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिस पर दोष दिखाया, पाई मीत कुटम देख विवादे, हम आई वसगत गुर प्रसादे, ऐसा देख भी मोहित हुए, साधिक सिद्ध सुरदेव मनुखा, बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे, रहाओ एक फिरे उदासी तिन काम व्यापे, एक संचय गिरही तिन हुए नापे, एक सती कहावे तिन बहुत कल पावे, हम हर राखे लग सतगुरु पावे, तप करते तपसी फूलाए, पंडित मोहे लोग सुभाए, त्रै गुण मोहे मोहा आकाश।

जो तू कहे सो कार कमावा, जन नानक गुरुमुख नेड़ना आवा। आसा मैला पंजवा, ससु ते पिरकी नीवाक, देर जिठानी मोई दुख संताप।

रीत दुतिया त्यागी लोगा रीत त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने तुरिया गुण मिल साध पछाने सहज गुफा में आसन बांधया ज्योत स्वरूप अनाद वाजया महा आनंद गुर शब्द विचार त्रै सो राती तन सुहागना।

चार जित ग्रह वसै सो ग्रह सो बावंता गुरमुख पाई किन विरलै जनता सो करणी कामन गुरमिल हम पाई जज काज परखाए सुहाई रहाओ जिचर वसी पिता के साथ टीचर कंक बहु फिरे उदास कर सेवा सतपुरुष मनाया गुर आनी कर मैं तो सर्व सुख पाया बत्ती सुलखणी सत संतत पूत आज्ञाकारी सुगढ़ स्वरूप इच पूरे मन कंत स्वामी सगल संतोखी देर जेठानी सब परवार माए श्रेष्ठ मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ तन सो गृह जित प्रगति आए जन नानक सुखे सुख विहाए।

तीरथ न छोड़े जोग सन्यास, फल खाके सिमरत वेद व्यास। जै बैसो तै ना ले बैसे, सगल पवन में सबल प्रवेश है। होची शरण पया रह न पाई, कौमी पाहो कह कह जाई। सुनो उपदेश सतगुर के आया, गुर हर हर नाम मोहे मंत्र दृढ़ाया। निज कर वस्या गुण गाय अनंता, प्रभ मिलियो नानक कहे अचिंता। पर मेरा ए नायक हमारी, ए आमर हम गुर किए दरबारी।

नानक दास तेरी शरण आई, प्रभ राखी पैज वजी वधाई। आसा मैला पंजवा परदेश चाग सौदे को आया, वक्त अनूप सुनी लभाया।

अमोल रत्न अमोलारास, विष्ट सुभाई पाया मीत, सौदा मिलिया ने चल कीत, पौ नहीं तस्कर पौ न पानी, सहज विहाजी सहज ले जानी, हट के खटे दुख नहीं पाया, सही सलामत कर ले आया, मिलिया लाहा पै आनंद, तन सहा पूरे बख्शिंद, यो सौदा गुरमुख किने।

माया मूठा फेके नहीं, पर में फूला बहुती राही। बाहर पेश करे कनेरे, अंतर बिखिया उतरी केरे, और उपदेश है आत्म

पावत रहे एक एक बूझिया, आए बसे अब ने चल खाए, जगत उदाहरण संत तुम्हारे, दर्शन पे छत रहे अघाए, जन्म दोष परे मेरे पाछे, अब फकरे ने चल साधु पाए, सहज तुन गावे मंगल मनुआ, अब तांको फुनकाल न खाए, करण कारण समर्थ हमारे, सुखदाई मेरे हर हर राय, नाम तेरा जब जीवे नानक, ओत पोत मेरे संग सहाय, आशा मैला पंजवा, अरड़ावे बिललावे निंदक, पार ब्रह्म परमेश्वर बिसरिया, अपना कीता पावे निंदक रहाओ, जे कोई उसका संगी होवे, नाले ले

बस्तर भी कोखन सुख बहुत विशेष है, कोई भी जानो कितने न लेखे पथ शोभा और मान महत आज्ञाकारी सगल जगत। गृह ऐसा है सुंदर लाल प्रभु का वासा सदा निहाल, व्यंजन भोजन अनेक प्रकार रंग तमाशे बहुत विस्तार, राज मिलक और बहुत फुरमाइस मन नहीं त्रापे तृष्णा ना जायस, बिन मिल बे यो दिन ना बिहावे मिले प्रभु ता सब सुख पावे, खोजत खोजत सुनी ए सोए साध संगत बिन तरयो न कोए, जिस मस्तक पाग तिन सतगुरु पाया पूरी आशा मन तृप्ताया, प्रभ मिलिया ता चूकी डंजा नानक लद्दा मन तन मंजा। आशा महला पंजवा पंच पदे

तुझ पर दाम, सील बिदारो तेरा काम। जाको दृष्ट मया हर राय, साब बंदी ते ले चढ़ाए, साब संग मिल हर रस पाया, कहो नानक सफल ओ काया। सब रूप सब सुख बने सुहागन, अब सुंदर विचक्षण तू, रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, इक तुके दूजा। जीवत दी सह तिस हर पर मरना, मुआ होवे किसने चल रहना। जीवत मोए मोए से जीवे, हर हर नाम अवसद मुख पाया, गुर सब्दी रस अमृत पीवे। रहाओ काची मटकी बिनस बिनासा, जिस छूटे तृप्ति तिस निज पर वासा। ऊंचा चढ़े सो पवे प्याला, तरन पड़े तिस लगे न काला। क्रमत फिरे तिन किछु न पाया, से अस्थिर जिन गुर शब्द कमाया। जियो पिंड सब हर कमाल, नानक गुर मिल पे निहाल। आसा महला पंजवा, उतरी तेरी बिद कर खाती, जान सत

ता अस्त्र रख परे थे चाम इस ऊपर ले राख्यो गुमान एक वक्त बूझे ता हो वै पाक बिन बूझे तू सदा न पाक कहो नानक गुरु को कुर्बान जिससे पाई है हर पुरुष सुजान आखा महला पंजवा एक तुके चौपदे एक कड़ी दिन को बहुत दिहारे मन ना रहे कैसे मिलो प्यारे एक पल दिन को कब होना बिहावे।

जन बकरा मोको कहां डवाई रहाओ हर मेरी ओट में हर कातान हर मेरा सखा मन माहे दीवान हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो गुरमुख तन छट्टी हर मेरा साहो गुर कृपा से ए मत आवे जन नानक हर कह।

सेव समय फल पाई। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुरु मेरा पूरा, मनसा का दाता सब सुख निधान है, अमृत सर सब ही पर पूरा रहाओ, चरण कमल हृदय अंतर धारे, प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे, संत सखी मिल मंगल गाया, अरहद बाणी नाद बजाया, गुरु नानक तुठा मिले।

मिल सतगुर तन पूरा पाया, ऐसा हर तन संचिय भाई, कहे न जाने जल नहीं डूबे, संग छोड़ कर कत हो न जा रहा, कोट न आवे निकुट न जाए, है खर्च मन रहा अगाए, सो सत्सा हो जिस कर हर तन संचाना, इस तन से सब जग वरसाना, तिन हर तन पाया जिस खूब लिखे का लेना, जन नानक अंतवार नाम गहना, आशा मेला कन्या, जैसे किसान बोवे किसानी, काची पाकी बाढ़ परानी, जो जन में सो जानो मुआ, गोविंद भगत अस्थिर।

कर में वस्त बाण उठ जाता, सुनी न जाई सच अमृत का था, वार करत चूठी लग जाता रहाओ, वजो साहिब का सेव बिरानी, कैसे गुने अच्छा दियो प्राणी, तिस्यो लूक जो सद ही संगी, काम न आवे सो फिर मंगी, कहो नानक प्रभु दीन दयाला, जो पावे त्यों कर प्रित पाला, आसा मेला संजवा, जी प्राण तन हर को नाम, इहा उहा उन संकाम, बिन हर नाम अवर सब छोरा, तृप्त अधावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ, पगत पंडार

बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक को गुरदीनो दान आसा मेला पन्नवा बुद्ध प्रगास सही मत पूरी तांते बिन सी दुर्मत दूरी ऐसी दुर्मत पाई ने बूढ़त कोर अंधकूप में निक्षो मेरे पाई रे राव महा अगा अगन का सागर गुरबोहित सारे रत्नागर दुत्तर अंध बिखम ए माया गुर पूरे प्रगट मार्ग दिखाया जात पाप कछ उक्त न मोरी गुरु नानक शरणागत तोरी आसा मेला पन्नवा तिप दे दूजा हर रस पीवत सद ही राता आन रसा खिन में लह जाता हर रस के माते मन सदा आनंद।

आए हर साधु हर समाए लाख करोड़ी मिले न के जिसे प्राप्त तिस ही दे नानक चाक पे बिस्माद नानक गुरते आया साध ईत ऊत कस छोट न जाए नानक गीदा हर रस माहे आसा मेला पंजवा काम क्रोध लोभ मोह मिटावे छुटके गुरमत अपनी धारी होए निमाणी सेव कमावे ता प्रीतम हो।

आज्ञा मान भगत हुए तुम्हारी, जो इव मंत्र कमावे नानक सो पौजल पारे उतारी। आसा महला पंजवां दुख दे पई प्राप्त मानक दे हुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया। अगर काज तेरे किते न काम, मिल सौद संगत भज केवल नाम। संग जाम लाग पव जल तरन के, जन्म बिरथा जात रंग माया कह रहा हो। जब तप संजम कर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया। कहू नानक हम नीच कर्मा।

उठत सोवत जागत विसर नाही तू सास गिरा साराओ राख राख शरण प्रभ अपनी अगन सागर विकराला नानक के सुखदाते सतगुर हम तुमरे बाल गोपाला आसा मैला पन्नवा हर जन लीने प्रभु छड़ाए प्रीतम सो मेरो मन मान्या पाप मुआबिक खाए प्रभाव पाला ताओ कछु न व्यापे राम नाम गुण गाए बाकी को चित कछु न लागे चरण कमल शरणाए संत प्रसाद पै कृपाला होए आप समाए गुण निधान नित गावे नानक सह

कर कृपा चरण संग मेली, सुख सहज अनंत सुहेली, साध संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक तई अमोली, आसा महला पंजवा, काम क्रोध माया मद मत्सर।

मिल संग पयो मन निर्मल गुरपुर लेखिन मैं तारे रहाओ सबकी रेन होए रह मनुआ सगले दिशे मीत प्यारे सब मदे रविया मेरा ठाकुर दान देत सब जी समारे एको एक आप एक है सगला पासारे जप जप होए सगल साध जन एक नाम ते आए बहुत उधारे गैर गंभीर बेअंत गुसाई अंत नहीं किस पारावारे तुमरी कृपा ते गुरु गावे नानक त्याय त्याय प्रभु को नमस्कारे आसा मेला पंजवा तू बेअंत अविगत अगोचर एहो सब तेरा आकार क्या हम जंत करें चतुराई जा सब किछे तुझे मझार मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार

आधार अनद करे सास सास संवारे ना पोहे अगनार पर तन पर दारा पर निंदा इनसो प्रीत निवार चरण कमल सेवी हृदय अंतर।

राज मिलक जो बन गृह शोभा रूपवंत जो आनी बहुत दर्भ हस्ती अर कोड़े लाल लाख बयानी आगे दर्घ है कामना आवे छोड़ चले अभिमानी काहे एक बिना चित लाये उठत बैठत सोवत जागत।

कर्म तर्म जुगत बहु करता करने हार ना जाने उपदेश करे आप ना कमावे तत शब्द ना पछाने नांगा आया नांगो जासी जो अस्ति खाक छाने संत सज्जन सुनो सब मीता झूठा एवं पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खप खप मोए गवारा गुर मिल नानक नाम ते आया साच नाम निस्तारा राग आसा कर पंजवा महला पंजवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद क्रम में सोई सगल जगत तंद अंध को जागे हर जन महामोहनी मगन प्रे प्रीत प्राण को त्याग विरला चरण कमल अनूप हर संत मंत को लागे साधु नानक साधु संत।

राग आसा कर छीवा महला पंजवा। जो तुद पावै सो परवाना, सूख सहज मन सोई, करण कारण समरथ अपारा, अवर नहीं रे कोई। तेरे जन रसक रसक गुण गावे, मसलत मता सियानत जन की, जो तू करें करावे रहाओ। अमृत नाम तुम्हारा प्यारे, साध संग रस पाया, तृप्त अघाए से जन पूरे, सुख निदान हर गाया। जा को टेक तुम्हारी स्वामी, ता को नाही चिंता, जा को दया तुम्हारी होई, से सह पले भगवंता। कर्म मोह त्रो सब निकसे, जब का दर्शन पाया, वर्तन नाम नानक सच कीना, हर नामे रंग

ता बिगुता जै कोई न राखे को किस पे करे पुकारा। निंदक की दत कत हूँ नाही खसमे एवे पाना जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुखमाना। संता टेक तुम्हारी स्वामी तू संतन का सहाई कहो नानक संत हर राखे निंदक दिए रुड़ाई। आसा मेला पंजवा बार तोए अंतर मन मेला दोए ठौर अपने कोए इहां काम क्रोध मोह व्यापिया आगे मुसमुस रोए। गोविंद भजन की मत है होरा गर्मी मारी साथ न मरी नाम ना सुने डोरा रहाओ। माया की किरत छोड़ दवाई भक्ति सार न जाने वेद शास्त्र को तर्कन लागा तत जोग ना पछ।

छुपाया कूड़ कपट वंश निमुनिया दा बिरस गया तत्काले सत सत सत नानक कहया अपने हृदय देख समाले आसा मैला पन्या उद्यम करत हो वै मन निर्मल नाचे आप निवारे पंच जना ले वसगत राखे मन में एकंकारे तेरा जन नृत्य करे गुण गावे रबाब पखाव

सगल सुनावे, कर संग साधु चरण पखारे, संत तूर तन लावे, मन तन अर्थ तरे गुर आगे, सत पदार्थ पावे, जो जो सुने पे खेलाए सरदा, ताका जन्म मरण दुख पागे, ऐसी नृत नरक निवारे, नानक गुरुमुख जागे, आसा मैला पंजवा।

अज कै वस गुर कीनो के हर कुकर तिने लगाई रे रहाओ। बाज थूनिया छपरा थामिया निकरिया कर पाया रे, बिन जड़िए ले जड़ियो जड़ावा थेवा अचरज लाया रे। दादी दाद न पहुंचन हारा चूपी निरनो पाया रे, माल दुली चै बैठी ले मृतक नैन दिखालन ताया रे। कोई अजान कहे मैं जाना जानन हार ना छाना रे, कहो नानक गुर अम्यो पियाया रसक रसक बिगसाना रे। आसा मेला पंजवा बंधन काट बिसारे औगन अपना बिरद समारिया, होए कृपाल मात कितने आई बारक ज्यो प्रतारिया। गुर सिख राखे गुर गोपाल काड लिए मां पौजल ते अपनी नदर निहाल रहाओ। जा कै सिमरन जमते छुटिए हलत पलत सुख पाइए, सास गिरास जपो जप रसना नीत नीत गुण गाइए। भगत प्रेम परम पद पाया साध संग दुख नाठे, छिजे न जाए किछ पौ न व्यापे हर तन निर्मल गाठे। अंत काल प्रभ सहाय एक उतराखन हारे प्राण मीत।

चित मैं जियो सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर मन तन मेरा ठार थियो रहाओ तुमरी कृपा ते पयो साध संग एहो काज तुम आप कियो दिड़ कर चरण गहे प्रभु तुमरे सहजे बिखिया पई थियो सुख निधान नाम प्रभु तुमरा एहो अविनाशी मंत्र लियो कर कृपा मुझे सतगुरु दीना ताप संताप मेरा बैर गियो तन सो मानस दे ही पाई जित प्रभ अपने मेल लियो तन सो कल युग साध संकीर्तन गाये।

बाँ कोरते बाँ पकड़ गुर काट लिए, निरपो पे सगल पौ मिटिया राखे राखन हारे, ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कारज सगल सवारे, गुण निधान साहिब मन मेला

तब आप सिंगार सवारन हार रहाओ दूजा आसा महला पंजवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मुझे मिली है दूर चुका ने हो रहा सकी सहेरी धर्म गया गुर फिर संग मेरी रहाओ निकट कौन प्रै सेज तरी कौन कदम ते छूट परी मंदर मेरे शब्द उजारा अनज बिनोदी खत्म हमारा मस्तक भाग में फिर कर आया फिर सोहाग नानक जन पाया आसा मेला पंजवा साच नाम मेरा मन लागा लोगन से मेरा ठाठा बागा।

नानक जन गुरु पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। आशा मेला पंजवा, पावत रलिया जो बन बलिया, नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया बस्तर ओढ़लिया, सेज सुख लिया मन गर्बलिया, रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया, हर पगत बिना ले तरन गढ़लिया, रूप सुंदरिया अनिक स्त्रिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया चलिया बिकार बिखलिया, शरण नानक प्रभ पुरख दयालिया। आसा मेला पंजवा, एक बगीचा पेड़ कन करिया, अमृत नाम कहा मैं फलिया, ऐसा करो विचार ज्ञानी, जाते पाये पद निर्वाणी, आस पास बिखुआ के कुंता, बीच अमृत है पाई रे, रहाओ सिंचन हारे एक कैमाली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पत आन जड़ाई, सगली फूली निफल नाकाई, अमृत फल नाम जिन गुरते पाया, नानक दास तरी तिन

जिन तू जाता सो ग्रस्त उदासी परवान, नाम रता सोई निर्माण, जाको मिलियो नाम निधाना, पंत नानक का पूर खजाना, आसा मैला पन्नवा। तीर्थ जाओ ता हो करते, पंडित पूछो ता माया राते, सो स्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, रहाओ शास्त्र वेद पाप पुन विचार, नरक स्वर्ग फिर अवतार।

साध संग हर कीर्तन गाये यो स्थान गुरु ते पाये राव दूजा आसा मेला पंजवा कर में सुख बार फुल सूखा हर सिमरत सगल बिना से दुखा सगल सुख जा तू चित आवे।

तह दुख डेरा हुक्म बूझै सोई परवान साथ सब जाता निशान गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया पंत नानक मेरे मन सुख पाया आसा मैला पंजवा।

कहो नानक नित इवै त्याई गत होवै संतै लग पाई। आसा मैला पंजवा उठत बैठत सोवत त्याये मार्ग चलत हरे हर गाये। श्रवण सुनी जय अमृत कथा जास सुनी मन होए आनंदा दुख रोग सगले मन लखा राव। कारज काम बाट काट जपी जय गुर प्रसाद हर अमृत पी जय। दिन त्रैन हर कीर्तन गाये सो जन जन की वाट न पाये। आठ पैर जिस विसरै नाही गत होवे नानक तिस लग पाए। आसा मैला पंजवा जा कै सिमरन सुख निवास पई कल्याण दुख होवत नास। अनद करो प्रभ के गुण गावो सतगुर अपना सब सदा मनावो रहाओ। सतगुर का सत शब्द कमावो फिर कर बैठे प्रभ अपना पावो। पर का बुरा न राखो चीत तुमको दुख नहीं पाई मीत। हर हर तंत मंत गुर दीना इन सुख नानक अनदिन चीना। आसा मेला पंजवा जिस नीच को कोई न जाने नाम जपत उह चौकुन तुमाने। दर्शन मांगो दे प्यारे तुमरी सेवा कौन कौन ना तारे राव। जाके निकट मोह आवे कोई सगल सृष्ट पुआ के चरण मल धोई। जो प्राणी काहु ना आवत काम संत प्रसाद ताको जपिए नाम। साध संग मन सोवत जागे अब प्रभु नानक नीचे लागे। आसा मेला पंजवा एको एकी नैन निहारो सदा सदा हर नाम समारो।

सगल समग्री जा के सूत पर होई कट कट अंतर रया सोई ओ पट पर लो खिन मैं करता आप अलेपा निर्गुण रहता करन करावन अंतर जामी आनंद करे नानक का स्वामी। आसा मेला पंजवा कोट जन्म के रहे पवारे जुलब देह जीती नहीं हारे किलबिक बिना से दुख दर्द दूर पै पुनीत संतन की तूर रहाओ प्रभ के संत उदाहरण जोग इस पेटे जिस पुर संजोग मन आनंद मंत्र गुर दिया कृष्ण बुझी मन ने चलतिया नाम पदार्थ नौ निध सिद्ध नानक गुरते पाए।

सत्संग चारे जागरे मन जागन हारे बिन हर अवर नाव सुकामा झूठा मो मिथ्या पसारे राव गुर की बाणी से रंग लाए गुर कृपाल होए दुख जाए गुर बिन दूजा नाही थाओ गुर दाता गुर देवे नाओ गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप आठ पैर नानक गुर जाप आसा मेला संजमा आपे पेड़ विस्थारी साख अपनी खेती आपे राख जत कत पे खोए कै ओही कट कट अंतर आपे सोई राव आपे सूर किरण विस्थार सोई गुप्त सोई आकार सर गुण निर्गुण था पैनाओ दो मिल एक कै कीनो ठाओ कहो नानक गुरु परम को खोया अनुज रूप सब नैन अलोया आसा महला पंजवा उकत सियान किछु न जाना।

रहा हो। मूर्ख मुग्ध अज्ञान अविचारी, नाम तेरे की आस मन धारी। जप तप संयम कर्म न सादा, नाम प्रभु का मने अरादा। किछु न जाना मत मेरी थोरी, बिनवत नानक ओट प्रभ तोरी। आसा मेला पंजवा, हर हर अखर दोए माला, जपत जपत पै दीन।

सोजन इत उत कते न डोले कहु नानक जो राचे नाए हर माला ता कह संग जाए आसा महला पंजवा जिसका सब किछ तिसका होए तिस जन लेत न व्यापे कोए हर का सेवक सद ही मुक्ता जो किछ करे सोई पल जन के अत निर्मल दास की जुगता रहाओ सगल त्याग हर सरणी आया तिस जन कहा व्यापे माया नाम निधान जाके मन माहे तिसको चिंता सुपने नाहे कहो नानक गुरु पूरा पाया परम मोह सगल बिन साया।

मिट गया दुख बिसारी चिंता, फल पाया जब सतगुरु मंता, सोई सत सत है सोए, सिमर सिमर रख कंठ परोए, कहो नानक।

जागत भगत सिमरत हर राते रहाओ मोह परम बहु जोन को आया अस्थिर भगत हर चरण ते आया बंधन अंग कूप गृह मेरा मुक्ते संत बुझे हर नेरा कहु नानक जो प्रभु शरण आए इहां सुख आगे गत पाए आसा मेला पंजवा तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे।

तू मेरी गत पट तू परवान, तू समरथ मैं तेरा तान, अन दिन जपो नाम गुण तास, नानक की प्रभु पै अरदास, आसा मैला तन्यवा। रोवन हारे झूठ कमाना, हस हस सोग करत दे गाना, को मुआ का कह कर गावन, को रोवे को हस हस पावन, रहाओ बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुँचना मुका फिर पछताना, त्रयो गुण में वर्ते संसारा, नरक सुरग फिर अवतारा, कहो नानक जो लाया नाम, सफल जन्म।

निसारे हो, खिसर गयो पूम पर डारे हो, साध मोहिला दी अंकारे, दोष नाही प्रभ करने हारे, साध संग मिटे परम अंधारे, नानक मेली सिरजन हारे, आशा मेला पंजवा, चरण कमल की आस प्यारे, जम कम कर नस गए विचारे, तू चित आवे तेरी माया, सिमरत नाम सगल रोग खया, रहाओ अनेक दुख देवे अवरा को, पहुँच न साके जन तेरे को, दर्श तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी, नानक की अरदास सुनी जय, केवल नाम हृदय में दी जय, आशा मेला पंजवा, मन तृप्ता नो मिटे जंजाल, प्रभ अपना होया कृपाल, संत प्रसाद पली बनी, जाके गृह सब किछ है, पूरन सो पेटिया निरपैतनी रहाओ, नाम दृढ़ाया साध कृपाल।

को जन पूरन रहे अधाई, कछु न थोरा हर पगतन को, खात खर्चत बिलछत देवन को। रहाओ जाका तनी अगम।

जा को दया करो मेरे स्वामी, कहो नानक नाही तिन कामी। आशा मेला पंजवा, जो मैं अपना सतगुर त्याया, तब मेरे मन महा सुख पाया, मिट गई गणित।

हार, उनके संग तू रखी पलोल, ओस बिना तू छुटकी रोल, उनके संग तेरा मान महत, उनके संग तुम साख जगत, उनके संग तेरी सब विद थाटी, ओस बिना तू हुई है माटी, ओ बैरागी मरे न जाए, हुक्मे बादाकार कमाए, जोड़ बिछोड़े नानक थाप, अपनी कुदरत जाने आप। आसा महला पंजवा, ना ओ मरता।

पाग ता पावो संग मिले स्वामी अपने रंग जात पात देवो सब ने मां कर्म कर्म अर्पो सब हो मां गर्भ मोह तज हो देन उनके संग देखो प्रभ नैन निमख निमख एही

उपत हुए के राज समाया, कर कर अनर्थ विहाजी माया। संचत संचत फैली कीनी, प्रब उसते डार अवर को दीनी, काच गगरिया अंब मजरिया।

जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई रहाओ। ऐसी सुंदर मन को मोह है, बाट काट गृह बन बन।

प्रतपाले प्रभ आप कट कट सारी है, जिस मन उठा आप किस ना विसारी है, जो किस करे सो आप आपन पाणिया, भगता का सहाय जुग जुग जानिया, जप जप हर का नाम कदे न चूरी है, नानक दर्श प्यास।

पुत्र कलत्र गृह सगल सामग्री सब मिथ्या असनाहा। रे मन क्या करें है हाहा, दृष्ट देख जैसे हर चंदौ।

जन्म मरण दुख लाथे, रहाओ दूजा पासा मेला पंजवा। निमख काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे, करी मोत रंग माने फिर बोर बोर पछतावे। अंधे चेत हर हर राया, तेरा सो दिन नेड़े आया, रहाओ पलक दृष्ट देख फूलो आ।

चालत बैसत सोवत हर जस मन तन चरण खटानी हौ हौरो तू ठाकुर गौरो नानक शरण पछानी।

देखत साधु संग हर हर नाम चराहो रंगन आपे ही प्रभ रंग। मन में राम नामा जात कर कृपा वसो मेरे हृदय होए सहाय आप रहाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ देखन का चाओ। दया करो किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन पन तेरा तू प्रभु मेरा हमरे बस किछ नाहे। ज्यो ज्यो राखे त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक पाग। आप कृपाल कृपा प्रभु तारी सतगुरु बख्शिया हर नाम। कल जुग उधारिया गुरुदेव मल मूत मूड जे मुग्ध होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब सृष्ट धरता सब मेरे आसमाए। परम राजा विस्माद हुआ सब पई पैरी आए। सत युग त्रेता द्वापर कणिए कल युग उत्तमो जुगा माहे। ऐ कर करे सो ऐ कर पाए कोई न पकड़िए किसे खाए। हर जियो सोई करे जे भगत तेरे जाचे एहो तेरा बिरद कर जोड़ना।

सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे, जन्म पवनते नरक पड़नते तिनके कुल उधारे। कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वारे।

मो कुटुंब बिखे रस्मा से मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे कर कृपा राखे सत्संगे नानक शरण आहे आसा महला पंजवा तिप दे ओहा प्रेम पिरी रहाओ कनक माणिक गज मोतियन।

चरणन सरहन संतन बंदन सुखो सुख पाहे, नानक तप्त हरि मिले प्रेम पिरी आशा मैला पंजवा। गुरे दिखायो लोए ना रहाओ, ईते ऊते कट कट कट कट, तू ही मोहिना, कारण करना कारण करना, एक है सोहिना, संतन परसन बलिहारी दर्शन, नानक सुख सुख सोयना, आशा मैला पंजवा। हर हर नाम अमोला, ओह सहज सुहेला, रहाओ संग सहाई छोड़ न जाई, ओह अगे अतोला, प्रीतम पाई बाप मोरो माई, भगतन का ओला, अलख लखाया गुर ते पाया, नानक एहो हर का चोला, आसा मैला पंजवा।

आया गुण रसरत गावे, एक आशा दर्श प्यासा आन न पावे, दया तुहारी क्या जंत विचारी, नानक बल बल जावे। आशा महला पंजवा, एक सिमर मन माही रहाओ, नाम ते आवो हृदय बसावो, तिस बिन को नाही, प्रभ सरनी आये सर्व फल पाये, सगले दुख जाही, जीवन को दाता पुरख विदाता, नानक कट कट आही। आसा मेला पंजवा, हर बिसरत सो मुआ रहाओ, नाम ते आवे सर्व फल पावे, सो जन सुखिया हुआ, राज कहावे हो कर्म कमावे, बांध्यो नलनी प्रमसुआ, कहो नानक जिस सतगुर पेटिया, सो जन ने चलसिया। आसा मेला पंजवा, कर चौथा इको अंकार, सतगुर प्रसाद। ओहो नियो नवेला, अपने प्रीतम स्यो लाग रहे रहाओ, जो प्रभ पावे जन्म न आवे, हर प्रेम भगत हर प्रीत रचे, प्रभ संग मिली जय, इहो मन दी जय,

प्रभ तुमरे दर्श बिन सुख नाही, वर्त नेम संजम कर थाके, नानक साध शरण प्रभ संग वसे। आसा मैला पंजवा कर पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। विकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवे, पकर केस जम उठारियो तद ही कर जावे। लोग बिखिया बिखे लागे हिरवित चित दुखाही, खिन पंगुना के मान माते असुर जाने नाही रहाओ। वेद शास्त्र जन पुकारे सुने नाही डोरा, निपट बाजी हार मुका पछतायो मन पोरा। दान सगल गैर वजह परया, दीवान लेखे ना परया, जे कारज रहे ओला सोए कामना करया। ऐसो जग मोहे गुर दिखायो तो एक कीरत गाया, मान तान।

काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम रहाओ। तज मान मोह विकार मिथ्या जप राम राम राम मन संतना के चरण लाग प्रभ गोपाल दीन दयाल पतित पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूरन भाग आसा मैला पंजवा हर्ष शोक बैराग आनंदी खेल री दिखायो रहाओ। खिनहु पै निरपै खिनहु खिनहु उठ धायो खिनहु रस सोगन खिनहु खिनहु तज जायो खिनहु जोग ताप बहु पूजा खिनहु परमायो खिनहु कृपा साधु संग नानक हर रंग लायो।

गोविंद कर हां, हर हर मन प्यार हां, गुर कहा सो चित कर हां, अनस्यो कोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी राओ, पंकज मोह सर हां, पग नहीं चले हर हां, गह दियो मूड नर हां।

ना रहाओ। टूटे अन पराना रवियो सर्व थाना लहो जम पयाना पायो पेड़ थाना तो चूकी सगल कान।

प्रीत कर हां बिनस न जाए मर हां गुर ते जानिया हां नानक मन मानिया मेरे मना आसावरी महला पंजवा एका ओट गहो हां गुर का शब्द कहो हां आज्ञा सत सहो हां मन है निधान लहो हां।

तिस निकट ना कदे दुख हा, जो हर हर जस सुने हा, सब को तिस मने हा, सफल सो आया हा, नानक प्रभ पाया मेरे मना, आसावरी मैला तन्यवा। मिल हर जस गाये हा, परम पद पाये हा, उआ रस जो बिदे हा, ताको सगल सिदे हा, अन दिन जागया हा, नानक बड़ पा।

उत्तर अवघट सर्वरनावे, बके न बोले हर गुण गावे, जल आकाशी सुन समावे, रस सत चोल महारस पावे, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, परपुर तार रहा सब ठौरे, रहाओ सच व्रत नेम न काल सुनतावे, सतगुर शब्द क्रोध जलावे, गगन निवास समाध लगावे, पारस परस परम पद पावे, सच मन कार

सुरत विभूत चढ़ावे, दर्शन आप सहज कर आवे, निर्मल बाणी नाद बजावे, अंतर ज्ञान महारसारा, तीर्थ मज्जन गुर विचारा, अंतर पूजा थान मुरारा, ज्योति ज्योत मिलावन हारा, रस रसिया मत एक भाए, तख्त निवासी पंच समाए, कार कमाई खसम रजाए, अवगत नाथ न लख्या जाए, जल में उपजे जल ते दूर, जल में ज्योत रहा करपूर, किस नेड़े किस आखा दूर।

उजड़ पर मैं रहे न पाई, बिन बूझे को थाए न पाई, नाम बिहुने माथे छाई, साच तनी जग आए बिनासा, छूटस प्राणी गुरमुख दासा रहाओ, जग मुहे बांधा बहुती आसा, गुरमति इक पे उदासा, अंतर नाम कमल पर गासा, तिनको नाही जम की त्रासा, जग त्रिय जित कामन हितकारी, पुत्र कलत्र लग नाम विसारी, वृथा जन्म गवाया बाजी हारी, सतगुर सेवे करनी सारी, बारों हो मैं कह कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे ना लाए।

नदर करे संजोग मिलाए, रूड़ो कहो ना कहया जाई, अकथ कथो न कीमत पाई, सब दुख तेरे सुख रजाई, सब दुख मेटे सा चैन आई, कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला, अंतर साथ सबे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला, त्रिभुवन सूजे आप गवावे, बाणी बूजे सच समावे, शब्द विचारे एक लिवतारा, नानक तन सवारन हारा।

जमन मरना हुकम पछाण राव माया मोह जग बांदा जम काले बांदा छूटे नाम समाले गुर सुख दाता अरना पाल हालत पलत निभी तुद नाल सबद मरे ता एक लिवलाए अचर चरे ता कर्म चुकाए जीवन मुक्त मन नाम वसाए गुरमुख होए ता सच समाए जिन तरसा जी गगन आकाश जिन सब थापी थाप उथाप सर्व निरंतर आपे आप किसे न पूछे बख्शे आप तू पुरुषागर मानक हीर तू निर्मल सच गुणी गहीर।

जग पंडित विरला विचारी, बिन सतगुर पेटे सब फिरे अंकारी। जग दुखिया सुखिया जन कोए, जग रोगी भोगी गुण रोए। जग उपजै बिन सह पत खोए, गुरमुख होवे बूझे सोए। मह गो मोल पार अपार, अटल अछल।

जिस वेदन होए जिस बीती जाने प्रभ सोए आपे करता करे सोए जीवत मरना तारे तरना जय जगदीश परम गत सरना हों बलिहारी सतगुर चरना गुर बोहित शब्द पै सरना निरपो आप निरंतर ज्योत बिन नावे सूतक जग छोत दुर्मत बिन सह क्या कह रोत जन्म मुए बिन भगत सरोत मुए को सच रोवे मीत त्रै गुण रोवे नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सोपो कृष्ण प्रीत पीतर एक अनेक असंख कर्म तर्म बहु संख असंख दिन पै भक्ति जन्म बिरंथ हर गुण गावे मिल परमारंथ आप मरे मारे भी आप उपाय थाप उथाप सृष्ट उपाय ज्योति तू जात शब्द विचार मिलन नहीं प्रात सूतक अगन पखे जग खाए सूतक जल थल सभी थाए नानक सूतक जन्म मरी जय गुरु प्रसाद।

शिव सहज कर गुर कर पार, आशा मनसा शब्द जलाए, राम नारायण कहे कहाए, गुर ते वाट महल कर पाए।

साच अकूट पंच तीन नव चार सुमावे तरण गगन कल तार रहावे बाहर जातो उल्ट करावे मूर्ख हुए ना आखी सूजे जेवा रस नहीं कहया बूजे बिक्का माता जग सो लूजे उत्तम संगत उत्तम होवे गुण को पावे अवगण तोवे

हुक्मो वर्तै जो तिस पावै, गुरबिन पूरा कोई न पावै। बालक बिरद न सुरत प्राण, पर जो बन बूढ़े अभिमान, बिन नावे क्या लहस निदान। जिसका अन तन सहज न जाना, परम फुलाना फिर पछताना। गल पाही बौरा बौराना, बूढ़त जग देखिया तो डर पागे। सतगुरु राखे सेवड़ पागे।

रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा, लब लोभ अहंकार सो पीरा, राम नाम दिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन साच पछाणे, अंतर की गत गुरमुख जाने, साच शब्द बिन मेल ना पछाणे। निरंकार में आकार समावे, अकल कला सच साच टिकावे। सो नर गर्भ जोन नहीं आवे, जहाँ नाम मिले तह जाओ। गुर प्रसादी कर्म कमाओ, नाम मेरा ताहर गुण गाओ। गुर सेवा से आप पछाता, अमृत नाम बसे।

है सदा सुख आ गए। मन चंचल विद नाही जाने, मन मुख मैला शब्द ना पछाने, गुरमुख निर्मल नाम बखाने। हर जियो आ गए करी अरदास, साधु जन

यूं मन मुग्ध कहो क्यों रहसी, बिन समझे जम का दुख सहसी। आपे बख्शे सतगुरु मिले, काल कंटक मारे सच पीले। यूं मन कर्मा यूं मन तर्मा, यूं मन पंच तत् से जन्मा। साकत लोभी यूं मन मूड़ा, गुरमुख नाम जपे मन रूड़ा। गुरमुख मन अस्थाने सोई, गुरमुख त्रिभुवन सोजी होई। यूं मन जोगी पोगी तप तापे, गुरमुख चीने हर प्रभ आपे। मन बैरागी हो मैं त्यागी, कट कट मन सा दुबदा लागी। राम रसायन गुरमुख चाखे, दर कर मैली हर पत राखे। यूं मन राजा सूर संग्राम, यूं मन निरपो गुरमुख नाम। मारे पंच अपने वश किए, हो मैं ग्रास इकत खाए किए। गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे, गुरमुख यूं मन भगती जागे। अनहद सुन मानिया शब्द विचारी, आत्म चीन पय निरंकारी। यूं मन निर्मल दर कर सोई, गुरमुख भगत पाओ तुम होई। एनस हर जस गुर प्रसाद, कट कट सो प्रभ।

नानक हर जन के दासन दासा। आसा मैला पहला तन बिन सह तन का को कही है, बिन गुरु राम नाम कत नहीं है, राम नाम तन संग सखाई, एनस निर्मल हर लिवलाई, राम नाम बिन कवन हमारा, सुख दुख सम कर नाम न छोड़ो, आपे बख्श मिलावन हारा रहाओ, तनिक कामनी हेत गवारा, दुबदा लागे नाम विस

देख अचरज रहे बिस्माद, काट काट सुर नर सह समाद, पर पुर तार रहे मन माही, तुम संसार अवर को नाही। जाके भगत हेत मुख नाम, संत भगत की संगत राम, बंधन तोरे सहज ध्यान, छूटे गुरमुख हर गुर ज्ञान, ना जम दूत दुख तिस लागे, जो जन राम नाम लिव जागे, भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त पए हर रंग, आसा महला पहला इक तुकी। गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने, राम जपो मेरी सखी सखैनी, सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी रहाओ, बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या अरनार, बंधन कर्म धर्म हो किया, बंधन पुत कलक

बंधन सा संचय तन जाए, बिन हर भगत न कभी थाए। बंधन वेद बाद अंकार, बंधन बिन सह मो विकार। नानक राम नाम शरणाई, सतगुरु राखे बंद ना पाए।

तिन गल सिलका पाया टुटन मोतसरिया तन जोबन दोई वैरी होए जिन्नी रखे रंग लाए दूता नो फुरमाया ले चले पट गवाए जे तिस पावे दे।

कमाई, कहां सो तेग बंद गाडे रड़, कहां सो लाल कवाई, कहां सो आरसिया मो बंके, एथे दिसे नाही, एहो जग तेरा तू गोसाई, एक कड़ी में थाक उठाते, जर वंड देवे पाई, राव, कहां सो करदर मंडक महला, कहां सो बंक सराई, कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेत नींद ना पाई, कहां सो पान संगोली हरमा।

है मत अमृत पिया। आसा मेला पहला चले चलन हार वाट वटाया, तंद पिटे संसार सच ना पाया। क्या कवि है क्या टूटी है गुर शब्द दिखाया, ममता मोह विसर्जया अपने कर आया। रहाओ सच मिले सच्यार कूड़ न पाई है, सच्चे स्यो चित लाए बौड़ न आई है। मोया कौ क्या रोवो रोए न जानहु, रोवो सच सराए।

हुक्मी पैदा जाए दरगे पानी है, हुक्मे ही सिर मार बंदर वाणी है। लाहा सच में आओ मन वसाई है, लिखिया पल्ले पाए गर्व मंजाई है। मन मुखिया सिर मार वाद खपाई है, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है। साहिब हृदय वसाए ना पछोता वही, गुनहा बख्शन हार शब्द कमावही। नानक मंगे सच गुरमुख काली है, मैं तुझ बिन अवरना कोई नजर निहाली है। आसा मेला पहला, क्या जंगल टूंडी जाए मैं कर बन हरियावला। सच टिके कर आए शब्द उतावला, जह देखा तह सोए अवर न जानी है। गुर की कार कमाए महल पछाणी है। रहाओ आप मिलावे सच ता मन पावे।

फरमाई जे मन सतगुरु दे मिले किन कीमत पाई रत्ना पारक सोतनी तिन कीमत पाई नानक साहिब मन वसै।

पर खाए, गुरबिन किने न पायो केती कह कहाए, अड़प दिखावे वाटड़ी सच्ची भगत दृढ़ाए, मन मुख जे समझाए पी उजड़ जाए, बिन हर नाम न छूट सी मर नरक समाए, जन्म मरे परमाइए हर नाम न लेवे, ताकि कीमत ना पवे बिन गुरु की सेवा।

साहिब सो मन मानिया दे साच आधार एन नाम संतोखिया सेवा सच्चाई ताको बिघन न ला गई चाले हुकम रजाई। हुकम रजाई जो चले सो पवे खजाने खोटे खबर न पाए नी रले जूठाने नित नित खरा संभालिए सच सौदा पाइए खोटे नजर न आवनी ले अगन जलाइए। जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई एको अमृत बिरख है फल अमृत होई अमृत फल जिन्नी चाखिया सच रहे अगाई जिन्ना परम न भेद है हर रसन रसाई। हुकम संजोगी आया चल सदार जाई औगुण यारे को गुण नानक है सच मिले वडाई। आसा मेला पहला मन रातो हर नाए सच वखाणिया लोकां दा क्या जाए जां कुद पाणिया जो लग जियो प्राण सच दियाई है लाहा हर गुण गाए मिले सुख।

दर सेवक दरवान दर्द तू जान ही, भगत तेरी हैरान दर्द गवावही, दरगह नाम हदूर गुरमुख जान सी, वेला सच परवान शब्द पछाण सी, सत संतोख।

अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सासत वेद सिमरत सर तेरा सुर सरी चरण समाणी साखा तीन मूल मत।